ओम शांति। हम सभी को बाबा ने स्पिरिचुअल नॉलेज दी है और बहुत सूक्ष्म रहस्य हमारे सामने खोल कर रख दिए हैं। उसमें से एक रहस्य ये भी है कि जो जितना न्यारा बनेंगे वो उतने ही प्यारे बनेंगे। इसका और क्या अर्थ है? अर्थात जो जितना देह से न्यारे बनेंगे, जो पदार्थों के आकर्षण से न्यारे बनेंगे, जो मनुष्यों के मोहममता से न्यारे बनेंगे, वो बाप के प्यारे बन जाएंगे और विश्व के भी प्यारे बन जाएंगे। संसार में हर मनुष्य प्यार चाहता है, परंतु प्यार पाने की विधि यही है। इस समय जो देह से न्यारे बन जाएंगे वो परमात्म प्यार में भी मग्न हो जाएंगे और उन्हें जन्म जन्म रिश्तों में भी प्यार प्राप्त होगा। तो आइए हम सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें इस देह से न्यारे होने की। जो देह से न्यारे होने का निरंतर अभ्यास करते हैं वही मैपन से भी मुक्त होते जाते हैं और उनके द्वारा इस संसार को ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस मिलते रहते हैं। बहुत जरूरत है इस समय सारे संसार को शांति की तरंगे देने की। हम सभी पूर्वज हैं, हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम संसार की सभी आत्माओं की मदद करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अपने वैर भाव छोड़कर अपने मन की भावनाओं को श्रेष्ठ करें। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, इन्होंने हमें बहुत सताया है, इन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, ये सब भावनाएं अब हमें छोड़ देनी है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं। बड़े अर्थात सबके पूर्वज। तो हमारी दृष्टि सभी के लिए बहुत स्वीट होनी चाहिए और हमें याद रखना है कि जिस मनुष्य को, जिस पूर्वज को संसार को शांति का दान देना है, उन्हें अपने अंदर शांति की शक्ति बहुत भरनी होगी। ये साइलेंस पावर है, इसलिए उन्हें ध्यान रखना है कि वो कभी भी किसी बात में अशांत नहीं हो सकते, न चारों ओर अशांति फैला सकते। मन को अशांत करने वाली बातें बहुत आती हैं, परिवारों में भी अनेक बातें रोज आती हैं जो मन को विचलित करती हैं, मन की सुखमय स्थिति को नष्ट करके उसे अशांत कर देती हैं। परंतु हमारे पास सच्चा ज्ञान है, इसलिए हमें अपने चित्त को कभी भी अशांत होने नहीं देना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज कलयुग में हम सबके सामने है। इस चैलेंज को हम स्वीकार करें और हम भी चैलेंज कर दें कि किसी के शब्द, किसी का व्यवहार, कोई लाभ हानि, कोई सुख दुख हमें अशांत नहीं कर सकता। हम जब इतने शक्तिशाली बनेंगे तब हमारे अंदर शांति की शक्ति जमा होती जाएगी। हमें कमजोर नहीं बनना है कि कोई हमें कुछ भी कह दे और हम अपनी शांति को खो बैठे। ये बिल्कुल नहीं होने देना है। लक्ष्य बना लेना है, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरी शांति को मुझसे छीन ले। और इसके लिए बार बार स्वयं को देह से न्यारा करने का अभ्यास करना है। इस अभ्यास में न केवल चारों ओर शांति फैलती है, लेकिन हम मूल रूप में ही जो शक्तिशाली हैं, हम शक्ति स्वरूप हैं, परफेक्टली हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, वो शक्तियाँ पुनः हमें प्राप्त होने लगती हैं और हम अपनी शांति को सदा कायम रख सकते हैं। तो आज सारा दिन हम बार बार अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अलग, ये देह अलग।
बार बार अपने देह की ओर देखें और संकल्प दें, मैं ये नहीं हूं, मैं तो मास्टर ज्ञान सूर्य, एक बहुत तेजस्वी आत्मा भ्रकुटी के मध्य में विराजमान, मुझसे तो चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये अभ्यास बारंबार करेंगे तो सारा दिन डीप साइलेंस का अनुभव होगा और अनुभव होगा कि भाई ये कोई भी वातावरण हम पर अपना प्रभाव नहीं डालता। ओम शांति।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कुछ लोग अपनी ही भूल के कारण सफलता के अवसर खो देते हैं। इसका कारण होता है कि वे एक ही समय में अनेक काम करना चाहते हैं। अवसर मिलते ही एक काम हाथ में होने पर भी अधिक लाभ की इच्छा से दूसरा शुरू कर देते हैं। एक काम को करते समय ही उनके मन में यह भावना जन्म लेने लगती है कि उनके सामने जो दूसरा काम है उसे करने में अधिक लाभ हो सकता है। बस फिर क्या, वे लोग अपने हाथ वाले काम को छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं। इससे लाभ तो क्या होना है, हानि जरूर हो सकती है। पहला काम अधूरा रह जाता है, फिर दूसरे के बारे में तो क्या कहा जा सकता है। इसे कहते हैं आधी छोड़ पूरी को खाने के लिए दौड़ा, मगर हाथ से आधी भी गई। आप दूसरे काम को देखकर अपने काम को खराब न करें। केवल एक समय में एक ही काम करें और उसी में अपना पूरा मन लगाएं। अधूरे और बुझे हुए मन से किए जाने वाले किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें। यह आदत खराब तो है ही, परंतु इसके साथ साथ इसके परिणाम भी बुरे ही निकलते हैं। करो या मरो, आज भी भले ही यह बात आपको पुरानी लगेगी, मगर यह बात आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि आप जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और उसे शुरू करते जाते हैं, उसे यही समझकर शुरू करें कि हमें इस काम को हर हाल में पूरा करना है। जब तक यह पूरा नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यदि आप इस प्रकार के दृढ़ धारणा के साथ काम शुरू करेंगे, तो फिर यह निश्चित है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके विपरीत यदि कोई मानव छोटी छोटी बातों को तुच्छ समझकर उनकी अपेक्षा करता है, तो यह उसकी सबसे बुरी आदतों में से एक मानी जाएगी, जो उसकी असफलता का कारण बन जाती है। यह असफलता उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती है। यदि आप सदा सफलता का मुंह देखने के लिए इच्छुक हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें। साथ में यह बात भी पल्ले बांध लें कि जैसे छोटे से बीज से जन्म लेने वाला पौधा एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि उसे आप हिला भी नहीं सकते, ठीक वैसे ही आपकी एक छोटी सी भूल भी एक दिन इतनी बड़ी बन जाती है कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, ऐसी कोई भी भूल आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, आपके भविष्य को अंधकारमय कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराकर उससे कुछ सीखें। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी गलतियों को न दोहराएं और उससे सीख लेकर आगे के कार्य में उसकी सहायता।

मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

उन्नति करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप कठोर परिश्रम करें। इसके साथ साथ आपका व्यवहार लोगों से इतना मधुर हो कि वे आपकी हर बात को प्रेम से सुनें और आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएं। मधुर भाषी लोग ही लोगों के मन जीत पाते हैं। दो मीठे बोल बोलने में क्या कोई कीमत देनी पड़ती है? नहीं, यह तो आपकी जुबान का कमाल है जो केवल आपके मन के इशारे पर ही हिलती है। इससे आप प्रेम भी करते हैं, नफरत भी। प्रेम का फल मीठा और अच्छा होता है, नफरत का फल तो केवल नफरत ही होगा। जज की कलम तो एक ही होती है, उससे वह किसी दोषी को फांसी की सजा लिखता है और किसी को

बरी करने के आदेश लिखता है। इसमें कलम का दोष मानने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? यही ना कि कुछ पागल लोग अपने हर फैसले पर अंतिम मोहर लगाकर यह निर्णय कर लेते हैं कि मैंने जो सोच लिया बस वही करूंगा, मेरा फैसला अंतिम फैसला है। ऐसे लोग बहुत बड़ी भूल का शिकार होकर असफलता के द्वार पर पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि किसी से मुफ्त सलाह लेने वाला व्यक्ति ही अपनी त्रुटियों को जान सकता है। यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। इसके साथ ही यदि आप सरल स्वभाव वाले, मीठा बोलने वाले, धैर्यवान और सहनशील प्राणी हैं, तो आपके लिए इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं। आप जो चाहेंगे पा लेंगे।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कुछ लोग अक्सर यही शिकायत करते सुनाई देते हैं कि वे अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने से वंचित ही रहे हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उन्नति नहीं कर सके। लगता है हमारा भाग्य ही खोटा है। ऐसे लोग केवल शिकवे शिकायतें ही करते रहते हैं। आगे न बढ़ने का दोष वे भाग्य के सिर मढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? कैसा भाग्य? किसका भाग्य? क्या कभी सोचा आपने कि भाग्य में जो लिखा है उसे पाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है? बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। भाग्य बनाया जाता है, बना बनाया कुछ नहीं मिलता। और भाग्य को बनाने के लिए जरूरत है प्रयत्न की, परिश्रम की। बिना प्रयास के किसी का भाग्य नहीं बनता। इसके लिए तो आपको परिश्रम की सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा। यह सीढ़ी हर समय आपके लगी हुई रहती है। क्यों नहीं आप इस पर चढ़ जाते? उठो, हिम्मत से काम लो, अपने भाग्य को बदल डालो। हाथ की लकीरों और तांत्रिकों का सहारा एक ढोंग है, सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग इनके जाल में एक बार फंस जाते हैं, वे कुएं के मेंढक की भांति छोटी सी जगह में ही छलांगे लगाते रहते हैं। मेहनत से ही आपका काम बनेगा। आपका परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा साथी है। वफादारी, ईमानदारी, परिश्रम और काम करने की लगन, यही आपकी उन्नति के सबसे बड़े साथी हैं। यही आपको सफल कारोबारी इंसान बना सकते हैं। यही आपको ऊंचा पद

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

एक स्टोर में दो क्लर्क एक साथ काम करते थे। इनमें से एक सदा यही रोना रोता रहता था कि उसे जो वेतन मिलता है उसमें उसका गुजारा भी नहीं होता। कम वेतन की परेशानी तो दूसरे क्लर्क को भी थी। वह सोचता था कि वेतन तो कम है, मगर हाँ, इससे मुझे यह लाभ भी तो हो रहा है कि कारोबार के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह तो एक प्रकार की शिक्षा ही है। ऐसी शिक्षा स्कूल कॉलेजों में हजारों रुपये मासिक खर्च करने पर भी नहीं मिलती। जीवन में लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, लोग धन कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, यह सब उसे इस स्थान पर आकर ही पता चलता है। वास्तव में यह तो बहुत बड़ा धन उसे प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा ज्ञान इस संसार में कौन देगा। उसे जो भी वेतन अब मिल रहा है वही काफी है। शिक्षा के साथ साथ ऐसा धन बुरा नहीं। यही सोचकर वह क्लर्क पूरे दिल से उस संस्था में परिश्रम करता रहा। वह काम करते समय कभी भी घड़ी की ओर नहीं देखता था, केवल अपने काम को देखता था। समय कितना हुआ है यह उसकी सोच नहीं थी, जबकि उसका साथी क्लर्क अपना काम घड़ी देखकर ही करता था। वह यही सोचता रहता था, मालिक मुझे जितने पैसे देता है मैं उससे कहीं अधिक काम कर देता हूँ। सारा दिन जानवरों की भांति काम करने पर भी वेतन उतना ही मिलेगा जितना मजे मार कर काम करने से मिलता है। फिर क्या जरूरत है मरने की। अरे, जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, उसे कौन रोक सकता है। बस थोड़ी मौज ले लिया करो, ऐश करो। अपने मालिक के पास करोड़ों की दौलत है, हमारे मजे मारने से कम नहीं होगी। दूसरा क्लर्क अपने साथी क्लर्क की बातें सुनता रहता था, मगर अपने काम में कभी कमी नहीं आने देता था। शुरू शुरू में तो उसने अपने साथी को यह समझाने की कोशिश की थी कि आदमी को अपने काम में सदा मन लगाना चाहिए, काम ही तो असली पूजा है। मगर वह क्लर्क उसकी बात को समझने के बजाय उसका ही मजाक उड़ाने लगा था। एक साथ होने के नाते उसे उसकी यह सब बातें सुननी तो जरूर पड़ती थी, परंतु उसे दुख इस बात का था कि उस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। वह दफ्तर की एक लड़की के प्रेम जाल में फंसकर अपना सब कुछ भूल गया था। काम के समय ही शराब पीते रहना उसकी आदत से बन गई थी। शराब पीने के पश्चात काम को अधूरा छोड़कर फिल्म देखने चले जाना उसकी आदत थी। उसके अधूरे काम को भी उसे ही पूरा करना पड़ता था। इस प्रकार दोनों को काम करते करते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष के पश्चात जब कंपनी के मालिकों ने उस परिश्रमी क्लर्क के काम की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने उसे अपनी कंपनी का भागीदार बना लिया। मौज मस्ती मारने वाले उसके काम चोर क्लर्क ने जैसे ही यह खबर सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपना सिर पीट कर अपने भाग्य को गालियां देने लगा। अपना तो नसीब ही खोटा है, अपना साथी तो मालिक बन गया और हम उसके नौकर बन गए। वह इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आता है, हम बसों में धक्के खाते फिर रहे हैं। अब आप ही निर्णय करें कि इसमें दोष किसका है, भाग्य का अथवा उस नौकर का। यदि आपका एक साथी इतना बड़ा बन गया और आप वहीं बैठे हैं तो इसमें दोष किसका है। अपने दोषों को भाग्य के सिर मत मढ़ें। अपनी कमजोरियों और गलतियों को छुपाने के लिए नसीब और ईश्वर को न कोसें। जो बात आपके हित में नहीं सदती है उसे ईश्वर पर क्यों छोड़ देते हो। ईश्वर ने जब तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए 2 टांगे, प्रगति करने के लिए बुद्धि, ऐसी कौन सी चीज है जो संसार के स्वामी ने आपको नहीं दी। इस पर भी आप बात बात में अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने बीच में घसीटते हैं। आखिर क्यों। यह बात आपके सोचने की है, हर प्राणी के सोचने की है। आज ही इस विषय में सोचो, समय को नष्ट मत करो। यदि आप वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है तो आज से ही अपने दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर दें। उस बुद्धि को काम में लाने का प्रयास करें जो ईश्वर ने आपको दी है। आप दृढ़ निश्चय कर लें और दृढ़ निश्चय शक्ति का सहारा लें।
आप यह प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे यह काम करना है और आगे बढ़ना है, तो फिर कोई कारण ही नहीं कि आपको सफलता न मिले। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो मधुबन इस उद्देश्य से लेके आता है कि हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों को आसानी से समझ सकें। कई बार लोग स्वास्थ्य को एक ऐसा जटिल विषय समझ लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो वैद्य या चिकित्सक या डॉक्टर्स ही समझ पाते हैं, ये आम लोगों के बस की बात नहीं। इसीलिए अक्सर ये चीज देखा भी जाता है कि लोग कुछ भी ऊपर नीचे होता है, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ियां होती हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ है, हमें मेरे साथ ये हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं। कुछ चीजों के बारे में अगर हमें ही सहजता से ज्ञान प्राप्त हो कि स्वास्थ्य के लिए हमने कुछ गलत किया,

0: है या कुछ गड़बड़ियां की हैं जिसकी वजह से शरीर में ये चीज, एक व्याधि या कोई कष्ट हमें हो रहा है, तो उसे ठीक करने की समझ भी हमें होनी चाहिए। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम न सिर्फ रोगों के कारण रोगों से मुक्ति के बारे में नहीं बात करते, हम ये भी समझते हैं कि स्वस्थ रहना कैसे है, कैसे अपने आप को बीमार पड़ने नहीं देना है, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। एक ऐसा विषय है जिस पर प्रायः हम लोग बातचीत ही नहीं करते। आइए आज सहज स्वास्थ्य में स्वास्थ्य जगत के एक ऐसे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं जो इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पे उनके परिवार के अनेक सदस्यों ने लोगों को पीढ़ियों तक स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ, अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास, चिकित्सकों के पास तब दौड़ते हैं जब उनके शरीर में कोई दर्द उठ रहा होता है, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है। कोई इसलिए कम ही जाता होगा कि उनसे जाकर हम ये समझ लें कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हम कैसे हासिल करें।
1: कम कहना भी बात गलत होगी, कोई नहीं आता और ना डॉक्टरों के पास इतना समय है कि वो एक एक मरीज को समझाएं कि आपको क्या समस्या है, और उससे ज्यादा तो जो पब्लिक है उसके पास तो उतना समय भी नहीं है कि वो, जो उसको मालूम है कि उसको अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, वो कार्य भी वो नहीं कर रहा हो। आप ये सोचिए श्री भैया कि आपको जरूरत नहीं है, आप एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, आप उसको पैसे देंगे और आप कहेंगे जरा डॉक्टर साहब मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बीमार ना पड़ूं। डॉक्टर साहब, जो कि अगर उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, वो ये लाइन बोलेंगे, अरे भाई मरीज बहुत हैं, ये सब बाद में बात करना। या उनके पास आप जाइएगा तो आपको एक लाइन में कहेंगे, ओ नेचुरल चीज खाइए और एक्सरसाइज करिए, जाइए जाइए, क्योंकि डॉक्टरों के पास खुद समय नहीं है। अब हम इस सवाल का दूसरा पार्ट कि क्या कोई व्यक्ति जाएगा डॉक्टर से पूछने कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जिन भी व्यक्तियों को हम अपने अगल बगल देख रहे हैं, सबको मालूम है कि सैलेड खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, फल सब्जी तरकारी खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, खुली हवा में टहलना और प्राणायाम करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, तैरना चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, जो भी खेल आपको पसंद है वो आपको खेलना चाहिए, हॉकी, कुछ भी खेलना चाहिए। आज जो भी व्यक्ति है वो अपना पूरा समय अपने व्यापार या अपने काम में लगा दे रहा है, और बड़े शहरों की तो ये बात है कि वो अपने घर से अपने काम के स्थान को जाने के लिए अपने जीवन का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है या दिन का जो बहुत बड़ा समय है वो खर्च कर दे रहा है। बड़े शहरों में तो यहां तक मैंने सुना है कि ऑफिस सुबेरे जाते हैं तो सवा घंटा लगता है, रात में आते आते डेढ़ से पौने, तो मतलब आप अपने दिन का दो ढाई घंटा आप सिर्फ सड़क पे अपने ऑफिस आने जाने में बिता दे रहे हैं। हाँ, एक और चीज थोड़ी हासिफत भी लगती है, खासकर जब मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ तो वहां पेशेंट से जब आप पूछिए आप यहाँ से कितने दूर रहते हैं, तो वो आपको जवाब देते हैं, मैं सर यहाँ से 35 मिनट दूर रहता हूँ। वो डिस्टेंस की बात ही नहीं करते हैं, वो ये बात करते हैं कि कितना मिनट लगेगा मुझे आप तक पहुंचने में। खासकर जो मेरी साउथ बॉम्बे में क्लिनिक है, वहां से जब कोई आता है, कोई नवी मुंबई से या थाने से या अंधेरी और ये कांदीवली के साइड से मेरे पास साउथ बॉम्बे आता है, तो वो डिस्टेंस की बात ही नहीं करता, वो सिर्फ टाइम की बात करता है कि 45 मिनट लगेगा या 1 घंटा लगेगा या 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा डॉक्टर साहब आपके पास आने में। और यहां हम अगर यूरोप या अमेरिका या इवन छोटे शहरों में बोलते हैं कि कितना दूर है, हम लोग बोलते हैं 5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, अमेरिका में माइल्स की बात की जाती है, तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने जीवन का अधिकांश समय पहली बात तो सफर करने में लगा दे रहे हैं, और वो सफर इतना सफर दे दे रहा है कि हम उस सफरिंग की वजह से कोई और काम नहीं कर रहे। और आपको किसी डॉक्टर से, किसी हेल्थ एक्सपर्ट से, किसी वैद्य से, किसी भी व्यक्ति से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं। आप यदि रोज आधी घंटा से 45 मिनट टहल सकते हैं, आप अगर टहलने से आपका मन नहीं भर रहा तो हल्की स्किपिंग रनिंग कर सकते हैं, आपके पास उतना समय नहीं है तो अपने ऑफिस में सीढ़ी ऊपर नीचे उतर सकते हैं, थोड़ा सा 250 ग्राम, बार बार वही बातें फिर से, 250 ग्राम फल, 250 ग्राम सलाद अपने शरीर के अंदर अगर आप चबा चबा के खा सकते हैं तो आपको किसी भी चीज के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को ये सवाल पूछना है उन्हीं के लिए तो ये सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है कि वो सुन लें और कुछ अपने जीवन में उतार लें।
0: बिल्कुल, ये बात सुनकर समझ में ये बात आती है कि हम में से कितने लोग वास्तविकता में किसी डॉक्टर से ये राय पूछने जाएं कि हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, उसे लिए हमें क्या करने की जरूरत है। और आज ये बात आपने बड़ी स्पष्टता से बताई कि ना हम जाते हैं ना डॉक्टर बताने के लिए इतने फ्री बैठे हैं, क्योंकि उनके पास मरीजों की कतार लंबी है। और शायद ये सबसे बड़ी गिफ्ट हम डॉक्टर्स को दे सकते हैं कि हम खुद बीमार ना पड़े, ताकि उनके ऊपर काम का बोझ कम हो। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, यही हम सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुनते आ रहे हैं। और जैसे अभी अभी आपने बताया डॉक्टर साहब कि भोजन पर कम से कम अगर हम कच्ची चीजें, सलाद और फल खाने पर ध्यान दें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। आज जब बीमारियों की बात हम करते हैं या डॉक्टर्स के ऊपर या मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर जो लोड है, जो वर्क लोड है, उनके ऊपर जो प्रेशर है, उनके ऊपर जो दबाव देखने को मिलता है कि मरीज मरीज मरीज लाइन पे लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो बिना थके करते जा रहे हैं, तो अनेक बीमारियों की बात कही जाती है। और आज भारत में खासकर एक चीज की जब बात की जाती है बीमारियों की संख्या में, जहां पर भारत अग्रगण्य है दुनिया में, वो है डायबिटीज। अक्सर लोग कहते हैं कि भारत दुनिया का डायबिटिक कैपिटल है। यहाँ पर 100 मिलियन से यानी 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज के मरीज हैं, और कई लोगों को पता है कि उन्हें डायबिटीज है और कई लोगों को मालूम नहीं है वो डायबिटीज के मरीज हैं। तो ऐसे में डायबिटीज एक ऐसी समस्या बनकर आज उभर कर आया है। लगभग हर घर में कोई ना कोई कह ही देता है, हाँ उनको शुगर की बीमारी, अरे उनको मीठा खाना मना है, अरे उनको शुगर है, ऐसा लोग कहते हैं। तो पहले तो ये समझा जाए कि ये शुगर होता क्या है ये शुगर की बीमारी।
1: भैया आपने डायबिटीज की बात की, तो अगर विश्व में बात किया जाए तो पाकिस्तान में करीब 31% उनकी जनसंख्या को डायबिटीज है। उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया करके एक कंट्री है जिसमें 26% के करीब लोगों को है, और कुवैत में भी 25% जनसंख्या को डायबिटीज है। तो आप सोचिए कि एक देश की 1/4 जनसंख्या या 1/3 जनसंख्या एक बीमारी से जो है वो ग्रसित है। इसके बाद अगर हम नंबर की बात करें, नंबर्स में, तो फिर एशिया की और हमारा भारत से ही जुड़े हुए दो कंट्रीज और भारत मिलाकर हम विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटिक पर्संस अगर कहीं है तो पहली बात तो एशिया में है नंबर के हिसाब से, और वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीन कंट्रीज में मिला के विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। इसमें क्यों भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है।

0: जिसने हमारे को रिफाइंड भोजन जैसे तेल हुआ, शुगर हुआ, ऑयली फूड हुए और पैक्ड फूड हुए, प्रोसेस्ड फूड हुए, लॉन्ग शेल्फ लाइफ मतलब जो खाना बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है, वो सारी चीजें हमने खाना शुरू किया और हमने एक्सरसाइज जो है उसको कम और कम नहीं जीरो करना शुरू किया। आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी भैया, जब भारत में इलेक्ट्रिसिटी बिजली कम थी तो हम लोग सूर्य उदय के समय उठते थे और हम जो घर की महिलाएं और पुरुष थे वो ये कोशिश करते थे कि सूर्यास्त तक घर का भोजन बन जाए। उसके बाद वो लालटेन में या मोमबत्ती की प्रकाश में वो उस भोजन को कर लेते थे और उस भोजन को जब वो करते थे तब भी वो इस मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से 7, 7:30, 8 बजे तक वो भोजन खत्म हो जाता था। हम लोग जो एक पुरानी जो कहावत थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यही हम फॉलो कर रहे थे। हम घर का बना भोजन कर रहे थे, हम एक्सरसाइज कर रहे थे और हम बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए थे। प्रोसेस्ड फूड ने जो बीमारी हमको सबसे ज्यादा दी है, उन बीमारियों में से जो बीमारियां हैं उनमें से सबसे ऊपर बीमारी जो है वो है डायबिटीज। और इसकी एक सिंपल बात समझिए कि इसने हमारे जो पूरी व्यवस्था है उसको, हमारे शरीर में जो जितनी भी अंग है, जितनी भी चीजें हैं, सबको बिगाड़ दिया है। और अच्छा, हम लोग जो बात करना शुरू कर रहे थे, हम लोग ने सबसे पहले देखिए मोटापे की बात की, हाँ, उसके बाद कब्ज, उसके बाद पाइल्स की बात की। ये सब पाचन तंत्र के ही ठीक से न काम करने का नतीजा है। और अगर हम इसको कहें कि आप जितना कम खाएंगे और जितना एक्सरसाइज या व्यायाम ज्यादा करेंगे उतना मोटापे आपके पास कम रहेगा, मतलब मोर एक्सरसाइज लेस फूड विल मेक यू हेल्दी एंड नो एक्सरसाइज मतलब आप कोई व्यायाम मत करिए, मोर फूड नो एक्सरसाइज यू विल गेन फैट, आप मोटे हो जाएंगे। और जहां हम मोटे होना शुरू हुए हमारा पाचन तंत्र जो है उसके ऊपर जोर पड़ना शुरू हो जाएगा और अगर उसके पर जोर पड़ेगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। हम लोग अभी आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे मगर एक चीज सिंपल रखिए, आप अगर व्यायाम करेंगे, आप दुबले पतले या आप फिट रहेंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
1: जब ये बात कही जाती है कि डायबिटीज के लिए आज भारत की आबादी और हमारे खाने पीने की आदतें, हमारा शहरीकरण, हमारा एक्सरसाइज ना करना, बहुत ही हैवी भोजन करना, जो बहुत ही रिच भोजन है वो करना, और खाना ज्यादा और खर्चा कम करना, शारीरिक व्यायाम में जो हम खा रहे हैं वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाना, ये सारी चीजें समझ में आती है कि कारण क्या है। आजकल हम ये चीजें सुनते हैं कि भाई डायबिटीज रिवर्सल की बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज आया है तो कई सालों तक तो लोग समझते थे अब तो ये जिंदगी भर की बीमारी है भाई, इससे तो गोली खाते ही रहना पड़ेगा, ऐसा सोचते थे। और हाल फिलहाल में ये भी चीज प्रचलन में सुनने को मिलती है जहां पर लोग कहते हैं कि भाई डायबिटीज को पलटा जा सकता है, यानी आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, उससे मुक्त हो सकते हो, ये क्या चीज है?
0: एक बड़ी सिंपल बात आप समझिए कि जो डायबिटीज आपको हो रही है उसका एक बहुत मुख्य कारण ये है कि आपके शरीर में अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डायबिटीज मुख्यतः दो तरीके से होती है, एक जिसमें आपकी जो पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन जो है, जो हार्मोन है उसे कम बना रही हैं, तो वो

0: हम बना रही हैं तो हम जो हमारे शरीर में शुगर है या शकरा है उसको हम कोशिकाओं के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं। ये एक तरह की डायबिटीज है। जो दूसरे तरह की डायबिटीज है उसमें जो हमारी पैंक्रियाज हैं वो इंसुलिन पूरा बना रही हैं, मगर जो हमारे मोटापे की कोशिकाएं हैं वो हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वैसी दिख रही हैं, और जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारी नॉर्मल कोशिकाओं के साथ साथ हमारी मोटापे की कोशिकाओं को भी उनपे भी चिपक जा रहा है, तो वो पूरा अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम अपने मोटापे की कोशिकाओं को कम कर देंगे तो वो इंसुलिन हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनके लिए पर्याप्त होने लगेगा। आप जितने भी डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम या मधुमेह से छुटकारा पाने के जितने भी कार्यक्रम आप इंटरनेट पे देख रहे हैं या आप सुन रहे हैं, उनका पूरे प्रोग्राम में यही आपको समझाया जाता है कि आप अपने मोटापे को कम करें। पहली चीज, आपको व्यायाम कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है कि आपका वजन कम होने लगे। भोजन में भी आपको थोड़ा बहुत बदलाव कराए जाते हैं कि आप हल्का भोजन करें, प्रोसेस्ड भोजन नहीं करें, और आप हाई फाइबर और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के भोजन को आप करें, और आप चबा चबा के भोजन करें। आप दिन भर भोजन न करके एक सही समय पे भोजन करें। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आप डायबिटीज रिवर्सल अपने आप कर सकते हैं।
1: एक प्रश्न ये उठता है डॉक्टर साहब, जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं आज की डायबिटीज को वापस ठीक किया जा सकता है, कई लोगों के मन में ये अवधारणा है कि भाई डायबिटीज तो ऐसी बीमारी है, अब जिंदगी भर इसके लिए दवाई खानी है। कई लोग ये भी मानते आए हैं कि डायबिटीज का कारण तो कुछ नहीं है, डायबिटीज तो आपके परिवार में किसी को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, या मम्मी को है, पापा को है, तो ये आनुवंशिक रूप से जेनेटिक्स से आपको मिलता ही है, आप इससे बच नहीं सकते, और इसलिए भी इतना सब मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज होगा तो फिर आपको हो जाएगा, फिर आप गोली खाते रहिए और ऐसे ही इसके साथ ही जीना होता है, यह भी एक धारणा है। तो पहले इस बात को समझा जाए कि डायबिटीज के बारे में ये जो हम मानते हैं, ये बीमारी ऐसे होती है, ये तोहफे के रूप में हम अपने पूर्वजों से या अपने घर के बुजुर्गों से हमारे शरीर में आती ही है, इस पर क्या किया जाए?
0: अगर हम पुरानी किताबों को पढ़ें, जब भारत में कोई भी डायबिटीज या मधुमेह के बारे में बात नहीं करता था, तो जब शुरू शुरू में ये बीमारी मिली तो इसके बारे में लेखकों ने लिखा कि ये पढ़ने लिखने वाले आलसियों एवं केवल स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जीने वालों का एक विशेष रोग है, और जो शरीर को बहुत आराम देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनको ये ही होता है। फिर इसमें ये तक लिखा गया कि श्रमजीविकों और स्त्रियों को जो दिन भर घर का काम करती हैं उनमें ये रोग बहुत कम होता है। तो आप सोचिए, जब डायबिटीज मिली तब भी ये कहा गया कि आप जो लेजी हैं, लेथार्जिक हैं, जो दिन भर बैठे रहते हैं, उन्हीं सबको ये समस्या होती है, और जो भी व्यक्ति नॉर्मल से ज्यादा आराम करता है, ज्यादा भोजन करता है, आलसी प्रवृत्ति का है, उसको ये जल्दी पकड़ लेती है। ये तक भी कहा गया कि ये 40 साल के बाद होने वाली बीमारी है, जबकि ये सारी अवधारणाएं समय के साथ जो है वो टूटती चली गई। अब ये रोग तो छोटे बच्चे से लगाए बूढ़े को भी हो सकता है, पुरुष और महिला दोनों को हो सकता है, गरीब अमीर को भी हो सकता है, काम करने वाले नहीं काम करने वाले किसी को भी हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो बोला जाता है वो है प्रोसेस्ड फूड का। और अगर आप फिट हैं प्रोसेस फूड कम खाते हैं तो आपकी चांसेस बहुत कम हैं इस बीमारी को होने के लिए। इवन ये तक कहा गया है कि जिनके परि एक आपने भैया जेनेटिक्स की बात की, आपने ये भी बोला कि अगर माता या पिता को है तो बच्चे को जरूर होगी। इधर मॉडर्न साइंस ये बात जरूर बोलता है कि हाँ ये बीमारी आपको जरूर होगी, और ये तक कहा जाता है अगर आप अपना ख्याल न रखिए तो जो समस्या अगर आपके पिताजी को 60 साल में हुई थी वो आपको 45 से 50 की उम्र में ही हो जाएगी। मगर ये भी देखा गया है कि यदि आपके घर में कोई बीमारी है और आप अगर ठीक से रहते हैं तो चांसेस हैं कि ये समस्या आपको नहीं होगी। मैं अभी शादी में गया, एक मेरे बगल में सज्जन खड़े थे, वो मिठाई खा रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने मित्र को बोला कि आइसक्रीम भी खा लेते हैं पर थोड़ा खाएंगे। तो मेरे मुंह से एकाएक निकला कि अभी तो आप मिठाई पूरी खा ही लिया, लगता है आपका पेट भर गया है। तो बोले नहीं नहीं वो डायबिटीज है ना, तो थोड़ा मीठा रोक के खाते हैं। आपको मालूम है कि आपका शरीर उसको नहीं पचा पा रहा है, तब भी आप अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़े दुख की बात है। और भैया आपने भी जो बात बोली, हम मानव लोग अब डिनायल के मूड में आ गए हैं, हम गोली खाते जा रहे हैं और मीठा भी खाते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप अगर गोली खा रहे हैं और कृपया मीठा छोड़ दीजिए, व्यायाम शुरू कर दीजिए, तो हो सकता है वो गोली भी छूट जाए। और यदि गोली नहीं छूटती है तो वही सेम डोज पर आप लंबे समय तक रह लेंगे। तो अपना देखभाल, अपने शरीर के लिए सजग होना एक बहुत जरूरी बात है।
1: ये बहुत ही आवश्यक जानकारी आपने दी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको भी होगा ही, मगर होने के चांसेस आप में ज्यादा हैं। अगर आपके परिवार में किसी को है और आपको नहीं हो वो बीमारी, तो फिर आपको अभी से ख्याल रखना शुरू करना पड़ेगा, अपने खान पान के, आहार विहार के, व्यायाम की आदतों को आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर कुछ गलत कर रहे हैं उसको अभी से आप सही करना शुरू करेंगे तो फिर आप नहीं बीमार पड़ेंगे, आपको ये बीमारी नहीं होगी। और इसे सही करने के तरीके के बारे में भी हमने आज बहुत ही गहराई से बातों को समझा है। डायबिटीज क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक हमारे श्रोता मित्रों के प्रश्न होंगे, मगर आज समय को देखते हुए यही रुकते हैं। डॉक्टर राहुल मोदी जी ने आप सभी श्रोता मित्रों को ये जानकारी दी, आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने डायबिटीज जैसे विषय पर एक ऐसी जानकारी हासिल की है जो कई सारे लोगों के लिए नहीं है। डायबिटीज एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर गोली खाते रहना पड़ेगा। अगर हम कुछ करने को तैयार हैं तो फिर स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। आज की बातचीत में बस इतना ही। रेडियो मधुबन पर यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Namaskar, aaj phir aap sabka hardik swagat karte hain Awakening with Brahma Kumaris mein. एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सफ़र में जो हमें समझ में आई है वो ये कि सबसे पहला कदम अपनी इस तलाश में जो हमें उठाना है वो ये कि ख़ुद को स्वीकारना है. दूसरे हमें स्वीकारें या ना स्वीकारें, सबसे पहली ज़रूरत है कि हम जैसे हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस पल में हैं, ख़ुद को स्वीकार लें. जहाँ हमने ख़ुद को स्वीकार लिया वहीं हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफ़र शुरू हो जाता है. फिर कई तरीके अपना के हम इस खूबसूरत सफ़र में उस मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं. अब आगे बात थोड़ी सी करते हैं और ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या दूसरे अगर हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते तब किस तरह की मुश्किलें आती हैं. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. अ वेरी वार्म वेलकम सर.
2: नमस्कार.
1: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. आपका स्वागत.
3: ओम शांति.
1: ओम शांति. डॉक्टर पटेल, हमने बात तो की थी कि ख़ुद को स्वीकारना कितना ज़रूरी है, और क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को खुद ही स्वीकारें.
2: देन विल चेंज लाइक ना आवर पॉइंट वाज कि हम अपने आप को स्वीकारेंगे तो फिर परिवर्तन पॉसिबल है.
1: हाँ, लेकिन पहली बात पहला पड़ाव ये था कि हम खुद को बस जैसे हम हैं वो सही है. उसके बाद फिर अपने ऊपर वो जो जर्नी थी वो शुरू हो जाएगी. आगे अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और दूसरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो पूरा परिवार है, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि दूसरों को हम स्वीकारें, क्योंकि ज़्यादातर देखते ये हैं कि हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा तो है लेकिन अगर वो ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर वो ये कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता. तो दूसरों को हम चेंज क्यों करना चाहते हैं?
2: चेंज अभी करना चाहते हो गलत है एक रीति से देखना चाहे तो. बल व्यक्ति को चेंज होने की आवश्यकता है वह दूसरा क्वेश्चन है, परंतु जो हम उनका पीछा करते हैं कि भी जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको प्यार नहीं देंगे, जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप में यह नहीं आएगा आई विल नॉट स्माइल एट यू. नहीं, पेरेंट्स कहते हैं
3: इमोशनली दूसरों के साथ
1: ब्लैकमेल करते हैं.
2: इमोशनल ब्लैकमेलिंग है एक प्रकार से.
1: नहीं, बट कहाँ तक सही है दूसरों को हमें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मे बी वी हैव बीन कंडीशन लाइक दिस कि दूसरों में हमेशा हमें गलतियाँ नज़र आती हैं, आ ही जाती हैं. हम मुझे आप सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन ये कहेगा कि नहीं ये कुछ ये सही नहीं है. ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है.
2: बट वही होना चाहिए.
1: हाँ, वो कैसे?
2: हाँ, दूसरी बात है भी क्यों होना चाहिए. नहीं, पहली बात तो यह है कि भी क्यों हो, क्योंकि आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत तो बड़ी बात है कि आपकी जो वेवलेंथ है, ट्यूनिंग, हमने पहले भी ट्यूनिंग की बात की है, वो आपका ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है.
1: ऑरा की जो हमने बात की,
2: ऑरा की बात, या तो कहे कि भी विचारों की वेवलेंथ भी एक दूसरे के साथ मिलती हो, वह ट्यूनिंग आपका अच्छा हो सकता है. दूसरा कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे तब वो आपको सहयोग भी देगा. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति सहयोग भी नहीं देगा. और अब रही बात चेंज की, तो वो चेंज भी तब ही पॉसिबल है
1: जब हम पहले एक्सेप्ट
2: करते हैं और फिर वो आपकी बात को सुनेगा. उसको रियलाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इजी नहीं है. एक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे चेंज की जरूरत है. दूसरी बात, अभी एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए
1: कि मैं वो चेंज.
2: हाँ, तो वो सब करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट.
1: यस, सिस्टर शिवानी, मैं आपको कह तो देती हूँ कि आप जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मतलब क्योंकि वो सही तरीका है, कर रही हूँ अपने आप को भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ कहीं ना कहीं. हाउ टू एक्चुअली गेट इन टू दैट रियल सेंस कि मैं रियली उसे एक्सेप्ट कर लूँ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जैसी हैं वैसी ठीक है. वो हो नहीं, मतलब मैं कितना भी कह लूँ कि आप जैसे हैं ओके, मुझे आपने कहा कि मुझे करना चाहिए तो मैं ठीक है जैसे हैं ओके ओके, लेकिन इंटरनल जर्नी, व्हेन विल आई रियलाइज इट, यस आई हैव एक्सेप्टेड इट द वे यू आर,
3: द क्वेश्चंस विल स्टॉप. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अगर ऐसा ना करते ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, या ऐसा ना बोलते ऐसा बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता. तो वो क्वेश्चंस जब स्टॉप हो जाएंगे और वो जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही आपको अच्छे लग रहे हैं, देन इट इज एक्सेप्टेंस.
1: देखिए मुझे इरिटेशन होती है ना उससे,
3: सो देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस येट. ना एक्सेप्टेंस नहीं है तो उसका थोड़े अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दे के शुरू में एफर्ट करना पड़ता है.
1: पर मैं कहूँ कि मैं क्यों करूँ?
3: It's just simplicity for yourself, nothing else. दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. See, if it is like, अगर आप जैसे हैं वैसे मुझे पसंद नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से. मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि आपको मिलते ही, आपको देखते ही, आपसे बात करते ही मेरे मन में वो सारी चल रही है, यू नो, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते. फिर मैं आपको फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज यू. तो आई डू दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल. तो इफेक्ट इज कि आप जैसे हैं वैसे आप खुश हैं, लेकिन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन
1: अननेसेसरी.
3: सो इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन इन माई ओन लाइफ, यू नो. तो इफ आई कुड ओनली से कि आप जैसे हैं मेरे को ठीक है बिल्कुल, इट्स जस्ट सिंपल फॉर मी. सी अवेकनिंग मीन्स एवरीथिंग सिंपल फॉर मी. नॉट उसका बेनिफिट दूसरे को ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एवरीथिंग सिंपल फॉर मी. बाकी आपने कुछ कह दिया और मैं चार दिन उस पर वो सोचती रहूँ क्यों ऐसा क्यों, तो देन इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर मी. तो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन को बहुत सरल बना दे,
1: चाहे वो खुद को कर रहे हो या दूसरे
3: किसी को या परिस्थिति को.
1: डॉक्टर साहब लेकिन इतना आसान नहीं होता है.
2: अनुप्रिया जी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल जरूरी है परंतु वह आवश्यक है.
1: दिस इज एक्चुअली इट हैज टू बी डन,
2: एक्सेप्ट इज रियली नेसेसरी. और उसके लिए जो एक मुख्य पॉइंट कि क्यों एक्सेप्ट करे या तो कैसे करे, क्योंकि हम सभी डिफरेंट है, ये बात भी समझ में आ जाए कि भाई हमारे सर का एक बाल भी सेम नहीं है इस दुनिया में, वो यूनिक है. तो जैसे ही मैं जो हूँ सामने वाले की पर्सनालिटी में बहुत फर्क होना है, तो इसके कारण वो डिफरेंस को भी हम इंजॉय करें एक्सेप्ट करने के बदले भी. जैसे सीरियल्स में भी जब लोग अलग अलग रोल करते हैं उसमें स्पाइस है, ट्रेजेडी है, नहीं मारा मारी है, तब तो इंजॉयमेंट होती है, तब उसको लोग देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते. तो ऐसे ही जीवन में भी ये होना जरूरी है,
1: सब तरह के लोग होने जरूरी है, ये कहते हैं. लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है उसकी बजाय अगर वो इस तरह से बिहेव करे या इस तरह का हो जाए तो उन्हीं के लिए बेहतर हो जाएगा, क्या तब भी मुझे उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?
2: नहीं, वो ठीक है कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं, परंतु पहले एक्सेप्ट करो.
1: हाँ,
2: फर्स्ट यू एक्सेप्ट, गिव देम अ कंफर्टेबल फीलिंग. जैसे हमारे बच्चे ही है ना, उनको हम एक कंफर्टेबल फीलिंग करें कि भाई वी विल गिव यू अनकंडीशनल लव, नो वी विल एक्सेप्ट यू एज यू आर. और फिर उनको अगर एक बार जब वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि चेंज कब आता है, बार बार टोकने से चेंज नहीं आता है, उल्टा उससे तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है.
1: लेकिन क्या सिस्टर शिवानी मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है उसके बाद मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं बिना उन्हें एक्सेप्ट किए ही चेंज कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज अगेन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन.
3: एक्चुअली जो भाई साहब ने कहा ना कि चेंज को लाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है, पावर के बिना चेंज नहीं आएगा. ट्रांसफॉर्मेशन कम्स, यू नीड पावर. आप सिर्फ सोचें कि मैं हो जाऊं चेंज, वेरी डिफिकल्ट. हमारे खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, तो वैसे ही दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट. आज देखो एक एक आदत छोड़ना या चेंज करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है. तो वो पावर कौन सी होगी? कौन सी पावर वो है जो आपको इंस्पायर कर देगी चेंज होने के लिए? दैट विल बी द पावर ऑफ लव. यू नो, वो एक पावर जब मिल जाती है ना हमें किसी से, यू नीड एनर्जी टू चेंज, तो दैट शुड बी पॉजिटिव एनर्जी. अभी हम जो एनर्जी भेजते हैं वो क्रिटिसिज्म वाली एनर्जी होती है. यू नो, एनर्जी तो हम भेज रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक ही बोल रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे. वी थिंक कि ये मोटिवेट कर देगा दूसरे को, तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा कर रहा है, कंपैरिजन. ये सारी जो नेगेटिव वेज हम यूज कर लेते हैं जिससे दूसरा इंस्पायर हो जाएगा चेंज होने के लिए, दैट्स वेरी टेम्प्ररी. अगर हम किसी को सही मायने में करना भी चाहते हैं इंस्पायर, तो वी नीड टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव एनर्जी. तो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो और भी, मतलब जिसको हम कहते हैं जिद्दी होते जाते हैं, स्टबर्न होते जाते हैं अगर उन्हें अपनी बात राइट लग रही है. तो पहले वी हैव टू सेंड लॉट ऑफ लव.
1: But then when
3: and love comes with acceptance.
1: Yeah.
3: See, that's where the connectivity is going. Mm. I will be able to love you only if I accept you as you are. Mm. You know, and that's like what a mother does for a child. एक माँ के लिए कहते हैं ना कि उसका बच्चा चोर भी होगा तो भी वो कहेगी नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यारा है. You know, that's the kind of love she has for the child.
1: तो हम दुनिया के लिए उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अगर हम बात करें.
3: बिल्कुल. तो जब हम वो एक्सेप्टेंस कर लेंगे ना कि वो जैसे हैं, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप चेंज होते हैं तो मेरा व्यवहार चेंज हो जाता है. थोड़ा सा आपने मेरे कहे अनुसार बात नहीं की तो मैं अपना मुंह बना लूं या मैं अपना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस. थोड़ा सा आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा. यू नो, इट नॉर्मली हैपेंस बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, क्योंकि एक लंबी जर्नी है और जब शायद आप मिले थे, जब आप 20-22 की एज में थे तब थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट था. आप 30-35-40 की एज में जाते हैं, हो सकता है दोनों में से एक का इवॉल्वमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए. एंड देन वी से बट यू नो जिससे मैंने प्यार किया था वो ये नहीं था. यू नो पीपल talk like that person has changed, so that means ke ab jaisa wala then I don't like, so then that is not acceptance. So then the person says aap waise wale ban jao jisse maine shaadi ki thi. So these are, then that was not really,
1: wo kahan chala gaya jisse maine pyar kiya tha,
3: you know, these all these words. Ya jaise parents bachcho ko kehne lag jate hain kai bar, kyunki jab tak wo chote the their life was around the parents, lekin bade hone ke baad you know the son is with the wife, so the mother will say wo mera beta wo wala kahan gaya. You know, we looking for that same, we don't actually, we don't want people to change. It's a very paradoxical thing. हम चेंज भी करना चाहते हैं उनको हर टाइम, लेकिन अपने अनुसार. अगर वो चेंज हो गए किसी और अपनी लाइकिंग अनुसार, then we don't like the change.
1: And we don't even understand that anything in which is constant in life is change. It has to happen.
3: It has to change. तो हम उनको अगर हम कहते हैं I like you, I really love you because this relationship is like that, then आप जैसे भी होंगे, आज आप ऐसे हैं कल आप किसी और तरह होंगे, आई स्टिल रियली लाइक यू, तो देन दैट पॉजिटिव एनर्जी वो ट्रांसमिट होती है. और ये बोलने की बातें नहीं होती है, यू डोंट हैव टू कीप सेइंग दिस टू समबडी, उसको ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिलेगी. और वो पॉजिटिव एनर्जी जब आपसे मिलेगी और फिर अगर आप यू नो उसको कहते हैं कि ये चीज़ करके देख लो, यू नो हम जो फाउंडर हैं ब्रह्मा कुमारीज के, दैट्स हाउ इट हैपेंड कि जब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और जैसे एक एक भाई बहने आते गए, हर एक अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड, कमजोरियाँ और विशेषताएं सब कुछ, लेकिन जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट लव्ड एवरीबडी. एंड वेन एवर ही यूज टू मीट अ चाइल्ड, वो पहले उनकी विशेषताओं को पहले उस बच्चे को सुनाते थे, यू नो नॉट फ्लैटरी, लेकिन जो सही मायने में उसकी विशेषता है, आपके अंदर ये है ये है ये है, और वो आत्मा बिल्कुल एक यू नो एम्पावर हो जाती थी, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो विद वाइब्रेशन, इट वॉज नॉट विद वर्ड्स. एंड फिर वो सब कुछ कहकर ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे अगर इस सब के साथ तुम ये एक बात भी कर दो ना और साथ में, तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे. एंड दैट पर्सन जस्ट वांटेड टू डू इट,
1: क्योंकि कहा जाए कन्विक्शन के साथ,
3: एंड फॉर द बेटरमेंट. यू नो चेंज में भी दो चीजें हैं, एक है आई वांट यू टू चेंज बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, एंड एक है आई वांट यू टू चेंज बिकॉज आई लाइक इट दैट वे. दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है.
1: बिल्कुल.
3: आई वांट यू टू चेंज बिकॉज मेरी लाइफ ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी इफ यू चेंज लाइक दैट. तो ये सारी जो कंडीशनल्स आ जाती हैं बीच में, तो दूसरा व्यक्ति फिर चेंज
1: अगेन वी नीड टू चेक आवरसेल्फ्स. एक्चुअली
2: एक बात एक जरूरी ये है कि भल हम बार बार ना कहे, वो शिवानी बेन ने बहुत अच्छा कहा कि भी रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट यू, परंतु आवश्यकता है कि हम उनको अप्रिशिएट तो करते ही.
3: हाँ, डेफिनेटली.
1: जो उनकी पॉजिटिविटी,
2: हाँ, डेली भी आप कुछ कुछ बातें अप्रिशिएट करो, छोटी सी भी आपने अच्छा ड्रेस पहना अप्रिशिएट करो, ये नहीं कि वे तो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है.
3: एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए.
2: कुछ चीजें याद भी रखो, जैसे बर्थडे है उसको याद रखो, कई बार तो याद दिलाया होता है तो भी उस दिन भूल जाते हैं.
1: बिल्कुल. ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये हमें एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमने उन्हें पता ही है, लेकिन कहते रहना बार बार कन्विक्शन के साथ बहुत जरूरी होता है. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, इट इज नेसेसरी. आपने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा शायद. क्यों आवश्यक है इतना ज्यादा?
2: इसलिए एक्सेप्टेंस आवश्यक है कि भी तब ही हम साथ में मिलके, क्योंकि एक टीम है. आज टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी बात है, न केवल कंपनीज में परंतु फैमिली भी एक टीम है. तो फैमिली जो एक टीम है, वो भी अच्छे से आपको अगर अपने परिवार को चलाना है तो वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए। वह तब ही होगी कि जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा उसका अर्थ है कि भी फैमिली का अर्थ क्या है, है ना। फैमिली का स्पेलिंग अगर आप देखो तो फैमिली का अर्थ है ना, फादर एंड मदर आई लव यू। तो बस यह बात है, तब आएगी कि जब एक्सेप्टेंस है। अगर बच्चों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कभी भी ऐसा नहीं कर।
1: आई लव यू, ये आई थिंक सबसे ज्यादा कहा जाने वाले तीन शब्द हैं,
3: लेकिन नॉट अंडरस्टूड,
1: मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड्स जो है वो, बिकॉज सही तरह से अगर देखें हम तो एक्सेप्टेंस। अच्छा, दूसरों को एक्सेप्ट ना करने में कि दूसरों को ये कहें कि हमारी तरह से चेंज क्यों नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी ईगो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, काफी उसमें सामने आती है। हाउ डू वी रियली डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, यू नो, क्योंकि कितनी बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि ईगो और सेल्फ एस्टीम, मतलब मैंने तो ये इसमें मेरी ईगो नहीं थी, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ एस्टीम थी, इस कारण मैंने ऐसे किया, इस कारण मैं ये चाहता था या मैं चाहती थी, लेकिन समवेयर वो ईगो का एक आस्पेक्ट होती है।
2: बहुत सारी डिफरेंस है वास्तव में, नो, इट इज पोल्स अपोजिट, पर लगता है सिमिलर, लेकिन उसमें आसमान जमीन का फर्क है। जैसे कि ईगो जो है वो हमें ऑलवेज एक्सटर्नल ले जाएगा, नहीं बाह्य बातों में ले जाएगा। सेल्फ एस्टीम आपको इंटरनलाइज करेगी वास्तव में, है ना। ईगो को बार बार प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, है ना। सेल्फ एस्टीम को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए ईगो वाला औरों को कहेगा कि देखो मैंने अच्छा किया, कुछ ना कुछ ऐसी युक्तियां ढूंढेगा कि लोगों को यह कन्विंस हो कि भाई ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। परंतु सोमान वाला व्यक्ति जो है वो इंटरनल उसका डायलॉग होगा, वो अपने आप को कन्विंस करेगा कि मैं अच्छा हूं। जैसे सूर्य को ये कहना नहीं पड़ता है कि सूर्य तुम बहुत अच्छे हो, वो अच्छा है ही है। तो ऐसे ही सेल्फ एस्टीम वाला जो है उसका वो इंटरनल डायलॉग है, और वो ईगो से बाहर आना ही पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर आध्यात्मिक दुनिया में हर व्यक्ति थोड़ा तो पुरुषार्थ करता ही है, आप आध्यात्मिक जगत में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं जब तक ईगो को ब्रेक नहीं करें।
1: वो जो आप कह रहे हैं कि वो जो शेल है वो ब्रेक होना ही पड़ेगा।
2: हाँ, पंछी को अगर मुक्त होना है तो अंडे को तोड़ना ही पड़ेगा, जब तक नहीं टूटेगा वह मुक्त दुनिया में नहीं आएगा।
1: तो वो जो ईगो का शेल हमने है, जो वो शेल है उसको ब्रेक करना होगा। इतना आसान है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। मैं तो मानती हूँ कि मेरी ईगो ही नहीं है, ये तो मेरी सेल्फ एस्टीम है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि कहते हैं कि जो ईगो है वो बहुत जो ज़्यादा बोल रहे होते हैं, जो ज़्यादा लाउड होते हैं वो लोग होते हैं, और जो बड़े शांत होकर बैठे हैं, जो अपने गरिमा में बैठे हैं, उनमें ईगो नहीं होती है। बट समवेयर डीप, समवेयर डीप दे आल्सो आर प्रीटी ईगोइस्ट।
2: जो बार बार बाहर बोलता है, there is a possibility.
1: ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि ये
2: और साइलेंट वाला व्यक्ति वो सेल्फ एस्टीम वाला हो सकता है, साइलेंट वाला ईगोइस्ट भी हो सकता है
3: कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग भी बहुत साइलेंट बैठते हैं, मतलब वो एक ग्रुप में बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं है इंटरैक्ट करने में।
2: लेकिन वो डिफरेंशिएशन ये है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ एस्टीम का, कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अकेला रहेगा बट वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसके चेहरे से भी पता चलेगा कि वो खुश नहीं है।
1: लेकिन सुपीरियरिटी वाला भी कई बार होता है कि ओहो अच्छा चलिए आप बातचीत कीजिए, मैं तो सुन रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं आप। अगेन दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन ईगोइस्ट एक्चुअली।
2: या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ईगोइस्ट।
1: हाउ डू आई एक्चुअली रियलाइज, यू नो, कि मैं जो मैं बिहेव कर रही हूँ और या जो भी मैं एक चीज कर रही हूँ वो ईगो है या सेल्फ एस्टीम। हाउ डू एक्चुअली आई कम टू नो अबाउट इट, बिकॉज पता ही नहीं चल पाता कई बार तो कि कई बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसमें मानती हूँ कि वो सेल्फ एस्टीम है। मैंने तो इसलिए कहा था, इसलिए किया क्योंकि वो मेरी मुझे लगा कि सेल्फ एस्टीम का एक रूप है, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर हम उसमें जाएं तो वो ईगो निकलती है।
3: कोई भी नेगेटिव बिहेवियर जैसे रिफ्यूजिंग, क्रिटिसाइजिंग, जस्टिफाइंग, बॉसिंग, कम्पीटिंग, ये जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको हम सेल्फ रिस्पेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव फीलिंग है, ईगो एक नेगेटिव फीलिंग है। यू नो, इट जनरेट्स अ डिस्टर्बेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव से वही है, पॉजिटिव स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्बेंस है। तो जहाँ भी एक एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो वो जितने भी बिहेवियर्स हैं जो मेरे में या जिनके प्रति वो टारगेट किए गए हैं. यू नो समटाइम्स आई कैन से यस आई एम स्टेबल बट आई एम शाउटिंग एट समबडी, बट दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है. तो आप पे वही असर पड़ेगा जिस क्वालिटी ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी बट यू आर फीलिंग नेगेटिव. ये कैसे होगा? आप वो ही फील करेंगे जो मैं आपको भेज रही हूँ. तो अगर आप यू नो इफ़ आई से कि नहीं मैं बिल्कुल ईगो में नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल राइट था, तो दूसरे को वही फीलिंग आनी चाहिए.
4: अगर वो नहीं आ रही है,
3: अगर दूसरा हर्ट हो रहा है, दूसरा अपसेट हो रहा है या कुछ, देन आई हैव सेंट दैट एनर्जी. यू नो इट्स ओके, इट्स नॉट दैट. हो सकता है दूसरे का भी परसेप्शन, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ आई सेंड पॉजिटिव एनर्जी यू विल टेक इट नेगेटिवली. एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आई सेंड यू नेगेटिव एनर्जी एंड ऑफकोर्स नाउ दैट डिपेंड्स इफ यू टेक द पावर टू कन्वर्ट दैट एनर्जी देन इट्स एलिवेटेड. आई एम टॉकिंग ऑफ टू नॉर्मल पीपल. इफ आई सेंड यू पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव, इफ आई सेंड यू नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव. तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. नो
2: डिमांडिंग, इसके द्वारा पता चल सकता है कि those who are very much demanding तो ego है. Self respect वाला वो demanding नहीं हो.
4: अच्छा, यहाँ एक ना student teacher और पिता और बच्चे की, माँ बाप और बच्चे की बात भी आती है कि जब student जो एक teacher है demand की ही बात करे, वो उसको उम्मीद करता है कि student मुझसे ढंग से ही बात, मुझे वो respect देगा वो, क्योंकि मैं student, because of my status. क्या ये उसकी ego है या उन्हें वो यू नो लाइक ही शुड बी लाइक दिस, कि वो अपने आप उन्हें यू नो एक्सपेक्ट ना करनी पड़े. स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टिंग,
2: दैट इज द राइट. नहीं, आपने सही उत्तर भी दिया.
4: नहीं, पर यहाँ कंफ्यूजन रहता है. वो टीचर कंटिन्यूस ये सोचता है कि उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पेरेंट भी कहते हैं कि उसको मेरी मेरी बात माननी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
2: नो दैट इज ईगो. इनफैक्ट नो, यू बिहेव इन सच अ वे, आप अपनी वैल्यूज को इतनी अच्छी बनाओ और जो आपका व्यवहार है ऐसा अच्छा हो कि ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट करे आपको. डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा.
3: रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं होने चाहिए.
4: कि मैं क्या हूँ.
3: रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, दैट्स व्हाट वी से. रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं, इट्स फॉर द सोल. दैट मीन्स इट्स फॉर द पर्सन दैट यू आर. इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट फॉर, क्योंकि अगर वो जो हम बाह्य रोल के लिए देते हैं उसको हम रिगार्ड कहते हैं. दैट्स व्हाई देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट. रिगार्ड है कि कोई बड़ा अंदर आता है तो हम कुर्सी से उठते हैं, उनको जगह देते हैं, ये रिगार्ड है. एंड इट्स ऑलवेज आउटर, आउटर वर्ल्ड में. लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अंदर से, यू नो इट, वो अंदर से निकलेगी आपके.
4: तो वो
3: लिए
4: अंदर से, वो बच्चे के लिए भी हो सकती
3: हाँ
4: है.
3: तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रिस्पेक्ट एक बच्चा पेरेंट को करेगा. रिस्पेक्ट एक पेरेंट को भी बच्चे के लिए करनी है. रिस्पेक्ट एक टीचर को भी स्टूडेंट के लिए करनी है. क्योंकि रिस्पेक्ट इज एनर्जी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम अ सोल टू अ सोल, इररिस्पेक्टिव ऑफ रोल, एज, एनी बैरियर. क्योंकि बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से वो बच्चा है, लेकिन आत्मा तो वही है, एनर्जी वही है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट एनर्जी. तो वो रिस्पेक्ट फिर आंतरिक एक दूसरे के लिए, दैट्स पॉजिटिव. अगेन इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स अगेन इट्स इंटरकनेक्टेड. इफ आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू.
2: उनके नजदीक एक भाई था जो सारी हमारी जो संस्था है उसमें काफी ही हैड प्रीडोमिनेंट रोल. तो एक बार उन्होंने बहुत गुस्सा किया ना, कई बातें दादी को सुनाई, तभी उन्होंने शांति से सुना, तब रिएक्ट नहीं हुए पीसफुली. और फिर थोड़ी देर हुई तो तुरंत कहा कि भी वो भाई को खाने पे बुलाओ ना, मेरे साथ बैठ करके हम भोजन करेंगे. तो देखिए यह बात है. वो भाई खुद सुनाते हैं कि भी यह इवेंट हुई, जीवन भर में दादी को रिस्पेक्ट करता हूँ. क्योंकि वह महानता की निशानी है कि मैंने तो इतना सुनाया था, अगर वो नहीं भी बुलाते तो शायद मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने वाली नहीं थी. लेकिन यहाँ उनका स्वमान है, ईगो नहीं है, कि जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट दिया.
4: और अगेन उनकी एक्सेप्टेंस थी ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स
3: वेरी इजी, इट्स
4: लाइक ओके,
2: या तो उस समय उनके पॉजिटिव थॉट चले होंगे साथ. उस समय जो भी 15-20 मिनट का समय होगा कि भी कोई कारण से इन्होंने कहा, मुझे भी अपने को शायद कुछ जीवन में चेंज करने के, ऐसा पॉजिटिव सोचा होगा, तब उनको एक्सेप्ट करता है।
4: और वही आपने कहा ना कि अगर आप नेगेटिव देते हैं तो जब तक सामने वाला एलिवेटेड नहीं होगा तब तक उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं।
3: सो दैट इज फॉर दीज सोल्स हु रीच दैट लेवल कि जो एनर्जी आप भेज रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं,
4: कर पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आज हमने जो बातचीत की कि सचमुच हम कहते तो बहुत आसानी से हैं कि मैं दुनिया से प्यार करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को प्यार देती हूँ या मैं चाहती हूँ कि सबको प्यार किया जाए, लेकिन हम सच सही मायने में नहीं जान पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज़रूरी ख़ुद को एक्सेप्ट करना है उतना ही ज़रूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना भी है। तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद से प्यार हम में से हर कोई करता है, हम ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें और लोग भी हमें प्यार करें। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही कि स्वीकारें, खुद को स्वीकारें, लोगों को स्वीकारें, जैसे हैं उन्हें स्वीकार लें और फिर प्यार स्वतः ही हो जाएगा। ऐसी कई और बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी, तो अगर आपके पास कोई सवाल है आपका स्वागत है, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873 666 555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

0: चौहान हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए, लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह की नई किरण में मैं हूँ आरजे शुभा। आज 20 अगस्त 2026 थर्सडे यानी कि सदगुरुवार का दिन है। आज की शुरुआत हम सदगुरु जी को याद करते हुए करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, गाइड किया है, मार्गदर्शन दिया है। इसीलिए उस सदगुरु का, खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उन्हें भी आप शुक्रिया करते रहें। दिन भर जब भी याद आए आपको तो आप शुक्रिया करते रहें, क्योंकि उन्हीं के वजह से हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुई है। उन प्राप्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत पंचांग के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ और भी ढेर सारी बातें रहेगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रेलवे इन्फॉर्मेशन, वेदर रिपोर्ट्स के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से हम सुनेंगे समाचार प्रभात। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण 8:30 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। आइए चलते हैं, जानते हैं आज के दिन विशेष के बारे में। शक संवत 1948, श्रावण शुक्ल अष्टमी गुरुवार, विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 20 अगस्त 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल और वर्षा ऋतु है। राहुकाल दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 तक है। अष्टमी तिथि रात्रि 9:18 तक, उपरांत नवमी तिथि का आरंभ है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:08 तक, उपरांत अनुराधा नक्षत्र का आरंभ है। इंद्र योग अगले दिन तड़के 4:25 यानी कि 21 अगस्त तक, उपरांत वैद्युती योग का आरंभ है। विष्टिकरण प्रातः 8:15 तक, उपरांत बवकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात वृश्चिक राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:53 पर, सूर्यास्त का समय 6:56 पर, चंद्रोदय का समय दोपहर 1:16 पर, चंद्रास्त का समय रात्रि 11:24 तक। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से सुबह 4:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:50 तक रहेगा। अमृतकाल का समय अगले दिन मध्य रात्रि 12:17 से तड़के 2:04 यानी कि 21 अगस्त तक रहेगा। साथ साथ आज सद्भावना दिवस भी है और आज राजीव गांधी जी की जयंती भी है। राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए ये दिवस साल 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी द्वारा केक काटकर मनाया जाता है। मैं ये पूरी गंभीर प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जाति, क्षेत्र, धर्म और भाषा को बिना ध्यान दिए भारत के सभी लोगों की भावनात्मक एकात्मकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। और मैं कसम खाता हूं कि बिना हिंसा के संवैधानिक साधनों और बातचीत के द्वारा एक दूसरे के बीच की दूरियों को अवश्य समाप्त कर दूंगा। तो ये बात कही थी आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। तो आज हम उन्हें सशस्त्र नमन करते हैं क्योंकि मॉडर्न एरा को लाने वाले, कंप्यूटर्स को लाने वाले इंडिया में राजीव गांधी जी को कहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के शिल्पकार उन्हें कहा जाता है। और राजीव गांधी देश के युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग काफी इंतजार भी करते थे। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे।

कुछ विशेष दिन के बारे में हमने जाना, पंचांग के बारे में हमने जाना। इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 है, 6 रबीउल अव्वल जुमेरात जुबाना है आज के दिन। लेते हैं यहाँ पर एक अल्फिराम, मिलते हैं अल्फिराम के उस पार।

ಸಂಸಾರಂ ರಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ ರಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ ರಮ

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्म मंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।
3: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण और मैं हूं आरजे शुभा। आइए, वक्त हो गया है रेलवे इन्फॉर्मेशन का, आइए चलते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं अब से आने वाली गाड़ियां 8 घंटे तक, 8 घंटे तक आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। गाड़ी संख्या है 1241 वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। वहीं पर गाड़ी संख्या है 1620 अजमेर एक्सप्रेस 9:10 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जम्मू तवी से साबरमती तक जाने वाली एक्सप्रेस 1924 9:51 पर पहुंचने वाली है। 6 मिनट मामूली देरी से चलती हुई, संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक है 2। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2:06:03 10:10 पर पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2:04:06 10:30 पर पहुंचेगी। दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 1941 11:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 14822 साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 11:40 पर पहुंचने वाली है ऑन टाइम। योगा एक्सप्रेस 19032 1:14 देरी से चलती हुई, दोपहर बाद 12:04 पर संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने वाली है। जी हां, योगा एक्सप्रेस योगनगर ऋषिकेश से साबरमती तक जाने वाली ये एक्सप्रेस 19032 12:04 पर 1:14 देरी से चलती हुई पहुंचेगी। और वहीं पर गांधीनगर से दौलतपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19411 12:55 पर पहुंचेगी ऑन टाइम। साबरमती से थवे तक जाने वाली एक्सप्रेस 19409 दोपहर बाद 1:30 पर पहुंचेगी। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 दोपहर बाद 2:10 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19031 साबरमती से योगनगरी ऋषिकेश तक जाने वाली ये गाड़ी दोपहर बाद 3 बजे पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर से आने वाली साबरमती तक जाने वाली एक्सप्रेस शाम को 4:05 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आइए यहाँ पर सुनते हैं एक भजन जो समर्पित है सद्गुरु को।

दोस्त आत्मिका का प्यारा सत श्री अकाल। सद्गुरु की महिमा गाई जाती है और जब परमात्मा आपका सच्चा सद्गुरु और साथी बन जाए तो इस जीवन रूपी नैया को किनारा मिल ही जाएगा। तो चलिए उस सच्चे बादशाह का शुक्राना करते हैं इस सुंदर डिवाइन मैशअप द्वारा। हमारी आज की सिंगर हैं बीके शिखा और उनका साथ देंगे बीके मून और बीके स्वरा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन पर। अभी बज चुके हैं रेडियो मधुबन की घड़ी पर सुबह 9 बजे। 9 बजे के टाइम चेक के साथ कुछ पल शांति में ठहरते हैं और जैसे सिस्टर शिवानी जी को आप सुन रहे थे, उनकी बातों से जो आपने सीखा, उसी स्थिति में स्थित होते हैं, उन विचारों के साथ स्थित होते हैं।
0: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

वेलकम बैक 9:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर, और आइए अब हम चलते हैं ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात की ओर।

0: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
4: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
5: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
6: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और

0: 800 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमरीकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ओए रुक रुक, ओए साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनः आप सभी का स्वागत है, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण 9:25 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। तो आइए जानते हैं मौसम का हाल, क्योंकि कभी धूप की गर्माहट तो कभी बादलों की ठंडी छांव है, तो मौसम हर दिन अपने रंग बदलता है। तो देखते हैं आज की क्या रंग है मौसम का। सबसे पहले चलते हैं हम गांधीनगर और अहमदाबाद के, और यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। वर्षा की संभावना सिर्फ 25% तक है रात्रि के समय और दिन के समय 55% तक है। बात करें अगर राजधानी दिल्ली के बारे में, तो राजधानी दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। कोलकाता के बारे में बात करें तो कोलकाता में आज 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है लगभग 91% तक। बात करें बेंगलुरु के बारे में, यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है, 55% तक बारिश होने की संभावना है और बादल छाए रहेंगे आसमान पर आज के दिन। मुंबई में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है आज मुंबई में, लगभग 58% तक संभावना है। चेन्नई में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है और लगभग 56% तक चांसेस है बारिश होने की आज चेन्नई के अंचल में। जिला सिरोही के बारे में बात करें तो यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा की संभावना रात्रि के समय ज़्यादा है, 88% से ज़्यादा, और दिन के इस समय बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की बहुत बहुत बहुत कम चांसेस है दिन के समय, रात्रि के समय बारिश होने की संभावना है। बात करें अगर राजकोट के बारे में, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय यहाँ पर बारिश होने की संभावना है लगभग 60% तक। मेहसाना के बारे में बात करें तो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना आज मेहसाना में नहीं है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर और आपको सूरज भी देखने को मिलेगा आज के दिन मेहसाना में। और वहीं पर सूरत के बारे में बात करें तो 27 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की संभावना भी है 50% से ज़्यादा दिन के समय भी और रात्रि के समय भी। जोधपुर के अंचल में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर। जोधपुर में पाली जिले में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर और धूप भी होगी। माउंट आबू में 24 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की भी बिल्कुल संभावना है 60% से ज़्यादा दिन के समय भी, रात्रि के समय भी। आबू रोड के अंचल में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी आज दिन के समय, रात्रि के समय लगभग 50-50 चांसेस है बारिश होने की। उदयपुर के बारे में बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना भी 50-50 है रात्रि के समय, दिन के समय सूरज देखने को मिलेगा आपको आज के दिन। जयपुर में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है आज के दिन, रात्रि के समय जयपुर में बारिश होने की संभावना है, दिन के समय फिलवक्त नहीं है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे मौसम जानकारी के साथ। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके दिन की बेहतरी तैयारी में मदद करेगी। मौसम से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप रेडियो मधुबन के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई किरण और आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे अर्थव्यवस्था के साथ जानते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान संघर्ष विराम के समाप्त होने से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई। बुधवार 19 अगस्त 2026 को बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स लगातार चौथे दिन और निफ्टी लगातार सातवें दिन नुकसान में रहा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 325.78 अंक यानी कि 0.42% गिर करके 76909.68 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में ये 412.57 अंक यानी कि 0.53% गिर करके 76822.89 अंक तक पहुंच गया। पिछले चार दिनों में सेंसेक्स में कुल 1170.28 अंक यानी कि 1.49% की गिरावट आई। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 76.60 यानी कि 0.32% गिर करके 24078.30 पर समाप्त हुआ। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी बीएसई सेंसेक्स 77404.67 पर कारोबार कर रहा है। लगभग 449.99 की बढ़ोतरी दर के साथ यानी कि 0.64% बढ़ोतरी दर के साथ। वहीं पर एनएसई के बारे में अगर बात करें तो अभी निफ्टी 24225.45 पर कारोबार कर रहा है 147.15 बढ़ोतरी दर के साथ यानी कि 0.61% बढ़ोतरी दर के साथ। आइए चलते हैं सोने और चांदी के दामों के ऊपर नज़र डालते हैं। 24 कैरेट सोना है यहाँ पर 178935 रुपये और 22 कैरेट सोना है 164030 रुपये। 18 कैरेट सोना है 134244 रुपये भारतीय सराफा बाजार में। अगर हम प्लैटिनम प्राइसेस के ऊपर नज़र डालें तो प्लैटिनम प्राइसेस है पर 10 ग्राम 55390 रुपये। चांदी है एक किलोग्राम के हिसाब से 244900 रुपये। पेट्रोल और डीजल के ऊपर नज़र डालते हैं, पेट्रोल प्राइसेस क्या कुछ है। राजधानी दिल्ली में 102.12 रुपये है और वहीं पर राजधानी जयपुर में 113.32 रुपये है। लगभग 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में राजधानी जयपुर में यानी कि राजस्थान में। बात अगर हम डीजल की करें, राजधानी दिल्ली में 95.20 रुपये है, वहीं पर राजस्थान में 98.34 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी सिलेंडर के बारे में बात करें, डोमेस्टिक है 941.50 रुपये और सीएनजी है पर किलोग्राम 83.09 रुपये राजधानी दिल्ली में। और हमारे राजधानी दिल्ली के साथ साथ हमारे आसपास के क्षेत्र में लगभग 94 रुपये तक है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी, फिर मुद्रा जगत के बारे में जानेंगे, लेकिन इस मोड पर एक साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
2: मदन भाई बोल रहे
1: जी। जी मदन भाई, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आज घर से हूँ और छुट्टी है
1: जी। आज गुरुवार छुट्टी है,
2: गुरुवार की छुट्टी है
1: जी जी जी।
2: और फिर रविवार की भी छुट्टी रखनी है। और बहुत सुबह से प्रोग्राम सुन रहे, बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो पहले लगते थे उससे भी अच्छे, और भी मतलब मन भावन बहुत, ये इतना नशा चढ़ता है जिसकी कोई बात ही नहीं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो मधुबन की तारीफ करने के लिए
2: जी। और आपने समाचार सुना है और जो हम सोचते वो भी सही है कि अब बारिश थोड़ी कम बढ़ रही है और आज जैसे महसाना में बताया सूरज भी दिखने मिलेगा, सूरज दिख रहा है और हम देख रहे हैं कहीं आस पास में बादल भी है
1: जी।
2: अगर सूरज दिख रहा है
1: वैसी वाली बात हो गई है ना, ना सावन हरे ना बादल सूखे।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात करी भगवान ने। जैसे सावन आते ही तो सब कुछ आ जाता है, सबके मन में खुशियां आ जाती है और सब छोटे मोटे त्योहार भी आ जाते हैं,
1: राइट।
2: तो इसमें सब खुश रहते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी का माहौल होता है तो पूरे विश्व अच्छा लगता है,
1: राइट। लेकिन तो अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है राजस्थान

0: में गुजरात के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र
1: कम
0: में
1: हो रही है। हमने ये कुछ पहले से सोचा था कि बारिश गुजरात राजस्थान में कम होगी, लोग आगाही करते थे वो आ गई है, आज आ गई है, मगर हमें थोड़ा समय इशारा करता था कि भैया ये कह रहा है कि अब थोड़ा कम
0: थोड़े और पेड़ लगाने की जरूरत है हमें।
1: जी जी और उड़ीसा उधर तो बहुत और भी बाढ़ आने की समस्या है और बहुत मतलब पानी बरसात बहुत पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि भाई सभी हरेक का सामना करें और बस ज्यादा चिंता ना करें, बारिश से आएगी और बस हम शुभकामना करते हैं
0: जी।
1: और रेडियो मधुबन को सलाम करते हैं, हमारी शुभा दीदी को सलाम करते हैं।
0: आज तो आपने नाश्ता किया ही होगा, घर पे हैं?
1: नहीं किया क्या कि थोड़ा काम बढ़ गया था ना, तो इसलिए अभी करेंगे आराम से और खाएंगे भी और फिर नाश्ता करके फिर अब जाएंगे बाजार में कुछ
0: सामान लेने के लिए। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए
1: जी। और आपको नमस्कार, गाना भी बहुत अच्छा सुना है, सतगुरु आया हमारे आंगने मारो बेड़ो पार लगाए, वाह वाह मजा आएगी।
0: धन्यवाद धन्यवाद आपका
1: जी जी। और बढ़िया बाबे का गाना लगा देना
0: जी जी। हम, जी
1: हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, पूछो भला करो भला। तो अभी तो हम रेडियो मधुबन में देखते हैं वर्मा बाप को और हम सभी ब्राह्मण परिवार को, इतनी जितनी सेवा और इतनी सहन शक्ति चाहे संसार के अंदर अभी कलयुग में कहीं नहीं होगी, और ये सबको मतलब विश्वास दिलाते हैं और सब बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, मगर लोग भूल जाते हैं क्योंकि दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए दुख सहन करना पड़ता है, इसलिए समझते नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि समझे और अपने आप को देखे और ईश्वर को देखे, इस्लामे को देखे, और सब हर समय नहीं होता कि हम चाहते कि अभी और भी वो करे नहीं, जो मिले उसमें खुश रहना है
0: जी
1: जी। और बच्चे ने मेरे को बोला था कि पप्पा मैंने सीरियल देखी थी मोबाइल में तो बस पलटी खा गई थी और सबको ब्रह्मा कुमारी वाले को लगा था, मगर उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था मेरे को लगा या देखिए, वाह बच्चा वाह क्या बात है, मुझे भी अच्छा लगा, वो चिंता नहीं करता जो कल्याणकारी समझते हैं वो नहीं। तो आपको नमस्कार करते हैं, सुबह सब तो सुने हमने,
0: धन्यवाद
1: सभी को नमस्कार करते हैं, ओम शांति
0: शांति नमस्ते। तो ये थे हमारे मदन भाई फ्रॉम मेहसाना से, आज इन्होंने बात कही कि अगर सदगुरु भगवान के ऊपर भरोसा होता है तो कुछ भी होता है हमारे लाइफ में तो हम उसको कल्याण समझ करके जब उस सिचुएशन को पार करते हैं तो हमारे चेहरे पर वो भाव नहीं आता, जब दुखों में दूसरे लोगों के चेहरे पर वो भाव आता है। आइए फिर से हम लौटते हैं, हम बात कर रहे थे हमारे बाजार जगत के कुछ बातें, USD के बारे में बात करते हैं, इंडियन करेंसीज के बारे में बात करते हैं। एक USD के मुकाबले इंडियन करेंसी है 95.64 रुपये और एक यूरो के मुकाबले है 111.70 रुपये। एक्सचेंज रेट हम बता रहे हैं आपको, एक GBP के हिसाब से 130.19 रुपये है, एक AED के हिसाब से 26.03 रुपये है, रियाल के हिसाब से 25.47 रुपये हैं और म्यांमार के करेंसी के हिसाब से 23.66 रुपये हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी मुद्रा जगत के साथ भी। लेते हैं यहाँ पर एक अल्फराम, मिलते हैं अल्फराम के उस पार, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM।

कहता है कि पैसे कमाएंगे तो घर बनाएंगे तो सुख होगा। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटे की शादी करता है, कारण क्या कि घर में यदि बहू आएगी तो सेवा करेगी तो सुख की प्राप्ति होगी।

पुनः स्वागत है आप सभी का। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम में नई किरण, आइए आसपास के बातों के ऊपर, घटनाक्रमों के ऊपर, सूचनाओं के ऊपर नजर डालते हैं। माउंट आबू में विद्युत लाइनों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते गुरुवार को माउंट आबू शहर सहित इससे जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। डिस्कॉम JN के अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अनादरा से सिरोही जाने वाली 33 KV विद्युत लाइन का रखरखाव एवं पेट्रोलिंग कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जवाल में 3 और पाड़ी में 2 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। 33-11 KV लाइनों के रखरखाव के लिए ट्री ट्रिमिंग के काम के लिए गुरुवार को बिजली कटौती होगी। सहायक अभियंता हेमंत प्रजापत जी ने दैनिक भास्कर को बताया, गुरुवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जवाल क्षेत्र में 3 घंटे बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। शाम 4 से 6 बजे तक पाड़ी गांव और उससे जुड़े क्षेत्रों में 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। और वहीं पर बात करें संघवी हीराचंद फूलचंद राजकीय कॉलेज के कालंद्री में खाली सीटों पर 22 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी तय तिथि तक कॉलेज में उपस्थित होकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। डॉक्टर बद्री विशाल चारण जी के अनुसार कॉलेज में अभी कला संकाय संचालित है। प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 में कुल 200 सीटें हैं, इनमें 177 विद्यार्थियों ने दाखिला ले लिया है। वहीं पर भास्कर खास में जयपुर में खुलेगा जो अनुसंधान समन्वयक प्रकोष्ठ, यहीं से राज्यों में लागू होंगी परियोजनाएं। जों का 56% उत्पादन कर रहा है राजस्थान, दूसरे स्थान पर यूपी। देश भर में रबी सीजन के दौरान होने वाले जों के कुल उत्पादन में राजस्थान का दबदबा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय से हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल जौ उत्पादन में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी 56.14% दर्ज की गई है। राजस्थान के सभी किसानों को इस बात के लिए मुबारक हो। वहीं पर निकाय चुनाव जिले में 2 चरणों में होंगे। निकाय चुनाव 9 और 11 सितंबर को होगी वोटिंग होगी और चुनाव परिणाम 14 को होगा जारी। नगर निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनावी रण का शंखनाद हो गया है। इस बार जिले के सभी 6 निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। इनमें नई नगर पालिका बने मंडार में पहली बार निकाय चुनाव होंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के पास टिकट हासिल करने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कम समय रहेगा। 27 अगस्त से नामांकन शुरू होंगे और 31 अगस्त अंतिम तिथि रहेगी। पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा जी के मार्गदर्शन में जिले भर में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूज्ड विधिक साक्षरता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपातकालीन नंबर 100-112 और रालसा हेल्पलाइन नंबर 1500 और 9928900900 तथा महिला हेल्पलाइन 181 की जानकारी भी दी गई है। नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका की ओर से शहर में विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए। पालिका आयुक्त रामकिशोर मेहता जी ने बताया कि शहर के अलग अलग वार्डों और प्रमुख मार्गों पर नए पोल और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी शुरू किया गया है। वहीं पर सुबह धुंध में डूबा माउंट आबू, दिन चढ़ा तो बादलों के बीच निकली धूप। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के सूचनाओं के साथ, कुछ हमारे घटनाक्रमों के साथ।
श्रावण का महीना है तो 300 सीढ़ियां चढ़ते हैं तब होते हैं कामेश्वर महादेव के दर्शन। तो ये भास्कर खास में ये बात आप पढ़ सकते हैं। तो शिवगंज शहर के 15 किलोमीटर दूर आरावली की पहाड़ी पर करीब 500 फीट ऊंचाई पर गुफानुमा मंदिर में कामेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। प्राचीन धाम में वर्ष भर धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आशियाना, लेकिन ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड रहेगा और इसके साथ साथ आप मन की आंखों से कार्यक्रम का पुनः प्रसारण 12 बजे सुन सकते हैं। विशेष मुलाकात 1 बजे सुनेंगे, पाठशाला कार्यक्रम आप दोपहर 2 बजे सुनेंगे, सफर कार्यक्रम 4 बजे, युवा मंच 5 बजे, शाम को 6 बजे उड़ान, शाम को 7 बजे मेरा गांव मेरा अंचल, शाम को 8 बजे खुशी के नगमे दिल की बातें, और इसके बाद 9 बजे सेहत स्वास्थ्य का पुनः प्रसारण। और सपनों की सैर आज नहीं है क्योंकि आज गुरुवार है, तो क्षमा करें आज सेहत स्वास्थ्य नहीं है, जीना इसी का नाम है। और घर ऑन एयर सुन पाएंगे आप आज गुरुवार शाम को रात्रि 9 बजे और 9:30 बजे घर ऑन एयर और जीना इसी का नाम सुन पाएंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम आज के लिए रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए 107.8 एफएम। और ये था कार्यक्रम नई किरण, मैं हूँ आरजे शुभा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम सा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, कैसे जरा विचार करिएगा। और आज आपको मैं ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ। आप कौन सी वाली वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है। और आज सिखाएंगे आप सभी को मट्ठा बनाना और मक्खन बनाना, लस्सी बनाना। गर्मी का जो मौसम है तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हमें मौसम के अनुसार बना करके पीनी चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, साथ ही साथ आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार दो भाई होते हैं। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं, माता पिता नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे की पूरी केयर करते हैं। उनका व्यवसाय है जंगल में से लकड़ी काट के लाना, उसको बेचना और उससे जो पैसे आते हैं दोनों भाई अपना गुजारा चलाते हैं। खाना पीना कपड़ा उसी से ही उनको मिलता है। तो इसी तरह बड़ा भाई गया हुआ था जंगल में लकड़ी काटने, लकड़ी काट रहा था, एक पेड़ की काट करके दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ थोड़ा जादुई था। उसने कहा, अरे भाई कृपा करो हमारे ऊपर, मेरी टहनियाँ मत काटो। उसने कहा, क्यों नहीं काटूं? जब दूसरे पेड़ की अन्य पेड़ों के मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ तो आपके टहनियाँ क्यों नहीं काटूँ? तो उस पेड़ ने कहा कि भाई मत काटो, इसके बदले में मैं आपको सेब दे दूंगा। बोले ठीक है दे दो। तो सेब एक दी। अब उसको गुस्सा आ गया कि भाई तो हम दो है, एक सेब से क्या होगा, सेब माने एप्पल, इससे क्या होगा। उसको गुस्सा आ गया और उसने टहनी काट दी। टहनी काट दी तो उस पेड़ को भी गुस्सा आ गया और उसने उसके ऊपर सुइया चुबो दी। तो वो पूरा सुइयों से लिपट गया और असहनीय दर्द उसको होने लगा, वहीं पर गिर पड़ा। अब ऐसे होते होते शाम का समय हो गया। छोटा भाई को चिंता होने लगी कि क्या बात है, बड़ा भाई तो समय पर आ जाता है, आज नहीं आ पहुंचा, क्या बात है, मैं जाता हूँ। और छोटा भाई ढूंढने चला बड़े भाई को। देखा जंगल में इस तरह बड़ा भाई करा रहा है, चिल्ला रहा है दर्द से, तो उसने झा करके प्यार से उसकी सारी सुइयां निकाली। ठीक है, फिर सुइयां निकालने के बाद बड़े भाई ने पेड़ से क्षमा याचना की कि पेड़ मुझे माफ करना, आपके मना करने पर भी मैंने आपकी टहनी काट दी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। पेड़ को भी दया आ गई, पेड़ ने उसको बहुत सारे एप्पल दे दी कि ये लो तुम एप्पल खाओ। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम किसी पर रहम करेंगे तो बदले में हमारे ऊपर भी कोई रहम करेगा। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो बदले में हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो बदले में हमको भी सम्मान मिलेगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटी टिप्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी पलकें, आपकी भौहें थोड़ी चमकदार और घनी बने, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर आपको टिप्स सुना रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। एरंडी, जिसको हम दिवेल भी कहते हैं, ठीक है? तो इस तेल को आप हल्के हल्के, मतलब उंगली पर लगा करके हल्के हल्के घिसना है, ठीक है, पलकों पर और भौहों पर, तो बाल नए उत्पन्न होंगे और भौहें घनी बनेगी, ठीक है? फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आँखों की पलकों और भौहों पर बहुत जनों के बाल कम होते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़े से बड़े, क्योंकि भौहें नहीं होती है तो भी कैसा लगता है ना, अटपटा लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में, या फिर बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में भी आप सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए, हल्के हल्के उंगली से आप थोड़ी सी हल्की हल्की मालिश करिएगा, ठीक है? तो पलकों और भौहों पर बाल आना शुरू हो जाएगा, बिरोनिया घनी होगी। अगला नुस्खा भी बहुत अच्छा है कि भौहों की सुंदरता बनाए रखने के लिए सिर में तेल लगाते समय उंगलियों को भौहों पर रोज फेरिए, इससे भी भौहों की सुंदरता बढ़ेगी। भौहे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप सिर में तेल लगाते हो ना, तेल लगाने के बाद इन उंगलियों को थोड़ा सा अपनी भौहे पर भी फेर दीजिए, तो भौहे की सुंदरता बढ़ेगी। देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे माताएं बहनें बिंदी लगाती है, बिंदी का निशान रह जाता है, और आजकल का समय ऐसा है कि आजकल की बहनें बिंदी बहुत कम लगाती है, क्योंकि

ये जो बावची होती है ना, बावची जिसको बाकुची भी कहते हैं, बाकुची के बीज आप पंसारी की दुकान से ला सकते हैं। ये थोड़े पानी में आप इसको पीसिए, पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके जो बिंदी का निशान है उस स्थान पर आप लगाइए। आपको रोज रात को लेप करना है, और फिर आप भले तो 1 घंटे बाद मुंह धो लीजिए या नींद आ जाए तो सुबह धो लीजिए। तो ऐसे करने से दाग आपका गायब हो जाएगा और जो स्किन है वो पहले जैसी चमकदार ही रहेगी। बिंदी का निशान अगर पड़ गया है तो आप उस निशान को मिटाने के लिए बाकुची के बीज को आप थोड़े से पानी में पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना करके रात को सोते समय इसको लगाइए, सुबह चेहरा धो लीजिए। ऐसा थोड़े दिन लगातार करने से बिंदी का निशान खत्म हो जाएगा। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि होठों की सुंदरता के लिए क्या करेंगे, क्योंकि होठ भी देखिए, भले गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन किसी भी मौसम में होठ फट जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो अक्सर हम ध्यान रखते हैं, है ना, तो आजकल उल्टा हो गया है। सर्दी के मौसम में पूरी केयर करते हैं तो होठ नहीं फटते है। नहीं करते तो फिर फटते ही है, ज़्यादा ही फटते हैं। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम सोचते हैं कि अरे ऐसे मौसम में क्या ध्यान रखना है, तो ऐसे मौसम में भी होठ फट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दूध की मलाई में हल्के से चुटकी भर हल्दी डालिए और फिर आप उंगली पर थोड़ा सा घिस करके होठों पे लगा दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। और अगर चेहरा नहीं धोना है तो खाली दूध की मलाई आप तर्जनी उंगली और अंगूठे से थोड़ा सा घिस करके लगा दीजिए। वो चिकनाई है ना, उस चिकनाई को लगाइए, तो सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहेगा चिकनाई, उसके अंदर भी घी की मात्रा ही होती है दूध के अंदर। पर आप ये जो दूध की मलाई लगाएंगे तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और होठ इससे नरम भी रहेंगे, फटेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा करके स्वयं के ब्यूटी को बढ़ा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हाई, अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आपको नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, परंतु आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ऐतिहासिक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? आपके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल पड़ेगा। तो ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरहताली। अब ये चार में से एक सही है, कौन सा सही है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप फोन कॉल्स करके फिर से प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है? और आइए अब हम आपको छाछ, मट्ठा ये सब सिखा देते हैं। देखिए, मट्ठा का दूसरा रूप छाछ ही होता है। छाछ पतली होती है, मट्ठा गाढ़ा होता है, ठीक है? तो पहले आपको मट्ठा सिखा रही हूँ कि आप दही ले लीजिए, और दही में अब आप थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें पुदीना पाउडर, सिका हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल करके आप भले तो बिलौनी से बिलो दीजिए, भले ग्राइंडर से आप ग्राइंड कर लीजिए, और बस आप पिरस सकते हैं, तो इसको मट्ठा भी कहते हैं। दूसरा रूप यह है कि दही में से आपको मक्खन निकालना है, तो दही को बिलोइए, अच्छी तरह बिलोइए। ज़रूरत पड़े तो इसमें से आपको थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं या फिर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं मौसम के अनुसार। सर्दी का मौसम हो तो हम गर्म पानी डालते हैं, सर्दी का मौसम आप बर्फ़ डालिए, बर्फ़ डाल करके इसके मक्खन को निकाल दीजिए। तो मक्खन निकालने के बाद ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा पतला तो हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हम मट्ठा भी कहते हैं। इसमें फिर आप स्वाद के अनुसार वही जीरा पाउडर, जीरा आप छाछ में या मट्ठा में यूज़ करते हैं तो सेक करके फिर इसको पीस करके डालिए, इससे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा मट्ठा या छाछ जो भी आप पी रहे हैं, टेस्टी लगेगा। तो मक्खन निकाल दीजिए, जैसे आप दही है ना, दही को आप अच्छी तरह बिलोइए, बिलोने के बाद इसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए, बर्फ़ डालने पर जो मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो मक्खन निकाल दीजिए। फिर बचा हुआ जो दही की छाछ है इसमें आप जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक डाल करके आप इसका आनंद ले सकते हो। तो ये बन गया मट्ठा। तीसरा रूप है कि कोई कोई क्या है, श्रीखंड को भी मट्ठा कह देते हैं। तो फिर आपने दही बनाया है, उसका आप कपड़े में बांध दिए, कपड़े में बांध करके इसका जो पानी का भाग है कपड़े में बांधेंगे स्वच्छ कपड़े में, तो ये पानी टपक करके निकल जाएगा बाहर, ठीक है? फिर गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा दही। फिर इसमें आप थोड़े से स्वाद के अनुसार शक्कर डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको फेंट लीजिए, ठीक है? एक चौड़ी थाली में या परात में लेकर के फेंटिए। फेंटने के बाद बस आप एक सकड़े बर्तन में, भले भगोने में, आप भले बड़े कटोरे में आप इसको भर दीजिए। तो इसको ऐसे श्रीखंड भी कहते हैं और मट्ठा भी कहते हैं। तो ऐसे हम घर पर ही बना सकते हैं और इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। फिर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, इलायची फ्लेवर पसंद है तो इलायची पाउडर आप डाल सकते हो, और फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल खाना चाहते हो तो मत रखिए फ्रिज में, लेकिन सचमुच ये मट्ठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप दही लीजिए, दही को आप एक स्वच्छ कपड़े में रख करके चारों तरफ पोटली बना करके किसी हैंडल पर आप लटका दीजिए, ठीक है? इससे जो पानी होगा दही के मात्रा में जो पानी है ना वो निकल जाएगा, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा। फिर इसको आप एक चौड़े बर्तन में निकाल करके स्वाद के अनुसार शक्कर डाल करके आप हाथ से हथेली से अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटने के बाद आपको लगे कि शक्कर एक में एक हो गई है, फिर आप किसी पतीली में है या बाउल में है भर दीजिए। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करके बारीक बारीक और डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर भी आप डाल दीजिए, अच्छी तरह फिर मिक्स करके पहले आप भरते हो ना, उसके पहले चौड़े बर्तन में सब कुछ डाल दीजिए। पहले शक्कर डाल करके तो आपको मथना है, अच्छी तरह फेंटना है। फिर आप को लगे कि अब शक्कर एक में एक हो गई है, फिर ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और अच्छी तरह मिक्स करके आप एक बाउल में भर दीजिएगा। तो ये बन गया श्रीखंड, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं, ठीक है। और आपने देखे अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा सीखा है। अब मैं और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु एक ब्रेक के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ खो गए हैं? कोई कहीं फंक्शन में तो नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं अभी अभी। देखिए, मुंडन का प्रोग्राम भी जारी है, शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो कहीं कहीं अपने जो नए घर खरीदे उसकी भी ओपनिंग चल रही है, और साथ ही साथ भजन कीर्तन, सुंदरकांड के पाठ वगैरह वगैरह, ये तो सब चलते ही रहते हैं ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे श्रोता बंधु व्यस्त हो गए हैं। कोई बात नहीं, अगर समय है आपके पास तो आप जरूर जुड़िएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है? कौन सा नृत्य, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है। हेलो, पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग उषा बहन जी।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी की और सभी मित्रों की कृपा है, और अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
1: जी,
2: कहीं
1: जी, जी,
2: नहीं गए हैं, मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ बहन।
1: अच्छा। जी जी जी। तो आज का प्रश्न आपने सुना?
2: जी जी जी, सुना मैंने।
1: हाँ जी, तो जवाब आप देंगे या मैं ऑप्शन दूं?
2: बिल्कुल देंगे जवाब।
1: हाँ जी,
2: और अभी मैं ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन हूँ?
1: अभी आप ऑन एयर है।
2: तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है। और आज का जो आपने सवाल का जवाब है, तो कालबेलिया सही जवाब है। जो कालबेलिया राजस्थान का जो नृत्य है, तो वो विश्व स्तर पर अपना प्रतियोगिता में भाग लेके आए है, और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज की थी। कालबेलिया सही जवाब है।
1: ठीक है, तो दयाराम जी आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम जरूर आपका जवाब सुनाएंगे, ठीक है?
2: जी मैडम
1: जी, बहुत बहुत आभार। और आइए, यहीं पर हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ खुशनुमा जीवन का, कि कैसे हम तनाव में आते हैं, दुखी होते हैं, और कैसे हम तनाव से मुक्त रह करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो आज का ये विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। क्या कहेंगे आप? जरूर जुड़िएगा और इस विषय पर आप चर्चा में भाग जरूर लीजिएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है। फिर से दोहरा रही हूँ कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे श्रोता बंधु को लग रहा है कि ये मुश्किल प्रश्न है, तो मैं आपको जवाब के लिए चार ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से एक सही है। वो कौन सा सही है जवाब आपको देना है। परंतु हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, तो उनसे बात जरूर करेंगे। हेलो,
2: हाँ दीदी, हम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई।
1: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई।
2: जी जी, बहुत अच्छे हैं और सभी मित्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं, और विषय भी बहुत अच्छा है दीदी की। हद से ज्यादा दीदी हम आराम करते हैं ना
1: जी,
2: कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता ही है। देखो, अब कई लोग ऐसे है दीदी, इतना आलसी हो गए कि कुछ करने की कुछ सोचते भी नहीं।
1: जी,
2: हमारे जो गुजराती में कहावत है कि आड़स जीता मानस की कब्र से।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: तो आड़स हम आराम तो करते थे, आराम करना भी जरूरी है, लेकिन इतना आराम ना करो कि हम कुछ कर ना पाए।
1: जी,
2: सबसे ज्यादा कोई भी बात है जिससे ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो, हम काम करते हैं, काम भी करने का भी तरीका चाहिए। अभी काम करते ही रहो, करते रहो कुछ, तो हमारे शरीर का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम रहता है।
1: जी,
2: काम करना भी जरूरी है और आराम करना भी जरूरी है, लेकिन हम काम से उठ के काम करेंगे, आराम से उठ आराम करेंगे, हम कभी आराम नहीं करते, हम पूरे दिन काम करते हैं, रात को ही आराम करते हैं।
1: क्या बात है,
2: दिन को रोटी खा के भी मैं आराम नहीं करता।
1: अच्छा,
2: सुबह से 7:30 बजे से रात को 7:30 बजे मैं काम करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोजन के बाद अगर समय मिलता है और सिचुएशन ऐसी हो तो 10 मिनट आप आराम कर सकते हो।
2: वो तो सही दीदी, हम 2 चक्कर लगा देते हैं, हम बाहर तो जाते हैं 2 चक्कर लगा देते हैं, तो हमारा जो भोजन खाया हुआ भोजन है वो अच्छी तरह से पहुंच जाता है।
1: जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है।
2: तो आराम करते हैं, लेकिन जब काम होता है तो आराम नहीं करते।
1: जी जी, हमारा काम वो तो सही है, काम होता है उस समय तो 1 सेकंड भी ऐसा लगता है कि वेस्ट नहीं करना है।
2: वेस्ट नहीं करना, और मैं कभी वेस्ट करता, मैं 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मैं काम समय से घड़ी से काम से घड़ी से साथ में काम करता हूँ।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है,
2: घड़ी चलती है घड़ी के साथ साथ में काम करता हूँ।
1: जी, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आलस्य के

0: हमारे उठने को तैयार नहीं होते, कुछ ज्यादा ही आराम करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आराम कीजिए, लेकिन थोड़ा काम भी करना जरूरी है। मैं बताऊँ तो हमारे कई सारे भाई यहाँ भी हैं कि काम करते हैं लेकिन आराम ज्यादा करते हैं। तो आराम करना भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जब आप काम करेगा तो आपका बॉडी भी अच्छी रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका आपको थोड़ा पैसा भी ज्यादा मिलेगा। इसी काम
0: हर तरह से फायदा है,
1: हर तरह से फायदा है, लेकिन ज्यादा आराम करना भी सही नहीं है
0: जी।
1: दिन को रात को तो आप खुद आराम कर लो, कोई बात नहीं, 10 बजे तक 5-6 बजे तक
0: नहीं। जैसे आपने कहा ना कि काम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसा भी मिलेगा, इसलिए कह रहे हो कि सब तरफ से फायदा है।
1: फायदा है, मैं बताऊँ तो मैं सुबह रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ हर रोज
0: जी। बहुत अच्छा है,
1: काम करना है, काम के समय काम करना है, हम काम आराम करेंगे लेकिन आधा घंटे से ज्यादा नहीं
0: जी। जी बहुत अच्छी बात है,
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप भी इस विषय को स्पष्ट कर सकते हो। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो हमारे श्रोता बंधु फोन कॉल्स कर सकते हैं, हम थोड़े से बोल रहे होते हैं तो फोन उठाएंगे आपका, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएंगे, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालवेलिया, डी तेरह ताली। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, उसमें से एक सही है। कौन सा सही है जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-1415-1415। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए किसी की आप मदद कर रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, हमारा फर्ज है मदद करना, लेकिन सामने वाला अब हमारे ऊपर ही निर्भर हो गया, ये गलत है। समय सभी के साथ आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, उस समय इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती ही है। कभी तन के द्वारा, कभी धन के द्वारा, कभी परिवार के द्वारा मदद की आवश्यकता रहती है ना। जैसे कोई गिर गया है तो उस समय इंसान चाहिए उठाने के लिए, एक दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जरूर चाहिए उठाने के लिए। और कभी धन की जरूरत पड़ जाती है तो भी यार दोस्त या फिर मित्र संबंधी इन सभी की याद आती है। तो मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करना ही चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। परंतु मदद करने पर सामने वाला व्यक्ति पूरा ही डिपेंड हो जाता है तो क्या कहेंगे? हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे हैं।
0: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई।
2: आज का विचार तो एक गीत मेरे को याद आया है।
0: हाँ जी,
2: ये पुराना गीत है, आराम है हराम, आराम है हराम, भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों, इस देश के कोने कोने पर पहुंचा दो ये पैगाम,
0: आराम है हराम, आराम है हराम। वाह वाह वाह, क्या बात है, समय पर आपने भी नहले पर दहला मारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत सुनाया, बिल्कुल इसके ये गीत स्पष्ट कर रहा है कि आराम करना भी, ज्यादा आराम भी हराम है।
2: जी आराम के टाइम आराम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम हो तो उसमें आराम नहीं करना चाहिए
0: जी।
2: हाँ, ऐसा एकदम अपने को चलो भाई अभी आराम करेंगे तो ये नुकसान होने वाला है, तो आराम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी काम है
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका फिरोज भाई
2: जी।
0: तो देखिए दो, वो कहते हैं ना कि गीत की पंक्तियों में ही फिरोज भाई ने समझा दिया कि आराम कहाँ तक आवश्यक है। कितनी बार देखिए कोई बिजनेस करते हैं, 12-12 1-1 2-2 बजे घर में ही रहेंगे और घर वाले कहेंगे अरे भाई जाओ बिजनेस पर जाओ, तो बोलेंगे कि अरे हमारा तो फोन पर बिजनेस चलता है, हो जाएगा, आपकी शॉप है, और आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं। अब बोले कितने कस्टमर आकर के चले जाएंगे, सोच ही नहीं सकते हो, आधा दिन तो आपका घर में ही बीत गया। हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे क्योंकि वो जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार दीदी, कैसे हो?
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप? धानेराव से बोल रहे हैं ना?
3: जी जी जी
0: जी जी जी हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
3: आपने एक अच्छा विषय रखा है तो हमेशा मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हटके बात करता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत हद से ज्यादा आराम करने लगता है ना, तो फिर उनको पैसे की तो जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, तो वो लालच आ जाती है कैसी कि किसी के सगे वालों से पैसा मांगना, कोई बहन है भाई के पास, ऐसी आदत पड़ जाती है। फिर लोग उनको ताना देते हैं कि अरे ये आलसी है, उसको घर वालों को भी ताना, उसको सगे वालों को ताना देते हैं कि तुम्हारा जो जमाई है, मतलब हर तरह से उनकी जो थूथू रहती है।
0: बिल्कुल
3: आलस्य क्या नहीं करती, सिर्फ ऐसा नहीं कि कमाने में या घर चलाने में नुकसान है या मुश्किल आएगी, लेकिन जीवन में हर तरह की नुकसान आएगा। तो किसी ने कहा भी है कि आराम हराम है, मतलब आराम भी करनी चाहिए, लेकिन अगर काम पर रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना तो हमारा गाड़ा जैसे तैसे चलता रहेगा। और हमेशा जो धंधे में अगर मन लग गया ना तो वो इंसान कभी आराम करने की सोच नहीं सकता, अगर मन लगा तो। और मन नहीं लगता ना वही जो ये आलसी बन जाते हैं। हर काम में मन लगा कर करना चाहिए।
0: जी बहुत सुंदर
3: जी। और आपने जो प्रश्न पूछा था वो ऑप्शन में क्या क्या बताया था दीदी?
0: जी घूमर वेलिया। हाँ जी घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया और तेरा ताली।
3: हाँ कालबेलिया हो सकता है।
0: अच्छा ठीक है, तो आप सुनिएगा कार्यक्रम, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
3: जी, थैंक यू दीदी
0: जी, बहुत बहुत आभार। और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे इंसान दुखी होता है अपने ही संस्कारोंवश, और कैसे इंसान सुखी होता है अपने ही संस्कारोंवश। अब किस तरह के संस्कार हमें धारण करने हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम, क्या करेंगे। विषय बहुत ही अच्छा है, आराम मनुष्य को, ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि ज्यादा निर्भरता भी अच्छी बात नहीं है। हर कार्य में बहुत सारे लोगों की आदत होती है निर्भर रहना, आता है उसके बावजूद भी नहीं करेंगे। अरे ये काम कर लेना, अरे सुनो सुनो इधर आओ ये काम कर लेना, खुद सोए सोए ऑर्डर देंगे और दूसरों से करवाना चाहेंगे। अब कितना समय आपके कोई मदद करेगा सोचिए आप। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ठीक है कोई परिस्थिति वश किसी को मदद चाहिए, हर कोई करने को तैयार रहेगा और करना भी चाहिए उस समय। लेकिन जब इंसान आत्मनिर्भर बन चुका है या वो उन परिस्थितियों में से निकल चुका है तो फिर तो उसको संभलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अच्छा मेरे को तो आज दिन तक मदद मिली है तो आगे भी मिलती रहेगी, फिर इंसान आलसी हो जाता है। आलसी हो जाता है तो वो आराम ज्यादा करता है और काम कम करता है। ज्यादातर वो लोगों से ही काम लेना पसंद करता है। धीरे धीरे लोग भी उस स्वभाव के से थोड़ा सा परिचित होने लगते हैं कि भाई इसकी तो आदत पड़ गई। कोई भी हो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कोई भी कितना भी अच्छा हमारा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट होती है हर मदद की, है ना। लिमिट के बाहर अगर कोई किसी का ज्यादा ही परेशान करता है या ज्यादा ही उससे मदद लेना चाहता है या काम कराना चाहता है तो फिर धीरे धीरे उससे डिटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे संबंधों में दरार आने लगेगी और कभी कभी तो रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं कि भाई उसके सामने तो जाना ही नहीं, गए नहीं कि बस वो ये कर दो ये दे दो वो दे दो, ये बातें रहेगी तो फिर उस इंसान से लोग दूर भागते हैं। इसलिए देखिए जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति आ गई है तो आप मदद लीजिएगा, लेकिन जब परिस्थिति टल गई है, चली गई है, आपके जीवन से निकल गई है, तो फिर से आप अपने आप को संभालिए और हो सके तो आप दूसरों की मदद करिए। क्योंकि देखिए ये फैक्ट बात है कि आज मैं आपकी मदद कर रही हूं तो कल मुझे भी थोड़ी सी इच्छा रहेगी कि कुछ तो मदद आपके द्वारा भी मुझे मिले, है ना। तो ऐसे होते हैं रिश्तों में भी। तो फिर आप अगर आत्मनिर्भर बन गए हैं तो दूसरों की मदद करिए। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति दीदी।
1: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी।
2: और जो लोग आलसू ज्यादा होते हैं तो अपने काम सही तरह नहीं कर पाते हैं तो वो खुद का तो भी नुकसान कर देती है, लेकिन उनके संगत में और भी आते हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम तो हमेशा ऐसे लोगों से कभी दूर ही रहा करते हैं और उनको भी अच्छी सलाह भी देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी गृहस्थी अच्छी तरह चलेगी। और हमेशा अब किसी पर निर्भर नहीं रहता है और खुद पर डिपेंड करता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और जैसे हमारे घर में कोई गृहस्थी है तो अपना काम सही तरह अच्छी तरह करती है तो सब उसका जो भले भले करते हैं और नहीं करते हैं तो उनके घर में ही झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अपने अपने काम में हमेशा तत्पर रह के करते रहना है और दुगने जज्बे के साथ करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे
1: जी।
2: और कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं ही किसान हूँ तो कृषि का कार्य करता हूँ तो मैं किसी दूसरों पर निर्भर रहूंगा कि वो आएगा मुझे काम कराएगा, तो कोई नहीं हमेशा कोई नहीं आ पाता है नहीं
1: जी,
2: आता है
1: जी।
2: हम अपने काम में लगातार जुड़े रहते हैं और व्यस्त रहते हैं करते हैं तो हम उस काम को अपने जो काम को अपनी समय सीमा निर्भर होती है तो उन पर हम पहुँच जाते हैं। तो बस सभी को नमस्कार है, ओम शांति, खम्मा गणी सा
1: जी, गणी खम्मा सा, आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छी तरह आपने भी स्पष्ट किया है। ये थे दयाराम जी लाखनी से और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भी किसान हैं, अगर हम किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे तो खेती कैसे करेंगे। हर व्यक्ति अगर इसी तरह सोच ले कि हमें डिपेंड नहीं रहना है, स्वयं का कार्य स्वयं करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के बाद भी अगर हम निर्भर रहते हैं तो फिर वो अपाहिज की तरह ही है, है ना। इसलिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ किसी को पचती नहीं है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, आलसी बनेंगे, तो बस दुख का न्योता तो हम खुद ही दे रहे हैं दुख को, है ना। तो अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिएगा और आलस्य को त्याग दीजिएगा, तभी अपने जीवन को हम सुंदर और श्रेष्ठ बना पाएंगे, खुशनुमा बना पाएंगे। यही खुशनुमा जीवन का राज है। यहीं पर हम फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये।

0: जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशियाना, और बहुत ही आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। विचार भी आज का बहुत ही सुंदर था। तो नुस्खे भी आपको जो ब्यूटी टिप्स दी है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपी में भी आपको अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके इसका आनंद लीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? लगभग हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, एक को छोड़ करके। नाम सुनाना चाहूंगी दयाराम जी लाखनी से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई जोटाना से, उम्मेद सिंह जी ओसिया से और सुरेश भाई धानेराव से। आप सभी ने सही जवाब दिया है। काल बेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, इन्होंने जवाब दिया है कच्ची घोड़ी, जो गलत है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी कि कहते हैं कि उजालों में तो मिल जाएंगे बहुत से, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। अब मैं आपको गृहस्थ गीता सुना रही हूँ, ठीक है? तो गृहस्थ गीता का आनंद लेंगे, उसके बाद कुछ श्लोक भी सुनाऊंगी। आतिथ्य ही घर का वैभव है, आतिथ्य ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर का सुख है, समाधान ही घर की शोभा है, सदाचार ही घर की सुवास है, ऐसे ही घर में सदैव प्रभु का वास है। ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसी कमाई मत करो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, रोग हो ऐसा मत खाओ। अब मैं आपको पुष्पांजलि सुना रही हूं। मैं अपराधी जन्म का नकशिक भरो विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार, भक्ति दान मोहे दीजिए सब देवन के देव, और कछु मांगत नाही निश दिन तुम्हारी सेव, सफल द्वारे छोड़कर आई तेरे द्वार, शरणागत की जात रखियो है नंद कुमार। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो यदुराज, कृपा दृष्टि अवलोकिये शरण पड़े की लाज। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर श्लोक सुना रही हूँ। काल बलि सन्मुख खड़िया होय चलन को त्यार, भजन भाव कीन्यो नहीं किस विधि उतरे पार, सुमिरन दीप जलाए के धरु तिहारा ध्यान, शरण पहड़े की लाज रख ए मेरे भगवान, शरण

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम जागृति को। महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक नया पहल है और इसमें हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और क्यों जरूरी है और नींद के संबंधित कई विषयों के बारे में हमने चर्चाएं की और जानकारियां भी लिया और एक गाइडेंस भी लिया कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है और मेंटली फिट रहना क्यों जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अगर हम मानसिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो हम अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और वो दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र जी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, और हर्षिता सेतिया जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों हैदराबादी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हमारे साथ बने हुए हैं हम सभी को नई जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से हमने कहा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है इस विषय को लेकर के, सबसे पहले वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में और कार्यक्रम जागृति में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार
1: जी। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य को अगर मजबूत रखना है और सही रखना है तो हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और ऐसी क्या क्या चीज़ों को हमें बदलाव लेके आना है। आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में, दिन भर आप इतने सारे लोगों की सेवाएं करते हैं, उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने की बहुत आप कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य डेली रूटीन से कैसा जुड़ा हुआ है और हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए।
3: जी, अगर हम देखें कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे हमारी डेली लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हम सुबह से लेकर रात तक हमारा मूड एक वो ऐसी चीज़ है जो हमारी हर एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर उस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं हर काम बहुत खुशी खुशी करूँगी, घर का काम है, बच्चों को लेकर बाहर आना जाना, किसी से मिलना जुलना, सब काम मैं बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन अगर मेरा मूड खराब है किसी भी कारणवश, तो मैं किसी भी काम में ना तो मेरा मन लगेगा, उदास रहूंगी, चिड़चिड़ा होकर बोलूंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? मानसिक, मन से आ रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं मन खुश नहीं है ना। तो अगर हम मन से हर चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक चीजों से जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने जर्नल लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमें बहुत सारे, मैं आज चीज़ें आपके साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली में जो बदलाव लाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये आजकल हर महिला में, हर पुरुष में, हर बच्चे में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं और डॉक्टर वीरेंद्र सर कुछ इन सुझावों पर हम आपको बताना चाहेंगे जो महिलाओं को और ज़्यादा बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। तो हम आज सबसे पहले जो शुरू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए कभी कार्य कर रहे हैं, कभी हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लगे हुए हैं, हम सुबह से लेकर रात तक कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान हमारा बहुत ही कम जाता है, अपने को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो है मी टाइम, जिसको हम एक टाइटल दे सकते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, राइट। तो हर रोज कुछ समय हम खुद के लिए निकाल सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ अपने लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हम कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ देर प्रॉपर एक आराम कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई हॉबीज हैं हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, कुछ भी जो, क्योंकि मी टाइम है तो मुझे क्या पसंद है, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा जो मुझे एक हैप्पीनेस देगा, इंटरनल हैप्पीनेस देगा। तो ये एक चीज हम एड ऑन कर सकते हैं।
2: बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता जी ने। ठीक है, डेली रूटीन का और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन के अंदर में रहते हैं तो आपकी वो आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को जनरली ये कम करता है। जब आपका दिन प्रेडिक्टेबल होता है, आपको पता होता है कि किस चीज के बाद क्या करना है और आप एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजों से जो डेली वर्क है उनसे स्ट्रेस से और उससे एंजाइटी जो है वो कम करती है। फिर जब आपका रूटीन फिक्स रहता है, आपके उठने का और सोने का समय फिक्स है, तो आपकी स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होने लग पड़ती है। उससे आपका प्रोडक्टिविटी और फोकस जो है वो दिन भर में बेहतर बना रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको कौन सी चीज़ प्रायोरिटी वाइज पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है। आप उसके अलावा अगर देखे जाए तो जितनी भी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसके अंदर में भी अगर हमारा डेली रूटीन फिक्स रहे, हम मरीजों को हमेशा बोलते हैं जो डिप्रेशन के, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो उनके या स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट हैं, उनके घर वालों को बोला जाता है कि उनके एक रूटीन को बना दे। मैं जब निमैंस बेंगलोर में था तो वहाँ पर भी जितने भी पेशेंट एडमिट रहते थे तो उनका एक डेली रूटीन हम लोग बनाते थे कि सुबह से वो एडमिट पेशेंट के लिए भी उनका फिक्स रहता था कि सुबह इस समय उन्होंने खेलने के लिए जाना है, इस समय उठे, इस समय प्रार्थना करनी है, इतने समय तक रेडी हो जाए, इस समय एक आपको खाना मिलेगा, इस समय आपको खेलने के लिए जाना है, इस समय आपको वर्कशॉप में जाना है काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें फिक्स रहती थी उनकी, तो एक रूटीन बना रहता था। तो ये डेली रूटीन जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से मदद करता है। तो एक बैलेंस डेली रूटीन अगर होगी आपकी तो मेंटल हेल्थ हमेशा वो आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस रहेंगे और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो और थोड़े थोड़े चेंजेस अगर आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर में करने पड़े तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी आप छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के अंदर में चेंजेस करें। देखिए डेली रूटीन को अचानक से पूरा बदल देना तो पॉसिबल नहीं था, बट हम मरीजों को जो भी आप जनरल पब्लिक को भी जो गाइड करते हैं वो कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे सटल सटल से एकदम माइन्यूट से चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाएं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं।
1: जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है। यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी माइंड इतनी फोकस्ड नहीं रहती है। आजकल हम अगर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो बहुत सारा हमारा कॉन्फिडेंस कहे या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी हम कुछ देखना चाहते हैं, कभी फिर नेक्स्ट मोमेंट हम कहीं और जाना चाहते हैं, हमको किसी चीज़ में भी आनंद नहीं आता है। फिर यही चीज़ जब महिलाओं की बात आती है तो फिर महिलाएं उसमें परेशान हो जाती है कि ये बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, या फिर महिलाओं को भी ये रहता है कि ये भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, फिर उस बात में फिर उनको वो टेंशन आ जाता है और फिर उनको एक प्रेशर रहता है कि मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में काम करते हुए उसका सेटिस्फेक्शन, और दूसरा हम खुद को ये कैसे समझाए कि इतना सारा काम है तो हम जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, या व्हाट इज इट लाइक हम अपने आप को फोकस्ड और वो मेंटली हम इमोशनली हेल्दी रहें और हम हर काम को करते हुए वो सेटिस्फेक्शन को फील करें।
3: सो दीदी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, दो चीज़ें हैं कि एक तो जो यंग है, यूथ है, वो आजकल जा रहा है ना, उनके अपने हिसाब से प्रेशर्स हैं, अपने हिसाब से उनको काम है। एक एल्डर वुमेन है तो उनको पुराने ज़माने के हिसाब से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने आप को मैनेज कैसे करें, क्योंकि दोनों के पास सेम क्वेश्चंस हैं, दोनों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यंग के पास कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि उनको घर का काम भी करना होता है और बाहर का काम भी करना होता है, तो उसमें बच्चे भी हैं, हर चीज़ कैसे मैनेज हो। तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं ना कहना सीखना है जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कोई और हैंडल कर सकता है। वहाँ पे इन महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने लिए अत्यधिक जिम्मेवारियां लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीज़ आजकल हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए, उनके साथ में उनकी हेल्प ली जाए, और कहीं ना कहीं ना कहना आज के टाइम पे सीखना, उन चीज़ों में ना कहना जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि ओवर बर्डन हो रहा है, ओवर प्रेशर हो रहा है। तो अपनी सीमाएं तय करना सीखें, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको सबसे पहले ध्यान दें, उनको प्रायोरिटाइज करें। अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो ओल्ड एज वेमेन है, चाहे वो यंग जनरेशन है, ओवर दबाव में आकर, ओवर जिम्मेवारियां लेकर काम करना कोई ज़रूरी नहीं है आप दूसरों से हेल्प सीख करें। अगर फिर भी आपके घर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको करना ही करना है हर चीज़, सुबह से लेकर रात तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए, तो स्टिल आपको टाइम मैनेज करना वहाँ पे सीखना है। आगे डॉक्टर वीरेंद्र इसमें ऐड ऑन करेंगे।
2: बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर हर्षिता ने। उसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर में है, आजकल जो समय की जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जनरली घर के काम के अलावा फ़ोन का इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है, फ़ोन या लैपटॉप टीवी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो अधिकतर बोलते हैं हमें मरीजों को, वो है कि डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कि आपको अपना जो समय है डिजिटल डिवाइसेस के लिए लाइक फ़ोन लैपटॉप टीवी, इससे थोड़ा ऑफ टाइम लेना ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव कर सके, अपने ऊपर काम कर सके और रियल लाइफ कनेक्शन जो है वो बना के ऊपर ध्यान दे सके, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके, अपने पति पर, अपने रिश्तेदारों पर, मतलब जो रियल लाइफ पीपल हैं उनके ऊपर मैं ध्यान दे सके, ना कि जो स्क्रीन में या फिर जो रियल लाइफ के लोग हैं जैसे रील्स लगातार देखे जा रहे हैं, रियल लाइफ के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दें। तो इसके अंदर में जो मैं अधिकतर सलाह देते हैं वो ये है कि शुरू में स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। लाइक पहले दिन 1 से 2 घंटे का डिजिटल ब्रेक लें। लाइक कुछ लोगों को सारा दिन फ़ोन चलाने की आदत है तो 1 से 2 घंटे का एक डिजिटल ब्रेक लें कि इस समय से इस समय के बीच में मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। खासकर वीकेंड्स जब हैं, जब आपको ऑफिस के काम नहीं करने हैं, अगर मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी वीकेंड्स पे ज़्यादा समय फ़ोन पे बीतता है क्योंकि वो ज़्यादा फ्री होती हैं घर में अगर लोग होते हैं तो। वीकेंड्स पे जब आपके घर में लोग हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, तब उनके साथ समय कटाएं और वीकेंड्स के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिटॉक्स करें। उसके बाद बाउंड्री सेट करें, रूल बनाएं कि मैंने इस समय डिनर करना है, इस समय ब्रेकफास्ट करना है और डिनर के समय मैं फ़ोन चेक नहीं करूंगी, मैं फ़ोन को हाथ में लेकर खाना नहीं खाऊंगी, या घर का कोई भी सदस्य जब खाना खाने बैठ रहा है टेबल पे तो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये रूल अगर सभी सदस्यों के लिए होंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बहुत सारे परिवारों में या बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है कि जब डिनर टेबल पे फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, वो एक बॉक्स रखते हैं, जब खाना खाने आएंगे सब घर के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे और उससे पहले सभी के फ़ोन एक बॉक्स में जमा हो जाएंगे ताकि जब वो खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करें, जो कि हमेशा से होता आया है, जिससे कि रियल लाइफ टच बढ़ता है, आप एक दूसरे की परेशानियां सुनते हैं, उसके समाधान भी निकलते हैं, किसी के मन में क्या ग्रजीज क्या परेशानी चल रही है, कुछ चीज़ को गिल्ट चल रहा है, वो सब बाहर निकल के आता है जब आप एक दूसरे से बात करें। पर जब आप स्क्रीन पे ही रह रहे हैं तो आप लोगों के साथ जो टच है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये और दूसरा, रात को सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद कर देना, मैं हमेशा सलाह देता हूँ, उससे आपकी नींद भी इंप्रूव होती है अगर आप रात को 1 घंटा पहले सोने से पहले फ़ोन को बंद कर देंगे। उसके अलावा फ़ोन में अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करके रखें। बहुत लोग देखे हैं कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल होता है तो हमेशा उसके साथ में आता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और हम लोग बटन दबाते जाते सबके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं जिससे हमारा स्क्रीन टाइम या डिजिटल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमें बाकी कार्यों के लिए समय नहीं मिलता, बाकी कार्य फिर हमारे पिछड़ने लग पड़ते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं।
1: जी, ये जो है, हम एक मामूली अर्बन सोसाइटी की महिलाएं, हम समझ सकते हैं कि उनकी जो इस प्रकार की लाइफस्टाइल होती है उनमें ये चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बातचीत हम करते हैं तो उन महिलाओं के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, ऐसे में वो कई चीज़ों से व्यस्त भी रहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर भी देखा गया कि मोबाइल उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है, ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को माप सके कि यस, मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ तो फिर मेरे अंदर से वो चिड़चिड़ापन या फिर ये इम्पेशेंस और गुस्सा करना, ये सभी चीज़ें कम होता जाएगा। क्योंकि हम जब लाइफस्टाइल की बातचीत करते हैं, ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कई बार महिलाएं कहती कि गुस्सा मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, बच्चे मेरे को बहुत तंग करते। हो सकते हैं वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके अंदर काम का या फिर किसी और चीज़ के जो भी मानसिक तनाव है जिस कारण से वो छोटी बातें भी वो सहन नहीं कर पाती है, फिर वो बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना शुरू हो जाता है, तो फिर घर की माहौल जो है वो इतना हेल्दी और संतोषजनक नहीं रहता है। सो ऐसा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए सुबह उठने से लेकर के रात तक कि हमें मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हर काम करते समय हम अपने आप को क्या याद दिलाएं? हर्षिता जी।
3: हाँ जी, सो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली हमारी ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमारा एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की मी टाइम की, फिर सर ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, ये दो चीज़ें बताई। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे कि
4: हमने कई बार ये भी नोटिस किया है कि अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण पे ध्यान नहीं है, किसी में अगर खून की कमी है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सब चीजों के लीड करती हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमको अपने फिजिकल

0: हमें अपने स्वास्थ्य और हमें अपने पोषण पर भी ध्यान देना है। हम एक संतुलित आहार लें हर रोज, जो कि भरपूर होना चाहिए। सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, साबुत अनाज हैं, इन सब चीजों को अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, हम अपनी पानी जो है उसकी मात्रा को हम पूरा नहीं करते हैं, और डिहाइड्रेशन वन ऑफ द रीजन है हमारे जो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तीसरा, हम जो अभी हमने कहा कि अगर किसी को एनीमिया है तो ये सारी चीजें आप अपना टेस्ट कराएं और इन चीजों पे भी ध्यान दें, इसकी नियमित जांच जरूर करवाएं। और जो भी अगर आपको कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इन चीजों को हम जरूर डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारी उतनी ही जरूरी है। फिर आते हैं हम आगे जो है कि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमें मानसिक तनाव रहता है उससे हम कैसे चीजों को ठीक करें, जिससे हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हम एक अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक तो बहुत सरल से उपाय हैं, हम अपनी लाइफ में ध्यान को लेकर आए, हम अपने व्यायाम पे ध्यान दें, प्राणायाम कर सकते हैं, सरल सांस लेने का जो व्यायाम होता है उनको कर सकते हैं, हम इन सब चीजों को भी अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए हम अपनी भावनाओं को जरूर साझा करें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी चिंताओं को जरूर बांटे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई गो टू पर्सन है तो उससे, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे जरूर बात करें। और आजकल हम महिलाओं में तो देखते हैं कि किटी पार्टीज होती हैं और गांव वालों के जरूर एक महिला मंडल बना होता है, है ना। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो अपने महिला मंडल में जाकर जरूर अपनी बातों को साझा करें। दिल हल्का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें, चार पांच चीजें हैं जो हम अपने अंदर लाएं। और आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, रोजगार की तरफ लीड करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन योजनाओं से भी जुड़ें, क्योंकि आपका एट द एंड कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा पार्ट है जो अगर बूस्ट नहीं है, अगेन आपके मेंटल हेल्थ पे वो भी इम्पैक्ट डालता है, आप लो फील करते हैं। तो ऐसी चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, ऐसी चीजें जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करने की कोशिश करें जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। एक महिला के लिए, जिसे हम मेल के लिए एक ईगो वर्ड यूज करते हैं कि मेल ईगो है, अगर आज आप महिलाओं में भी देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट अप है तो वो भी बहुत सशक्त फील करती हैं। ईगो वाली बात नहीं है ये, कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त करने की बातें हैं। तो ये सब चीजें हम अपनी लाइफ में, जो रूरल में, जो ग्रामीण में महिलाएं रह रही हैं, ये सब अपने लाइफस्टाइल में एड ऑन कर सकती हैं।
1: उसके अलावा कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन चीज है कि अपने आप को समझाना कि मैं इस सिचुएशन, कुछ एक बात हुई, बच्चों ने कुछ तंग किया या कुछ हुआ, तो मैं इस सिचुएशन पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं 5 या 10 मिनट का समय लेकर उस सिचुएशन में रिएक्ट करूंगी। क्योंकि जब भी हम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत बुरा होता है और उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा निकल के आता है। जब हम 10-15 मिनट का समय लेते हैं तो सेम सिचुएशन हम गहरे ढंग से या अलग ढंग से समझ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी काम डाउन या काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा उस समय में हम जो सलाह देते हैं वो मरीजों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब कोई गुस्सा आ रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको बच्चे तंग कर रहे हैं, आप बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़े 5 से 10 डीप गहरे सांस लिए और उसके बाद बच्चों से बात करने की कोशिश करें, या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू करना। 100 से लेकर 1 तक अगर आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो जब तक आप 100 से शुरू करेंगे, जब तक आप 40-50 तक पहुंचेंगे तो आपका गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाएगा और उस समय जो आप रिएक्शन देंगे वो आपका असली रिएक्शन होगा, ना कि गुस्से वाला रिएक्शन। और उसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बताने की कोशिश करें। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। आप बार बार करती रहेंगी इस चीज को तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजों को लेकर आपका रिएक्शन या गुस्सा वो कम होने लग पड़ा है। उसके अलावा डॉक्टर हर्षिता ने जैसे जो चीज़ें बताई, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, थोड़ा व्यायाम करें, शाम के समय फैमिली के साथ में थोड़ा समय बताएं, दिन के समय अगर आपको बहुत सारे काम है तो एक साथ काम का बर्डन मत लें, आधा पौना घंटा काम किया उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। बच्चों में भी मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो लगातार नहीं पढ़ने बैठना, आप 50-10 का प्रिंसिपल यूज करें। आप 50 मिनट अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें। वैसे ही हमारे काम में भी ऐसा है, अगर हम 40-50 मिनट लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसके बाद फिर से काम करने जुटे, उससे हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
2: जी, सो आज के इस कार्यक्रम को अगर हम सम अप करते हैं तो हर्षिता जी, आप क्या क्विकली वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बुलेट्स की तरह बता सकते हैं? और दूसरा, उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक टाइम टेबल बता दें महिलाओं की कि हम अपनी टाइम टेबल को या अपने कार्य को कैसे डिवाइड करें जिससे वो अपना काम भी पूरा कर सके और वो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ के भी अटेंशन दे सके और उसके लिए कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी आप कहें।
0: जी, तो अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में चीजों को सम अप करूं कि आज जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात की है तो क्या क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। तीसरा, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जो अभी हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है, सांस लेना है, कैसे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उन सब चीजों पे। उसके बाद हम अपने आप को सशक्त करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम अपनी नींद को और आराम को भी ध्यान से हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। फिर हम अपना डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ी देर उन चीजों से बाहर रहना, उन चीजों पे हम ध्यान देंगे। कुछ टाइम अपने घर से बाहर बिताएंगे। फिर हमने जैसे शुरू में बात की थी कि हम अपना मी टाइम जरूर हर रोज निकालेंगे, चाहे वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, लेकिन मुझे हर रोज अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। फिर हमने बात की थी कि हम अपनी सीमाएं तय करेंगे, हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ऐसे नहीं उनमें दबके रहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाकर, अपने हस्बैंड की सहायता लेकर कहीं ना करना हम जरूर सीखेंगे। और अभी जैसे सर ने एंगर मैनेजमेंट टेक्निक से बताई हैं हमें, हम उन चीजों पे भी जरूर ध्यान देंगे। गहरी सांसें लेना, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना, कुछ बीच बीच में ब्रेक्स लेना, तो ये कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे सर ने कहा वो करना। और एक लास्ट चीज जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स के साथ यूज करती हूँ कि जब क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये 3 questions जो हैं आप हमेशा अपने आप से पूछें और फिर उस सिचुएशन को रिएक्ट करें। सबसे पहला, क्या ये स्थिति इतनी गंभीर है? दूसरा, क्या मेरा क्रोध इस समस्या को हल अभी के अभी कर देगा? तीसरा, क्या मैं इस स्थिति को एक अलग तरीके से देख सकती हूँ या नहीं देख सकती? तो ये 3 प्रश्न आप जब भी आपको क्रोध आ रहा है, आप सबसे पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न करें, उसके बाद आप रिएक्ट करें, ठीक है? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो अब हमने ध्यान रखने हैं और अभी टाइम टेबल हमें सर बता रहे हैं।
1: मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताने की कोशिश करता हूँ महिलाओं के लिए जो उन्हें करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो आइडियल है वो तो एकदम आइडियल है, पर हर आदमी को अपने हिसाब से उस टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि उनकी कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको किस चीज को कितना समय देना है। जनरली जो मैं सलाह देते हैं कि सुबह 6 बजे या जल्दी उठने की कोशिश करें, कम से कम 6 बजे तो उठें, रात को अलार्म लगा के सोएं, सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें। उसके बाद 1 ग्लास पानी पिया, लगभग 6:15, 6:20, 6:30 बजे तक अपने सभी एक्टिविटीज से फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक योगा या मेडिटेशन करें और उसके अंदर में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगभग 6:30 बजे तक ये सब काम हो जाए तो उसके बाद एक वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। वॉकिंग या जॉगिंग या कुछ भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहती हैं वो करें, लगभग 30 मिनट के लिए वो ठीक रहेगा। 7 बजे के आसपास आप इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगी तो आपका दिन का जो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए मेन काम है वो आपने सुबह कर दिया। अब 7 बजे आप नहाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं और जो आपके डेली रूटीन के काम है वो सब करें। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखें अपना और कोशिश करें कि शुगर अवॉइड करें, अगर चाय या कॉफी लेते हैं तो उसमें चीनी बिल्कुल अवॉइड करें। ये सब करते करते आपको 7:30-8 बज जाएंगे। 8 बजे के आसपास आप अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बना लें कि आप आज सारे दिन में क्या क्या करने वाले हैं, अपना एक डे प्लानर तैयार कर लें और उसके ऊपर में अगर आपके बच्चे स्कूल जाने हैं तो उस समय में अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें। और उसके बाद 9 बजे से अपने डेली रूटीन शुरू कर दीजिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय अपने लिए रखें, जब आपने अपने घर के जो काम है, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर एक एक करके काम करते हैं। और कोशिश करिए अगर आप वो रिटर्न में टू डू लिस्ट बनाएंगी तो आप उसको टिक कर सकती हैं कि हाँ, कपड़े धोने का काम था वो कर दिया, आयरन करने का काम था वो कर दिया, तो वो लिस्ट रहेगी। और 1 घंटा काम करने के बाद में हमेशा 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें, तो उससे आप काफी रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। 12:30-1 बजे के बीच में अपना लंच कर लें, वो आइडियल समय है। अगर आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 12:30-1 बजे का समय आपके लिए आइडियल टाइम है लंच करने का। 12:30-2 बजे के बीच में लंच और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अगर आप 1.5 घंटे की नींद लेना चाहती हैं तो वो लीजिए और रिलैक्स रहें। और 2 बजे फिर से अपने रूटीन जो है वो शुरू कर दीजिए। तो आपके जो बचे हुए काम है वो सब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करें, उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। शाम को 4 बजे कुछ चाय, कॉफी, लाइट स्नैक्स के साथ में ले सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें कि आज सारे दिन में क्या क्या विचार आए, आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम आपसे नहीं हो पा रहे थे, उन सबको लिस्ट आउट करना शुरू करें। शाम को 5 बजे जैसे डॉक्टर हर्षिता ने बताया, अपना एक मी टाइम रखें जिसमें आप अपने लिए काम करें। अभी तक तो जो आप काम कर रही थी अपने परिवार के लिए करते, 5 बजे के बाद में अपने लिए एक मी टाइम निकालें आधा पौना घंटे का, जिसके अंदर में आप म्यूजिक सुनना, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं, या दोस्तों के साथ फोन पे बात करना, जो भी है वो 1 घंटे में करें। शाम को 6 बजे एक लाइट इवनिंग वॉक करें या हल्की सी एक्सरसाइज करें, और 7 बजे जब आपके परिवार के सब लोग आ जाएं तो अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें। रात का खाना तकरीबन आप 8-8:30 बजे खा लें, ताकि उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो सकें, और 9:30 बजे के आसपास सोने की तैयारी शुरू कर दें। सोने की तैयारी का मतलब जो हमने लास्ट टाइम स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स बताई थी वो सबको फॉलो करें, फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें 1 घंटा पहले, और 10 बजे के आसपास आप सोने चले जाएं। तो अगर आप 10 बजे सोने चले जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आपकी 7-8 घंटे की एक नींद हो रही है, जो कि एक बेहतरीन नींद है। और कोशिश करते हैं कि जब आप सोने जा रही हैं तो अपने एक पॉजिटिव थॉट्स लेके जाएं, ताकि आपके आपको रात्रि जो है वो बहुत अच्छी बीतेगी, कम स्वप्न आएंगे, और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगी तो फिर पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगी। अगर आप इसको रेगुलर करती रहेंगी तो एक लूप की तरह आपकी माइंड में सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी साइकिल में चलना शुरू कर देगी, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
2: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को आज के इस चर्चा के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को, अपनी दिनचर्या में क्या प्रायोरिटी देना है और हमारी अटेंशन किन चीज़ों पे रखना है, ये बहुत समझ में आया होगा। हम अगली कड़ी में इसी के संबंधित और विषयों को साथ में लेकर के आएंगे, और हमारे साथ हमारे दोनों विशेषज्ञ भी होंगे। हम यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारे तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ। अच्छा। वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहां पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहां से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह

0: दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता। फर्स्ट फ्लोर से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी, तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है। बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब में आसानी से कर लेती थी, लेकिन जहाँ मैथमेटिक्स की एल्जेब्रा ज्योमेट्री की बात आती थी तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी, और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कुछ नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें, और स्क्विंट भी आई मेरा, हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिकली स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
1: अच्छा,
0: लड़की
1: परिवार
0: देखो,
1: में ही?
0: हाँ मतलब परिवार में भी, और जैसे कुछ भी मतलब नॉट इन माय फैमिली, जैसे जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो होता है, तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया, ठीक है, तो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे, कि उस तरह
1: जी
0: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए, तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
1: जी
0: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना, तो ऐसे करके 10th आ गया। 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
1: बिल्कुल
0: पर डॉक्टर
1: बिल्कुल
0: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके, तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
1: अच्छा
0: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना, तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्याएं चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
1: ओहो,
0: दौरान
1: अच्छा
0: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
1: जी
0: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे, और उसका साइड
1: जी
0: इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। +2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
1: क्या
0: तो
1: बात है, वाह।
0: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
1: ये
0: टैलेंट्स
1: प्लस टू का
0: देखकर
1: बता रहे हैं
0: के,
1: आप, 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
0: जी
1: टॉप किया है
0: 12th का
1: ना?
0: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने
1: क्या
0: फर्स्ट
1: सब्जेक्ट
0: डिवीजन
1: उस
0: स्टेट,
1: समय,
0: हाँ
1: 12th में सब्जेक्ट
0: जी,
1: क्या रहे आपके?
0: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
1: अच्छा, हिंदी
0: हिंदी
1: मीडियम
0: जो
1: या इंग्लिश
0: लास्ट
1: मीडियम?
0: में हिंदी भी, इंग्लिश मीडियम 10th तक,
1: इंग्लिश
0: देखिए
1: मीडियम।
0: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो
1: जी
0: उसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के
1: जी
0: लिए, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना,
1: जी
0: और तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टीच. फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली. यस, तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, प्लस की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की. और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक को चक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है. पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ. ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में मैंने पाया, तो आई वाज सो हैप्पी. लेकिन सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगे कि भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, है ना? तो हाँ जी, समझ आया. तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना. हमारा
1: आंखों का क्या ठीक हो गया, तो वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था.
0: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था.
1: अच्छा, मतलब आपकी रोशनी वापस से ठीक होने लग गई थी.
0: नहीं, रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था, तिरछापन जो था, पुतलियां,
1: टेढ़ापन था,
0: वो सही हो रहा था. तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी.
1: तो आपकी एंगेजमेंट आपके जैसे व्यक्ति से हुई थी या सामान्य व्यक्ति से?
0: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें.
1: आप इस स्थिति में नहीं रहे कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें परिवार?
0: बिल्कुल. तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट. जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड. ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए. ठीक, तो ये चीजें रही. फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के है ना, हर कोई मैरिज करता
1: है, हर कोई यही सोचता है
0: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया अब सुख के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं ना. तो यहाँ भी मैं
1: बहुत
0: जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट्स है, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है. तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ. उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट. तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से. तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही. From the first day, I was the victim of dowry. दहेज ये बहुत बड़ी समस्या रही. पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया. उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई. ठीक है, वहां जाके पता चला कि the person is also not, मतलब deserving person नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल.
1: जॉब वगैरह थी?
0: कुछ नहीं था सर, अपने फैमिली के टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था. तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस.
1: नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात
0: हाँ, जी हाँ, क्योंकि अब वो बीत गई है तो
1: वो वैसे भी पर्सनल, हाँ वो वैसे भी पर्सनल लाइफ है, रही है तो कोई बात नहीं.
0: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया. ठीक है, देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000. यस, तो 2000 में उसका बर्थ था. तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना. तो 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह वहां पर हमको ले गए. तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज and that cannot be cured. वो cure नहीं हो सकता.
1: आप एक ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता
0: कई सालों से, मतलब है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं. और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर

0: अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया।
1: तो
0: I was in, you know, depression पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस
1: एंड और उन्हें बेटे की हाँ। बेटे का लालन पालन भी साथ में चल
0: वो
1: रहा
0: सब
1: है
0: तो मैं, हाँ, वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग मतलब बच्चे का लालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे व्हाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
1: और आपने ब्रेल लिपि भी सीखी मैडम?
0: जी मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल हैं उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना, कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीज़ें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीज़ें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ में सीखा कहते हैं, है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज अ लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ, वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी इंग्लिश की किताबें होती थी सब मुझे बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झाझुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया, तो आज वो नहीं है बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
1: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ऐसा समझ में आ रहा है।
0: बड़ा रोल रहा है जी।

0: पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ, सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती,
1: हम समझ
0: बस
1: रहे
0: वो
1: हैं
0: एक
1: कि
0: मेंढक
1: आप
0: बन के रहते हैं। जी
1: भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए
0: जी जी
1: निश्चित
0: तो
1: रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं।
0: तो ही वॉज अ बैकबोन टू मी एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूँ तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं।
1: हाँ वाह क्या
0: धन्य
1: बात
0: है, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी
1: है।
0: हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो
1: जी
0: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
1: जी
0: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबो गरीब।
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: आपको
1: नहीं
0: बताऊं,
1: बिल्कुल
0: हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
1: जी
0: आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना। मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: जी, है ना। तो ये बात है, तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद, क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है,
1: जी
0: बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा,
1: वाह
0: और
1: क्या
0: भगवान
1: बात है।
0: ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन 4 to 5 thousand स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स
1: क्या
0: ट्रेनिंग दी
1: बात
0: है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा
1: बहुत बढ़िया
0: स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाई अप किया, टाई अप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाई अप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है, इसमें उन लोगों ने टाई अप किया, तो
1: जी
0: इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन इनके सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वॉज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: उस समय
0: टू
1: मतलब आपने यही लक्ष्य बना
0: हाँ
1: लिया कि
0: नाइन टू
1: बस अब तो
0: नाइन
1: मुझे
0: यस हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी, राइट। तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो दो मैंने
1: अरे वाह
0: कोर्स बुक लिखी सर और दो लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये
1: क्या
0: हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पिया हुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए। तो ये जो दो कोर्स बुक है और जिसके मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और दो हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें अच्छा। हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से। ये मेरा
1: क्या एक बात, बात, बात,
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले। तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के। तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक ओटीवी है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 400,000 लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को तो उस समय पे, और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे। अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है।
0: नहीं नहीं सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना हमारे समाज में, हम जिस तरह के माहौल में।
1: और फिर क्या होता है ना कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी नहीं
0: सोचता इंसान है ना, नहीं सोचता बस है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई है ना, उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी। हाँ जी, तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था, भगवान की दया से देखिए पापा ने बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है, देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो, तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बातें, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है, तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया।
1: अच्छा,
0: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए, और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा, तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सर्जरी भी हुई पिताजी की है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन द ईयर 2018 वाज एक्सपायर्ड, सो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था, एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना वो रहा, तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए। और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ दैट इज। तो ये
1: छत्तीसगढ़ में कौन से
0: हाँ,
1: शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है, वहां
1: अच्छा
0: पे
1: अच्छा
0: हूँ मैं।
1: अच्छा
0: वहाँ
1: तो
0: जी
1: आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया
1: ओके
0: एंड उन्होंने
1: ओके
0: ही
1: ओके
0: हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ है ना एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर। फिर जमीन वगैरह खरीद
1: 2008 से
0: के
1: लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में
0: जी
1: ही अपने आप को
0: बचपन से
1: मतलब
0: ही पूरा
1: सरवाइव
0: मतलब
1: भी किया,
0: हाँ
1: फ्लरिश
0: बिल्कुल
1: भी
0: हाँ
1: किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर
0: बिल्कुल
1: वहीं देखे आपने।
0: सब
1: एक बात
0: सब
1: बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टिबाधित लोगों को लेकर के
0: यस
1: जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में, तो
0: जी
1: ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने
0: यस
1: कोचिंग शुरू की
0: जी
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके
0: जी
1: पास जाएं पढ़ने के लिए और
0: यस
1: फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे
0: बिल्कुल
1: मिलने लगे?
0: जी। मैं वही बताती हूँ सी। देखिए एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोसा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नो बडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन
1: यानी
0: किया।
1: किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको
0: जी
1: पढ़ाने वाला
0: हाँ
1: टीचर जो है वो शायद
0: हाँ
1: ब्लाइंड है।
0: ब्लाइंड है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास, और सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत
1: तो
0: तरीके
1: वहां
0: से
1: आपने
0: करती हूँ।
1: रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद
0: जी
1: लिया था,
0: हाँ
1: कैसे करते थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही
0: पहले
1: करते रहे
0: था,
1: थ्रू आउट आप?
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी। तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहां भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहां पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे, तो
1: ये
0: इस तरह
1: ओडिशा में
0: से
1: कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा
1: जादूगुड़ा है?
0: जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR
1: ओके
0: झारसुगुड़ा, हाँ ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: जी।
0: यस
1: तो एक बात बताइए,
0: जी
1: जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए,
0: जी
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा
1: ये
0: इवन
1: क्योंकि मेरे मन में एक
0: इन
1: बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि
0: रिटेन
1: यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात
1: बिल्कुल
0: बेटे
1: ठीक
0: को भी
1: बात
0: पता
1: है,
0: है बहुत अच्छी तरह से। जी
1: बिल्कुल ठीक बात है। बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम हैं आप। दिल्ली में हैं, एक नीतू सिंह मैम हैं, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर, सबका अपना अपना संघर्ष होता है।
0: अब इस
1: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं। अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो है ही, बहुत अच्छी, और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर, तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई।
0: जी, मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ। अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाए उस ओर तो।
0: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा।
1: जी, आप बताइए।
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
1: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए।
0: जी बिल्कुल सर, होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है, है वह मंजिल यहीं कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास है, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश, जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया, है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी, सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा, और चूंकि मेरे ताऊ जी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तब ये हाल है ना,
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
0: जी
1: जी,
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के, किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है, जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना, तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने आई, मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर।

0: और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई। मैं उन लोग को बोलती थी
1: जी
0: मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन में बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें
0: कल्पनाओं की
1: बस
0: उड़ान, तो बस
1: घुस एक
0: हाँ
1: बार जब घुस गए तो निकलने का कोई
0: घुस
1: मतलब
0: गए।
1: नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र है। तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनईबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना। तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप
1: सिखाया।
0: इसमें क्लास करो। हाँ तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे ना और अपने मायके में रहती है उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे। मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हुई। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां
1: बिल्कुल
0: पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक
1: अरे वाह,
0: आर्टिकल
1: क्या
0: आता
1: बात
0: था
1: है।
0: पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने
1: जी
0: वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं
1: जी
0: काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी, इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी जिसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोग, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से
1: जी
0: पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ,
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं दिखता है। ओके तो ये रही। तो इस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए। तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से,
1: जी
0: और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो
1: जी
0: मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
1: अच्छा
0: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में। तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना, एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग रिम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी,
0: जी
1: यानी अब
0: तो
1: आपने अपना
0: हाँ
1: खुद का एक तरह से एक कहना
0: जी,
1: चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है
0: एक सोशल
1: कनेक्टिंग
0: वेंचर
1: रिंग्स
0: शुरू
1: के नाम।
0: किया जिसका
1: जी
0: नाम कनेक्टिंग रिंग्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक, वीआई भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं। तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग, हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी की, किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे
1: अच्छा
0: एडिटिंग नहीं आती थी। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से
1: जी
0: हैं, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति भी
1: वाह,
0: बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक
1: क्या
0: ब्लाइंड
1: बात
0: पर्सन
1: है।
0: है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर हैं, तो इन्होंने मुझे सिखाया, और उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे, फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके, कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी। और सब सब लोग बोलते थे, कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर। तो सब
1: जी
0: लोग, हमने किसी पॉलिश्ड, किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बात
1: बिल्कुल
0: बताती हूँ। 0%
1: बिल्कुल
0: इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को 1 रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए ना नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बने बनाए, है ना, आयशाला से किए,
1: जी
0: तानपुरा में चला
1: जी
0: रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम में
1: जी
0: लोग जुड़ते गए। मैं
1: जी
0: इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके, जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड अभी कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है। तो इन्होंने भी कनेक्टिंग रिम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं, वो सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ
1: जी
0: मैं करती हूँ, और ओम भी नावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग बीम्स हमने बनाया, इसमें हमारे 4 कोर मेंबर और हैं, जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, और बाकी हमारी टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं के। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं, 80% लोग अराउंड, सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लोग ऐसा नहीं,
1: बहुत
0: कोई
1: अच्छी बात
0: कम्प्लीटली
1: है
0: ब्लाइंड है। तो
1: जी।
0: लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों में, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने
1: बिल्कुल
0: एक
1: समझ गया
0: उसमें
1: मैं। वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है,
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैनई हो जो हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
1: जी,
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम एक्साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर
1: हो जाएगा,
0: आज कल
1: बिल्कुल आज नहीं तो कल, जो सोचा है वो तो होना ही वाला है जी।
0: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में जीरो और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द
1: सन, एक के अनेक जीरो लग जाएंगे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो कितने, मतलब टोटल ऐसे एक संख्या में कभी नोटिस तो जी
0: जी। हाँ संख्या में अगर मैं बताऊँ तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जो पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट कहानियां कविताएं, तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: उपन्यास
0: करने का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम क्या नहीं हो जो हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं, और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के अंदर के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी, डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी,
1: तो बहुत अच्छी बात है। एक मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है
0: जी, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब, तो कभी अगर
0: इनका हमारे साथ अवसर है कोलैबोरेशन
1: अवसर मिला तो उनके साथ भी हम मन की आंखों से कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल
1: करने की कोशिश करेंगे।
0: हाँ, वो बहुत,
1: और ये अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना
0: जी, अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा, और हमने उनका भावोन्मेष उन्होंने एक किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है, और गोष्ठी कुछ काव्य गोष्ठियां हमने की है कनेक्टिंग ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और अक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट कॉम्पिटिशन सेलिब्रेशन गेट टुगेदर छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो ये बात है तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए, या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था, या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे, क्योंकि ब्रेल लिपि तो आपने बहुत ज्यादा सीखी नहीं?
0: नहीं सीखी, लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ जो भी।
1: ओके अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा और उसी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर वो वाला, ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
1: बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी, मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश सुकून है या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी लेती है तो सुकून भी जिंदगी के पास है, आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
0: जी, बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, आप
1: जी
0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष एस कुमार जी जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब एस कुमार जी अपनी कुछ नए विषय को लेकर हमारे बीच में आते हैं। तो जैसे कि हेल्थ एक विषय है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो एस कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आपका। ओम शांति, नमस्ते
1: ओम शांति। नमस्कार।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। सभी को ठीक करता हूँ तो सबके शुभकामनाओं से वैसे ही ठीक रहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अभी वर्तमान में आप कहाँ पर हैं और करंट सिनेरियो के बारे में बताइए हमें।
1: ऐसे तो बॉम्बे में रहता हूँ और बाकी हेल्थ पर्पस से गाइडेड मेडिटेशन कराने के लिए और मेडिकल का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं इनविजिबल डॉक्टर या मेडिटेशन एज मेडिसिन, ये करने के लिए लगातार टूरिंग जो है मेरी देश विदेश में चलती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली बार भी हमने काफी साइको न्यूरोबिक के बारे में बातें की थी, माइंड मैनेजमेंट के बारे में बातें की थी, तो आज भी हम लोग कुछ इस तरह की बातें। मोस्टली होता क्या है कि कई बार कुछ चीजें हमारे समझ में नहीं आता, हेल्थ हमारा जो है इफेक्ट हो रहा है ये भी कभी कभी हमें पता नहीं चलता।

0: तो ऐसे में हमें फिर बहुत समय के बाद कुछ ऐसी चीजें बाहर आ जाती, फिर लगता है कि भाई अरे फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर हम लोग जाते हैं तो फिर वो सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं, ये निकालो वो निकालो, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे इनको तो डायबिटीज हो गया, इनको कैंसर हो गया, इनको ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है आगे चले। तो एक बड़ी ऐसी जो है कंक्लूजन पे आ जाते, फिर उसके बाद आदमी और टेंशन में आ जाता है और कहा जाता है कि भाई डायबिटीज अगर आ गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, आप दवा गोली और इंजेक्शन पे ही आपको समय बिताना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा था कि आप, क्योंकि काफी समय से आप एनएलपी ट्रेनर हैं और हेल्थ के ऊपर काफी आपने काम किया है और बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग भी करते हैं आप, कि किस तरह से हम लोग जैसे कि दर्द भी है तो उसको भी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर कोई भी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, उसके ऊपर भी आप काउंसलिंग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज जैसे कि बहुत सारे ऐसे नए भी प्रोग्राम्स आए हैं जिसमें डायबिटीज रिवर्सल करके बोलते हैं कि डायबिटीज हो गया तो उसको ठीक भी किया जा सकता है, आज एक नया जो है ट्रेंड भी लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय को लेकर आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। जी
1: जी, मैं कुछ मुद्दे कुछ बातें ऐसी करूंगा जो
0: जी जी
1: कि शायद थोड़ी सी नई लगे और शायद मतभेद उसमें हो सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: जी जी
1: है तो सत्य, और सत्य के साथ में एक शब्द लगता है कि कड़वा सत्य। वो कड़वी बातें शायद लग सकती हैं। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की थी तो ये समझिए सुप्रीम डॉक्टर यानी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्रेरणा से मेरे अंदर जो बात आई थी ना, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर टू यू नो टेक केयर ऑफ द इलनेस ऑफ पेशेंट, यानी लोगों को ठीक करना वो मेरा काम नहीं है। मेरे अंदर ऐसी ये प्रेरणा बाबा ये शिव बाबा ने या सुप्रीम डॉक्टर ने दी थी कि कुछ काम मुझे ऐसा करना है कि लोग बीमार ही ना पड़े, और उसी के ऊपर से मैं काम कर रहा हूँ। काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी कर चुका हूँ और सर्विसेज के लिए कर चुका हूँ, कई कॉलेजेस में कर चुका हूँ, मेडिकल कॉलेजेस में कर चुका हूँ, और एक जगह तो मैं बताऊं स्पेशली बेलगांव में मुझे याद आ रहा है, वहां के रजिस्ट्रार ने बीच लेक्चर से उठ करके अपने एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट को बोला था कि जो कुछ डॉक्टर कुमार बोल रहे हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दिस इज आउट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन ये आपको बहुत काम में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का समय ऐसा है ना, खासतौर
0: जी
1: से
0: जी
1: आपने जो डायबिटीज की बात की है, ठीक है, आज शायद हम इसी मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: डायबिटीज हो या कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर उस पे इस तरफ में बहुत काम हो रहा है, नए से नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे हम और रिफाइंड दवाइयां ढूंढे उसके लिए, नए नए इलाज करें उसके लिए, और फिर उसमें उसका कोई विस्तार ही नहीं। कोई अगर किसी
0: बिल्कुल
1: फॉर्मूला को लेके आता है तो उसमें दूसरा कुछ 19-20 का फर्क करके और एक नया फॉर्मूला आ जाता है। मैं ये बोलता हूं कि इस तरफ तो बहुत काम कर लिया है, हमें अब उस तरफ काम करना है कि ये बीमारी होती क्यों है, और अगर बीमारी होती है तो हम क्या ऐसा अपने जीवन में बदलाव लाएं ताकि हम उस बीमारी से पूरी तरह से निजात पाए। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं कि मेरे बचपन की बात मुझे याद आती है, बहुत बहुत जरूरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा सुनिएगा उसको। बड़े बड़े
0: बिल्कुल
1: फिलोसोफर्स ने जो बात की है, और वो मेरी अनपढ़ माँ, मेरी माँ 4 क्लास पढ़ी थी, वो 5वें में आई तो मेरी माँ की शादी हो गई थी। अभी हम 5 भाई बहन थे, फादर रेलवे में नौकरी करते थे, वो गए तो कई कई दिन के बाद में आते थे, वो पायलट थे। तो दिन में सवेरे तो हम लोग सभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, हम चले जाते थे, शाम को मेरी माँ सभी को इकट्ठा करके और शाम को हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते थे। तो प्रार्थना होने के पूजा होने के बाद मेरी माँ एक चीज बोलती थी और वो चीज मैं मेरे अंदर रिकॉर्ड हो गई। वो अब जब डॉक्टर बना ना तब मुझे वो याद आया कि देखो मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन वो उस चीज को पढ़ा करके गई जिसको बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने एक बहुत ही बड़ा नाम दिया है। इसके ऊपर से डॉक्टर ये स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया था और किताब में भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है, उसको कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रुइज्म। ये शब्द जो है ना अल्ट्रुइज्म, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये, और इसको लगभग जैसे दुनिया भूलती जा रही है। अब अल्ट्रुइज्म मतलब क्या, तो जब हमारी प्रार्थना पूजा हो जाती थी तो मेरी माँ जोर जोर से बोलती थी, हे ईश्वर सबका भला कर, उसके बाद में मेरा भला कर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो बचपन से सुन सुन के मेरे अंदर जैसे वो एक तरीके से घर कर गई और उसने मेरा संस्कार बना दिया। अभी डॉक्टर बना, उससे पहले आप तो मेरे को बहुत साल से जानते हैं, मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी काम किया है और मैं बड़ा क्लोजली मैं स्टडी करते आ रहा हूं कि आज दुनिया के अंदर, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं सबसे, भैया किसी को भी बुरा लगेगा ना तो पहले मैं माफी मांग लेता हूं, आप बुरा नहीं लगाना, बट दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स एट प्रेजेंट। आज हर एक इंसान को यह चाहिए कि मेरा भला हो, बाकी किसी का होता है तो नहीं, होता है या नहीं होता है मुझे उससे कुछ लेना देना। ये कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हमने वही चीज देखा था। आगे बढ़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं लोग, कैसे सिर्फ आगे बढ़ने के लिए अपने लिए नहीं लेकिन दूसरे किसी को पीछा करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ चुका है। सुनिएगा बहुत, जो भी देखने वाले हैं वो सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि इस लेवल तक आ चुका है कि जो हमारे रूट्स हैं ना, हमारे जड़ है ना, पहले जमाने में इतनी संपन्नता किसी घर में नहीं थी, ये आप एग्री करेंगे। माँ बाप कितना त्याग करते थे, तपस्या करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते थे, उनके अंदर संस्कार डालते थे, उन्हें अच्छी में अच्छी पढ़ाई कराते थे। माँ बाप अपने शौक का, अपने इंटरेस्ट का भी त्याग करते थे, वो प्रेम प्यार भी अच्छी तरह से नहीं कर लेते, छोटे छोटे घर होते थे, सभी एक कमरे दो कमरे में रह रहे थे, और जब बच्चे लिख पढ़कर आगे बढ़ते गए, उसके बाद में मैंने पर्सनली ऐसे कितने सारे घरों के अंदर देखा है, या माँ बाप ने आकर के अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए। जैसे लोग आते हैं ना मेरे को, मेरा प्रोग्राम होने के बाद में बोलते हैं हमें कुछ आपसे बातचीत करनी है, कितने सारे माँ बाप ने हमसे ये बात शेयर की है कि हमारे बच्चों को हमने कितना त्याग और तपस्या करके आगे बढ़ाया था, आज हमारी तरफ वो देखते भी नहीं। क्यों? बच्चों के अंदर भी वो बात आ चुकी है कि यार अपनी जिंदगी देखो पहले। माँ बाप आज भी उसी जनरल कैटेगरी में, मतलब मीगर कंडीशंस में वो रह रहे हैं, और बच्चे 5-7 स्टार लेवल पे लेवल की जीवन जी रहे हैं, और उन्हें 2 पैसे का कोई दिल में मलाल नहीं होता है कि यही तो है जिन्होंने हमें छोटे से लेकर के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हमें कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आज हम इनके वजह से हैं। और वो बोलते हैं कि अभी उनको देखने में जाएंगे तो हमारा, या फिर कितने सारे घर हैं जहां पर के बच्चों ने अपने माँ बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में या फिर डेस्टिट्यूट होम में डाल दिया है, उन्हें सिर्फ अपना ऐशो आराम, अपना हाई स्टैंडर्ड दिखाई देता है। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है, दिस इज ऑपोजिट ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म इज डिफाइंड एज द डॉक्ट्रिन बाय विच अ पर्सन सीज अदर्स अबव हिमसेल्फ। जैसे मेरी माँ बोलती थी ना कि सबका भला करना फिर बाद में मेरा भला करना, अर्थात दूसरों की भलाई की कामना करना, दूसरों को एक परिवार के रूप में देखना कि ये भी हमारे अपने हैं। वो चीज जैसे धीरे धीरे ऑब्सोलेट होती जा रही है, वो चीज जैसे जैसे धीरे धीरे गायब होती जा रही है, एक सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस जो है इंसान के अंदर इतनी आ जा रही है कि मात्र प्रोफेशनल दुनिया में नहीं, चल दुनिया में नहीं, घर घर के अंदर वो पहुंच गई, समाज के अंदर भी। ठीक है, यूनिवर्सली तो पहले ऐसा था कि हर कोई एक दूसरे की कदर करता था। अब देखिए आप 5 तत्वों को ले लीजिए, ये लाइट पूरे विश्व को देता है, वायु कोई एक छोटे स्थान के लिए नहीं, पूरी दुनिया को वायु मिलती है, ऐसे ही सूरज की रोशनी है, ये जल तत्व है, ये कोई अपने लिए जल उसने रखा है नहीं, वो पूरी दुनिया को जल पिला। जब ये 5 तत्व भी पूरे विश्व को सेवा दे रहे हैं, पूरे विश्व को सुविधाएं

नहीं था खर्चा में, वो बावर्ची आता था उसको एक दो कमरे दे दिए जाते, तो इतने सारे आइटम्स बनाता था। और फिर शादी के बाद में इतना सारा सामान बचा हुआ है, तो एक कंपटीशन होता था घरों के अंदर कि भाई इतने रसगुल्ले बच गए, इतने लड्डू बच गए, आओ भाई बैठो कौन कौन है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है किसी को 80 गुलाब जामुन खाते हुए, 80 गुलाब जामुन खाए और थोड़ा सा दंड बैठक लगा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आज तो यंगस्टर्स लोग ये बोलते हैं कि हम तो शक्कर को टच भी नहीं कर सकते, हम छू भी नहीं सकते। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया का आया है ना, ये कहां की ओर लेकर के जाएगा है? हम इतना ये हो चुके हैं कि एक चम्मच शक्कर थोड़ी सी हम अपनी चाय में नहीं डाल सकते, इतना डर का माहौल हो गया है। और ये क्यों हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा दुनियावी लोगों को एक रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कारण संस्कारों का कारण कि एक तो वो कारण होता है जो मेडिकल साइंस वाले देते हैं कि भाई ये फलाना वायरस है, बैक्टीरिया है, ये डेफिशिएंसी है, वो है, उसके वजह से। लेकिन लेकिन जैसा हमने अपने पहले किसी एपिसोड में बोला था कि हमारे मुरली में एक चीज आती है जो कि बड़ा कड़वा सत्य है, वो बिटर ट्रुथ है, बीमारियां हमारे अपने पाप कर्मों की सजाएं हैं। और दूसरी एक कंसेप्ट है कि यदि हमें ठीक होना है और वो भी परमानेंट ठीक होना है तो मेडिटेशन से ही हम ठीक हो सकते हैं। अब संकल्प जो है वो कर्म का बीज है, यानी संकल्प या भावनाएं कुछ भी कह लो, तो जो संकल्प कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और वो कर्म यदि वो सेल्फिशनेस कनिंगनेस से प्रेरित हैं, यदि वो संस्कार उसमें भरे हुए हैं कि मेरा भला हो, मुझे क्या लेना लेना दूसरे के इससे, तो ये जो है बहुत गलत परिणाम करता है, खास तौर से जो पैनक्रियास है ना उसके ऊपर, और उससे जो सिक्रीट होने वाले जूसेस हैं, उससे सिक्रीट होने वाला इंसुलिन है, उसके ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। और मैंने अपने, क्योंकि मैं इतना सारा घूमता हूं ना, फ्लाइट में भी जाता हूँ, ट्रेन में भी जाता हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से आई गेट इन टच विद पीपल, या फिर ट्रेन में ऐसे गए और मेरी लोअर बर्थ है, कोई आकर के उस पर बैठ गया और फिर बाद में आप जाकर के बोलेंगे भाई ये मेरी सीट है, आप यहां से उठ जाइए, तो इतना डिबेट चलता है। क्यों? कि मुझे आराम से जाना है, आपको तकलीफ हो तो चलेगा। तो मैं पहली चीज उनसे ये पूछता हूं कि आपको डायबिटीज है क्या? तो आज तक तो किसी ने भी, जो सेल्फिशनेस करते हैं ना, आज तो किसी ने भी मेरे को ये नहीं बोला कि नहीं मेरे को डायबिटीज है। वो उल्टा ही बोलते हैं, हाँ डायबिटीज है, आपको कैसे पता चला? तो मैं बोलता हूँ आपका जो बर्ताव है ना, आपका जो इंटेंशन है ना, उस वजह से मेरे को पता चला कि आपको डायबिटीज है। क्यों? आप सिर्फ अपना भला चाहते हो, दूसरे का भला नहीं चाहते। अब इसमें मेरी गलती क्या है? मैं बराबर ट्रेन में आ गया, अपनी ही सीट पे जाना चाहता हूं, और आप इतना डिबेट कर रहे हो मेरे से। तो वो कारण जो के सॉफ्ट रीजन के कैटेगरी में आता है, जो संस्कार के कैटेगरी में आता है कि इंसान ऐसे कौन से कर्म करता है जिसके वजह से उसको वो तकलीफ बीमारी के रूप में भुगतनी पड़ती है। तो बात चल रही है मीठा खाने की, एक्चुअली मैं उस पर आना चाह रहा था कि आज इंसान मीठा खाने के लिए इस कदर डर रहा है कि वो मतलब उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। यंगस्टर्स लोग 21-22 साल के, 18 साल के बच्चे लोग बोलते अंकल हम तो शक्कर को हाथ भी नहीं लगाते, फिर वो डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी। अभी देखे आयुर्वेद के अनुसार खट्टा मीठा तीखा फीका और कड़वा, ये 5 स्वाद आपके भोजन में होने ही चाहिए। अगर ये 5 स्वाद नहीं है तो वो कई सारे डेफिशिएंसीज को वो पैदा कर देगा। अगर अब, और वैसे भी जो मेडिकल के पुराने जर्नल्स थे उसमें लिखा था कि एक इंसान और सुचारू रूप से वो दिन भर काम करे, उसके लिए उसको लगभग 200 यूनिट ऑफ ग्लूकोज उसके ब्लड में होना चाहिए, तब जाकर के वो एकदम पूरी एनर्जी के साथ में वो काम कर सकता है। ठीक है, तो आज तो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो चक्कर की तरफ देख रहे हैं, हम तो बोलते हैं, मैं उन्हीं को बताता हूं कि

0: यार मैं मीठा खाए बगैर रह नहीं सकता हूं, मेरे तो रोज चाहिए मीठा खाने के। वो कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? उसका कारण यह है, आप मेरे जीवन को स्टडी करो तो आपको पता चलेगा। तो बात यह नहीं है कि मीठा खाने से आज तकलीफ होने लग गई है, सालों साल से लोग हर एक शुभ कार्य के अंदर, जैसे हम दीप प्रज्वलन करने से शुरुआत करते हैं, तो मिठाई से ही, एक दूसरे का मुंह मीठा करने से ही वो शुरू होता है। और ये पूरी जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के चला आ रहा था भैया। अभी क्या हो गया ये एक 20-25 साल के अंदर के लोग बिल्कुल इतने डरने लग गए मीठा मिठाई से या शक्कर से या मीठा खाने से कि समझो उनको नींद भी नहीं आए रात में। अगर उनको ये बोल दिया जाए कि तुमने मीठा खा लो तो सवेरे बोलते, अरे डॉक्टर जल्दी मेरा चेक करो, क्या हुआ? नहीं, रात को मैंने रसगुल्ला खाया था, मेरे को चेकअप कराया, मेरा शुगर टेस्ट। बोला हद हो गई यार, दरकाल है तुम्हारी ऐसी जिंदगी के। इतने यंगस्टर्स होकर के तुम एक एक एक पीस जो मिठाई का है वो नहीं तुम पचा सकते हो? कोई सवाल आपको पूछना है?
1: जी जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि पहले के समय में क्या होता था और बाद में चीजें कैसे बदल गई, ये आपने बताया। तो जैसे कि अभी डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं और जिनको इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं या डायोनिल टैबलेट्स वगैरह, गुलफॉर्मिन वगैरह टैबलेट्स ले रहे हैं, तो इन सभी के लिए आप क्या बताएं? अब शुरू कैसे करें? क्या आप माइंड से, हमारे विचारों से या हमारे स्वभाव से, अगर हम इसको थोड़ा धीरे धीरे चेंज कर पाए तो ग्रेजुअली ये चीजें बदल सकती हैं या क्या हो सकता है? जी,
0: आपने बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हम थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री पे आ जाते हैं। जैसे
1: जी
0: डायबिटीज के बारे में तो सुना है, लेकिन कितने टाइप की डायबिटीज होती है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायबिटीज, ठीक है? टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री डायबिटीज होती है, ठीक है? टाइप थ्री डायबिटीज, टाइप वन और टाइप टू तो मोस्टली सभी को पता है। टाइप वन डायबिटीज यानी जिसमें वो इंसुलिन लेते हैं, वो शॉट्स लेते हैं अपने आप से। टाइप टू डायबिटीज यानी जो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए पिल्स और टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है? और टाइप थ्री डायबिटीज बहुत ही रेयरली कुछ लोगों को होता है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस समय उसको कुछ समय के लिए डायबिटीज होती है और वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। या फिर मेनोपॉज होने वाला है किसी लेडीज को तो उस समय पर कुछ समय के लिए होता है, और उस समय कुछ एक प्रोसीजर होता है मेनोपॉज के समय पर, 2 साल एक लेडी को अपना कुछ ख्याल करना पड़ता है, और वो नहीं करने से बहुत सारी तकलीफें आती है। वो टाइप थ्री डायबिटीज जो है वो टाइप टू में परिवर्तित हो सकती है। तो ये टाइप थ्री डायबिटीज जो है वो बड़े आसानी से ठीक हो सकती है। अब आमतौर पर देखा जाए तो तीन ही पैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, ठीक है? जब किसी को नया नया डायबिटीज होता है या डॉक्टर उनको बताता है कि भाई तुमको डायबिटीज है, ठीक है? एक लेमैन है, उसको कुछ नहीं पता, वो सीधा का सीधा वैसा ही स्वीकार कर लेता है, डॉक्टर ने बोला यानी मुझे डायबिटीज है, और लैब टेस्ट करके बता दिया जाता है। फास्टिंग में एक टेस्ट होता है, फिर पोस्ट पेरेंडियल कर लेते हैं उसमें, या फिर उसके बाद में कभी जाएंगे तो रैंडम टेस्ट हो जाता है। रैंडम टेस्ट में देखो देखो कितना है, अरे बाप रे, 200 के आसपास। मेरे पास कोई भी आता है तो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है 200 आसपास, ठीक है कोई बात। और फिर वो जो है ढूंढने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: उसके सानिध्य में ऐसे 50 लोग आ जाएंगे, अरे आपको है? अरे मेरे तो इतने साल से, मुझे तो इतने साल से, मुझे इतने साल से, बहुत से लोग आ जाएंगे बताने के लिए भाई हमें भी डायबिटीज है। तो फिर वो पूछता है कि भाई कौन से डॉक्टर के पास जाने से तुम्हारी डायबिटीज मेंटेन है, डायबिटीज ठीक नहीं हुई है, डायबिटीज ठीक नहीं हुई है, पैनक्रियास अभी भी उसी कंडीशन में है जैसा था, सिर्फ जो ब्लड में इंसुलिन की कमी है उस कमी को वो टैबलेट या इंजेक्शन पूरी कर देता है, यानी पैनक्रियास को बोलता है कि भाई तू आराम कर, तुझे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से जो टैबलेट या इंसुलिन ले रहा हूं ना वो तेरा काम कर देगा। यानी वो पैनक्रियास धीरे धीरे धीरे धीरे बैठे बैठे वो मतलब इनएक्टिव होने लगता है। होम्योपैथी में भी दवाइयां हैं जो कि खाना खाने से पहले लेनी पड़ती है, फिर आयुर्वेद के अंदर भी है, और अभी भी आप देख रहे होंगे कि कहां कहां कैसी कैसी रिसर्च चल रही है, कुछ लोग वो उसमें वो ट्रे तसला जैसा एक बर्तन लेकर के उसमें नीम और करेला रख करके उसमें पैरों से खच्चर पच्चर कर रहे हैं और फिर बाद में मुंह में आ जाता है। ठीक है, अच्छा है, आई अप्रिशिएट। मुझे बहुत खुशी है कि नए नए तरीके आप ढूंढ रहे हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई तो ऐसा, और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, सच में मैं चाहता हूँ कि आई एम द ओनली पर्सन एट प्रेजेंट जो मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा है। अरे बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च हो रहा है, डीआरडीओ में भी रिसर्च होता है, नासा में भी होता है, क्या आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि इंसान बीमार ही क्यों पड़ता है? अरे आगे 2500 साल तक हमें बीमार नहीं पड़ना है, तो कब हम वो संस्कार डालेंगे, कब हम उस प्रक्रिया पे आएंगे, कब हम अपने आप को वैसा बनाएंगे कि हम चैलेंज कर सके, हम तो बीमार पड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसमें जो है ना एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, इसमें अपने संस्कारों को परिवर्तित करने की जरूरत है, इसमें सोशल बनने की जरूरत है, इसमें अपने अंदर अल्ट्रुइज्म को लाने की जरूरत है कि भाई सबका भला हो उसके पीछे मेरा भला हो। करके देखिए, इस करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो शरीर के अंदर एक हार्मोनल सिस्टम है ना, ये कैसे एक्टिवेट करता है, इसके फंक्शनिंग होने की प्रक्रिया क्या है, कैसे काम करता है। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिसर्च किया है, और किसी कारण से कोई बहुत ज्यादा इसमें जा नहीं रहा। और ये स्वीकार है कि संकल्प या भावना है जो है ना, वो डायरेक्टली जा करके उस हार्मोनल सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को वो एनर्जी देते हैं। अगर वो इमोशन पॉजिटिव है तो अल्कलाइन हार्मोन्स फ्लो करेंगे, अगर वो नेगेटिव इमोशन है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिनल ग्लैंड जो है, इसका जो एक समन्वय है जिसको हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम, वहां से फिर एसिडिक या नेगेटिव हार्मोन्स फ्लो करेंगे और फिर उसका वैसा परिणाम जो है शरीर के ऊपर होगा। ये डायबिटीज की बात करें, किसी दिन हम किडनी के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। कई साल तक इस दुनिया के अंदर किडनी का डॉक्टर नहीं था, फिर एकाएक नेफ्रोलॉजिस्ट आ गए, और वो क्या काम कर रहे हैं वो भी लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ, हमारे संस्कारों के अंदर ऐसी क्या बात आ गई जिसके कारण से किडनी के तकलीफ होने लग गए, और एक एक नेफ्रोलॉजिस्ट के ओपीडीज में आप जाकर ये देखेंगे तो नेवर एंडिंग लाइन, लाइन की लाइन लगी पड़ी रहती है। ऐसी ही आज एक जमाने में जब सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बड़े रेयरली होते थे, एक जमाने में 10 साल किसी कंपाउंडर ने एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में काम, के गाइडेंस में काम कर लिया, तो वो एग्जाम्पल एक एग्जाम देकर के वो LMP का सर्टिफिकेट ले लेता था लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आराम से कोई भी बीमारी को हैंडल कर लेता था वो। आज शहर में आप गिन नहीं सकते हैं, हर एक शहर में इतने डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, उसके बावजूद केसेस आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। यानी उस एंटायर सेटअप की बात करूं तो आखिर हो क्या रहा है वहां पर, हम कर क्या रहे हैं वहां पर, क्या हम इस कोशिश में हैं कि लोगों को डायबिटीज हो ही ना, या फिर हमारा काम मात्र इतना है डायबिटीज हो गया, जाओ लैब टेस्ट करके आ जाओ, ब्लड टेस्ट करके आ जाओ, ब्लड टेस्ट देखा उसके बाद में एक गोली हमने प्रिस्क्राइब कर दिया, ये गोली लेना शुरू करो, मॉनिटर करते रहेंगे, रैंडम टेस्ट करते रहेंगे, अरे कंट्रोल में कभी, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए कि गोली ले रहे थे फिर कभी कभी कंट्रोल में नहीं आती, कभी कभी इतना लो हो जाता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन डायबिटीज, यानी शुगर हाई होता है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, और लो होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। मैं ऐसे कई पेशेंट को जानता हूँ, वो हमेशा जेब में चॉकलेट वगैरह लेकर घूमते हैं, एकदम से चक्कर आ रहा है, थोड़ा सा कमजोरी लग रही है, तो उन्होंने हाँ ये सिम्टम हमें पता है, हाइपोग्लाइसेमिक है, और ऊपर से चॉकलेट निकाल करके मुंह में डाल देते हैं। ये इलाज मतलब मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, मुझे बड़ा मतलब कॉमेडी टाइप का लगता है, ये कोई तरीका है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो हम क्या कर रहे हैं इस पूरे एंटायर जो एक प्रोजेक्ट हम उसको नाम दें या सेटअप नाम दें डायबिटीज का नया है, इसको हम हैंडल करने के लिए कर क्या रहे हैं हम? क्या मात्र एक गोली दे देना या फिर कई समय हमने गोली देकर टैबलेट देकर के देख लिया नहीं आ रहा है तो चलो अभी आप अपना जरूर टाइप 1 डायबिटिक है आपको इंसुलिन लिख देते हैं, आप इंसुलिन ले लीजिए उससे आपको कंट्रोल में आ जाएगा। अभी आपको पता है रमेश भाई मैं कितना सोशल हूं, मैं कभी भी कुछ चीज छुपाता नहीं।
1: बिल्कुल
0: ऐसे कई उपाय हैं, कई तरीके हैं जिससे आप डायबिटीज को हैंडल कर सकते हैं, और ऐसा हैंडल करना है कि वो सिर्फ ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बैलेंस ना करे, वो जाकर के पैनक्रियास को वो जगाए, उठो चलो काम करो, और तुम इतना इंसुलिन बना करके ब्लड में डालो कि जो ग्लूकोज आया है, जो भोजन करने के बाद में आया है, तो उसको काउंटर कर सके। ठीक है, तो सबसे प्रथम मैं कोई किताब लेकर के नहीं बैठा हूं, जो जो मुझे याद आएगा मैं बता देना। यदि कोई 20 मिलीलीटर आंवले का रस, आंवले का जूस, कई कंपनियां हैं, कंपनियां नाम नहीं लूंगा, कई कंपनियां जो प्रोसेस करके बढ़िया सा बनाते हैं वो आप प्रिजर्व कर सकते हैं, 6 महीना साल भर तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। यदि सवेरे खाली पेट में 20 मिलीलीटर आंवले का रस लेकर के, या फ्रेश भी निकाल सकते हैं, उसमें आधा टीस्पून, टीस्पून को टेबलस्पून से मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, आधा टीस्पून आप हल्दी का पाउडर उसमें डाल करके पिएंगे और लगभग 40 मिनट उसके ऊपर कुछ भी नहीं लेते। अगर बहुत जरूरी है तो आप एक घूंट दो घूंट गर्म पानी पी सकते हैं, नहीं पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है बहुत जबरदस्त काम करेगा, यकीन मानिए मैंने खुद किया है, मैंने किसी की जगह टाइप 1 से टाइप 2 पे लेके आया हूं सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर। इसके बाद में यदि अभी कोई ज्वाइन किए हैं और लिख रहे हैं, इसके बाद में जामुन की गुठली का पाउडर, ऐसा कहते हैं आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जब जामुन का सीजन आता है ना तो सभी ने खूब अच्छे से दिल भर के जामुन खाना चाहिए। ये जामुन खाते हैं तो ये मात्र टॉनिक नहीं लेकिन एक दवाई का काम करता है पैनक्रियास के लिए, साल भर आपका पैनक्रियास एकदम बढ़िया कंडीशन में रहेगा। मैं कैमरा पे बोल रहा हूं, ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जामुन खूब खाना चाहिए, और यदि किसी को डायबिटीज हो ही गया है, ठीक है, तो वो एक काम कर सकता है। यदि देखो हजारों में एक आधा कोई होगा जिसको के आंवले से तकलीफ हो सकती है, नहीं तो आंवला इतनी बढ़िया औषधि है, इतना बढ़िया ड्रग है, हजारों हजारों या लाख तक में भी किसी को तकलीफ नहीं होती। आंवला के साथ में आप दूध भी ले सकते हैं, इतना बढ़िया ये औषधि है। अभी उसके डिटेल में नहीं जाते हैं हम, वापस से डायबिटीज पे आ जाते हैं। तो जामुन की, अगर किसी को आंवले से शायद साइकोलॉजिकली भी यदि उन्हें कोई तकलीफ है, अरे मैं आंवले का ले लूंगा तो वो खट्टा होता है उससे मुझे तकलीफ हो जाएगी, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए। जामुन की गुठली का पाउडर किसी भी आयुर्वेद की दुकान में मिलता है, बड़ा आसानी से मिलता है। नीम का पाउडर बड़े आसानी से मिलता है किसी भी आयुर्वेद की दुकान में। अभी आपको क्या करना है, कई कंपनियां करेले का जूस बनाती है और वो बढ़िया प्रोसेस करके उसको अच्छी बॉटल में पैक करके और उसको वो लोग बेचते हैं, वो आप ला करके फ्रिज में रख सकते हैं या उसको अच्छी तरह से ठंडी जगह में, कूल प्लेस में आप रख सकते हैं। लगभग 20 मिलीलीटर आपने करेले का जूस ले लिया, उसमें 1 टीस्पून, फिर से बोल रहा हूं टीस्पून और टेबलस्पून के अंतर को समझ लेना, उसको कंफ्यूज नहीं करना, 1 टीस्पून भर के अपने जामुन की गुठली का पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून आपने नीम का पाउडर डाल दिया, उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया, सवेरे खाली पेट आपने पी लिया, वही 40-45 मिनट आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लेना। आप देखिएगा ये दवाई जो है ना, ये अभी क्योंकि आपने कुछ खाया पिया नहीं है तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है कि भाई शरीर में तो इतना मिठाई खा लिया या नाश्ता कर लिया या भोजन कर लिया अब जरूर मेरा शुगर बढ़ेगा तो उसको काउंटर करने के लिए मुझे ये औषधि ले, नहीं वो वैसी बात है ही नहीं। या तो अभी आप ये खाली पेट में ले रहे तो ये दवाई क्या करेगा, ये औषधि जाकर के आपके पैनक्रियास को ठीक करने का प्रक्रिया करेगा, पैनक्रियास को ठीक करने की का वो इलाज करेगा, और फिर बाद में जो पैनक्रियास काफी समय से पूरा फंक्शन नहीं कर रहा था वो उस पैनक्रियास को धीरे धीरे धक्का मार के वो लेकर आएगा उस लेवल पे कि भाई इंसुलिन बना, चलो अभी इंसुलिन बना करके ब्लड में रिलीज करो। इसमें मेथी दाना भी बहुत अच्छा काम करता है। आमतौर पे मेथी को डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, आप रात में उसको 1 टेबल स्पून भर के, अगर मिट्टी का कोई बर्तन है तो ठीक है, नहीं है तो स्टील स्टेनलेस स्टील के बर्तन में आप उसको डाल दीजिए, पूरा भर दीजिए पानी से, उसको छोड़ दीजिए, सवेरे उस पानी को पी लेना है जिसमें उसको भिगाया था, और वो मेथी को खाली पेट में खाना। ऐसे बहुत सारे उपाय, बहुत सारे उपाय हैं जो के डायरेक्टली जाकर के पैनक्रियास को वो कंपेल करते हैं, पैनक्रियास को वो टॉप अप करते हैं कि भाई तुम ठीक से काम करो। और भी कई तरीके हैं, अगर मुझे याद आएगा तो हम बताते जाएंगे। इसके अलावा अब हम जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था ना, साइकोन्यूरोबिक, तो मैंने तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
1: बिल्कुल,
0: किसी दिन हम एक एपिसोड करेंगे जिसके अंदर हम सारे द एनाटॉमी ऑफ फिजिकल बॉडी एंड एनाटॉमी ऑफ सटल बॉडी, ये दो को हम करेंगे, और जब कोई देखेगा उसको तो वो ताज्जुब करेगा कि ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में। मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, हमारे महर्षि लोग हैं, उन्होंने उस फॉर्मूला को बनाया, उस पढ़ाई को उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, और वो पढ़ाई आज विदेशों में भी हो रही है, और सौभाग्य से इंडिया में भी बहुत गिनी चुने यूनिवर्सिटीज में। और आई एम लकी इनफ कि जब इंडिया में आया था तो पहले पहले बैच में मैंने पीजी किया था, एंड मालिक की दुआ से, आप सबकी शुभकामनाओं से, काफी अच्छी पकड़ भी है उसमें। होता क्या है, फिर से बड़ा मैं थोड़ा सा सभी को बोलना चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुने जो कुछ भी अभी बोलने वाला हूं आगे। मैंने अपने किसी एक एपिसोड में आपको ये बताया था कि अमेरिका में एक सजा याफ्ता था, उसको मौत की सजा दी थी, तो उसको जिस दिन उसको फांसी देनी थी उस दिन उसको लैब में ले जाया गया, उसको कहा गया कि भाई तुमको फांसी के बदले में सांप से डसाएंगे, तो उस सांप की आवाज जो है टेप रिकॉर्डर पे सुनाई गई थी, और दो एकदम नई न्यू ब्रांड डेटॉल में डूबी हुई सुई से उसके हाथ में ऐसा टोचा किया गया और उसके मुंह से झाग निकलने लग गया था और वो मर गया। तो ये झाग आया कहां से, ये सांप का जहर उसके शरीर में आया कहां से, उसका जो बिलीफ सिस्टम, उसकी जो भावनाएं अंदर थी, वो बिलीफ सिस्टम, वो भावनाओं ने जाकर के जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो उसका हार्मोनल सिस्टम है, उसको वो ऑर्डर दिया, और वो एंड हार्मोनल सिस्टम ने जो है वो जहर बना करके सारे शरीर में कुछ मिनटों के अंदर फैला दिया और वो मर गया। अगर ये हार्मोनल सिस्टम सांप का जहर बना सकता है तो ये दवाई भी बना सकता है, ये गुड हार्मोन्स भी बना सकता है, ये मेडिसिनल हार्मोन्स भी बना सकता है। द ओनली थिंग इज कि हमें वो प्रक्रिया पता नहीं है कि हम कैसे करें। उसके लिए आपको सॉरी बट ट्रुथ है कि हमारे जैसे लोगों से कांटेक्ट में आना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले आपकी मर्जी रहेगी, आपको अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल को शेयर करना पड़ेगा, आपके जो संस्कार है ना उसको आप बताएं ना बताएं, लेकिन मैं तो जाकर के उसको निकाल करके लेके आऊंगा और आपको वहां से ठीक करूंगा। अगर आपको परमानेंट ठीक करने की इच्छा है तो, और अगर आप कंफर्टेबल हैं, अरे गोली खाओ पानी पियो और चलो अपने काम पे लग जाओ, बस ऐसे करते रहो, फिर क्या होता है, जितने क्रॉनिक डायबिटिक केसेस हो जाते हैं ना, तो जब हमारे पास आते बोलते हैं भाई 12 साल हो गए 20 साल हो गए, तो हम बोलते हैं इमीडिएटली जाकर के ईसीजी करा क्यों, क्योंकि इसके दवाई के साइड इफेक्ट जो है ना वो हार्ट के ऊपर पड़ता है, हार्ट का फंक्शनिंग लो होते जाता है, और धीरे धीरे करके ज्यादा ज्यादा हार्ट डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट से उनको झेलना पड़ता है। तो यदि आपको इंटरेस्ट है, आपको आप कंफर्टेबल हैं दवाई खा रहे हैं या इंसुलिन शॉट्स ले रहे हैं, आपकी मर्जी, यदि आपको ऐसा लगता है कब तक मैं इस दवाई का गुलाम रहूं, कब तक ये दवाइयां साथ में लिए लिए घूमता रहूं सब जगह और लोगों को बोलूं कि भाई मैं डायबिटिक हूं प्लीज मेरे खाने में ये चीजें नहीं डालना, आपको खुद से खुद को तकलीफ नहीं होती है? मैं सबसे पूछना, जो जो ये वीडियो को देखेंगे ना, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, भाई साहब आपको तकलीफ नहीं होती है, इतने साल से आप ये नहीं खाते, दिल हो रहा है, दिल हो रहा है, सब लोग बैठे हैं साथ में खाने के लिए, मिठाई उठाई रखी है, दिल हो रहा है, देख रहे हैं मिठाई को, लेकिन कोस रहे हैं अपने आप को, क्या करूं मैं, एक टुकड़ा उठा करके मुंह में नहीं डाल सकता। क्या नई तकलीफ होती है?

0: मेडिकल शास्त्र, आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जानने की कोशिश कीजिए हु इज द गॉडफादर ऑफ मेडिकल वर्ल्ड। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या कई लोग जानते भी होंगे, महर्षि सुश्रुत एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, ये सभी मेडिकल फील्ड ये महर्षि सुश्रुत को अपना गॉडफादर मानते हैं। ऐसे और भी महर्षि होकर के गए हैं, महर्षि चरक थे, महर्षि चवन थे, महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, उस जमाने में बड़े कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से वो ऑपरेशन भी कर लेते थे, प्लास्टिक सर्जरी कर लेते थे, कॉस्मेटिक सर्जरी कर लेते थे, वो इतना एडवांस जमाना था। और वो ध्यान से सुनिएगा, वो परमानेंट इलाज करते थे किसी का। ऐसी कोई बीमारी आयुर्वेद में लिखी ही नहीं है जिसका के जिंदगी भर इलाज करना पड़ेगा। खासतौर से तीन बीमारियां तो ऐसी हैं, ब्लड प्रेशर है और थायराइड है, डायबिटीज है, या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है। ये बीमारियां ऐसी है, आप गए गिराक मिल गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, बस दवाई लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं फिर से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, बहुत से डॉक्टर भी देखेंगे इसको, मन ही मन कोसेंगे ये क्या अपलोड करता है। तो जो ये शरीर है ना, शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स है। हमको भी मेडिकल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो सब्जेक्ट था, लेकिन उससे पहले हमको कर्म फिलोसफी सब्जेक्ट था, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता था कि किस कर्म की कौन सी सजा मिलती है, और वो भी बीमारी के रूप में। तो उसको ठीक करने के लिए, हमने एक टॉपिक के बारे में कहा था, दो टॉपिक के ऊपर से बहुत ज्यादा हम जाकर के प्रेजेंटेशन देते हैं, एक है इनविजिबल डॉक्टर, दूसरा है मेडिटेशन एज मेडिसिन। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रूप में ही बता रहा हूं, फिर किसी दिन इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, तो आप इसके वजन पे आइए, उस शब्दों के वजन पे आइए कि मेडिटेशन एंड मेडिसिन, तब इन दोनों का कंपैरिजन क्या है। सच में किसी दिन एक एपिसोड करेंगे, तब आपका दिल मतलब गदगद हो जाएगा कि अरे यार ये क्या है। अब जो मेडिटेशन शब्द है ना, ये ओरिजिनल इंग्लिश शब्द नहीं है, ये लैटिन अमेरिकन शब्द है, तो वहां से लिया गया है। अब इस मेडिटेशन का उल्लेख मेडिकल फील्ड में क्या है और इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है, ये हम उसी दिन उस एपिसोड में बताएंगे आपको। बस हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी यानी एक एक सिस्टम के बारे में स्टडी करना, और फिर उस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बड़े डिटेल में स्टडी करना, दैट इज फिजियोलॉजी। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिस्टम को हम ठीक करना चाह रहे हैं तो हमें एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि यहां से जो हार्मोनल सिस्टम से जो दवाई बन करके निकलेगी ना, तो ये बराबर उस चैनल से होते हुए उस पार्ट में जाए और उस पार्ट का इलाज करे, उस पार्ट को ठीक करे, उस ग्रंथि को, उस ऑर्गन को ठीक करे, और फिर उसको सुचारू रूप से काम कराने शुरू कर दे, और फिर बाद में आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़े। अभी हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो ये पांच उंगलियां हैं, ठीक है, इट इज टेस्टेड ट्राइड एंड प्रोवन। आप किसी भी तरह की शंका नहीं मन में लेने लेकर के आना, सवाल जवाब नहीं करना, जो बोल रहे हैं वैसा का वैसा स्वीकार करना। ये है अग्नि, ये है वायु, ये है आकाश तत्व, ये है पृथ्वी तत्व, और ये है जल तत्व। स्पेशली आज डायबिटीज की बात चल रही है, तो ये मुद्रा को पृथ्वी मुद्रा कहते हैं, और यदि पृथ्वी तत्व को अंगूठे के नीचे रख करके और हम अंगूठे से उसको प्रेस करते हैं तो ये सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा बन जाती है। टाइम लीजिए समझने में, जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। ये है पृथ्वी तत्व, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं। ये रिंग फिंगर को जब हम अग्नि से टच करेंगे तो पृथ्वी तत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि वजन बहुत कम है, बॉडी मास इंडेक्स आपका बहुत लो लेवल पे है, तो
1: जी
0: ये पृथ्वी मुद्रा में करेंगे। और यदि आपके बॉडी की बनावट थोड़ी होलसेल टाइप की है, काफी ओवरवेट है, तो इस अग्नि मुद्रा में आप करेंगे। दोनों हाथों से लगाएंगे, अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा भी कहते हैं इसको। इसमें मुझे अभी अभी याद आ रहा है, किसी भी योगाचार्य से आप पूछ लेना मंडूकासन कैसे करते हैं। मंडूकासन बहुत बढ़िया काम करता है, इसमें पैनक्रियाज को पैनक्रियाज
1: एक्सलेंट
0: को ठीक करने में, और कपालभाति प्राणायाम बहुत बढ़िया काम करता है। इनफैक्ट कपालभाति प्राणायाम का तो हम किसी एपिसोड में बताएंगे, उसके तो इतने उपाय हैं, इतने फायदे हैं जिसका हिसाब। अभी ये पृथ्वी मुद्रा या फिर आपकी ये अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा या फिर पृथ्वी
1: जी
0: मुद्रा में इसको घुटने के ऊपर हाथ ऐसे रखेंगे। उसके बाद में आप एक काम करेंगे, जैसा कि दर्शकों ने सुना होगा, हमारे यहाँ पर हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, राजयोग मेडिटेशन। व्हाट इज
1: जी
0: राजयोग मेडिटेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सोल यूनाइट्स विद द सुप्रीम स्पिरिट। अर्थात एक आत्मा परमात्मा के कांटेक्ट में पहुंचती है, उसका कांटेक्ट बनता है, और जो परमात्मा या सुप्रीम डॉक्टर ओशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एनर्जीज है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे अंदर परकुलेट होने लगती है, हमारे अंदर आने लगती है, और हमारे अंदर एक एटीट्यूडनल एलिवेशन आता है। हमारे अंदर
1: अच्छा
0: संस्कारों का जो है पॉजिटिविटी करण होने लगता है, और जो हमारे नेगेटिव संस्कार थे जिसके कारण ये बीमारी हमारे को लगी है, वो बीमारी को धीरे धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे वो संस्कार आपका कम होगा, वो सेल्फिशनेस, वो कनिंगनेस, वो जो एक अंदर में एक पर्सनैलिटी बन गई है कि मेरा भला हो, बाकी किसी का हो ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें से निकल करके आप सोशल बन जाएंगे, उसमें से आगे बढ़ते हुए अल्ट्रुइस्ट बन जाएंगे। आप देखना, मेरे नंबर्स हैं नीचे, आपको मिलेंगे, आप फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं हमने इतने महीने तक ये मेडिटेशन किया था, कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है मेरा नहीं है, ये तो सुप्रीम डॉक्टर का है, ये तो महर्षि लोगों ने लिखे बनाए हुए हैं। तो इस मुद्रा में या इस मुद्रा में आपने ऐसे रख करके अपने को सोल कॉन्शियसनेस में लाना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकाल करके सोल कॉन्शियसनेस में लाना है। यदि आपको ऐसा लगे कि यार मैं कैसे करूं, तो आपके घर के आसपास में कहीं पर भी राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के 7 डेज कोर्स कर लीजिए, आपको वो प्रक्रिया सीखने में मिल जाएगी कि हाउ डू आई कम इन टू सोल कॉन्शियसनेस एंड हाउ डू आई मेक अ लिंक विद दी सुप्रीम गॉडफादर या सुप्रीम डॉक्टर। ठीक है, जब ये कनेक्शन बन
1: जी
0: जाता है तब आप अपने अंदर ऐसे संकल्पों की उत्पत्ति कीजिए कि इस समय मैं सुप्रीम डॉक्टर के कनेक्शन से एक संतुष्ट आत्मा बन चुका।
1: जी
0: इसका
1: जी
0: मतलब ये नहीं है कि आप एम्बिशियस नहीं रहें, जरूर एम्बिशियस होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन जो प्राप्ति हो गई उसको प्रभु प्रसाद समझ करके और बड़े दिल से उसको स्वीकार करना है कि इससे कईयों का भला हो। ये जो मुझे प्रसाद मिला है, ये जो मुझे संस्कार मिला है, ये सबके जन कल्याण के इस्तेमाल में आए और बाद में मेरे इस्तेमाल में आए। बस आप
1: जी
0: संतुष्टता को धारण कीजिए, संतुष्ट अंदर से अपने आप को बनाइए, किसी भी तरह की किसी के साथ में रीस नहीं करनी, जेलसी नहीं करना है, अरे वो आगे बढ़ रहा है उसको कैसे पीछे पीछे, ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपका डायबिटीज धीरे धीरे धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ को भी देखना पड़ता है, तो वो भी देना पड़ता है कि एक कलर जो है अभी ये जो संतुष्टता आप ले रहे हैं सुप्रीम गॉड फादर से, या फिर डिवाइन जॉय, डिवाइन सुख, डिवाइन जॉय वो सही शब्द है इंग्लिश का, डिवाइन जॉय इज सेम एज कंटेंटमेंट, यानी संतुष्टता एक आध्यात्मिक सुख का दूसरा मिलता जुलता शब्द है। तो पहली चीज है अपने आप को संतुष्ट बनाइए कि मेरे पास जो कुछ भी है ना पर्याप्त है, ईश्वर तूने जो कुछ भी दिया ना मैं उसमें बहुत खुश हूं। अरे मेरे से कितने हैं जिन्हें पास में इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, और मैं तो कितनों से बेहतर हूं, जीवन में आगे बढ़ना भी है, तो मुझे अच्छे कर्म करके, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करके, उस ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करके धीरे धीरे धीरे धीरे अपने आप बढ़ता रहूंगा। जब मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं है तो अपने आप आगे बढ़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है, दूसरों को पीछे करके नहीं, नजरअंदाज करके नहीं। माँ बाप उसी मीगर कंडीशंस में पड़े हैं, हम फाइव स्टार लेवल की जिंदगी जी रहे हैं, घर का ऐसी जिंदगी के ऊपर चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों के, अपने माँ बाप इतने मतलब साधारण जीवन जी रहे हैं और हम क्या, कितनी मतलब शर्म आनी चाहिए किसी को। अपने को पहले संतुष्ट कीजिए, वो कैसे करेंगे, इस मुद्रा में आपने मेडिटेशन करना है। ये मुद्रा लगाई, क्योंकि मेरा इतना ही दिखाई दे रहा है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखाई सकता हूं, उसको घुटने के ऊपर रखना है आपको, ये मुद्रा लगा करके ऐसे ऊपर की ओर करके घुटने के ऊपर रखना है, और बड़ा मैं एकदम मन को शांत कर, अभी आप डाइनिंग टेबल पे पहुंचे हैं, आपने मुद्रा लगाई, इसको पृथ्वी मुद्रा कहते हैं, पृथ्वी मुद्रा में आपने इमर्ज कर लिया कि परमपिता परमात्मा या सुप्रीम डॉक्टर मेरे सर के 3 फीट ऊपर आ चुके हैं, क्या बढ़िया ज्योतिर्बिंदी दिखाई दे रहे, उस ज्योतिर्बिंदी में से गोल्डन येलो कलर निकलता चला रहा है, अब फाउंटेन ऑफ लाइफ या सर के मध्य से अंदर प्रवेश करते ही धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये नाभि चक्र तक पहुंचता है, और नाभि चक्र जो है वो पाचन तंत्र का मुख्य केंद्र है, वो चक्र है जो कि पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है। अभी ये इसका और डिटेल जो है ना ये मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन मैं हम वो एपिसोड करेंगे, एनाटॉमी ऑफ एंड फिजियोलॉजी ऑफ फिजिकल बॉडी एंड सटल बॉडी, ठीक है उस दिन हम बताएंगे, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि वो रोशनी धीरे धीरे धीरे धीरे नाभि चक्र तक आई, नाभि चक्र से निकल करके लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे पाचन तंत्र को इस समय संतुष्टता की इतनी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, भोजन सामने आ गया, कोई कंप्लेन नहीं, जो मिला है ईश्वर मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि यार क्या बढ़िया दाल रोटी दी, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के आइए, ये मेरी गारंटी है आपका डायबिटीज, इसके साथ साथ में थोड़ी दवाइयां भी लेनी पड़ेगी कुछ समय के लिए, आपका डायबिटीज जरूर ठीक होगा।
1: यश कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया, आज डायबिटीज रिवर्सल पर आपने काफी अच्छा जानकारी भी दिया और किस तरह से हम अपने थॉट प्रोसेस के माध्यम से भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो नेचुरल मेडिसिन हैं वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं और एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकते हैं, और बहुत ही अच्छा स्वभाव में विचारों में चेंज करने के लिए आपने कहा कि भाई सबका भला हो बाद में मेरा भला हो, इस भाव से अगर आप जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर पे आप डायबिटीज से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया यश कुमार जी अपनी भावनाओं को विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी पहचानो क्या खेला है? इस खेल में एक खिलाड़ी अपने बारे में एक पहेली सुनाता है और बाकी सबको पहेली को बूझना पड़ता है। आज हमारी मीना और उसके दोस्त भी यही खेल खेल रहे हैं। चलो हम भी इस खेल का मजा लेते हैं।
1: तो पहचानो मैं क्या हूँ? बाहर से सख्त और रेशीला, अंदर से नरम और रसीला, होता इसके अंदर जल। बोलो मैं हूँ कौन सा फल? तुम भी सोचो रानो।
2: मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मीना।
3: हाँ, मुझे बता तुम क्या हो मीना। तुम हो नारियल, बाहर से सख्त और अंदर से नरम और पानी भरा।
1: ठीक पहचाना गोलू, अब रानो की बारी।
2: नहीं, मैं कैसे खेलूं? तुम दोनों तो मुझे झट से पहचान जाओगे।
1: अरे रानो, तुम कोशिश तो करो।
2: पर मीना, मुझे तो

0: चलो मीना, रानो, वापस क्लास में चलते हैं।
1: और क्लास में पहुंचकर,
2: अच्छा तो बच्चों ये बताओ, तुम सबको कहानी सुनना और सुनाना अच्छा लगता है?
3: जी।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल क्लास में तुम सब बारी बारी से एक एक कहानी सुनाओगे। और तुम सबकी कहानियाँ सुनने के लिए आने वाली हैं शिक्षा अधिकारी महोदया जी। उन्हें जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी लगेगी
0: उसे इनाम मिलेगा, है ना बहन जी?
2: बिल्कुल सही कहा मीना। अरे हाँ, कल तुम सब अपने माता पिता को भी बुला सकते हो ढेर सारी कहानियाँ सुनने।
1: और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो सब बच्चे आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो कौन सी कहानी सुनाएंगे, लेकिन रानो बिल्कुल चुपचाप चले जा रही थी।
0: क्या हुआ रानो, क्या सोच रही हो?
4: गोलू, मैं ये सोच रही थी कि कल हमें सबके सामने कहानी सुनानी होगी ना।
0: हाँ सो तो है,
4: तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मीना, इतने लोगों के सामने मेरे तो पैर कांपने लगते हैं।
0: पर रानो, कहानी तो हम सभी को सुनानी होगी, तुम अकेली थोड़ी होगी।
4: और अगर मेरी कहानी किसी को भी अच्छी नहीं लगी तो?
0: क्यों रानो, मुझे तो तुम्हारी कहानियाँ बहुत पसंद है।
5: बहुत पसंद है रानो, अकलमंद है।
2: अरे गोलू,
0: बहन जी आप,
2: मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रही थी, चलो सब साथ में चलते हैं।
0: जी बहन जी।
1: साथ में चलते चलते जब सब लाला की दुकान के सामने से गुजरे तो लाला जी ने अपने बेटे गोलू को आवाज लगाई और गोलू भाग कर अपने पिताजी के पास चला गया।
0: पिताजी।
2: नमस्ते लाला जी।
6: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते लाला जी।
0: नमस्ते लाला जी।
6: अरे मीना, रानो, खुश रहो खुश रहो।
2: लाला जी, गोलू आपको एक खास न्योता देने वाला है, जरूर आइएगा, कल क्लास में सभी बच्चे कहानियाँ सुना रहे हैं।
0: हाँ पिताजी, शिक्षा अधिकारी महोदया भी आ रही हैं, उन्हें जिसकी कहानी सबसे अच्छी लगेगी उसे इनाम भी मिलेगा।
6: अरे फिर तो तुम्हारा इनाम पक्का है गोलू बेटा, तुम्हारी जैसी कहानियाँ और कौन सुना सकता है।
2: मीना और रानू की कहानियाँ भी कुछ कम नहीं है लाला जी।
7: अरे बहन जी, लड़कियाँ भी भला लड़कों की बराबरी कर सकती हैं क्या? जी मैं तो कहता हूँ कि इनके लिए कोई सिलाई बुनाई वाली प्रतियोगिता रखिए, लगे हाथ कुछ सीख भी लेंगी।
2: लाला जी, बुद्धि हो या बल, सही मौके और आत्मविश्वास से लड़कियाँ भी लड़कों जितना ही आगे बढ़ सकती हैं।
7: खैर, कल अपने बेटे को इनाम लेते हुए देखने जरूर आऊंगा।
2: जी लाला जी, देखते हैं क्या होता है।
5: देखते हैं क्या होता है, कौन हंसता और कौन रोता है।
4: बहन जी, मैंने इतने लोगों के सामने कभी नहीं बोला है, कल कैसे बोलूंगी?
2: रानो, इरादे मजबूत होने चाहिए, लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तुम खुद भी तो रोज ही देखती हो, क्या हमारी क्लास में लड़कियां लड़कों से किसी बात में पीछे हैं?
4: नहीं बहन जी।
0: रानो, मैं भी तो वहाँ तुम्हारे साथ ही रहूँगी ना।
1: और अगले दिन कहानी सुनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। मीना और गोलू की कहानियों के बाद आई रानो की बारी।
2: चलो रानो, अब तुम्हारी बारी, शर्माओ मत।
7: बहन जी, लड़कियाँ तो शर्माती ही हैं।
2: लाला जी,

0: तुमने बेईमानी से अपनी शर्त पूरी की है। हमारे महल के दिए की रोशनी से तुम्हारे शरीर को गर्मी मिल रही थी। ब्राह्मण उदास होके वहाँ से चला गया। बीरबल को ये देख के बहुत बुरा लगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने बाकी मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बीरबल अपने घर में खिचड़ी पका रहा है। लेकिन जब अगले कई दिनों तक बीरबल नहीं आया तो अकबर उसके घर पहुंचा और वहां जाके देखा कि बीरबल ने जमीन पे एक चूल्हा जलाया हुआ है और उसके ठीक ऊपर छत पर एक हांडी लटकाई हुई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा,
1: ये तुम क्या कर रहे हो बीरबल?
0: बीरबल बोला, खिचड़ी पका रहा हूँ महाराज। अकबर ने कहा,
1: अरे भाई आग से इतने ऊपर खिचड़ी कैसे पकेगी?
0: बीरबल ने कहा, अगर वो ब्राह्मण इतने दूर पड़े दिए की रोशनी से सर्दी को सह सकता है तो ये खिचड़ी चूल्हे के इतने ऊपर रहकर भी पक सकती है। बादशाह अकबर को बात समझ आई और उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाकर 100 सोने की अशर्फियां इनाम में दे दी।
2: और अब परिणामों की घोषणा करेंगी माननीय शिक्षा अधिकारी महोदया।
3: सभी बच्चों और उनके आदरणीय माता पिता को मेरी प्यार भरी नमस्ते। वैसे तो सभी कहानियों में कुछ ना कुछ खास था, हर एक का अपना मजा था, लेकिन आज की विजेता है रानो। कितने जोश और आत्मविश्वास से उसने अपनी कहानी सुनाई, इसलिए पहला इनाम मिलता है रानो को।
4: है? पहला इनाम लड़की को?
2: मैंने आपसे कहा था ना लाला जी, सही मौका पाने पर लड़कियां किसी को भी पीछे छोड़ सकती हैं।
5: रानो, तुम्हारी कहानी सचमुच बहुत मजेदार थी। और लाला जी, आपको कैसी लगी?
6: अब भाई मीना, ये तो मानना पड़ेगा कि रानो की कहानी सचमुच बढ़िया थी। रानो बेटी, एक दो कहानियां गोलू को भी सुना दिया करो।
4: आज मैंने देख लिया, लड़कियां भी स्कूल से बहुत कुछ सीखकर आगे निकल सकती हैं।
7: तो देखा बच्चों, ये सोच ही गलत है कि लड़कियों के स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। अगर रानो अपने आत्मविश्वास से स्कूल की प्रतियोगिता जीत सकती है तो हर लड़की स्कूल जाकर मन चाहे इरादे पूरे कर सकती है। चलो अब देखें कि आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
5: चाहे घर की बात हो या फिर चाहे वो हो स्कूल,
8: लड़का लड़की एक बराबर, ये मत जाना भूल।
7: अरे वाह, क्या कविता बनाई मीना और मिट्ठू ने। अब एक गाना भी हो जाए।

0: गाना तो मजेदार था, अब बारी है खेलने की। मीना की बहन जी कक्षा में एक और मजेदार खेल खिला रही है, चलो हम भी साथ साथ इस खेल का मजा लेते हैं।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। मैं एक अक्षर बताऊंगी और उस अक्षर से तुम सबको एक व्यक्ति, जगह, जानवर और चीज का नाम बताना है। तो शुरू करें?
2: जी।
1: तो आज का अक्षर है र।
3: र से व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: शाबाश रोशनी। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे?
3: वो भारत के एक महान कवि थे।
4: भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन भी श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था।
1: बिल्कुल ठीक कहा सुमी। अब र से जगह का नाम कौन बताएगा?
5: रांची।
1: शाबाश मीना। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। और र से जानवर का नाम बताओ?
6: र से होता है रीछ।
1: शाबाश सोमा। कुछ रीछ जिसे हम भालू भी कहते हैं 6 फुट तक लंबे होते हैं। अब र से वस्तु कौन बताएगा?
7: बहन जी र से रेशम।
1: शाबाश गोलू। और रेशम क्या है?
8: बहन जी रेशम एक प्रकार का धागा होता है जिससे बहुत मुलायम कपड़े बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल सही जवाब मीना। और रेशम कहाँ से प्राप्त होता है?
9: रेशम के कीड़ों से।
1: बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, पहला पाठ, ईंटों से बनी इमारत। पृष्ठ 1 बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पीआर नाम के राजमिस्त्रियों को यह काम पूरा करना था। वो स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। चित्र देखें, यहां पर मुर्शीद कुली खान के पुराने मकबरे का चित्र बना है। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। यहां पर मकबरे के एक हिस्से का चित्र है और दाहिनी तरफ है पैटर्न 1 और पैटर्न 2, पृष्ठ 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4 और पैटर्न 5। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर 3 पैटर्न दिखाए गए हैं। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? रिक्त स्थान, क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? रिक्त स्थान। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता था। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। इसी पृष्ठ पर निचले हिस्से में एक तरफ बच्चों का चित्र है और सबसे नीचे फर्श के अलग अलग पैटर्नों का चित्र बना है। पृष्ठ 3, इस पृष्ठ पर कुल 11 पैटर्नों के चित्र बने हैं, जो इस प्रकार हैं, पैटर्न क, पैटर्न ख, पैटर्न ग, पैटर्न घ, पैटर्न ण, पैटर्न च, पैटर्न छ, पैटर्न ज, पैटर्न झ, पैटर्न य और पैटर्न ट। अब तुम इन पैटर्न को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। पृष्ठ 4, ईंट का चित्र कैसे बनाएं? यहां एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतहें नजर आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नजर आ रही हैं। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर की तरफ दाहिनी ओर 2 ईंटों के चित्र बने हैं। एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? रिक्त स्थान, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? रिक्त स्थान। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती हैं? सही का निशान लगाओ। यहां पर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और अंडाकार कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? सही का निशान लगाओ। यहां पर कुछ त्रिभुज चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नजर आएं। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नजर आएं? इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे की तरफ दाहिनी ओर एक ज्योमेट्री बॉक्स का चित्र बना है। पृष्ठ 5, ये दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ मुनिया की दीवार और बाईं तरफ जैनब की दीवार है। यहां पर जैनब और मुनिया द्वारा बनाई गई दीवारें दर्शाई गई हैं। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रख सकते हैं, जैसा कि मुनिया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी, क्यों? ऐसी दीवारें ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों, दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहां ईंटों के तीन अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? यहां पर ईंटों के तीन पैटर्न का चित्र है। अब हर दीवार की फोटो का मिलान यहां दिए गए सही चित्र से करो। इस पृष्ठ के सबसे नीचे दीवारों के तीन पैटर्न का चित्र है। पृष्ठ 6, झरोखे से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था, उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। यहां पर जाली के विभिन्न पैटर्नों का चित्र बना है। यहां पर दिए गए दो चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं? पृष्ठ 7, ये एक और सुंदर जाली का चित्र है। यहां पर एक जाली का चित्र बना है। यहां दी गई दीवार के कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखा देख सकते हो? यहां पर स्कूल के एक झरोखे का चित्र बना है। यहां दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। इस पृष्ठ पर सबसे अंतिम भाग में एक दीवार का चित्र बना है। पृष्ठ 8, ये जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। यहां पर पुस्तकालय की एक जाली का चित्र है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। यहां पर ईंटों के कोनों से बना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। यहां पर वृक्ष के आसपास ईंटों से बनी क्यारी का चित्र है। ईंटें त्रिभुज के आकार में दिखाई पड़ रही हैं। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रही है? ये चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में बाईं ओर एक मेहराब का चित्र बना है। पृष्ठ 9, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तुमने और एक पुल के ऊपर बने मेहराब का चित्र है, एक विशेष मेहराब। ये चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। यहां पर एक और मेहराब का चित्र है। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, ये पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो। पृष्ठ 10, जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। यहां पर ईंटों का एक चित्र बना है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नजर आ रही हैं? क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं? पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसे मापो। क, उसकी लंबाई कितनी है, रिक्त स्थान। ख, उसकी चौड़ाई कितनी है, रिक्त स्थान। और ग, उसकी ऊंचाई कितनी है, रिक्त स्थान। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी, रिक्त स्थान। ईंटें ही ईंटें, भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये चिमनी कितनी ऊंची होगी? क: लगभग 5 मीटर। ख: लगभग 15 मीटर। और ग: लगभग 50 मीटर। यहां पर एक चिमनी का चित्र दिया गया है जिसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 11। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वो ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। यहां पर धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार का चित्र है। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं। उन्हें ध्यान से देखो। सही क्रम यहां लिखो। रिक्त स्थान। चित्र क: यहां पर बनी हुई ईंटों का चित्र बना है। चित्र ख: यहां पर ईंटें बनाई जा रही हैं। चित्र ग: यहां पर मिट्टी को ईंट बनाने वाले सांचे में डाला जा रहा है। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं? चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। पृष्ठ 12। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी ये अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी है? इस संख्या को 100,000,000 कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 100,000 की संख्या कहां सुनी है। पता करो, इस चित्र को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। यहां पर ट्रकों के 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें

0: ईंटें लदी हुई दिखाई दे रही हैं। मन ही मन गणित, भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। पुरानी ईंटें 1200 रुपए प्रति 1000 ईंटें, ईटापुर की नई ईंटें 1800 रुपए प्रति 1000 ईंटें, ब्रिकाबाद की नई ईंटें 2000 रुपए प्रति 1000 ईंटें। भजन ने ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? रिक्त स्थान। अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? चींटा बोला,
1: इसे बिना लिखे करो।
0: इसी के साथ पहला पाठ ईंटों से बनी इमारत यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंगदो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: मेरी हॉबीज तो बहुत सारी है, जैसे कि डांसिंग, खेलना, कूदना, आर्ट करना। तुम्हारी हॉबीज क्या है?
7: मेरी हॉबीज ये है, मेरे को खाना बनाना पसंद है और बहुत सारी चीजें, जैसे पढ़ना पसंद हो गया मेरे को। शिवांशी, आपकी क्या चीजें पसंद है? आप
8: डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, अलग अलग चीजें बनाना और सबसे मेन खाना खाना, वो मेरी सबसे फेवरेट है।
7: आपको खाना खाना, मेरी खाना बनाना है।
9: क्या हो रही है बातें आपकी, इतनी सारी क्रिएटिव, कभी सुनाई दे रहा है खेलना, कभी आर्ट, कभी खाना बनाना, ये तो बड़ी सारी क्रिएटिव चीजें आप लोगों की हॉबीज हैं। तो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज बात करते हैं किसके बारे में?
10: हॉबीज के बारे में।
9: तो हॉबीज तो सब बच्चों की होती हैं, है ना? जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी कुछ ना कुछ जरूर पसंद होगा। आज हम हॉबीज के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे साथ कौन कौन है आज स्टूडियो में, अपने अपने नाम तो बता दीजिए।
11: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
12: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
13: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
14: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
15: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
16: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
9: ओके, तो सबसे पहले आप लोग सब लोग मुझे वो सबसे पसंदीदा हॉबीज बताओ, जो करने का आपको बहुत शौक है, जो खाली टाइम होता है तो आपको लगता है मैं यही करूँ।
12: खाना बनाना।
9: और
12: दूसरी ये है ड्राइंग करना।
9: खाना बनाना और ड्राइंग करना, ओके। हाँ मीक्षा,
17: मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है और पेंटिंग करना।
18: मेरे को पेंटिंग करना पसंद है और खेलना पसंद है।
16: दीदी, मुझे तो बहुत सारी चीजें पसंद है।
9: दो बताओ उनमें से।
16: लोगों को हंसाना और खाना बनाना।
9: हंसाने के लिए क्या करते हो, वो एक हॉबी हो सकती है ना?
16: जोक सुनाना।
9: हाँ, जोक सुनाना, पढ़ना, वो आपकी हॉबी हो सकती है, है ना? और राघव को क्या पसंद है?
19: आर्ट और डांसिंग।
9: और शिवांशी को?
8: डांस करना और खाना खाना।
9: और राघव क्या बोल रहे थे आप?
13: दीदी, मतलब है ना, जब आप फ्री होते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा सिंगिंग करते हैं।
9: सिंगिंग पसंद है आपको, ओके, वेरी नाइस। मजा आना और हॉबी, दोनों में क्या अंतर है?
13: दीदी, हॉबी टैलेंट होता है।
9: वेरी गुड।
13: मजा करना मतलब एक किस्म से मस्ती करना होता है।
9: हाँ, हॉबी आपका टैलेंट होता है। रेडियो मधुबन में सीख सकते हो आप लोग, किसी के पास जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो।
13: दीदी, मेरी एक और हॉबी है।
9: क्या?
13: पियानो बजाना।
9: हाँ, पियानो बजाना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज है। अच्छा, हॉबी होने के फायदे क्या होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? कुछ फायदा होता है, टैलेंट के बारे में पता चलता है?
13: दीदी, उससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। पहले जब पापा छोटे होते हैं तो पापा धीरे धीरे कम आर्ट करते, फिर पापा को अच्छे अच्छे आर्ट बनाना आता है, फिर पापा आर्टिस्ट बन जाते हैं।
9: क्रिएटिविटी बढ़ती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट।
8: और हमारी हॉबी पे अगर कोई कॉम्पिटिशन आता है स्कूल में तो उसमें हम अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर सकते
16: हैं। और अगर हम अपनी हॉबीज दूसरों को बताएं तो इससे हमें स्टेज पर जाने का मौका भी मिलता है।
9: राइट,
17: बिल्कुल। हमारे फ्रेंड्स हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।
9: सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स का, बहुत सारे फायदे हैं, है ना? हॉबीज के बहुत ढेर सारे फायदे हैं। तो जो भी हॉबी है उसको हमें थोड़े समय करना चाहिए कि उसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए?
13: लॉन्ग टाइम,
8: जिंदगी भर करना,
9: जिंदगी भर करना चाहिए, बिल्कुल। तो हॉबीज आप लोग दिन भर में टाइम निकालते हो, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, खेलते हो, तो हॉबी के लिए कहाँ टाइम बचता है आपके पास?
12: दीदी, हमारे तो स्कूल ही नहीं चल रहे।
9: जब स्कूल चल रहे होते हैं तब,
13: जब हम फ्री होते हैं तब हम थोड़ी आर्ट बनाते हैं।
12: और रात को नींद नहीं आती, मैं तो यही लेके बैठ जाती हूँ।
9: अमीक्षा क्या बोल रही थी?
17: और जो शाम को हम रेडियो आते हैं उसमें भी हम लोग अभी सीख सकते हैं।
9: ओके,
17: हमें कुछ सीखना होता है।
8: स्कूल में कई बार फ्री पीरियड मिल जाता है, उसमें भी कर लेते हैं हम।
9: और अनुष्का कब करती है हॉबीज अपनी? प्रैक्टिस?
18: जब टाइम मिलता है हम तो कर लेते हैं।
9: टाइम कब मिलता है आपको दिन में?
18: रात को
9: मिलता है, दिन में नहीं मिलता है। ओके
16: मैं तो स्कूल से घर आने के बाद पहले थोड़ी देर सिंगिंग करती हूँ, फिर डांसिंग करती हूँ, फिर बाद में होमवर्क।
9: अच्छा, होमवर्क बाद में?
16: हाँ।
9: ओके
16: क्योंकि तब होमवर्क कम होता है इसलिए।
9: अच्छा, होमवर्क कम होता है तब। ओके
8: दीदी, पहले हॉबीज जरूरी है, होमवर्क बाद में।
9: फिर होमवर्क रह गया तो अगले दिन क्या होगा? फिर
16: हम मैम को रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मैम
8: प्लीज।
9: हाँ, भाई होमवर्क भी करना है और हॉबीज भी, दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ना?
2: हाँ।
9: लेकिन करना दोनों है, ऐसा नहीं है कि होमवर्क छोड़ दिया जाए। अच्छा ये बताओ, हॉबीज को बेटर कैसे किया जाए? मतलब जो हमें पसंद है, जिसका हमें शौक है, उसको हम और अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप लोग अपने बारे में बताना कि उसके लिए, जैसे आप हॉबीज तो बहुत समय से है ना आपकी,
16: प्रैक्टिस करनी, जैसे सिंगिंग है तो रियाज करना चाहिए, डांसिंग है तो प्रैक्टिस करनी चाहिए डांस।
9: इस साल अपनी हॉबी को, डांसिंग को बेटर कैसे करोगे, कुछ ऐसा बताओ।
17: हम कहीं से सीख भी सकते हैं।
9: कहीं से सीख सकते हैं? ओके
16: साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं फन के साथ।
9: हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। हाँ। फन के साथ। ओके
2: दीदी, अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
9: अनुष्का का क्या लगता है?
18: उसमें कुछ नए स्टेप जोड़ दे तो वो और अच्छे बन जाते हैं।
9: हाँ, कितना अच्छा आइडिया है ना, उसमें नयापन लेके आना है ना। मान लो अब हम बना रहे हैं ड्राइंग, बहुत समय से सीनरी बना रहे हैं, तो कुछ उसमें कुछ और ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारी स्किल को और बढ़ाए। आजकल यूट्यूब पे भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है ना, सिखाते हैं लोग कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो। जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं कि और कैसे आप शेडिंग कर सकते हो, तो अपनी ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हो कि इसमें मैं और बेटर हुई या नहीं, और बेटर होने के लिए कुछ स्किल सीख सकते हो। और क्या लगता है मीक्षा को, कैसे बेटर हुआ जाए अपनी हॉबी में, क्या कर सकते हैं आप लोगों को, किसी और को कुछ लगता है?
8: ट्रेडिशनली जो पहले करा जाता था उनको वापस करने की कोशिश, जैसे अब जो मॉडर्न है वो तो बाय स्टैंड है ना, जो ट्रेडिशनल है वो बेसिक है, अगर बेसिक ही आ जाएगा तो फिर आगे का तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर
17: मेरे माइंड में एक ही चीज रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या करता है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, हमें नहीं करना है, गुस्सा हो जाता है।
9: ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उसको छोड़ नहीं देना, अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो करते रहना है। और आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग। तो आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ सकते हो, ट्रेडिशनल डांस हो, ट्रेडिशनल आर्ट हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। आप लोग ट्राई करके देखो, या किसी ने ट्राई करके देखा है कुछ ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांसिंग, जो हमारे देश के ट्रेडिशन से, आर्ट या फोक कल्चर जो है हमारा, किसी ने करके देखा है आप में से?
16: हाँ, जी, दी, दी।
9: क्या करके देखा है बताओ?
16: क्लासिकल डांस।
9: क्लासिकल डांस, ओके ग्रेट। और किसी ने कुछ करके, नहीं भी करके देखा है तो बता सकते हो।
8: ट्रेडिशनल आर्ट का रखे, मंडला आर्ट।
9: मंडला आर्ट, ओके।
16: शास्त्रीय संगीत
9: किसने सीखा? आपने?
16: हाँ।
9: सीख रहे हो अभी?
16: हाँ।
9: ओके, क्या सीख रहे हो उसमें?
16: उसमें मेरे पापा रियाज करवाते पियानो पर।
9: क्या कोई राग होता है उसमें?
16: हाँ।
9: अरे वाह, वेरी गुड। और नहीं भी कर रहे हो तो बता सकते हो, आगे प्लान कर सकते हो, इसमें क्या बात है, आप तो बच्चे हो अभी, बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो आप लोग, नहीं सीखा है तो भी बोल सकते हो।
2: मैंने तो सीखा है, अभी उसकी चल रही है प्रैक्टिस क्लासिकल डांस की।
9: ओके हाँ, अब अमीक्षा क्या बोल रहे थे?
17: मेरी नानी मुझे खाना बनाना सिखा रही है।
9: खाना बनाना भी बहुत अच्छी चीज है ना। खाना बनाने को कुछ लोग कहते हैं वो आर्ट है, कुछ लोग भाई हॉबी तो है ही है, लेकिन जरूरत भी है ना, सबको आना चाहिए खाना बनाना। एकदम छोटे हम तब नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे, पर धीरे धीरे बड़े होते हो।
2: ज्यादा खाना बनाने में कुछ कम आता है, मतलब ऐसे ही हूँ, जैसे चावल छोंकने होगा, चावल बनाने होगा, ऐसी कुछ चीजें।
8: दी थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है, बस बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाने में।
17: बनाना तो मुझे भी आता है लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ।
9: क्या बनाना आता है आपको?
17: मैगी।
9: मैगी बनानी आती है।
16: दीदी मैं तो नई नई डिशेज ट्राई करती हूँ, फिर अपने घर में सबको खिलाती हूँ और बाहर भी रेडियो में भी सबको खिलाती हूँ।
9: नई नई डिशेज ट्राई करते तो हो आप।
17: और दीदी मेरी नानी ने खाना बनाना सिखा रही है ना, तो उसमें मुझे अभी तक सब्जी बनाना आ गई।
9: अच्छा, कौन सी सब्जी बना लेते हो आप?
17: मैंने कल बैंगन की सब्जी बनाई थी, परसों मैंने वो फूल गोभी की सब्जी बनाई।
9: अरे वाह, क्या बात है।
16: दीदी मैं केक बना लेती हूँ, पोटैटो नगेट्स बनाती हूँ, फ्राइज बनाती हूँ, जैसे समर के लिए ड्रिंक्स होती है, आम पन्ना वगैरह भी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी चटनी।
9: सीख रहे हो आप और बना भी लेते हो। वेरी गुड। अनुष्का तो अभी छोटी है ना, तो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब सीखेंगे।
17: दीदी लाइम जूस और सिकंजी तो मैं भी बना लेता हूँ।
9: बना के पिलाते हो सबको घर में? नहीं तो पिलाया करो ना मम्मी को।
13: मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ तो मम्मी मना करते है, इसे पूछता हूँ, ये बोलती है कि तेरे हाथ कड़वा हुआ इसीलिए पीती नहीं है, तो मेरी क्या गलती है इसमें।
9: हाँ, ये तो कोई गलती नहीं है आपकी, अगर कोई मना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, है ना, अपने लिए बनाना पड़ेगा फिर तो।
13: शिवांशी तो सबसे अलग जवाब देती है, तेरा हाथ का कड़वा होएगा मैं खुद बनाऊंगी।
9: क्या क्या डालते हो आप उसमें?
13: मैं पहले पानी डालता हूँ, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू।
9: अरे वाह, बनाना तो अच्छे से आता है आपको, अच्छी बात है।
16: दीदी मैंने अभी अभी पिज्जा ट्राई किया।
9: ओके
7: दीदी, मैं तो रोज रात को घर पे नींबू पानी पर बना कर मुझे घर वालों को पिलाती हूँ।
9: सबको पिलाते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
7: सोचोगे नहीं जैसे पापा घर में आए मुझे तुरंत बोलते सबके लिए नींबू पानी बना।
9: गर्मियों में तो नींबू पानी बहुत फायदा करता है ना।
8: पिज्जा से याद आया, कल मम्मी ने ब्रेड पिज्जा बनाया था।
9: अरे वाह, तो अब देखो मम्मी लोग कितना अच्छा अच्छा मेहनत करते हैं ना, मम्मी हो, नानी हो, दादी हो, घर में कोई भी हो, पापा लोग भी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। आपकी हॉबीज, एक और फायदा है हॉबीज का, हमारी दूसरों को भी बेनिफिट देती हैं। हमारी हॉबीज कैसे बेनिफिट देती हैं दूसरों को बताओ?
16: कुकिंग से।
9: कुकिंग करते हैं तो दूसरों को खाने को मिलता है अच्छा अच्छा।
8: किसी का कुछ ऐसे कोई आर्ट बनाना हो तो हम बना के दे सकते हैं, सिखा सकते हैं।
9: हाँ, हम उसको सिखा सकते हैं। और हमारी हॉबीज दूसरों के लिए फायदेमंद कैसे है, क्या लगता है आप लोगों को?
14: हम उनको खाना बना के खिला सकते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि कैसा बनाया है।
7: और अगर दीदी कोई स्टेप नहीं आता तो हम उनको बता सकते हैं कि इसको ऐसे करना है।
9: राइट।
7: और अगर डांस के लिए कोई इनको गाना चाहिए होता तो
14: हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं।
9: सिखा सकते हैं, है ना, कुछ बनाना आता है तो खिला सकते हैं। मान लो जैसे आर्ट आप लोगों की बहुत अच्छी है या आप सीख भी रहे हो तो भी, जैसे मंडला आर्ट है, कुछ यूनिक आर्ट है, तो उसको आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट भी तो कर सकते हो, बजाय कि आप कुछ खरीद के दो किसी को।
7: तो मदर्स डे था तो मैंने उनको कार्ड बना के दिया था
9: मम्मी को। अरे वाह,
14: वो तो मैंने और रूहानी ने भी बनाया था।
7: आपको पता मैंने कार्ड कैसे बनाया था? उसके ऊपर मैंने कॉटन चिपकाई थी और उसके ऊपर पता है मैंने बहुत सारी चॉकलेट चिपकाई थी।
9: वेरी गुड, क्रिएटिव। तो ये चीजें भी देखो बहुत अच्छी है, आपके मम्मी कितने खुश हो गए होंगे, है ना।
14: पिंक पेपर लिया, उसको बादल के शेप में काट के उसके अंदर एक गुड़िया डाली और जब वो खोलता है ना तब वो गुड़िया बाहर निकल के बोल रही थी हैप्पी मदर्स डे।
9: देखो कितने क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। और डांस से तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जो सुनता है उसको भी खुशी होती है, तो आप किसी को अपनी हॉबी से खुशी भी दे सकते हो, है ना, कितने सारे बेनिफिट्स। तो इसलिए हॉबीज को तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए।
7: ये तो उसे हमारे मतलब जो भी हॉबीज होते हैं ना उससे पता चलता है कि हाँ इनको ये ज्यादा पसंद है, वो ज्यादा पसंद है, तो इनसे सीख सकते हैं हम।
9: हॉबीज से अच्छा दूसरों को तो बेनिफिट हो गया, हमें क्या फायदा होता है हॉबीज होने से?
7: दीदी हमें ये फायदा होता है उससे जो हमारी हॉबी होती है उससे हम खुद सीखते हैं। जैसे मेरे को डांस सीखना है तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आ जाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी,
9: कुछ नया नया सीखते रहेंगे।
7: जैसे खाना बनाना होता है, अब खाने में जैसे मेरे को ये चीज नहीं आ रही तो मेरे को पहले सिखाया था उसको थोड़ा याद करके बना लेते हैं।
9: अनुष्का क्या लगता है आपको क्या फायदा होता है हॉबीज का? हमको कोई फायदा होता है? क्या फायदा होता है जो आपको लगे बताओ, कोई बेनिफिट होता है हमें कि मैं डांस करती हूँ या मैं आर्ट करती हूँ उसका मुझे क्या फायदा है?
13: हम किसी और को जैसे आर्ट गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे सैड है तो हम उसको गाना सुना के खुश कर सकते हैं।
9: अपने को क्या फायदा है, मुझे मेरी हॉबीज का क्या फायदा है?
13: दीदी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, हॉबीज और ज्यादा इंक्रीज होगी,
9: क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ।
14: और दीदी हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है तो हम उनको भी सिखा सकते हैं।
9: मुझे क्या फायदा है मेरी हॉबी का? लेकिन आपको आपकी हॉबी का क्या फायदा है? आपको डांस करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, इससे आपको क्या बेनिफिट है? सोचो सोचो।
7: डांस करने से पता है बॉडी को फायदा है,
9: बॉडी को फायदा है, हेल्दी होती है बॉडी।
7: कुकिंग करने से पता है हम खुद से मतलब खाना बनाना सीखते हैं।
9: राइट।
13: दीदी अगर अपा को किसी मतलब ऐसे कोई भी अपना कंपटीशन में नाम लिखवा देता है दोस्त, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त को मैंने बताया है कि मेरे पास ये हो और उसके उधर कुछ हो रहा है तो वो बताएगा उनको कि ना मेरा दोस्त है, तो हमारा पार्टिसिपेट हो सकता है और हमारी हॉबीज और भी ज्यादा बढ़ सकती है।
9: हाँ, कॉम्पिटिशन से अपनी हॉबीज को और हम आगे ले जा सकते हैं।
14: और दीदी अगर हमें कुकिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना होता है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसमें जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। अगर हमें अच्छे से खाना बनाना आता है तो हम लोग फर्स्ट प्राइज भी ले आ सकते हैं।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
16: और दीदी हम जब खाना बनाते हैं ना और दूसरों को चखाते हैं तब अगर हमारी कोई गलती हो तो हमें सुधार भी सकते हैं।
9: बिल्कुल
13: दीदी, मतलब हम किसी और को खाना खिलाते हैं, कुछ और देते हैं तो हमको खुशी भी मिलती है,
9: हमको खुद को खुशी मिलती है।
8: दीदी इतना खाना खाना सुन के भूख लग जाएगी।
9: हाँ भूख लगने लगी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे दोस्तों को कहते हैं कि भाई चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अगला एपिसोड अगली बार आपको सुनने को मिलेगा इसी टाइम पे, और हम जाते हैं कुछ खा लेते हैं। चलो तो फिर सबकी हॉबीज तो हमें पता चली गई है, और जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनकी भी बहुत सारी हॉबीज होंगी, और उनको ये जरूर पता होगा या पता चल गया होगा कि हॉबीज सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, उसके बड़े सारे फायदे हैं, है ना। मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बॉडी के लिए फायदेमंद है, खुशी आप खुद भी ले सकते हो, दूसरों को भी दे सकते हो, कंपटीशन में आगे जा सकते हो, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, कितनी सारी चीजें। तो इसलिए हॉबीज को कभी छोड़ना चाहिए
16: नहीं,
9: कभी नहीं। और एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है ना उसको भी कम कर सकते हो आप हॉबीज के साथ, कभी थोड़ा सा डांस कर लिया, गाना गा लिया, तो वो हो जाता है छू मंतर, ठीक है। तो हॉबीज के हो गए बहुत सारे बेनिफिट्स, तो फिलहाल रेडियो मधुबन से लेते हैं इजाजत और हमारे दोस्तों को कहते हैं बाय बाय
16: बाय बाय,
9: और थोड़ा खुशी से
16: बाय बाय।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 19वां पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी पृष्ठ 174। मैं हूँ नन्हा बाजरा। बहुत साल पहले सन 1940 में मुझे लकड़ी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे किसान दामजी भाई के परिवार की भी कहानी है। अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊँ। मैं जन्मा था गुजरात के वान गांव में। उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अपने अगले साल के लिए रखा करते थे। इसी तरह हम बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा अपने हाथों से बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों के साथ मैं भी यहीं रहने लगा। उस समय दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। तब के खाने पीने की तो बात ही अलग थी। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। पृष्ठ 175। कोयलों के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को कहते हैं उंधियूं। गुजराती में उंधियूं का मतलब है उल्टा। उंधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, वाह! साथ में घर के दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे उतनी छाछ। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थीं। किसान अपनी जरूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और सब्जियों के अलावा कभी कभी थोड़ी कपास भी उगाई जाती। सूत की कताई और बुनाई भी घर में ही चरखों और करघों पर की जाती थी। बताओ, क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किस अनाज से? क्या तुमने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है? तुम्हें कैसी लगी? पता करो और लिखो। तुम्हारे घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? अलग अलग मौसम में खेती से जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं? इनमें से किसी एक त्योहार के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, जैसे त्योहार का नाम, किस मौसम में मनाते हैं, किन किन राज्यों में मनाया जाता है, क्या क्या खाना पकाया जाता है, उस त्योहार को कैसे मनाते हैं, सब मिलकर या अपने अपने घरों में। अपने घर में बड़ों से पूछो, क्या खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके जमाने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। पृष्ठ 176। तुम्हारे इलाके में कौन कौन से अनाज और साग सब्जी उगाए जाते हैं? क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर है? बदलाव। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। कुछ जगहों पर नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाए बांध से यह पानी यहाँ लाया गया था। फिर बिजली भी पहुंच गई, बस बटन दबाओ तो रोशनी। धीरे धीरे सभी लोग एक दो तरह गेहूं और कपास की ही फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर ज्यादा फायदा हो। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। किसान बीजों को भी बाजार से खरीदने लगे। लोग कहते थे नई तरह के बीज हैं। अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत ही नहीं थी। अब तो खास मौकों पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। फिर बाजार से खरीदी सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा हसमुख खेती और घर का जिम्मा संभालने लगा। हसमुख खेती से खूब मुनाफा कमा रहा था। उसने अपने पुराने घर को नया बनाया, खेती में भी नई नई चीजें लाया, पानी के लिए बिजली का पंप लगाया, शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली और जमीन जोतने के लिए ट्रैक्टर। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते, वह काम ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता। हसमुख कहता, अब हम सोच समझकर खेती कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेचा जा सके। मुनाफे के पैसों से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। पृष्ठ 177। मगर बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था। हम तो सोचते ही रह गए, यह कैसी तरक्की, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने खेतों पर काम करने वाले लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। चर्चा करो, बाजरे के बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती में क्या क्या अंतर देखे, जैसे सिंचाई, जमीन जोतना इत्यादि में। हसमुख कहता, खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं। तुम तरक्की से क्या समझते हो? लिखो, तुम अपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे? खर्चे पर खर्चा। अगले 20 सालों में बहुत से बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं। हसमुख ने नई महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता। पृष्ठ

ही तरह की फसल बार बार उगाने से और दवाइयों ने जैसे जमीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा चलाना अब और मुश्किल होता जा रहा था। हसमुख भी पहले जैसा ना रहा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम करना चाहता, बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर भी नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा। माँ से पूछने लगा, बा दादाजी का वह पुराना बीजों का बक्सा कहाँ है? ट्रक को ठीक करने वाले औजार रखने के काम आएगा। अब समझे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों बताई? सोचो और चर्चा करो, आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। पृष्ठ 179। दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। हसमुख का बेटा परेश खेती ना करके ट्रक चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? बीज को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानने में कुछ दिक्कतें भी हैं? क्या अखबार में छपी ये रिपोर्ट सुनो और उस पर चर्चा करो। मंगलवार 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे ही एक किसान हैं नालप्पा रेड्डी, उन्होंने बैंक से 24,000 रुपये कर्जा लिया था। यह कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भी भारी ब्याज पर कर्जा लिया। कुल 34,000 रुपये देकर भी उनका सारा कर्जा ना पूरा हुआ। वे कहते हैं ये बैंक किसानों को तो छोटा सा कर्जा ना चुकाने पर भी जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते उन्हें कुछ नहीं कहते। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी ही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1997 से सन 2005 तक 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ले चुके हैं। यह संख्या शायद इससे भी ज्यादा हो। प्रोजेक्ट कार्य। तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितने पानी की जरूरत है। अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहां लोगों से बात करो और आसपास देखो। एक रिपोर्ट तैयार करो। पृष्ठ 180। गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा है और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी सुनो। देहरी गांव, भास्कर भाई की बाड़ी। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख गए। बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए, हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों यानी क्रोटोन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। ध्यान से जमीन को देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, इससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया।

उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है, कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है और बाजार की खाद से ज्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी मिल जाती है। फिर हमने इस फार्म में उगे कई फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी हमने जाना। समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण, कक्षा 5C। बाजरे के बीज का सफर खेत से प्लेट तक। बाजरे की बाली को ओखली में रखते हैं, मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। बाजरे के दाने अलग हो जाते हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन जिसे थ्रेशर कहते हैं उससे किया जाता है। दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कह सकते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीकों से चक्की से आटा पीसते हैं और उसके बाद छलनी से छानते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए यहाँ चित्र भी दिए गए हैं। हम क्या समझे? हमारे खाने में कई बदलाव आए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाजरे के बीज की कहानी बड़ों से मिली जा

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, बच्चों के मनोस्थिति पर, ये मनोविज्ञान पर हम लोग कार्यक्रम आपको दे रहे हैं और जिसमें डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमेशा की तरह हमारे साथ उपलब्ध हैं और बाल संसार बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के विशेष राइटर हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी। सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जनरल एक एपिसोड में बातें की थी पिछली बार। अब हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। तो बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्माण, तो ये सबसे पहला लेसन है जिसमें बच्चों की मनोस्थिति की विविधता को समझना। तो आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी।
0: बाल संसार में आपका स्वागत है और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बाल मन के प्रति जो संवेदनशील बातें करते हैं या दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चों की मनोस्थिति को अलग अलग ढंग से समझना, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उस पर बताइए बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए।
1: बहुत ही सटीक और व्यवहारिक प्रश्न है और सामान्य तौर पर एक आम परिवार में इस प्रकार की समस्या रहती है और बड़े चाहते हैं कि इस मनस्थिति को हम समझें। और ख़ासकर जब संवेदनाओं की बात आती है तो हमें लगता है कि मानवीय संवेदनाएं केवल बड़ों तक सीमित हैं, लेकिन उसका जो रेंज है वो बच्चों के पास ज़्यादा है। कारण उसके पीछे है कि जो भावनाएं और विचार उनकी मनस्थिति में उत्पन्न होते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए उनके पास में जो माध्यम है वो बहुत कम है, लेकिन वो अपनी भाव भंगिमाओं से, व्यवहार से और कई बार अलग अलग अपने स्वभाव को वो व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके परिवार में कोई आता है बड़ा और अपने बच्चों को आप बुलाते हैं तो उनके मन में रहता है कि अभी ये बड़ों से हमको मिलवाएंगे, मिलवाएंगे तो हमारा खेलने का समय है, हमारा पढ़ाई का समय है। अर्थात उन बच्चों के उन मनोभावों को वहाँ उस लेवल पर स्वीकार नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है और ये बच्चे आएंगे और बड़ों को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे और वो अभिवादन बहुत प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए, बहुत आनंदपूर्वक होना चाहिए, जिससे बड़ों की डिग्निटी या उनके डेजिग्नेशन को कोई धक्का नहीं लगे। मैंने बड़े सोच रहे हैं कि हमारी संवेदनाएं तो प्रोटेक्ट रहें, लेकिन उस स्थिति में बड़ों को चाहिए कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो जब हमारे मित्रों से मिलने आ रहा है तो उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जो गेस्ट हैं वो कुछ गिफ्ट उनके लिए लेके आए हैं या कुछ फल या मिष्ठान लेके आए हैं, तो उनका मन लगेगा, जुड़ाव होगा और आप चाह रहे हैं कि वो अभिवादन भी करें और कोई पोएम भी सुनाएं और कुछ अपनी बात भी रखें, तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वो आएगा, हो सकता है कि वो आके प्रणाम करके और तेज़ी से वहाँ भाग जाए, लेकिन बड़ों को लगेगा देखो ये बड़े हैं और हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, रुकना चाहिए था, परमिशन लेना चाहिए था बच्चों को हमसे जहाँ से जाने के लिए। तो इस प्रकार के जो फ्लक्चुएशन है उस पर हमें बड़ा सटीकता से अध्ययन करना होगा, उनकी संवेदनाओं को समझना होगा। ये भी समझना होगा कि जब बच्चा हमारे पास आया है, बड़ों से हम जुड़ाव करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है, उसको सहजता से जुड़ने दें, उसके भाव को समझें। वो चला भी जाता है तो नाराज़गी व्यक्त नहीं करें, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करें, उसे बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास नहीं करें, बल्कि उसको सहजता में कन्वर्ट होने दें। और ये हो सकता है कि आपकी उस सहजता या बाल मनोविज्ञान को समझ के बाद वो बच्चा 10 या 5 मिनट के बाद में वापस आ जाए, उसको लगेगा कि अभी बड़ों के पास में बातचीत मुझे करना था और मेरी बात वहां नहीं हो पाई, मैं अपना कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उनसे पुनः जुड़ता हूं और उस जुड़ाव के वसीभूत वो अपने आप को वहां उपस्थित भी करेगा और अंतर मन से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो उस समय तक जान चुका होगा कि मेरे प्रति भी बड़ों की संवेदनाएं जागृत हैं और वो कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ना या जोड़ना चाहते हैं। जी,
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए। तो सिंपल और सहज तरीके से अगर इसको समझा जाए तो बड़े अच्छी तरह से आपने बताया कि हम अपनी मनोस्थिति को भी समझ लेंगे तो शायद बच्चों के मन को समझने में आसान होगा। कई बार अवलोकन भी करना ज़रूरी है कि बच्चों के व्यवहार कैसे हैं, वो खेलते कैसे हैं, खेलने के साथ साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या है, इस पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे या फिर कभी कभी वो बात करते हैं भले ही उनकी बातों में कुछ शब्दों का कमी हो सकता है, कुछ सटीक शब्द आपको नहीं मिलेंगे, समझने में थोड़ा देर होता होगा, लेकिन भाव तो ज़रूर समझ सकते हैं। खुले प्रश्न उनसे पूछिए, सोचने समझाने की बात प्रोत्साहित करें और सहानुभूति और स्वीकारता जो है आपके पास हमेशा रहना चाहिए और एक विश्वास बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बच्चों पे शुरुआत में हम लोग जो है कई बार कुछ हो जाता है तो सीधे डांट डपट के उनको चुप करा देते हैं, तो शायद वो मनोस्थिति हमारी नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय हम, मुझे लगता है कि किसी पिताजी का या माँ का जो व्यवहार है शायद ये उनको नहीं सिखाया गया होगा।
1: जी जी।
0: दूसरी बात, अगर सीख भी गए होंगे तो या तो उनके पास टाइम इतना नहीं है कि मैं पेशेंट हूँ,
1: बिल्कुल,
0: या फिर पेशेंट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि ये बच्चा है मेरी बात क्यों नहीं समझता है,
1: जी
0: ऐसा उनको लगता है। तो बच्चे को समझाने से ज़्यादा हमें उनके पास टाइम निकाल के उनको समझने के लिए टाइम देना होगा।
1: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यही मानवीय संवेदनाओं की आवश्यकता भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे मेरी बात को समझे और चला जाए।
1: जी जी।
0: लेकिन वो समझने के लिए नया शायद आपकी हेल्प करने भी आया हो।
1: बिल्कुल, यही पक्ष होना चाहिए।
0: तो कई बार हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि हमारा टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का टाइम इम्पॉर्टेंट है। टाइम को इंग्लिश में मनी कहा गया, अंग्रेजी में टाइम इज़ मनी कहा गया। अगर समय ही पैसा है तो फिर समय को सफल बनो, पैसा सफल होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो शायद टाइम को हम लोग वर्क में लगा देते हैं या वेस्ट हो जाता है, तो वो हमारा मनी भी काम में लग जाता है और या तो वेस्ट हो जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो उसको सफल करने के लिए शायद मुझे लगता है थोड़ा बियॉन्ड ओके सोचना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुनाए हैं बाल बच्चों के मनोविज्ञान पर बाल संसार, इस कार्यक्रम को। आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम आपको अपने अनुभवों को या फिर आपके अनुभवों को साझा करने में हमें हेल्प मिले। सुनते रहो, मुस्कुराते

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। बाल मनोविज्ञान पर बातें हो रही हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बातें हो रही हैं और अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं। कई बार हम लोग जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा अजय जी ने बड़े अच्छे पाठ्यक्रम को जो है शुरुआत किया है, बाल मन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का निर्णय। तो इसमें एक और चैप्टर आता है जहाँ पर बच्चों की मनोस्थिति को कैसे समझा जाए, जिसके बारे में हमने बातें की। तो दूसरा जो इसमें भाव आता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो उसमें सब टाइटल है, वो है पवित्र संवेदनाओं की गरिमा का ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे हम लोग समझे, अजय जी बताइए।
1: बहुत अच्छी यहाँ बातचीत चल रही है और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पवित्र शब्द का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामान्य संवेदनाओं के प्रति तो हम जागृत रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जैसा पहला एपिसोड में हमने बातचीत भी किया कि बच्चे मन के सच्चे हैं और हम कहते हैं कि भाई ये भगवान के समकक्ष हैं और इनके जो मनोभाव हैं वो इतने पवित्र हैं कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और कई बार बड़ों के निर्णय के बीच में जब बच्चों से हम पूछते हैं कि बेटा आप बताओ कि ये हम सारी उलझन में हैं तो आपका इसमें क्या ओवरव्यू है या क्या आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया या क्रिया आपके मन में आती है, तो उस समय आप देखेंगे एक निष्पक्ष सुझाव उसका आएगा और वो इतना कारगर होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अपना लिया जाए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, एक विद्वान विदुषी बहन है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया और कहा कि अभी बच्चे को मैं बुलाती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रणाम करो क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैंने बच्चे को मैसेज दिया कि ये आपके गुरु नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, तो इनको आप प्रणाम करो। अब वो बच्चा जैसे ही प्रणाम करता है और मैं उसको ब्लेसिंग देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ तो बच्चों के अंदर एक चंचलता होती है, बहुत जल्दी वो मेरे स्पर्श के पहले ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब यहाँ हमें समझना होगा कि ऐसी स्थिति में एक काउंसलर की भूमिका दोषारोपण की नहीं है बल्कि ये समझने की है। और मैंने माँ से, उनके बच्चे की माँ से कहा कि आप मुझे बताइए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बड़ा अपमान फील हुआ कि बहुत अच्छे से वह बच्चा नहीं मिला आपसे या मैं उसको सिखाने में असफल रही। मैंने बोला ऐसा नहीं, हम बच्चों के मनोभावों को बड़ों जैसे विश्लेषण नहीं करें, हम उनकी प्योरिटी को समझें। उस बच्चे के अंदर जो परसेप्शन का लेवल है वो इतना पवित्र है कि वो बच्चा आता है, प्रणाम करता है और वो भाग जाता है। उसको ये विश्वास है कि जब मेरी माँ के गुरु बैठे हुए हैं तो ये मेरे लिए कितने हम्बल हो सकते हैं, कितने कितना स्नेह प्यार हमको इनसे मिल सकता है। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा चला गया। 15 से 20 मिनट के बाद में जब हमारी कुछ बातचीत हुई तो बच्चा वापस आता है और वो बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाता है। अब बच्चे की माँ को ये विश्वास हो गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो जो पवित्र संवेदनाएं हैं वो वापस लौटी हैं, हमने अपेक्षा नहीं की लेकिन ब्रह्मांड में हमने एक संकल्प भेजा कि बच्चा आएगा और हमसे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम उस बच्चे के साथ में कैदी जैसा बिहेव नहीं कर सकते, उसको कुर्सी पर बिठा के बांध के बाय फोर्स नहीं कह सकते कि आपको बात करनी ही पड़ेगी, ये सम्मान देना ही पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमारी मन स्थिति में चल रही हैं, लेकिन अगर हम पवित्र मनोभाव को देखेंगे तो बच्चे का निश्चल मन, बच्चे का निर्मल हृदय वापस ले आया। और उस पवित्र मन की विशेषता देखिए कि मैंने बड़े धीरे से कहा कि बेटा ये बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है और खेलने में कितना मन लगता है। अब बच्चे के पास में कोई मेजरमेंट टूल तो है नहीं, ये मन को कैसे बताए। हम सोच रहे हैं कि वो शायद बच्चा बोल देगा कि अभी मेरा पढ़ने में कम मन लगता है और खेलने में ज़्यादा लगता है। अब कम और ज़्यादा को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो बच्चे से मैंने कहा, बच्चे की उम्र के हिसाब से कि बच्चा 3 या 4 साल का है, उस समय मैंने कहा बेटा आप हाथ से बताओ कि पढ़ने में कितना मन लगता है। तो आप आश्चर्य करेंगे भाई जी कि वो बच्चा छोटी सी मुट्ठी दोनों हाथों को ऐसे बंद करके बोल रहा है कि इतना सा मेरा मन पढ़ने में लगता है। अब मैंने बोला खेलने में कितना लगता है, तो वो बिल्कुल पीछे घूम गया और दोनों हाथों को पूरा वो फैलाता है और कहता है कि इतना सारा मन मेरा खेलने में लगता है, और इतना कह के वो फिर भाग गया। अब माँ ने कहा कि आप एज ए काउंसलर बच्चे की मनस्थिति को समझ गए, आपने पवित्र संवेदनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है कि ये छोटी सी मुट्ठी बता रहा है कि इतना मन पढ़ने का मैं लगता है, तो ये थोड़ा सा 50% ये हो जाए और खेलने वाला 50% कम हो जाए तो शायद बैलेंस हो सकता है। तो हमने बाकी प्रोसेस करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली और बच्चे के मनोभाव को समझते हुए उन्हें को फिर अलग अलग तरीके से मदद के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं मैंने उनकी मदर को बताया और वो उसको उन्होंने फॉलो भी किया। तो कुल मिला के कहने का अर्थ कि हमें बच्चों के उस समय त्वरित क्रिया या प्रतिक्रिया को प्योरिटी के फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति अपनी संवेदनाओं को और गहरा करके और समाधान के लिए छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और जिस मनोस्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग चीज़ों को समझ के भी कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन सारी चीज़ों को ठीक से समझें जाने। और जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे ख़ास मनोस्थिति के बारे में और इसमें जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि हमने अभी बात की विशेष पवित्र संवेदनाओं की गरिमा को, यहाँ पर अजय सर ने बड़ा अच्छा बताया कि सम्मान और विनम्रता दोनों होनी चाहिए आपकी बातों में, साथ साथ अगर ध्यान और एकाग्रता पर आप अगर जोर देते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। और कृतज्ञता जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप उस पवित्र भावनाओं के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको हर चीज़ जो है स्पष्ट रहे और आपको आईने की तरह हर चीज़ दिखाई दे। आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम लोग हो सकता है कि वो चीज़ें कर पाए नहीं कर पाए
1: जी,
0: तो थोड़ा सा मैकेनिज्म वाली बात है। देखिए ट्रायल एंड एरर सारी ज़िंदगी चलती रहती है
1: जी जी जी,
0: लेकिन आप अगर सोचेंगे कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गड़बड़ है। यू शुड ऑलवेज मना हमेशा ये देखिए कि ट्रायल एंड एरर, और ये चीज़ हमेशा काम करती हैं। भले आपने सीखा हो लेकिन सीखने के साथ साथ आपको जो है हमेशा जब भी आप बच्चों के मनोस्थिति से जुड़ जाते हैं तो आपको पता नहीं कि बच्चा क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसके स्वभाव के आधार पे कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप उसको जान ले, लेकिन कुछ जगह पे आप नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे डील करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक और सवाल, एक और भावनाएं जो है हम इस चैप्टर में ले रहे हैं, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो अजय जी मैं चाहूँगा कि कैसे हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
1: सकारात्मक दृष्टिकोण के संबंध में जो मेरा यहाँ चिंतन है वो ये है कि बच्चे के मनोभाव को हम समझ रहे हैं, लेकिन उस मनोभाव को समझने और समझाने की क्रिया में जो सबसे बड़ी बाधा आती है कि थोड़े समय तक हमारा प्रयास स्नेह और प्यार को लेके होता है, हम अच्छी केयरिंग भी कर रहे हैं, नर्सरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है हमारी वो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अच्छी अपेक्षा है हमारे से कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि दबाव और तनाव क्या करता है बच्चे को एक द्वंद में डाल देता है और वो माता पिता से जुड़ने की बजाय उनसे अलग होने का प्रयास करता है, अर्थात एकांत की ओर जाता है। ऐसे समय में हम ये परिस्थिति घटित होने दें, उसके बाद हम सकारात्मकता को फॉलो करेंगे या सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो उस समय तक हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, इससे पहले कि बच्चे के मन में हमारे प्रति कोई दूसरे भाव पैदा हों और उस भाव के कारण वो अपने व्यवहार में बदलाव लाए। उससे पहले ही हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे हैं और उस बच्चे को माता पिता के प्रति या गुरु के प्रति ये गहरी आस्था है और वो इस सोचता है कि ये तीन लोग मिलके हमारी पालना करते हैं, तो वो मैक्सिमम एफर्ट करता है कि मैं बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूँ। जैसा आपने भाई जी ने बताया कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ में परफेक्शन नहीं हो सकता है, परफेक्शन के लिए हम एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, कंप्लेंट एंड सजेशन की गुंजाइश हमेशा होती है। बड़ी से बड़ी व्यवस्था में इस बात के लिए आर्गुमेंट किया जाता है कि आप बहुत सारे अच्छे सजेशन और कहीं अगर कोई शिकायत या सुझाव है तो वो दीजिए, तो वहाँ परिवर्तन करने की स्थिति ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या व्यक्तिगत जीवन में भी कोई इंसान कर सकता है। यही वस्तु स्थिति हमारे मन में भी होना चाहिए कि बच्चे की बात जब हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम प्रयास करें कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख के चल रहे हैं और उस सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिफल क्या है कि अपने बच्चे की अच्छाइयों, विशेषताओं, गुणों उस बच्चे का जो इनर पावर है, साहस है, इनिशिएटिव पावर है, कुछ अच्छी बातें जो आपके मन में अपने बच्चे को लेकर गर्व पैदा करती हैं, गौरव पैदा करती हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में बच्चे के इस गुण के कारण बड़ी मदद मिलेगी, तो उसको हम प्रमोट करेंगे और उसके साथ में बहुत सारी क्वालिटी या बहुत सारी विशेषताएँ धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। तो बच्चों के अंदर एक उत्साह होगा, उमंग होगा, और उसे लगेगा कि बड़ों के सामने हमारी केवल यहाँ प्रेजिंग नहीं हो रही है बल्कि कुछ अच्छी चीज़ों को शेयर किया जा रहा है, ताकि इसको और बच्चे को अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो हमारा उद्देश्य किसी अच्छाई को बताने के पीछे ये है कि उसमें हम अभिवृद्धि करें और उसको प्रमोट करें और सकारात्मकता को अंत तक बनाए रखें, जिससे कि बच्चे का मनोबल किसी भी स्थिति में अगर कहीं टूट रहा हो तो उसे हम संभाल सकें, संवार सकें और एक नई दिशा दे सकें। जी
0: अजय जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो बातें हम लोग कर रहे हैं पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को ले रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही है हमारी है हम दोनों की कि आपको अपने लाइफ के साथ जो रियलिटी है उसके साथ जुड़े और उसमें, और जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं चलती। अगर आप बहुत जल्दबाजी करते हैं तो हो सकता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी के बजाय बच्चों को हम लोग उसकी क्रिएटिविटी समाप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके शब्दों में बहुत इम्पोर्टेंस होना चाहिए, जिस तरह से आप सम्मान चाहते हैं वैसा बच्चा भी सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान से उसकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो आपको उतना ही सम्मान से देख रहा है। बालक आपको एक पिता समान, माँ समान, बड़े के रूप में आपको देख रहा है, तो उसके अंदर आपके प्रति जो भाव है वो भाव से अगर बच्चे को देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएगी। कई बार हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में उन चीज़ों का कहीं मायने बना ऐसा कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेते कि हम बच्चों के साथ कैसे बात करें, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, वो सोचते हैं, तो वहाँ सारा जो है खेल बिगड़ जाता है। तो रियलिटी को ज्ञान जो है दूसरों के लिए नहीं अपने लिए होता है, तो स्वदर्शन से परमात्मा दर्शन होगा। ज्ञान को अपनाई नहीं किया है वो फिर आप ज्ञान सुनने सुनाने तक रहेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं है तो इम्प्लीमेंट जीरो है, तो उसका यूज़ भी नहीं होगा, उसका रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज्ञान खुद के लिए उपयोग में लाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपनी भावनाओं को समझें, अपनी भावनाओं को ठीक करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ख्याल रखिए अपना और बच्चों की मनोस्थिति को, सम्मान से देखें, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए 20 अगस्त की बातें आपसे शेयर करूंगा। 20 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, आप सभी को बताना चाहूंगा। आज विशेष राजीव गांधी, त्रिलोचन शास्त्री, एन आर नारायण मूर्ति, राजेंद्र कुमार पाचूरी, तानिया सचदेव, डी देवराज उर्स और कुमारी नाज, बीजे दीवान, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही रामशरण शर्मा, बीके एस अयंगर, गोविनाथ मेहंती, इन सभी का पुण्य दिवस है। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी को विशेष कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराने वाला हूं। और आइए आगे बढ़ते हुए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि को देकर जा सकते हैं। तो ये रहा सुंदर विचार आपके लिए। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं बहुत ही सुंदर गीत के साथ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आगे विशेष लोगों की जीवन कहानी से रूबरू मैं कराता हूं। आज के दिन जन्म में उन महान लोगों के साथ आपकी बातचीत कराता हूं या आपकी रूबरू कराता हूं उनके जीवन से आपको। तो आइए बातें करते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का मुख्य हस्ताक्षर माना जाता है त्रिलोचन शास्त्री जी को। वे आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्राई के तीन स्तंभों में से एक थे। इस त्राई के अन्य दो स्तंभ नागार्जुन व शमशेर बहादुर सिंह थे। त्रिलोचन शास्त्री काशी वाराणसी की साहित्यिक परंपरा के मुरीद कवि थे। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कटधरा चिरानी पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। इनका मूल नाम वासुदेव था और त्रिलोचन शास्त्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की और लाहौर में संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की थी। बाजारवाद के विरोध में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में त्रिलोचन शास्त्री ने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। शास्त्री जी बाजारवाद के प्रबल विरोधी थे, हालांकि उन्होंने हिंदी में प्रयोग धार्मिकता का समर्थन किया। उनका मानना था कि भाषा में जितने प्रयोग होंगे उतने ही समृद्ध होगी जीवन। त्रिलोचन शास्त्री ने हमेशा ही नव सृजन को बढ़ावा दिया और नए लेखकों के लिए प्रेरणादायी बने रहे। इनके कार्य क्षेत्र की बात मैं अगर करूं, त्रिलोचन शास्त्री जी हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषा के विशेष ज्ञाता माने जाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्हें खासे सक्रिय रहे। प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। राष्ट्रीय अध्यक्षता की बात अगर कहें तो 1995 से लेकर 2001 तक जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी उन्होंने संभाला। इसके अलावा वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्थान से भी जुड़े रहे हैं और हिंदी व उर्दू में कई शब्दकोश की योजना भी उन्होंने जोड़ दिया था। शास्त्री जी हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। इस छंद को भारतीय परिवेश में ढाला और लगभग 550 सोनेट की रचना की थी। इसके अतिरिक्त कहानी, गीत, गजल और आलोचना तो चलती रहती थी। हिंदी साहित्य को उन्होंने काफी समृद्ध किया। 1945 में उनकी पहला कविता संग्रह धरती प्रकाशित हुआ। उसके बाद गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और तप के तय हुए दिन, इस तरह के बहुत सारे कविता संग्रह चर्चित रहे। और धरती जैसे रचनाओं का कमलबद्ध करने वाले त्रिलोचन शास्त्री को 17 कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुए और मुक्तिबोध की कविताएं उन्होंने लिखी, देशकाल की कुछ बातें और ऐसे बहुत सारे हिंदी को समृद्ध करने में इनका विशेष योगदान। जीवन के अंतिम क्षणों में लिखते लिखते अपने सुपुत्र अमित प्रकाश सिंह के परिवार के साथ हरिद्वार के पास जबलपुर में कुछ समय बिताया उन्होंने और अंतिम वर्षों में भी वो काफ़ी जीवंत नजर आए। और वर्धय शरीर भले ही उनका साथ न डाला ना देता था, फिर भी उसकी श्रमतें उनकी बातें रत्नात्मक मंद नहीं छोड़ पाती थी। और त्रिलोचन शास्त्री का निधन 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये थी कुछ कहानी विशेष रूप से शास्त्री जी के बारे में, त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में। आइए ऐसे साहित्यकार जैसे जैसे हमारे भारत में रहते गए हिंदी को और साहित्य को समृद्ध करते गए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाएं करते हुए। आइए एक पर्यावरण विद के बारे में बातें करते हैं। नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं राजेंद्र कुमार पाचोरी। जी हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके कार्य को देखते हुए नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें 2007 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिला था। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां अल गोर को यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यक्तिगत प्रयासों के लिए मिला, वहीं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पाचोरी को यह पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला। अल गोर के साथ संयुक्त रूप में यह पुरस्कार इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज नामक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था को मिला था। डॉक्टर पाचोरी इस संस्थान के अध्यक्ष थे, लेकिन इससे उनको मिले पुरस्कार का महत्व कम नहीं हो जाता। युद्ध में मोर्चा पर तो सिपाही लड़ते हैं, लेकिन जीत का श्रेय समूह रचना करने वाले सेनापति को मिलता है। ऐसे ही डॉक्टर पाचोरी के विषय में कहा जा सकता है। तो आइए इनके जीवन से आपको अवगत कराता हूँ। विशेष डॉक्टर राजेंद्र कुमार पाचोरी का जन्म भारत में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में आज ही के दिन 20 अगस्त 1940 को हुआ। राजेंद्र पाचोरी ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश से अपनी करियर का आगाज किया था। उन्होंने कई वरिष्ठ प्रबंधी पदों पर कार्य को बखूबी अंजाम दिया और जब भारत लौटे तो उनका अनुभव भी उनके साथ था। भारत लौटकर पाचोरी इंटरमीडिएट स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में बतौर सीनियर फैकल्टी के रूप में काम करने लगे और 75 से लेकर 79 तक यानी आप यही कार्य करते रहे। उल्लेखनीय कार्य के लिए आपको प्रासंगिक होगा कि हैदराबाद के इंटर स्टाफ कॉलेज में देश के वरिष्ठ नौकरशाही को ट्रेन

इंक किया जाता है। तो आइए ऐसे विशेष कार्य के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है, और जिस तरह से अलग अलग पदों पर इन्होंने कार्य किया, उपलब्धियों की बात करें तो एक लंबी लिस्ट है जो सम्मान इनको अपने कार्य के लिए मिला, और भारतीय समितियों में सहभागिता के कारण अलग अलग संस्थानों से भी इन्हें काफ़ी सम्मान मिला। राजेंद्र पाचौरी 1999 में दार्जिलिंग हिमालय में रेलवे फाउंडेशन का अध्यक्ष चुने गए, और 2001 में उन्हें प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य भी बनाया गया। इस तरह से उनका इस पुरस्कार को मिलने के बाद, शांति पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, जलवायु परिवर्तन की ज्वलंत समस्या की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। डॉक्टर राजेंद्र पाचौरी का निधन 13 फरवरी 2020 को हुआ। The Energy and Resources Institute टेरी के संस्थापक और पूर्व मुख्य रहे राजेंद्र पाचौरी का लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ। उन्हें हृदय की पुरानी परेशानी को लेकर राजधानी दिल्ली में एक्सपर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें राजेंद्र पाचौरी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और चलिए अब साहित्य जगत से आगे आते हैं पर्यावरण के साथ। अब मैं आपको खेल जगत से जोड़ने वाला हूँ। शतरंज आपने कभी तो भी खेला होगा, है ना। शतरंज का खेल जो है खास करके पुरुषों के लिए बताया जाता है, लेकिन आज समय बदल गया और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। तो एक ऐसी ही महिला के बारे में अब बात करते हैं, भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव के बारे में। भारतीय शतरंज की ग्लैमर गर्ल तानिया सचदेव 11 सितंबर 2007 को ईरान में एशियाई महिला शतरंज की क्वीन बन गई। इसी वर्ष उन्होंने शतरंज की राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती और सीनियर वर्ग में एशियाई चैंपियनशिप उनका अब तक का सबसे बड़ा किताब है। वो भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। तो आइए इनके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। आशा करूंगा कि आपको इनके बारे में सुनकर हमारे सभी जो महिला लिसनर हैं, जो विशेष माता बहन हैं, उन सभी को प्रेरणा मिलेगा कि हम भी शतरंज के खिलाड़ी बन सकते हैं। जी हाँ, तानिया सचदेव का जन्म 20 अगस्त 1986 को दिल्ली, भारत में हुआ था। वे ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की 8वीं महिला खिलाड़ी हैं। उनसे पूर्व इस पर एस विजय लक्ष्मी, कोनर हम्पी, एस मीनाक्षी, आरती रामस्वामी, निशा मोहत्ता, स्वाति घाटे और द्रोणावली हरिका ने ग्रैंड मास्टर किताब हासिल किए हैं। तानिया सचदेव की मां का नाम अंजू सचदेव है। तानिया दिल्ली में साहित्यिक छात्रा हैं। उत्तर भारत से तानिया शतरंज की सबसे होनहार खिलाड़ी में से एक आती हैं। इससे पूर्व प्राय सभी शतरंज महिला खिलाड़ी जो है दक्षिण भारत से आते थे, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय इनका हुआ। जब 8 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय प्राप्त की तानिया ने, और 1994 में उन्होंने नॉर्विच में ब्रिटिश चैंपियनशिप में 5 किताब जीतकर इतिहास रच डाला, और इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर नर्म भी जीता था। तो ये विशेष जो है इनकी खासियत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बनी खेल के वजह से। 1997 में 12 वर्ष की आयु में आयु वर्ग में तानिया सचदेव ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी, और फिर 1998 में भी इसी वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतकर 1999 में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में तानिया ने दिल्ली की चैंपियनशिप भी जीत ली थी। तो इस तरह से राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी अच्छी तरह से इन्होंने खेलकर उसमें जीत हर दर्ज की, और फिर उसके बाद एक और राउंड आता है एशियाई चैंपियनशिप वाला। और 2007 में तेहरान में हुई इस एशियन चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में तानिया ने चीन की खिलाड़ी जू वेन जून के साथ 6.5 अंक से ड्रॉ खेलकर अपना खिताब अपने में सफलता प्राप्त की थी। तो इस चैंपियनशिप को जीतकर तानिया ने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि विश्व महिला शतरंज चैंपियन के लिए भी क्वालिफाई कर गई। और तानिया तथा टॉप स्पीड लुफेई रुआन ने बरकरार रखा अंक जो है इनके बरकरार थे दोनों के, लेकिन बेहतर ट्राई ब्रेक के चलते तानिया बाजी मारने में सफल हो गई और चीनी खिलाड़ी को दूसरे स्थान पर संतोष होना पड़ा। है ना कमाल की बात। तानिया के कोच का नाम विशाल सरीन है। तानिया एशियाई स्तर पर मिली सफलता का श्रेय अपने कोच को देती है। तो ये थी कुछ खास बातें तानिया शतरंज की खिलाड़ी, भारत की महिला जिन्होंने भारत को शतरंज में एक अलग मुकाम हासिल कराई है। तो चलिए, आशा करूंगा हमारे सभी माता बहनों को तानिया सचदेव की कहानी सुनकर शतरंज के खेल खेलने की प्रेरणा मिली रही होगी। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में जिनकी कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आइए एक और कहानी दी देवराज उर्स के बारे में बात करते हैं। और ये राजनीति में विशेष रूप से इनका नाम आता है और कर्नाटक के 8वें मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला था। 10 साल तक विधायक रहे थे और उनके 8 वर्षों तक के कार्यकाल के दौरान राज्य में मूक सामाजिक क्रांति चलाने और भूमि सुधारों को लागू करने का श्रेय उनको मिलता है। तो आइए ऐसे विशेष राजनीति के बारे में बात करते हैं। देवराज उर्स का जन्म 20 अगस्त 1915 को मैसूर जिले में हुआ और उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बीएससी करने के बाद खेती करना आरंभ किया था। उनके परिवार का मैसूर के राजवंश के साथ संबंध था। उनकी मां देवीरा अम्मानी धार्मिक और पारंपरिक महिला थी। उनका एक भाई भी था। देवराज का विवाह चिक्का अम्मानी से हुआ था और उनकी 3 बेटियां। देवराज को कृषि के साथ साथ राजनीति में भी विशेष रुचि थी, तो धीरे धीरे उन्होंने खेती काम करते हुए राजनीति में भी अपना करियर आजमाने के लिए कदम बढ़ाया और 1941 से लेकर 45 तक कांग्रेस के टिकट पर मैसूर की प्रतिनिधि असेंबली के सदस्य चुने गए। और फिर स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेने पर भी उनकी सहानुभूति मैसूर रियासत के संगठन में थी। इसी कारण वे निरंतर 6 बार वहां की असेंबली के सदस्य चुने गए। और देवराज उर्स 1972 में और कुछ दिनों के अंतर के बाद 1978 में प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए और 8 वर्ष तक इस पद पर रहे और अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष आरक्षण की व्यवस्था कराई। विभाजन के बाद देवराज सुविधा अनुसार अपने लिए इस पक्ष में स्थान बनाया। उन्होंने अपने लिए अलग दल का भी गठन किया, परंतु में उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। उनका शासनकाल पर विशेष व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच कमीशन ने भी इसकी पुष्टि की। कहते हैं कि देवराज उर्स ने बाद में स्वीकार किया कि अपने समर्थकों को साथ रखने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह धन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस प्रकार देवराज का शासन राजनीतिक भ्रष्टाचार का नमूना बन गया था। तो ये थी कुछ खास बातें देवराज के बारे में और 6 जून 1982 को इनका निधन हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन चढ़ाव के बाद फिर उतर जाते हैं तो फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा चढ़ाव पर देखना है, वहाँ टिके रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। तो इसी तरह देवराज जी जो पहले तो टिके रहे, अच्छे काम, खेती का काम करते रहे, कृषकों के लिए काम करते रहे, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं अपने अलग पक्ष बनाकर जो है उसमें अटक गए और जहाँ पर उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो चलिए, ऐसे होता है जीवन में। तो ऐसे समय में हमें फिर से वापस रिवाइव करने में या फिर से हमें वापस अपनी ऊँचाई को पाने में देर लगती है और बहुत सारा तपस्या की जरूरत पड़ती है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: This is Triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. थैंक यू रेडियो मधुबन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, एन आर नारायण मूर्ति का भी आज जन्मदिन है, और इसके पहले हमने सुधा मूर्ति के बारे में कल बात की थी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, यानी एक दिन पहले सुधा मूर्ति का जन्मदिन और एक दिन बाद नारायण का भी जन्मदिन है ना नारायण मूर्ति का भी। तो आज ही के दिन संसार की अत्यंत समृद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस टेक्नोलॉजी के मालिक और संस्थापक, इस कंपनी का स्थापना 1981 में अपने 6 मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने की थी। अपनी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत अपनी कंपनी इंफोसिस को उन गिनी चुनी कंपनियों के समक्ष खड़ा कर दिया है जिनके बारे में सोचने के लिए लोग जिंदगी गुजार देते हैं। नारायण मूर्ति भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रणोता ही नहीं बल्कि विदेशों में भारतीय कंपनियों का झंडा ऊंचा करने का प्रेरणा भी उनके द्वारा मिलता है। और नारायण मूर्ति ने दुनिया को दिखा दिया है कि यदि आप में आत्मविश्वास है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो सफलता हमेशा आपके कदम चूमेगी। नारायण मूर्ति ने सफलता की नई परिभाषाएं गढ़ते हुए भारतीय कंपनियों को बताया कि पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। तो आइए, ऐसे विशेष व्यक्ति के परिचय की बात करें तो आज ही के दिन 20 अगस्त 1946 में कर्नाटक के मैसूर में इनका जन्म हुआ। नारायण मूर्ति शुरू से ही प्रतिभाशाली थे। जहां दूसरे छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में घंटों लगते थे, वही नारायण मूर्ति चुटकियों में उसे सुलझा लेते। नारायण मूर्ति को हमेशा से ही IIT में पढ़ने का शौक था, इसी खातिर वह मैसूर से बेंगलुरु गया, और जहां वो 1967 में मैसूर विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और 1969 में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech IIT कानपुर से की है। तो फिर उसके बाद इंफोसिस की स्थापना शुरू हो गई, फिर इसकी सफलता, और उसके बाद फिर इंफोसिस फाउंडेशन उन्होंने खोला, जो संस्थान के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों की सहायता करने के लिए, शिक्षा दीक्षा में बढ़ावा देने के लिए भी काम शुरू किया, जिसके बारे में हमने कल ही उनके जीवन कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को, और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर, और जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होगा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को, यानी शुभ विचारों के साथ ढेर सारी खुशियाँ आप सभी के लिए, अनेक दुआओं के साथ कल मिलेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जीवन में जिसका टाइम पर लाभ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो टाइम कैसे मैनेज हो सकता है, कैसे आप बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये फॉर्मूले कुछ आपको ज़रूर मिलेंगे आज, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: नमस्कार, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स एंड लर्नर्स। Dear viewers, right now you all are watching us on our NCERT official YouTube channel, and apart from this YouTube channel, you have connected with us right now on NCERT's PME Vidya channel number 6 to 12 and PME Vidya class number 6 to 12 as well. Those are our YouTube channels as well. I am Sushma Sharma, and you can see the interpreter also here on my left side. She is Anushka Sharma, so I welcome her as well. So before we start this Sahyog session, let me give you some brief about Sahyog and Paricharcha. Dear viewers, as you all know that Sahyog and Paricharcha, these are two very important programs of CIIT and NCERT, and both the programs are held under Manu Darpan cell as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan to provide psychological social support to the children, their parents and the teachers across the country for their mental well-being. So today also we have come across with a new topic. Let me see the topic first here on the screen, and you can also watch the topic here on the screen. It is all about how we can change the challenges into opportunities. So the topic is here: meeting challenges as opportunities for self discovery and strength. Bilkul kis tarah se hum chunautiyon ko ek avsar mein badal sakte hain, yahi hai hamara aaj ka vishay. Aur is vishay par charcha karne ke liye, yahan discussion karne ke liye mere sath studio mein maujood hain hamare do experts. उनका भी मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर नवीन कुमार मुक्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्ते,
2: थैंक यू
1: जी। सर का परिचय दूं, सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट DEPFE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, NCERT दिल्ली में। सर के अलावा यहाँ पर हमारी काउंसलर भी मौजूद हैं, उनका परिचय दे दूं, वो हैं वैशाली गोयल जी। वैशाली मैम, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते आपको।
3: नमस्ते
1: जी। मैम है प्रैक्टिसिंग काउंसलर मेरठ में, और आज स्टूडियो में मौजूद हैं NCERT के दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 8800-440-559, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, sahyog.ncert@cit.nic.in, और NCERT का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका लाइव चैट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, वहां भी आपके जो सजेशंस हैं वो आमंत्रित हैं। चलिए आप कुछ प्रश्न पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर, जैसे कि हमने आज का विषय लिया है कि जो हमारी चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कैसे तब्दील किया जाए, तो उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे टीचर्स हैं या कोई भी स्टेक होल्डर्स है, किस तरह से अपने जो छात्र हैं उनके जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं, किस तरह से वो भूमिका अदा करें।
2: थैंक यू सुषमा जी। क्योंकि जैसा कि अभी तक पिछले सोमवार से लेकर आज वीरवार तक जो ये विषय चले हैं, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है, बैक टू स्कूल।
1: यस,
2: यानी कि हर एक विद्यार्थी जो है एक ब्रेक के बाद वो स्कूल आ रहा है।
1: बिल्कुल, जून में छुट्टियां पड़ गई।
2: हाँ, और आज का भी जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एक बहुत बड़ी बात है कि चुनौतियों से आपको किस तरह से जो है
1: अपॉर्चुनिटीज
2: लेनी है। यस, और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए आपकी हेल्प कौन कौन करता है।
1: बिल्कुल,
2: यानी कि एक हमने खुद को कैसे समझना है। मैं सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो NCERT एक बात बार बार बताती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जो NCFSE 2023 में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, उसमें एक बहुत गुणवत्तापूर्वक रूप से इस बात पर भी बल दिया जाता है कि एक विद्यार्थी को सबसे पहले अपने आप को समझना है, अर्थात डोंट कम्पीट विद अदर्स, कम्पीट विद
1: योरसेल्फ,
2: एक बात। दूसरा, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, स्कूल के टीचर्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करते हैं, जो भी स्कूल से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, यहाँ पर किस तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए या होती है, उसके लिए मैं सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको हम स्कूल कहते हैं, वो एक सोसाइटी का मिनिएचर है, एक लघु रूप है, और समाज में जो भी काम हो रहा है उसी को लेकर एक विद्यार्थी का जो है यहाँ पर विकास किया जाता है स्कूल के अंदर। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले उसे ध्यान रखना होगा कि वो विद्यार्थियों के लिए डिजाइन करे थिंकिंग, उसको डिजाइन थिंकिंग भी हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी कैंटीन में जाता है लेकिन कैंटीन में उसे जो है कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी होती है, जब तक उसका नंबर आता है क्लास की जो ब्रेक है वो खत्म हो जाती है। अब उन्हीं विद्यार्थियों के लिए स्कूल जो है, ये जो डिजाइन थिंकिंग है, कैसे मुझे

0: उस तक पहुंचानी है ताकि उसका जो रेजिलियंस है, उसकी जो सेल्फ डिस्कवरी है, उसको वो समझ सके, अपना सके। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वो है कि हमारे पास स्टूडेंट के लिए स्कूल के द्वारा मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हर एक स्कूल करवाते भी है और मुझे लगता है करवानी भी चाहिए, उसको कहा जाता है क्लास वाइज एनुअल फंक्शन। इसका मकसद क्या है? हम हमेशा ये कहते हैं कि हर एक जो विद्यार्थी है वो डिफरेंट है, उसकी जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। अगर एक विद्यार्थी स्पोर्ट्स में अच्छा, हो सकता दूसरा विद्यार्थी आर्ट में अच्छा हो,
1: करेक्ट,
0: हो सकता है एक विद्यार्थी का मैथमेटिक्स अच्छा, हो सकता दूसरे का सोशल साइंस अच्छा हो, तो उसको डिस्कवर करने के लिए उसकी हेल्प जो करता है वो टीचर करता है, लेकिन वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वो स्कूल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशंस को ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी फील्ड विजिट्स करवानी है जिसे कि हमारे अपने NCF और NEP में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम दिया गया है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज। अब बार बार हम इस बात को तो बोलते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी करनी है, हमने उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है, लेकिन उसको करने के लिए करना क्या है, तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टीचर प्रोवाइड्स अ स्टेज, टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, और टीचर जो है एक मेंटर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में हमेशा ही विद्यार्थियों के साथ रहता है और उनके अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो कैपेसिटीज है, उनको इनकल्केट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम बार बार ये कहते हैं ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल स्कूल से ही लेना चाहूँगा। हम स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कंप्यूटर लैब में ले जाकर, AI लैब में ले जाकर, साइंस लैब में ले जाकर, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स लैब भी प्रोवाइड करें तो बहुत बेटर रहेगा, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए साइंस लैब भी प्रोवाइड करें बहुत अच्छा रहेगा, सोशल साइंस लैब के साथ साथ लैंग्वेज लैब भी अगर प्रोवाइड करें तो स्टूडेंट्स की जो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो बेटर होगी, और उसको सब्जेक्ट को समझने में भी, और जो एकदम वो कुछ छुट्टियों के बाद घर आ रहा, घर से स्कूल जाता है, उसको अपने आप को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर विद्यार्थियों को हम ये सिखाएं कि जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो क्यों गिर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उसको सिखाने से बेहतर है कि हम उसको वहाँ पर बताएं कि पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं उन पत्तों का गिरने का एक प्रोसेस वो फॉलो करें कि वो कब कब गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, उनको ला कर अपने पास रखें और देखें उनमें क्या फ़र्क है। तो जब हम एक इस तरह का लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उससे विद्यार्थी के अंदर का जो एक, जिसको हम कहते हैं ना, विद्यार्थी के अंदर की एक शक्ति होती है, ताकत होती है, वो बाहर आती है। एक उदाहरण सबको पता है, मैं थोड़ा सा सुषमा जी ऐड करना चाहूंगा विद्यार्थियों के लिए। हम एक लॉयन और रैबिट का एग्जांपल हमेशा देते रहते हैं, विद्यार्थी समझते भी है उसको, कि जो लॉयन और रैबिट का जो एक एग्जांपल है, जो एक कथा है, उससे ये विद्यार्थी को समझना होगा कि हमें अपनी क्रिएटिविटी का, इंटेलिजेंस का, लेकिन उसके साथ साथ संयम का भी ध्यान रखना है। अगर हमें पेशेंस है और टीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, तो हम जल्दी से ही जो रेजिलियंस की समस्या रहती है वो भी ठीक हो जाती है, और दूसरा जो सेल्फ डिस्कवरी है, मुझे किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, मेरे अंदर क्या ताकत है, वो भी विद्यार्थी बहुत आसानी से सीख सकता है। जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया नवीन सर। अब मैं वैशाली मैम से जानना चाहती हूँ कि एक काउंसलर के तौर पर किस तरह से एक काउंसलर बच्चों के लिए उनकी ताकत जो होती है अंदर की आइडेंटिफाई करने में, ताकि वो अपनी एकेडमिक और पर्सनल या फिर सोशल स्ट्रेंथ को समझ सकें, तो हाउ दे कैन हेल्प इन स्टूडेंट्स?
2: थैंक यू मैम। एक काउंसलर्स बहुत डिफरेंट तरीके से हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टिंग अगर हम करें तो बहुत सारे असेसमेंट टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट। इन टेस्ट के थ्रू हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी बहुत सारी अपने इंटरेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को जान पाएंगे, जिस से उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है और किस तरीके से काम करना है। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता होगा मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, किस जगह पे है, किस तरीके से है, तो मैं कहाँ किस डायरेक्शन में काम करूँ और कैसे काम करूँ, वो एक डायरेक्शन लेस वर्क होगा और मैं काम नहीं कर पाएंगे बच्चे वहाँ पे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट या कुछ इस तरह के बेसिक टेस्ट हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। आजकल बच्चे ना सबसे ज़्यादा जो देखा है वो देखा है कि पेशेंस बहुत कम है बच्चों में। अब वो पेशेंस कम होने की वजह से वो एक तो एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बच्चे हो रहे हैं या बच्चे रिएक्ट बहुत जल्दी

0: कर रहे हैं चीज़ों में, या बच्चे चीज़ें तोड़ देते हैं उस चीज़ को लेकर के, तो वहाँ मैं उनको बहुत अच्छे से गाइड करना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि हमें रिस्पॉन्ड करना है रेदर देन रिएक्ट। अब 2-4 मिनट रुक जाओ, टेक अ स्टेप बैक, उस चीज़ को प्रोसीड करो प्रॉपर तरीके से कि क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, क्योंकि रिएक्शन जो है पूरा इमोशन बेस्ड है। वो ऑन द स्पॉट गुस्सा आया, चीज़ों पे हमने रिएक्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया या फेंक दिया या कुछ बोल दिया। रिस्पॉन्ड जो है वो इमोशंस के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर इंक्लूडेड है कि हमने उस सिचुएशन को भी समझा, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हम अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसमें कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक हम लोग अपने सेशंस में करते हैं जो कि है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है कि बच्चा इनहेल करता है एंड 5 काउंट करने तक उसे होल्ड करेगा, और जब 5 काउंट करके होल्ड करा एक्सहेल करेगा, तो एक्सहेल करने के बाद भी वो 5 काउंट करेगा। तो उससे बेसिकली हमारा हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। अब जब हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, हमारे मन में हमारे इमोशंस भी रेगुलेट होंगे, मन में शांति भी होगी, चीज़ों को प्रोसेस भी हम कर पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी हैं, कैसे लेके चलनी हैं। इसके साथ में एक और टेक्निक है, कभी कभी हमें लगता है या तो हम लॉस्ट हो गए हैं या हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और कैसे करें, तो इसकी एक बहुत अच्छी माइंडफुलनेस टेक्निक है 5-4-3-2-1, प्रेजेंट में आने के लिए कि कैसे प्रेजेंट में आया जाए। 5 चीज़ें अपने आसपास देखो क्या आपको दिख रही हैं और उन्हें काउंट करो। 4 चीज़ें टच करो, हम अपने सेंसेस के थ्रू काम कर रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू प्रेजेंट में आ रहे हैं। 4 चीज़ें छू के देखनी है, 3 चीज़ें सुननी है जो हमारे आसपास हैं, और उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और उनको आइडेंटिफाई करिए कि ये मेल की वॉइस है, अगर फीमेल की वॉइस है, या अगर फैन की वॉइस है तो कितनी तेज़ आ रही है उसमें, इस तरीके से हम चलते हैं। फिर 2 में आता है इसमें स्मेल, कि हमारे आसपास किस तरह की स्मेल है और किस चीज़ की है वो। नेक्स्ट इज टेस्ट, जो 1 है। टेस्ट में हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या उसका फ्लेवर है, क्या उसका टेक्सचर है, किस तरीके से वो, क्या क्या उसमें डला हुआ है, जो हमें हमारे प्रेजेंट में लेके आएगा और हमारे साथ काम करेगा कि हम प्रेजेंट में आ रहे हैं और प्रॉपर वे में खुद पे सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, हमारे इमोशंस पे काम कर रहे हैं, हमारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत चीज़ें आएंगी जिसमें हम स्टक हो जाएंगे कि इसमें हमें ये वाला डिसीजन लेना है या ये वाला डिसीजन लेना है। हमारे पाथ बहुत सारे हैं कि मुझे इधर जाना है या दूसरी तरफ जाना है या तीसरी तरफ जाना है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि मैरिट्स और डीमैरिट्स बना लो किसी भी चीज़ के, कि इस वाले रास्ते में क्या मैरिट्स हैं और इस वाले रास्ते पे क्या डीमैरिट्स हैं। जिसमें कम डीमैरिट हो और आप अच्छे से कर सकते हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं। वहाँ पे कोलैबोरेशन करो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। मैंने जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया ना मैम स्कूल में आज के टाइम पे, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते चीज़ें।
1: पर वो मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ ज्यादा डिस्कशन होता है,
0: दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। अब माइंडसेट दोनों का सेम है तो वो कैसे ही वो प्रॉब्लम उस एक अंडरस्टैंडिंग वे में कैसे उसको समझ पाओगे। तो पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ एक हेल्दी डिस्कशन रखिए कि हम अपनी बात को उनसे बहुत प्यार से बता सके, उनसे कह सके कि हम इस चीज में फंसे हुए हैं या इस चीज में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या डिसीजन लूं या मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एक कोलैबोरेटिव वे है कि हम एक बच्चे को उसके स्ट्रेंथ और उसके चीज़ों से निकाल सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम में है तो निकल जाए, और अपनी स्ट्रेंथ को कैसे और डेवलप करना है ये हम बता सकते हैं बच्चे को।
1: यही बात मैं नवीन सर से दोबारा पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन टीचर्स ट्रांसफॉर्म द एवरीडे चैलेंजेस इनटू यू नो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस।
2: हाँ सुषमा जी, बिल्कुल, जैसा कि अभी वैशाली जी ने कहा कि यहाँ पर जब हम क्लासरूम के अंदर जाकर बात करते हैं और एक टीचर का और एक काउंसलर का जो रोल रहता है वो देखने में तो बहुत आसान लगता है, जैसा वैशाली जी को पता है क्योंकि ये तो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और डिप्लोमा कोर्स में भी कुछ ऐसी टेक्निक स्ट्रेटजी सिखाई जाती है जो कि टीचर्स को शायद पता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम टीचर एज ए काउंसलर की बात हमेशा करते हैं, वैशाली जी को इस बात का ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर जब टीचर की बात की जाती है, मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, एक टनल है विच इज फुल ऑफ डार्कनेस बट देर इज ए कैंडल बर्निंग एट द अदर एंड। अब वो जो जलती हुई रोशनी है ना, वो टीचर है, और क्लासरूम में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लासरूम के चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स के नहीं रहते हैं, ये स्टूडेंट्स के हर दिन के डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं। अभी जैसे आए ही है छुट्टियां काट कर, तो इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है वो रहता है स्पान ऑफ अटेंशन,
1: बिकॉज़ वो दे आर नॉट इन दैट मोड,
2: यस,
1: मोड आने में टाइम लगेगा।
2: अभी क्या है सुषमा जी, आप देख रहे होंगे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना मोबाइल से ज्यादा जुड़ चुके हैं, और उनका जो एक टाइम है वो मोबाइल पे ज्यादा रहता है। अब उसको कैसे क्रिएटिव बनाना है, उसको कैसे, मैंने पहले कहा वो जो डिजाइन थिंकिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमने अगर रोट लर्निंग से बच्चे को हटाना है, देखिए मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का अपना नेचर है, मैथमेटिक्स, साइंस के, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें हमें कंटेंट के साथ साथ हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ध्यान में रखना होगा, और टीचर जो है उसकी हेल्प करता है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस वो फेस करता है, फॉर एग्जाम्पल वो टाइम मैनेजमेंट को फेस कर रहा है, इमोशनल रेगुलेशन को फेस कर रहा है, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मुझ पे जो पीयर प्रेशर है उसका रीजन क्या है, तो ऐसे बहुत सारे जो कारण है वो टीचर को फेस करने हैं। और टीचर का काम क्या है, अगेन मैं कह रहा हूँ, टीचर इज प्रोवाइडिंग अ स्टेज, इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज, और लेकिन उसके साथ साथ वो एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, एक ऐसा काम करता है जिससे कि उसे हेल्प करनी है, लेकिन हेल्प वो अकेले नहीं कर पाएगा। बार बार विद्यार्थियों को इस बात को जानना होगा कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात यहाँ पर अभी वैशाली जी ने की है, टीम वर्क की जिसकी हम बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इस बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि हमें मिलजुल कर काम करना होगा, और हर एक विद्यार्थी के अलग टैलेंट है, हर एक विद्यार्थी के अलग टेस्ट है, और हम बार बार इस बात को भी तो बल देते हैं कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, तो हमारी जो ये सेंसेस है ये एक तरह से इसको परसीव नहीं करती है, हर तरह से परसीव करती है, अलग अलग तरह से परसीव करती है। इसीलिए हमें क्या करना है, टीचर को क्या करना है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, कि यहाँ पर बहुत आसान तरीके से एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करें, काउंसलर्स की हेल्प लें, काउंसलर्स के साथ साथ स्कूल में जितना भी एक रिसोर्सेज है हमारे स्कूल में, प्लेग्राउंड है, कैंटीन है, इंटरनल रिसोर्सेज स्कूल के रहते ही रहते हैं, स्कूल में जितने भी हमारे साथ जो एसोसिएटेड रहते हैं जिनको हम पीटीएम कहते हैं, पीटीए कहते हैं, उन सबका हमें हेल्प लेनी है। किस चीज़ के लिए, एक भी विद्यार्थी अगर हमारा उस चैलेंज को फेस करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीचर की और स्कूल की नाकामी मानी जाती है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बार बार एक बात कहा करते थे, द मिस्टेक ऑफ ए डॉक्टर कैन बी बरीड इन अ ग्रेव, द मिस्टेक ऑफ एन इंजीनियर कैन बी सीमेंटेड इनटू द ब्रिक्स, द मिस्टेक ऑफ ए लॉयर कैन बी फोल्डेड इनटू द फाइल्स, बट द मिस्टेक ऑफ ए टीचर इज रिफ्लेक्टेड टू द नेशन। इसीलिए अध्यापक को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पेशेंस के साथ उसे आगे बढ़ना है, और विद्यार्थियों के साथ मिलकर चलते हुए, जैसे हम कहते हैं ना पीयर सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिना पीयर सपोर्ट के हम स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो मैंने पहले भी बताया था कि जो हम लोग सोशल साइंस लैब बना रहे हैं, हम साइंस लैब बना रहे हैं, लैंग्वेज लैब बना रहे हैं, जिससे कि उनकी सेल्फ डिस्कवरी, उनको एक जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो उसको जानने जानकर ग्रास्प कर सके। जब हम क्लास वाइज एनुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वहाँ पर वो हर एक विद्यार्थी अपने टैलेंट को शो करवा सके, सिर्फ डांस के द्वारा नहीं, बल्कि डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसने, अगर उसको लगता है कालिदास के रूप में, शिवाजी के रूप में, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उसको प्रेजेंट करना है, तो उसमें उसकी क्रिएटिविटी आएंगी, जिसको हम बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स रोल प्लेज के द्वारा करे, कल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा करे। जब हम बार बार कहते हैं कल्चरल रूटीनेस आनी चाहिए, जब हम बार बार कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को आना चाहिए, क्यों ना बच्चा उसको लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज करे, ताकि वो उसको समझ पाए और अपने व्यवहार में लाकर, जो हमें कहते हैं ना स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, उसमें समझ सके। तो मुझे लगता है टीचर का बहुत बड़ा रोल है, और स्टूडेंट को जो एक रॉ मटेरियल उसको मिलता है, जिसको कनिंगम ने करिकुलम में कहा था कि वो जो रॉ मटेरियल है, मुझे अपने आइडियल स्कूल में उसको क्या करना है, तैयार करना है थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और चैलेंजेस जो भी स्टूडेंट्स को आते हैं वो अकेले फेस करने में उसको प्रॉब्लम रहेगी, इसीलिए पूरा एक जो टीम वर्क है वही उसकी हेल्प करते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। वैशाली जी, आप आखिर में, क्योंकि स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो ऐसी कौन कौन सी रणनीतियां हैं ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके और इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनसे पार पा सके?
0: हाँ मैम, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को सुनते सुना है, मैम स्ट्रेस हो रहा है।
1: जी स्ट्रेस,
0: अब स्ट्रेस की ना
1: बड़ा कॉमन हो गया,
0: बहुत कॉमन हो गया है स्ट्रेस का। स्ट्रेस का हैंड सेली का क्लासिफिकेशन है जो हम बोलते हैं कि यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज बेसिकली क्या है कि कोई डेडलाइन आई और मुझे उस पे कोई सबमिशन देना है, अपना असाइनमेंट देना, और मैंने पूरा उस डेडलाइन से पहले, कुछ दिन पहले उसको अच्छे से फिनिश किया और सबमिट कर दिया, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ। अगर डेडलाइन नहीं होगी तो मैं वो करूंगी नहीं,
1: बिल्कुल
0: वो टालते रहेंगे, प्रोकास्टिनेशन होता रहेगा वहां कहीं ना कहीं। और अगर हम डिस स्ट्रेस की बात करें कि जो मैं परफॉर्म कर सकती थी और मैं जितना मैं मेरा एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, और मैंने इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लिया, इतना ज़्यादा सोच लिया कि मैं वो भी नहीं कर पाई और वो डेडलाइन भी चली गई और मैं उसमें परफॉर्म ही नहीं कर पाई, वो हुआ डिसस्ट्रेस। बेसिकली ये हमें इस पे काम करना है कि मैं मेरी एबिलिटी और मेरी कैपेबिलिटी को भी डिक्लाइन ना कर दूँ, ख़राब ना कर दूँ इतना ओवरथिंक करके, इतना ज़्यादा परेशान हो करके। अब उसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज करना हमें ना बेसिक डेली हमारी हैबिट्स बनानी बहुत ज़रूरी है। अब वो बेसिक हैबिट्स कैसे? जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन अचीव माई गोल्स, वो कहीं ना कहीं मुझे जब मेरी डेली हैबिट होगी वो मेरे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाएगा और वो मैं उस पर ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो मुझे पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली करने चाहिए। बच्चे अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, सामने वाले बच्चे के पास ये है, स्पेशली विद द गैजेट्स, कि मेरे पास आईफोन नहीं है या मेरे पास ये पर्टिकुलर गेम नहीं है, इस तरह की चीजों से करेंगे बच्चे कंपेयर। तो इसको हम किस चीज से थोड़ा हम काम करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर मेरे पास वो नहीं है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो मेरे पास है, मेरी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, वो कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरे पास है और किसी और के पास नहीं है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे भी याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि आप उनकी तुलना मत करिए जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पास नहीं है आप उनको देखना शुरू करिए, आपको इतनी संतुष्टि मिलेगी कि यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपके पास बहुत कुछ है।
2: इसमें कुछ विशाली जी को बीच में टोक रहा हूँ, उसमें जब आप स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं अपने ट्रेनिंग्स के साथ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम भी रहती है और ज़्यादातर हमारे जो काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, यही बताते हैं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, क्योंकि जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं ना, फिर हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी है, हमारा जो अपना एक
0: बिल्कुल खत्म होने लगता
2: है, इनेट पावर है, वो खत्म हो जाती
0: है हमारा, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट ही खत्म हो गया ना। अगर हमने किसी और से कंपेयर कर लिया और अपने अपने मेरा इमेज इश्यूज है या मैं किसी और से कंपेयर कर रही हूँ, मेरा ट्रस्ट खत्म। अब ट्रस्ट खत्म तो कॉन्फिडेंस भी खत्म, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरा, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी वहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए, अपना डेली रूटीन बनाइए, मैनेज करिए चीज़ों को। मैंने देखा है कि जो 11th 12th वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मैम टाइम नहीं है, हमें कोचिंग की भी तैयारी करनी है, हमें स्कूल भी आना है रेगुलर, फिर हम क्या करते हैं 11-12 बजे सो जाते, थक के सो जाते हैं। उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। अल्टरनेटिव डेज में आप कोचिंग कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ आप अपना प्लान करके रख लीजिए। जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट एक दिन लेके बैठेंगे हम कि आज मुझे इंग्लिश भी करना है, हिंदी भी करना है, मैथ्स भी करना है, नहीं, हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अल्टरनेटिव डेज पे रख दें। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे जो लगता है कि मुझे इस वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देना है, उस वाले सब्जेक्ट में आप डेली बेसिस पे टाइम देना शुरू कर सकते हैं। तो वो बेसिक रूटीन और हमें प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को, हमें सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी,
0: बहुत ज़रूरी है टाइम के साथ साथ, कि हमारे पास टाइम नहीं है तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं
1: हम, हेल्थ इज वेल्थ,
0: बिल्कुल एक तरीके से रोबोट बन गए हैं। वो बहुत ज़रूरी है अपने साथ बैठे और अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दें। फिजिकल के साथ साथ, आई एम साइकोलॉजिस्ट तो मैं मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बोलूँगी, अपनी हॉबीज को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, आप डेली कुछ चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट संडेज पे, वीकली कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आपका मी टाइम हो। आप अपने साथ बैठ के काम कर सके, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, आज कैसा लग रहा है, आज कैसा मूड है, किस तरीके के इमोशंस हैं आप अपने. जब हम सेल्फ चेक करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है हमारे बारे में जो हमें शायद उस भागदौड़ में नहीं पता चलती. तो वो अपना मी टाइम ज़रूर बना के रखिए, और जब उसे आप लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, लगेगा कि अच्छा ये चीज़ भी थी इसमें और इस पे मुझे काम करना चाहिए, या ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे अंदर. आपको खुद वो सरप्राइजिंग लगेगा कहीं ना कहीं.
1: जी मैम,
0: जी अपने इमोशंस पे काम करिए. अगर मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ढूंढिए उसमें क्या क्या उसकी दिक्कतें, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं चीज़ें करने के लिए.
1: बिल्कुल मैम, वैशाली जी बहुत अच्छे से आपने स्ट्रैटेजीज बताई किस तरह से चैलेंजेस को आप यू कैन कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज. और डॉक्टर नवीन कुमार मुक्ता जी हमारे साथ रहे, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बहुत सारे आज के विषय पर अपनी जानकारी दी. और सहयोग सत्र में यही एक उद्देश्य है कि सबको मिलकर सहयोग देना होगा, तभी हमारा कार्यक्रम भी सफल हो पाएगा. और मनोदर्पण सेल का नंबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि काउंसलर्स भी मौजूद हैं, आप चाहें तो उस नंबर पर कॉल करके भी अपनी समस्या उनसे साझा कर सकते हैं. 844-844-0632 ये नंबर है. तो आज के सहयोग में बस इतना ही, धन्यवाद करते हैं दोनों ही मेहमानों का. डॉक्टर नवीन कुमार गुप्ता जी, थैंक यू सर.
2: नमस्कार.
1: और वैशाली मैम, वैशाली गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम, नमस्ते. और दर्शकों, आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर से हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, सभी कार्यक्रमों की सुबह के 8 बजे से, जो की शुरुआत होती है योग शक्ति के साथ.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप सुन रहे उड़ान। वेल दोस्तों, आप सभी को कुछ बातें शेयर करने की हैं। हाँ, दिन तो वैसा हर एक के जीवन में खुशियों से भरा ही होता है, लेकिन हमारे साथ की रूहानी, उसने आज 14 साल की उम्र में ही अपने पिता को खोया है। कोटो कोटो श्रद्धांजलि उसके पिता को और उस नन्ही सी जो मेरी सहेली बनकर आप दोस्तों के बीच आती है, उसे भी ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं। और परमात्मा से मैं यही आशा करती हूँ कि उसे इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख के समय को भूल सके। बेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन गीत आप तक पहुँचाते हैं और फिर थोड़े देर में लौट कर आते, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: इस बेहतरीन गीत के बाद आ गए हैं एक कहानी की तरफ, आप लोगों के लिए विशेष आज की उड़ान में लेकर आ रहे हैं, घर में फंस गया चोर।
1: मेरा सब कुछ ले गया रे, मेरे इतने अच्छे पीतल के दिए, बड़े बड़े पतीले, फूलों की टोकरी, सब ले गया। हाय हाय हाय हाय।
2: तो वो चोर मेरे धान बेचने के सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए, उसका क्या बोलो?
1: हाय हाय हाय, मैं क्यों सोती रह गई जी।
3: परसों जुगी मोहल्ला में सतयू के घर पे चोरी हुई थी और आज यहाँ पर हुई है।
4: हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, क्या होगा?
5: ये जी सुनिए, मुखिया जी के घर पर चोरी हुई है जी।
6: अच्छा अच्छा, ठीक है।
5: क्या ठीक है जी, पता भी है कितना कुछ लेकर गए हैं, पीतल के दिए, पतीले, टोकरी और मुखिया जी के धान बेचने के पैसे भी लेकर गए हैं जी। सुनिए, हमें भी जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझ गए?
6: अरे, ऐसे भूखे नंगों के घर चोर नहीं घुसते। जाओ जाओ, मुझे कुछ पराठे और आलू की सब्जी बना कर दे दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।
5: ओह, ये आदमी भी ना, इनका सिर्फ खाना और खाना और किसी चीज की फिक्र नहीं है आपको, हर वक्त सिर्फ ये बना दो वो बना दो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख।

0: मगरमच्छ दाएं बाएं अंदर चोर बाहर डकैत, अब सबका नाश हो गया हमारे गांव का। हाय हाय,
1: ये क्या चोरी तो मुखिया जी के घर पर हुई है, अब तुम लोग ऐसे उदास क्यों खड़े हो भाई?
0: नहीं नहीं, फिर चोरी नहीं हुई है कैलाश, अब डकैती भी हुई है।
1: तो मुझसे कहा कि चोरी,
0: कल घर पे चोरी हो गई थी और अब बाजार में डकैती हो गई है।
2: मेरा कैश बैग खाली करके चले गए वो लोग।
0: बेचारे नत्थू के सारे पैसे और मछलियाँ लेकर वो भाग गए।
1: तू मत रोना नत्थू, मुझे मछलियाँ दे, मैं पैसे देता हूँ।
2: अरे मछली कहाँ है, वो तो डाकू खाने के लिए लेकर रफू चकर हो गया है। अरे कैलाश भैया आप भी कुछ कीजिए ना।
1: ये तो अजीब मुसीबत है, डकैतों की वजह से सिर्फ दाल चावल खाना पड़ेगा।
0: कैलाश अगर तुम इस गांव को आतंक से मुक्त कर पाए तो मैं तुम्हें एक दिन भर पेट खाना खिलाऊंगा। आगे तुम सोच क्या रहे हो?
1: सोच रहा हूँ इस वक्त मछलियाँ मिलेंगी।
0: अभी अभी चलो।

0: क्यों जी, सोए क्यों नहीं अब तक?
1: सोच रहा हूँ।
0: सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो?
1: तुम्हें दौलत का हार बनवा दूँ।
0: क्या कंजूस, मक्खी चूस और मुझे बनवा कर तुम्हें नौलखा हार?

0: ये कितना सुंदर है, देखिए ये ले लूं क्या?
1: ले लो ले लो, एकदम नया डिजाइन आया है मार्केट में, ले लो ना।
2: कीमत कितनी है?
1: 1.5 लाख रुपए।
2: 1.5 लाख? ठीक है, कल लेकर आ जाऊंगा। सुनो भाग्यवान, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो फिर कल आकर ले लेंगे, ठीक है? गद्दे के नीचे जितने पैसे हैं, लगता है उसी से काम हो जाएगा। क्या कहती हो तुम भाग्यवान?
0: हाँ, काम तो हो ही जाएगा, गद्दे के नीचे तो इससे भी काफी ज्यादा पैसे हैं। और सुनो, एक कान की बाली भी ले लेना, ठीक है ना?
2: सुनो, चोर आ सकते हैं, तो सारे पैसे घड़े के अंदर छिपा कर रख देना, ठीक है? भाग्यवान, कान का कच्चा सत्य बुढ़ा इसी तरफ आ रहा है। तो आपको काम आसान हो जाएगा।
3: हाँ कैलाश, गहने खरीदने आए हो?
2: हाँ हाँ जी हाँ।

0: पर पैसे रखे।
1: नहीं नहीं, तुमने मुझ पे भरोसा किया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझ पे भरोसा करो। ठीक है।
2: हाँ, क्या कह रहे हो तुम, 1,00,000 का हार?
1: हाँ, सोच कर देखिए, कितने सारे पैसे और वो भी घर पर।
2: और इतने सारे पैसे कैलाश के पास आए कहाँ पर? लॉटरी लगी क्या?
3: बोलो यार, जीत हो।
0: भाग्यवान, तुम्हारे हाथों का खाना खा कर ना दिल बाग बाग हो जाता है।
4: ए, हे जी, आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ कर लिया, अब कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना?
0: तो कहा, सब किया है ना?
4: हाँ, सब कर दिया।
0: ठीक है, काम हो जाएगा, आज रात कैसे भी करके हमें जागना होगा।
4: लेकिन मैं सोच रही थी कि
0: मैं भी सोच रहा हूँ, अगर आज वो आ जाए तो वो सारे चोर पकड़े जाएंगे।
5: अच्छा ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ, आज की चोरी कैलाश के घर पर।

0: अरे ये क्या हो गया?
1: सुन बच्चू, केकड़े ने काटा है तो वो मुलायम कैसे होगा भला?
0: मैं फिर कभी तुम्हारे घर पर चोरी करने नहीं आऊंगा।
1: ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? भाग्यवान, रस्सी ले आओ। अब चलना होगा पुलिस स्टेशन। तुझे वहीं ले चलता हूँ।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाना, वरना पुलिस मुझे बहुत मारेगी।
1: सच कह रहा है ना?
0: हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपसे वादा करता हूँ, मैं उठक बैठक भी कर दूंगा।
1: अब चुपचाप करके वहाँ जाकर बैठ जा। जा
0: क्या? लेकिन क्यों
1: है ना, तो थोड़ी सजा तो जरूर मिलेगी। जाओ वहाँ जाकर बैठो। भाग्यवान,

0: दीदी सुनिए ना, मुझे छोड़ दो ना।
1: नहीं भाई, उन्होंने जो कहा है उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अरे बाप रे,
2: बाहर निकाल, कहाँ है वो 1.5 लाख रुपए? मुझे अभी क्या भी चाहिए?
1: मुझे कुछ नहीं पता भाई, जो कुछ भी पता है सब मेरे पति को पता है। जो भी रखना है वही तो रखते हैं ना।
2: कहाँ है तेरा पति?
1: वहाँ है, आप लोगों के डर से वहाँ पर जाकर छिपे हुए हैं। वहाँ पर है।
2: बाहर निकाल, जल्दी निकाल।
1: सुनिए ना जी, जल्दी बता दीजिए ना, वरना ये
2: खबरदार, अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं अभी उसे कटारी से।
0: मुझे सच में नहीं पता।

0: जल्दी बोल।
1: अरे रुक जाइए रुक जाइए डकैत भैया, मुझ पर यकीन कीजिए, वो इनका पति नहीं हूँ, मैं चोरी करने आया था और आकर पकड़ा गया। अरे बाप रे बाप, छोटा की पुलिस ही मुझे पकड़ लेती।

0: कैलाश, इस असंभव को तुमने कैसे संभव किया?
1: हर बार मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। अगर मेरी भाग्यवान साथ ना देती तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बिगड़ जाता।
2: अरे ये कैसे होता भला? मैं आरुमणि कैलाश की सिर्फ एक और एकमात्र बीवी जो हूँ।

0: भैया होश में आओ, होश में आओ भैया, होश में आओ, होश में आओ भैया, भैया होश में आओ, होश में आओ भैया।
1: मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं, आप सब कौन हैं?
0: भैया भैया मैं निर्मल आपका छोटा भाई।
1: कौन निर्मल भाई, आप कौन हो? मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया?
0: हे भगवान ये क्या हो गया।
2: चप्पल टूट गई है, तुम्हारी पहन लूं?
3: बीरबल के हास्यवृत्ति का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी बातें सुन तो रोता हुआ बच्चा भी हंसने लग जाएगा।
4: और मेरे चुटकुले सुनकर तो मुर्दा भी जाग जाए।
5: अरे ये तो मशहूर जोकर जोगिंदर जोगी हैं, उर्फ जे जे।
4: अब मुंह मियां मिट्ठू क्या बनूं? बस इतना समझ लीजिए कि मैं हूँ हंसी का बेताज बादशाह।
6: हमें नए जोकर की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बीरबल है।
4: ये किस खेत की मूली है?
2: मूली नहीं, मुगल सल्तनत का सलाहकार बीरबल यानी मैं।
3: हाँ सलाहकार ही नहीं, बीरबल से ज्यादा फनकार, होशियार, मजेदार पूरे दुनिया में कोई नहीं।
4: अगर यही बात है तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, कौन सबको सबसे ज्यादा हंसा पाता है, बीरबल या मैं?
3: बस इतनी सी बात, हो जाए मुकाबला।
2: जहाँपना पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए।
7: जोकर ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा,
4: जो जीता वो बनेगा राज्य का हास्य सम्राट और दरबार का आधिकारिक विदूषक हमेशा हमेशा के लिए। अरे वाह बीरबल तो गयो।
3: हमें बीरबल के फन पर पूरा भरोसा है, मुकाबला शुरू किया जाए।
2: ये मुकाबला कहीं मेरा मुंह काला ना कर दे।
7: फिर क्या, जोकर और बीरबल आमने सामने थे
5: तो दोनों प्रतियोगी को तीन तीन मौके मिलेंगे, जिसके चुटकुलों पर सबसे ज्यादा लोग हंसेंगे वो बनेगा हंसी का सम्राट और इस महल का आधिकारिक विदूषक।
4: बीरबल पहले तुम।
2: ठीक है तो बताओ, जो इंसान कभी दुखी ना होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेगम।
5: अरे हट, ये भी कोई जोक था, बकवास। अब जोकर की बारी।
7: जोकर आगे आया,
4: जिस सांप को गिनती नहीं आती उसे क्या कहते हैं? नागिन।
5: मस्त जोक मारा रे, मजा आ गया।
3: बीरबल इसे बता दो, हंसाते कैसे हैं?
2: चाय ने अपने पति से क्या कहा?
8: क्या?
2: तू मेरा चाय पति है।
7: दरबार में सन्नाटा छा गया।
5: छी छी छी छी छी छी, ये जोक सुनाने से पहले तुम्हारा मुंह क्यों नहीं फट गया बीरबल?
3: बीरबल ये वाला सच में बहुत गंदा था।
2: होता है होता है।
4: मैं बताता हूँ असली जोक, बताओ मकई मरने के बाद क्या बन जाती है? भुत्था।
3: तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया।
5: अब बचा है बस एक आखिरी मौका, चलो बीरबल करो अपनी बकवास।
7: बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
2: नदी की लहरें कभी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बहरी होती है।
7: ये सुन हंसी की लहर दरबार में गूंज उठी। इस बार तो शातिर मंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
3: तुमसे बड़ा हंसी का सम्राट कोई नहीं।
7: जोकर ने अपने हाथों को मलते हुए कहा,
4: इतनी जल्दी नहीं, अभी तो एक चुटकुला बाकी है। मच्छर बच्चों से ज्यादा समझदार है, बताओ क्यों?
8: क्यों?
4: क्योंकि वो शाम होते ही घर आ जाती है।
6: ची।
5: इस पर तो मैं चाह कर भी हंस नहीं पा रहा। ची।
8: ची, ची, ची, ची, ची, ची।
7: गुस्से में जोकर ने अपने हाथ पर बंधा गुब्बारा पकड़ा और उसे दबोच कर फोड़ दिया। तभी
4: ये क्या?
7: और अचानक दरबार में सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे।
5: अरे ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है?
6: हाँ मुझे भी।
3: हमें नहीं पता कि हम क्यों हंस रहे हैं। मगर तुम क्यों नहीं हंस रहे हो बीरबल?
2: इतने साधारण चुटकुले पर मैं कैसे हंस सकता हूँ?
0: अच्छी
2: पता नहीं आप लोगों को क्या इतना पसंद आ गया।
3: चुटकुला तो हमें भी बकवास लगा। फिर क्यों हंस रहे हैं हम?
7: बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने देखा कि दो सैनिक अंदर आए और वो भी अंदर आते ही हंसी से लोटपोट हो गए।
2: अच्छा तो ये बात है।
7: और इस तरह दोपहर से शाम हो गई और आखिरकार लोगों का हंसना बंद हुआ।
6: इतना तो मैं आज तक नहीं हंसा।
5: मैं भी नहीं। वाह जोकर, तुम्हारे चुटकुलों में तो मानो जादू है।
4: जीत मेरी हुई, मैं हूँ हंसी का सम्राट। जाओ जाओ जाओ जाओ, मेरी ट्रॉफी ले आओ और अपॉइंटमेंट लेटर भी। वैसे पेमेंट कितने तारीख को होता है?
7: फिर क्या, बादशाह ट्रॉफी और लेटर लेकर तैयार थे। जोकर उनके हाथों से वो लेने ही वाला था तभी
2: ठहरो, सैनिकों इसके सामान की जांच की जाए।
7: सैनिकों ने जोकर से पोटली छीनी और जैसे ही उसे पलटा उसमें से निकले कपड़े, भोजन और एक बोतल भी। बीरबल ने उसे उठाया और कहा,
2: ये है असली जोकर।
4: क्या मतलब?
7: फिर बीरबल ने उस बोतल का ढक्कन खोला, शातिर मंत्री को सूंघने को कहा। उसे सूंघते ही
5: अरे अरे मैं हंस क्यों रहा हूँ?
2: इस हंसाने वाली गैस की बदौलत।
8: क्या?
2: जी हाँ, ये एक ऐसी गैस है जिससे सूंघने के बाद व्यक्ति पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे तुम सब हंस रहे थे और अब मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। क्यों है ना जोगी जोकर?
4: वो
3: इतना बड़ा धोखा?
2: जी हाँ, पहले तो मैं भी सोच रहा था कि इनके चुटकुलों में ऐसी क्या खास बात थी कि आप सब इतना हंस रहे हो। फिर मैंने देखा कि दो सैनिक अंदर आते ही हंसने लगे। उन्होंने तो चुटकुला सुना भी नहीं था। उससे मेरा शक बढ़ गया।
3: पर इसका असर तुम पर और इस जोकर पर क्यों नहीं हुआ?
2: क्योंकि सर्दी से मेरी नाक बंद है। और जहाँ तक इस जोकर की बात है,
7: फिर बीरबल ने उसकी लाल नाक खींच कर निकाली।
2: इस नकली नाक की वजह से गैस इसके असली नाक तक पहुँच ही नहीं पाई और ये बच गया।
4: मुझे माफ कर दो महाराज, आजकल लोगों ने सर्कस देखना बंद कर दिया है और सुना है भविष्य में मोबाइल नाम का यंत्र आने के बाद लोग उसी में चिपके रहेंगे, तो पापी पेट के लिए मैंने ये सब किया।
3: किसी और के पेट पर लात मार कर अपना पेट भरना चाहते थे तुम, अब हंसने की जगह जेल में रोते बैठो।
7: इस तरह बीरबल ने अपने आप को बुद्धि का सम्राट साबित किया और हमने ये सीखा, हमें अपने मतलब के लिए किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए।
2: और हाँ, आज के चित्रकारी के विजेता है ईशान पाटिल।
9: नमस्कार दोस्तों।
10: वेल, ईशान तो जीत गया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रेडियो मधुबन में आप जुड़े थे उड़ान कार्यक्रम के साथ और मैं हूं आपकी दोस्त मोना। कल मिलने का वादा करते हुए कहना चाहूंगी गुड बाय, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
7: ये है नशे की कहानी।
11: पहला नशा, पहला खुमार,
7: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
11: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
7: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया,

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल और माई विलेज माई एरिया। सही में गाँव का नाम जब सुनते मेरा गाँव, मेरा मैंने अपना है, स्नेह है, भरपूर है, प्यार है, मेरे से सबसे ज्यादा प्यार है, मेरा नाम से प्यार है, मेरा गांव से प्यार है, मेरा स्कूल से प्यार है, मेरा परिवार से प्यार, मेरा शब्द में बहुत अच्छा लगता है। एक प्रोग्राम का नाम है मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज हमें बहुत खुशी है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का भावना भाव विद्यार्थी विकास में बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलेगा। उनका आवाज को पहचानने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह बच्चों को मंच देते, तो आज हमें खुशी है सभी होवनहार बच्चे सभी पहला बार आए रेडियो कार्यक्रम में, उनका आवाज सुनेंगे तो बहुत मजा लगेगा। और उनका जो माता पिता भाई बहन टीचरगण उनका दोस्त रिलेटिव सुनेंगे, अरे इनका आवाज है, ये हमारा आवाज है, ये आवाज ही उनका पहचान होगा, तो देर किस बात की, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय खासकर हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा पहुंचे जो की रेपदर तहसील में आते हैं, तो आबरोड का आवाज तो हम हमेशा सुनते हैं, पिंडवाड़ा का आवाज तो सुनते हैं, लेकिन आज रेपदर ब्लॉक के पामेरा गांव का आवाज बच्चों का आवाज सुनेंगे। तो इसको वार्म अप कराने के लिए हमारा मैम उपस्थित है, मैम ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जानते हैं, एक बार जाकर आए तो उनको स्वागत करेंगे। मैम अपना परिचय देंगे और बच्चों को एक उमंग उत्साह भरने के लिए एक वार्म अप कराइए।
1: माय नेम इज छाया कटारा।
0: जी मैम,
1: मैं कल ही ब्रह्मा कुमारी होकर आई हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। और हमारे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा सिरोही।
0: जी मैम,
1: जो एक छोटे से एरिया में है, बट बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हमारे यहाँ से मिलेगा।
0: बच्चे आज तो इस प्रोग्राम को कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत बच्चे बच्चों को भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं?
1: बच्चों को अच्छा लगा कि हमारे बच्चे भी एक रेडियोग्राफी से जुड़ेंगे और इनकी आवाज आगे तक जाएगी।
0: बच्चे जो आते मैम आज कहाँ कहाँ से आते हैं?
1: ये बच्चे इसी गांव के हैं।
0: सभी इसी गांव के?
1: जी, इसी गांव के बच्चे हैं और इनकी स्कूल 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे के।
0: मैम बालिका शिक्षा को लेकर क्या कहना? आप एक मैम है, बालिका थे, कभी पढ़ते थे, लेकिन आज किस आधार से इतना मेहनत क्या किए जो आज एक मुकाम तक पहुंचे, एक लक्ष्य तक पहुंचे?
1: जी, अभी तो हमारे यहाँ का जो गर्ल्स का जो
0: नामांकन
1: एजुकेशन नामांकन वगैरह नामांकन तो काफी है, पर 12th के बाद अक्सर इनको आगे का मौका नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जब ये देखेंगे और इसी तरह से कोई प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेगी।
0: तो देर किस बात की, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज न हो विद्यालय में और पामेरा का आवाज आज सुनने को मिलेगा, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं परमात्मा के याद में, माँ सरस्वती की याद में। तो पहला प्रस्तुति वार्म अप तो होगी ब्रेक का पहले, अब एक प्रार्थना शुरू करेंगे हमारा बड़े बच्चे। तो सभी अपना अपना नाम और कहाँ से।
1: नमस्कार, मेरा नाम धरती परमार, मैं राजकीय उच्च विद्यालय पामेरा के एक छात्रा हूँ जो 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम डिंपल माली, मैं कक्षा 12 से, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा की छात्रा हूँ और कक्षा 12 में पढ़ती हूँ।
3: नमस्कार, मेरा नाम पूनम चौधरी, मैं राजकीय उच्च विद्यालय पामेरा से बात कर रही हूँ। आज हम सब सामूहिक प्रार्थना करेंगे।
4: नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा में पढ़ती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। सभी बच्चे रेडी होंगे और सभी बच्चे अपना अपना अभी नाम तो बता दिए, अभी प्रार्थना शुरू करेंगे। सभी बच्चे रेडी है? ओके, 1 2 3 शुरू।

0: कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। स्वर लय का साथ गाते हैं बच्चे। और एक प्रार्थना हो माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती का वंदना करते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। और एक गीत प्रस्तुत करेंगे तो प्रार्थना में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करें। एक लय कर सकते हैं
0: उठो।

0: माँ भारती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मौका का आवश्यकता था, जो मौका आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन शाखा आज पहुंचा है। उनका टैलेंट, हुनर और दिल का, हृदय का जो संगीत है, इस तरह प्रस्तुतकरण करते हैं, तो हमारा इस कार्यक्रम को जो सजा है, उनका नाम सुनते एक बार तो बहुत अच्छा लगा। इतना इस गीत को देशभक्ति में ओतप्रोत होकर अपना बात को रखे, तो फिर से आपका नाम बताइए प्लीज।
0: मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
1: आपको डर झिझक कुछ नहीं लगा गाने में?
0: थोड़ा सा डर
1: लगा, लेकिन अभी डरना नहीं, क्योंकि रेडियो में आपका आवाज सुन रहे हैं, आपको पहला बार मौका मिला रेडियो में, तो आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं। और इसका धन्यवाद किसको देंगे?
0: मैम को
1: देंगे, क्योंकि मैम का आशीर्वाद, मैम भी उपस्थित है जो वार्म अप करा दिए पहले में ही, तो इसलिए आप भी अच्छा बोल पा रहे। और बढ़ोकर क्या बनेगी खुशबू? कुछ लक्ष्य रखा है मैम जैसे? ना डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, क्या बनेंगे? पुलिस। मैम बोला भाई मेरा नाम तो रोशन करो कम से कम, नहीं बोला हम पुलिस बनेंगे, इसलिए तो हाइट भी अच्छा है, इसलिए मेहनत करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करना अति आवश्यकता है, पढ़ाई का साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते है ना खुशबू? और घर में कोई पुलिस है क्या परिवार में? फिर भी आपको कैसे याद आया जो पुलिस बनूंगी? तो अच्छा,
0: ऐसे लगता है कि पुलिस बनना चाहिए।
1: पुलिस बनने लोग तो भागेंगे आपको देखकर, नहीं अच्छा आदमी भागेगा नहीं, बुरा आदमी जो भ्रष्टाचार होगा, जो नुकसान करेगा उसको, वो डर कर भागेगा।
0: हाँ।
1: आपका काम क्या होगा जो पुलिस होगा? तो भ्रष्टाचार को, चोर को
0: उसे पकड़ना,
1: पकड़ना है, पकड़कर उसको दंडित करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक बार हमारा और एक बच्चे बोले भाई सर हमारा नंबर कब आएगा, तो और एक गुड्डा हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। लेकिन लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन। आज तो बच्चे को एक मंच मिल रहा और एक एक आरजे बन गए, रेडियो में बोलने का चांस मिला, इसलिए धन्यवाद का पात्र स्कूल के। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: हाँ वो सुन रहा है तो आपका नाम रोशन कर रहे माँ बाप का, इसलिए आपका बोला मेरा बच्चा अब स्कूल में जाकर ऐसे नाम रोशन करते। क्या प्रस्तुत करेगा उत्तम, सुनाएगा?
1: कर्म पूछ कर गोली मारी पहल गाँव के घाटी पे, बैरे हो गए गाँव 26 भारत माँ की साथी पे। मेहंदी का रंगना सूटा उसका सिंदूर मिटाया था, तुम्हें दया ना आई वो सिंधुओं का खून बहाया था। कश्मीर की घाटी घायल घायल हिंदुस्तान है, हिंदू होकर नहीं सुरक्षित कैसा हिंदुस्तान है। भारत माता कहती मुझे आज बचा लो गैरों से, महाराणा प्रताप बनो तो बहते हिंदू शहरों से। कब तक छुप कर वार करोगे, कब तक जान बचाओगे, ऐसा मौत तुम्हें हम देंगे कब न नहीं तुम पाओगे। पानी बंद किया है तेरा आटा भी रोगेंगे, बांध रहा है तू जहाँ पे वहां पे गोली ठोकेंगे। कर्म पूछ कर गोली मारी पहलगाम के गाड़ी पे, बेरे हो गए गाँव 26 भारत माँ की साथी पे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर। और बिना झिझक पहला बार आए, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लिए। ये तो परमात्मा का याद में जो बढ़कर शुरुआत किए उसका ही शक्ति है, ज्ञान है। तो अच्छा लगा।
1: अच्छा लगा।
0: और बढ़े क्या बनेगा? अध्यापक।
1: अध्यापक,
0: वाह, अध्यापक हमारा सुन रहे। अध्यापक क्यों, पुलिस क्यों नहीं? एक बहन बोला हम पुलिस बनेगी, लेकिन तुम बोला हम अध्यापक टीचर, क्योंकि टीचर का सम्मान होता है, पुलिस का भी। शिक्षक और रक्षक, पुलिस हमारा रक्षक है ना, और शिक्षक और किसान कृषक, ये तीनों को हम सलाम करते। लेकिन हमारा साथ इस कार्य कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा छोटी सी परी है, नन्ही सी परी, नाम मुस्कुरा रहे, नाम जो बोले परी, परी तो अब तो कोई नहीं बोला, फरिश्ता। हमारा फरिश्ता का परिचय देंगे, फरिश्ता नाम बताओ।
2: कोमल।
0: कोमल, अच्छा, उसका स्वर में ही कोमलता है। लड़के तो कोमल होते है ना, कोमल होते हैं, लेकिन कभी होगा तो पूरा काली का रूप भी, दुर्गा का रूप भी दिखाते है ना, कोमल भी है और सख्त भी है। चलिए कोमल क्या सुनाएगी, सुनाओ।
2: आसमान में बदरी चाई, देर से मुन्ने संग में टप टप टप टप बूंदे बोली, बीजो नजर आके खोली, पौधों ने भी ली अंगड़ाई, सब ने मिलकर खुशी मनाई।
0: वाह वाह, सही में पौधा, छोटा सा पौधा बीज से कैसे अंकुरित होता है और पूरा जीवन कहानी सुना। ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और इसके बाद शरीर छोड़ते हैं, तो वृक्ष जैसे, बहुत अच्छा। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों से रूबरू होने के लिए। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM। बच्चे सोच रहे सर आज नया नया आइटम लेकर आए और हमारा आवाज को जन जन तक पहुंच रहे, सबको खुशी लग रहा है? हाँ जी, क्या बोलेंगे?
3: हाँ जी।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा करते हुए एक ब्रेक लेते हैं।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: के ब्रेक के बाद हम बच्चों को सुन रहे थे, हम भी बच्चे बन गए। और हमारा मैम तो पहले ही बच्चे बनकर बच्चों का साथ पूरा अपना आवाज को सुना रहे थे, और तत्पश्चात बच्चे रोक नहीं पाए अपना आवाज को। एक का बाद चाहे देशभक्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, उनको मंच मिल रहा है। चलिए देर किस बात की, अपना अपना नाम बताए और कौन सा क्लास में। ओके शुरू।
2: मेरा नाम किशोर है, मैं कक्षा पांचवी से।
3: मेरा नाम दशर प्रमाण है, कक्षा पांचवी का छात्र।
4: मेरा नाम हितेश कुमार, मैं कक्षा पांचवी का छात्र।
1: तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है बता देखिए। दशरथ। क्यों दशरथ हो, क्यों इतना बच्चे फिर दशरथ हो, क्यों इतना दोस्त कुछ देता है पैसा देता है।
4: खास
1: दोस्त नहीं, खास खास जैसे श्री कृष्ण का खास दोस्त क्या था बच्चे। खास अमीर गरीब का बात नहीं है ना, सहयोग का बंद, चेहरा का नहीं, काला गोरा का नहीं, लेकिन उनका अंदर में जो विशेषता है, जो गुण है, जो शक्ति है, जो सहयोग का देते हैं, इसलिए खास बन जाते हैं। सभी तो दोस्त है लेकिन खास है ना, खास है कि दशरथ आपका खास है। अच्छा दशरथ आपका नाम कौन रखा दशरथ।
5: मेरी मम्मी।
1: दशरथ रामायण में है ना महाभारत में, बच्चे बताएंगे दशरथ जो रोल किया है रामायण में। बच्चे रामायण देखते थे पहले, इसलिए रामायण में है ना। दशरथ का कितने बेटा था। बहुत ऐसे जीके भी स्कूल में होता है इसलिए बच्चे को मालूम होता है। चलिए शुरू करते हैं एक प्रस्तुति। ओके दशरथ एंड पार्टी।

0: याद गनी भाई मन्ने।
1: सुंदर प्रस्तुति के लिए सबके तरफ से ताली बजा भाई। ताली बजाने में कोई पैसा नहीं लगता है और एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा तो गोलाप फूल जैसे खिलता है ना, और मुस्कुराहट है ना, बच्चे कुछ भी हो जाए खुशी गायब नहीं होना चाहिए है ना, राजी खुशी रहना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो लेकिन राजी खुशी होना चाहिए है ना दशरा
2: जी सर।
1: हाँ जी सर, जी सर, हाँ जी करते, क्योंकि बच्चे हाँ जी जो करेंगे ना, जो बड़े का बात मानेंगे वो आगे बढ़ेंगे। माँ बाप का बात भी मानना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, बच्चे मानते हैं ना माँ बाप का बात?
3: जी सर,
1: जी सर, माँ बाप का बात मानना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए। अभी मानेंगे तो बड़े होकर दूसरों को मनाएंगे, ठीक है, सबको मनाएंगे, जैसे आप सबको मैं मना रहा हूँ, है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और 3 छात्र है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: चलिए चलिए, बहुत खुशी का बात है। आज बच्चे सभी खुशी है ना?
1: तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और 3 छात्र है, तो उनको भी स्वागत कर रहे हैं। और आप सब सुन पा रहे हैं राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा, क्योंकि हम तो पहला बार आए हैं इस गांव को, नाम मुझे बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए पामेरा है ना। बच्चे तो बोलेंगे बढ़िया से। क्या नाम स्कूल का?
2: पामेरा।
1: और आपका नाम?
2: नंदनी।
1: नंदनी, वाह। नंदनी और नंदन दो चीज होता है। नंदनी बहनों का नाम होता है और नंदन लड़के का नाम नंदन होता है ना। चलिए सुनते हैं उनका नाम।
2: प्रेरणा कुमारी।
1: प्रेरणा, ओके।
2: धनवंती कुमारी।
1: धनवंती, बस। सब अच्छा अच्छा नाम है, सब माँ बाप को धन्यवाद देंगे भाई। चलो शुरू करें।
2: आओ।

0: वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सम्राट है। जमुना जी तट कर देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाथ हाथ में यह निरा खाट है। ये देखो ये तस्वीर अपने गौरव की अभिमान है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, ये है अपना राजपुताना ना इसे तलवारों पे, सारे सारे जीव काटे है बचते तीनों कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है यादी की नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पादी नागों पे। बोल रही थी कण कण में भूकूर राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम,
1: बोला वंदे मातरम वंदे भारत माता की। वाह क्या इसको कहते देशभक्त, और राजस्थान के बच्चे उनका खून में ही देशभक्ति है, क्यों राणा प्रताप को याद करते इस धरती पे बलिदान दिए थे देश के लिए, और हमारा बच्चे मन से बुद्धि से संस्कार से पूरा बलिदान देते। जब आजादी का अमृत काल चल रहा है और ये बच्चे आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे, बहुत अच्छा लगा। सभी को धन्यवाद देते नंदिनी एंड दोस्त। नंदिनी तुम्हारा अच्छा शिक्षक का नाम बता दे कि कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है?
2: दीप सिंह जी।
1: कौन सा विषय पढ़ाते हैं हमारा दीप सिंह सर? अभी तो यहाँ पर नहीं है, सुन रहे तो क्या विषय पढ़ाते हैं?
2: हिंदी।
1: हाँ हिंदी राष्ट्रीय भाषा है भाई, और हम हिंदी नहीं मालूम होगा तो हम कहाँ भी, जैसे हम उड़ीसा से आए हमें हिंदी नहीं आएगा तो हमें बोलेगा अरे कहाँ से आ गए साउथ से। तो हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी पढ़ाते हैं। बड़ा होकर क्या बनेगी नंदिनी?
2: डॉक्टर।
1: हाँ डॉक्टर का काम क्या होता है?
2: पेशेंट के इलाज।
1: हाँ सुई नहीं, पेशेंट को बीमारी को भगाएंगे और देह को स्वस्थ रखाएंगे, है ना? लेकिन अरे हाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी कौन सा क्लास नंदिनी?
2: सिक्स।
1: सिक्स अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इस कड़ी में ही और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चलिए चलिए, और एक प्रस्तुति के लिए हमारा बच्चे रेडी है, तो सुनते हैं अगला प्रस्तुति नाम का साथ शुरू। नाम बताइए।
1: मेरा नाम रितु कुमारी।
0: रितु।
1: मेरा नाम नफीसा बानो।
0: शुरू कर।
2: सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आके खोली, अच्छे बच्चे मंजल करते, मंजल कर कर कुल्ला करते, कुल्ला कर कर मुंह धोते, मुंह धो कर रोज नहाते, रोज नहा कर खाना खाते, खाना खा कर पढ़ने जाते।
0: वाह, पढ़ने जाते। ये हो गया दिनचर्या। क्या करते बच्चे सुबह से शाम तक हमारा दिनचर्या? सुबह उठते, मुंह धोते, मंजन करते, स्कूल जाते, पढ़ाई करते और अभ्यास करते, है ना? ऐसे से कर रहे हैं। और बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
1: मैडम।
0: मैडम बनेगी आप?
1: मैडम।
0: मैडम, चलिए मैडम के लिए ताली बजा देंगे, छोटे छोटे मैडम है। चलो इस गाड़ी में आगे बढ़ाते हैं, आगे चलो। और एक प्रस्तुति हमारा दो गुड्डा है, तो वो भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं छात्र है। तो अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं, हमारा अंतिम प्रस्तुति होगी, चलिए शुरू करते हैं।
3: मेरा नाम मनोज कुमार, कक्षा पांचवी से।
0: वेरी गुड। और कौन से गांव से?
3: पामेरा।
0: पामेरा से। और बड़े होकर क्या बनेगा? क्रिकेटर। अरे बाप रे, हमारे सचिन तेंदुलकर भी फेल कर देगा। और अभी तो नया अभी एक लड़का है 15 साल का, क्या नाम है?
3: सूर्यवंशी।
0: हाँ, उसको पूरा याद है, सूर्यवंशी। चलो शुरू करते।

0: इसी प्यार में
1: बसे बादल पहली पर्वत खड़े हुए,
0: इसी प्यार में सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता।
2: चलिए बहुत छोटा सा प्रस्तुति है, फिर भी कम नहीं है, बड़े होकर सब बनेंगे। और इसी कड़ी को हमारा साथ देने के लिए तीन छात्र है, तो अपना नाम और कौन सा क्लास में बताएंगे सभी, सबको अच्छा लगेगा जरूर, हमारा श्रोता भी सुन रहे और ये लोग बच्चे भी अपना नाम बताएंगे।
3: मेरा नाम आशा माली है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ।
4: मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ।
2: गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट।
5: मेरा नाम पिंकी दिवासी, मैं कक्षा 7 से।
2: घर में कौन कौन है तुम्हारा? घर में
5: मम्मी पापा दादी चाचू और चाची।
2: सबसे अच्छा कौन लगते? अच्छा प्यार करते, अच्छा स्नेह करते, जो भी चीज होता था हमारा। पिंकी कहाँ गई? पिंकी कहाँ गई? इसका बिना तो अधूरा है, उसका नयन का तारा है आप।
5: मम्मी पापा।
2: मम्मी पापा आपका अच्छा लगते हैं? क्यों? आप अच्छा पढ़ते हैं, उनका बात मानते हैं?
5: हाँ।
2: माँ बाप का बात मानते हैं, इसलिए आपको प्यारे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं।

सही में कितने सुंदर और देश भक्ति में ओत प्रेत होकर अपना प्रस्तुति दिए और त्रिरंगा पूरा विश्व में लहराएगा और वो भारत का नाम रोशन करेगा और भारत हमारा महान है। जितना भी देश है लेकिन भारत को माता कहते, भारत माता, अमेरिका, रूसिया, जापान, जितने भी 90-200 देश है किसको माता शब्द नहीं, माँ, माँ में जो स्नेह प्यार है, और जो भी भारत में आते हैं वो मिट्टी को, भारत का मिट्टी को सिर में लगाते हैं, है कि नहीं बच्चे? क्योंकि भारत का महान, भारत हमारा महान, और हम उसमें गर्वित है कि हम उसमें जन्म लिए और उस मिट्टी में पले बड़े और यहां तक पहुंचे, और वो गांव भारत में, हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव भारत में, तो इसलिए हम कितना भाग्यशाली है कि नहीं। जहां और खासकर राजस्थान के सिरोही जिला में हम सब रहते हैं, है ना, तो सिरोही जिला सबसे अच्छा है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक ब्रेक लेते हैं अंतिम प्रस्तुति की, और एक दो छात्रा वंस मोर मैम का तत्वावधान में गाइडेंस में उनको और एक चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैम को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो दो बच्चों को और एक चांस देने के लिए इशारा किए, इसलिए मैंने उन दोनों को फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये सब सुन पा रहे अपना आवाज को, आवाज का दुनिया में।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: हम
1: हम
2: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या है ऐसी बातें जिसे हम कहे जीना इसी का नाम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और उसको हम कैसे सामना करते हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं और उनका जीवन एक आदर्श बन जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही अनुभवों से और उदाहरणों से आज हमारे बीच में है आदरणीय गंगाधर बाई जी। आप पिछले 5 दशकों से ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 4 दशकों से अधिक समय से अब अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में गंगाधर बाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन का भी बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
0: शुक्रिया भाई जी। हम सबसे पहले आपकी वो जर्नी जानना चाहेंगे जो आपका बचपन है, कहाँ पे बीता, आपकी माता पिता क्या कर रहे थे, आपकी जो लौकिक जीवन है और फिर वहां से अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे आई।
1: मेरा जन्म एक छोटे से गांव गुजरात में भुज कच्छ में नखत्राणा में हुआ और बचपन में हमारे जो घर में एक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे हम सभी। हम गीता पाठी थे और हमारे घर में हमारे पिताजी और हम सभी कुटुंब में बहुत अच्छा एक नियम था कि गीता का पाठ पठन करना है और पाठ पठन करने के बाद ही भोजन मिलता था। तो हमें भी वो नेचुरली वो संस्कार हमें वर्षे के रूप में भगवान को याद करना और उसके बाद ये भोजन करना, ये बचपन से ही संस्कार। और फिर हमारी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद मैं एसएससी तक, एसएससी मैंने टॉपर किया गुजरात में ही। गुजरात से फिर मैं वहाँ से जाना हुआ, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में फिर अहमदाबाद के पास में एक धनसुरा करके गांव है आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो वहाँ हम रहे और वहाँ टॉपर करके फिर अचानक हम व्यवसाय हमारा नागपुर में था, परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और पहले मेरा कॉमर्स साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स किया क्योंकि व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय का भी काम संभालते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे। ऐसे में भक्ति मार्ग का जो संस्कार था कि हम वहाँ पर एक केंद्र चलता था स्वाध्याय परिवार का, जो पांडुरंग आठवले जो बॉम्बे में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब हमारे घर में कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन हमारे गांव में ही पूरे ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो अपने जो भी खेती बाड़ी का वो सारा व्यवसाय करते थे। लेकिन मैं ही एक ऐसे, मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ाई में तो मैं फिर वहाँ जाके पढ़ाई भी किया और साथ साथ धंधा भी।
0: उस दौरान आप अकेले थे या आपके और भाई बहने भी थे?
1: हाँ, घर में हम 4 भाई और 3 बहने हमारे पिता के संतान थे और मैं सबसे छोटा था। और हाल ही में हमारे कोरोना काल के दरमियान हमारे 2 साल में 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा। माता पिताजी ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया और व्यवसाय भी चल रहा था तो, और मैं तो यहाँ आ गया था। और सभी अच्छे व्यवसायी घराने के, अभी एक उसके बच्चे हैं, सभी व्यवसाय करते हैं, कोई हैदराबाद में है कोई व्यवसाय, किसी का नागपुर में और कोई एक में फार्म हाउस है जहाँ गुजरात में,
0: मतलब सभी बिजनेस करते।
1: हाँ, सभी बिजनेस करते हैं। और हम गीता पाठी होने के कारण हम वहाँ फैक्ट्रियों में जहाँ हमारा व्यवसाय था तो बुधवार की छुट्टी रहती थी और वो छुट्टी रहने के कारण हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर में जाते। हमारे एक उसको भाई कहते, जो हमारा बड़ा लीडर था तो वो भाई कहते थे उसको, स्वाध्याय परिवार में भाई कहते। तो बहुत अच्छा था और हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हर बुधवार को वहाँ जाके गीता के बारे में प्रसार प्रसार करना, बताना, ये सब करते थे। लेकिन ऐसे में भक्ति भाव तो थी और हमें समाज में हमारा बहुत नामाचार भी था क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे और भगवान का नाम लेते थे तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं, देखो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में फिर एक समय ये हुआ, अच्छा लगता था लेकिन जब एक दिन में शाम को करीब 6-7 के बजाय होगा, मैं एक ऐसे जा रहा था तो वहाँ एक छोटा सा एक जिसको ब्रह्मा कुमारी इसकी पाठशाला कहते हैं, पाठशाला के रूप में वहाँ था, जहाँ हम रहते थे उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ लिखा था कि अभी दुनिया का परिवर्तन होगा और सत्ययुग आएगा, और ऐसे स्वस्तिक का चित्र बना हुआ बाहर में ऐसे बड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ ज्योतिषी वगैरह होंगे, तो मैं 7 बजा था तो जा रहा था, अंदर कुछ लोग बैठे थे, लाल लाइट लगी हुई थी, और अंदर 30-40 भाई बहने होंगे और वो योग कर रहे लाल लाइट में, और बड़ा अच्छा। पहले ही जैसे मैं प्रवेश कर, और बहुत पुराना घर था, जैसे जर्जरी भूत के अवस्था में, लेकिन अंदर क्लास अच्छा चल रहा था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। बैठ जाने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और लाल लाइट में से वाइट लाइट हो गई, और सामने एक भाई था जो बैठा था संदली पर, तो उन्होंने उठा तो सब जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। तो संदली पर जो भाई था, जिसका नाम गजानन भाई थे, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आप कहाँ से आए हो, जैसे नए कोई आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे भी पूछा कि आप क्या करते हो, किस लिए आए हो, क्या है जो भी है। और मेरे को बोले आपको 5 मिनट थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मैं ये हमारा ये चित्र लगा है वो, मैं क्योंकि दीवारों में चित्र लगे थे जिसको ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में वो चित्र है वो सारा लगे हुए थे, तो बड़े व्यवस्थित लगा हुआ था, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर सर्व आत्माओं का पिता, उसके बाद झाड़, उसके बाद सीढ़ी, और इस तरह से लगा हुआ। तो मुझे वो समझाने लगे, तो पहला तो आत्मा, चलो आत्मा ठीक है, फिर परमात्मा का परिचय दिया, वो भी ठीक है, क्योंकि चित्र में स्पष्ट दिखता भी था, और हम भी गीता पाठी होने के कारण वो सारी हमें समझ में आती थी बात। फिर आगे जाके ऐसे चलते चलते झाड़ का, ये सृष्टि का उत्थान पतन की कहानी, सीढ़ी में जो भारत कैसे ऊंचा था, बनता है, नीचा होता है, ये सारी बातें आई। फिर एक बहुत सुंदर चित्र हमारे मेरे मनपसंद का आया, जिसमें एक गीता के बारे में लिखा था, उसमें लिखा था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो जब ये बात आई तो हम गीता पाठी होने का मेरा ध्यान वहाँ गया, और उसमें बहुत सुंदर चित्र बताया हुआ कि एक परमात्मा की किरणें आ रही है, नीचे एक शक्ति दल खड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ है, और ऐसे सामने में राक्षस जा रहे हैं इस तरह से। तो वो बड़े चाव से बताने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, ये तो हिंसक है। भगवान अगर हिंसक का ज्ञान देता है या समझ देता है तो फिर हिंसा करने वाले को तो कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे अपील की, भाई अहिंसक युद्ध। फिर उन्होंने सारी बातें कही कि जो हम मन से जो सोचते हैं, देखते हैं और जो करते हैं, जो विकृत मानसिकता को लिए हुए चलते हैं, इसको भी हिंसा कहते हैं। ये बात मुझे ज्यादा अपील करी, और मुझे तुरंत याद आया कि हम तो गीता पाठी है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम एक घर चॉइस करते थे और वहाँ गीता ज्ञान करने जाते थे, तो एक तरह से हंसी की बात तो ये हुई कि समझ में आई कि मुख मेरा बगल में छुरी वाला काम हम करते थे, कि मन में हमारी कुछ विकृत भावना, क्योंकि हम यंग थे तो विकृत मानसिकता लेकर भगवान का मुखोटा लेकर हम ज्ञान देने जाते, ताकि लोग समाज में हमारा अच्छा नाम था। ओके, उसके बाद ये बात जैसे ही पकड़ में आई तो फिर मैंने फिर सारा समझा के 5 मिनट में बोले आप आओ, 7 दिन का कोर्स करिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बोले कि आप आधा आधा घंटा भी आइए, ये हम सारा समझा देंगे। फिर मेरे को एक किताब दी उसने, उसमें उस टाइम वो 3-4 रुपये की वो किताब दी, पथ प्रदर्शन, जो ब्रह्मा कुमारी का बेसिक कोर्स की समझानी है उसमें, तो वो मुझे दिया। तो मैं फिर लेके गया घर, कि पढ़ाई तो करते थे, तो रात को जैसे ही उस किताब को मैंने लेके पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। अब भूल कहाँ हो रही है, ये बात मन में गूंजती रही, अरे यार ये तो मेरा मन में अंदर एक है, बाहर एक है, ये बात बहुत खटकती रही। भगवान के नाम से मेरा पाप हो, भगवान के नाम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे श्रापित करेंगे। तो ये बात रात को
0: क्यों लगा आपको?
1: मुझे इसलिए लगा क्योंकि भक्ति मार्ग में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थूल रूप में सब करते हैं, और स्थूल रूप में जैसे तिलक लगाया, थोड़ा सा अच्छे मीठा बोल बोला, तो लोगों को लगता है कि भक्ति भाव वाला आदमी है, तो लोगों की श्रद्धा होती है, तो हमें आदर सत्कार से देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही फिर मैंने ये बात आई कि भाई ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये सारा अच्छे से फिर से पढ़ा, ऐसे 2-3 दिन पढ़ा, और पढ़ने में ये बात समझ निष्कर्ष तक पहुंचा कि नहीं, आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब इनसाइड आउट होना चाहिए, हाँ, जो अंदर है वही बाहर।
1: अभी
0: एक मुखौटा पहन करके नहीं,
1: मुखौटा पहन कर देने से तो खुद को भी धोखा है और समाज को भी धोखा है, और एक अच्छा कर्तव्य नहीं मानेंगे ना। तो ये जो बातें आई सामने, उसके बाद मैंने स्टडी करके कोर्स तो करने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारा व्यवसाय था, तो सुबह सुबह फैक्ट्री खोलनी है और फिर शाम को लेट होते थे, तो इस तरह से, और दिन में कॉलेज जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं। ये मन में अंदर ही से विचार आया और अंदर दृढ़ किया, नहीं अभी मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये जीना चाहिए। संस्कार थे भक्ति भाव के, तो फिर ये ज्ञान मिला, और ज्ञान को फिर उसको श्रवण करने लगे और समझ में आया, समझने आया तो अब बड़ा एक ये ज्ञान ऐसा रियल में जीना जीवन तो बड़ा चमत्कारिक है, जैसे जीवन एक मृदुभाषी जैसा हो जाता है, बहुत साइलेंटली चलना, अनावश्यक चीजों को अपने आप ही दरकिनार हो जाती है।
0: सो जिस तरीके से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से वही गीता पाठी भक्ति मार्ग में करते हुए भी आपको दोनों में अंतर समझ में आया, और प्रैक्टिकली लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली गीता क्या है, वो स्वस्तिक ने समझ करके गए। फिर जब आपकी घर में ये पता चला कि आप आश्रम में जाते हैं, तो फिर आपके भाई बहने, आपके परिवार वाले इसको स्वीकृति दी या फिर?
1: ये बड़ी कहानी है, बहुत मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं कहा न कि जैसे उसमें चलते थे तो समाज में हमारा बड़ा नाम और आदर थे, और लोग हमें बड़े चाव से बड़े प्यार भी करते थे, सम्मान भी मिलता था। कहते हैं ना, जब दुनिया की जिस हवा चलती है उस तरफ चलते हो तो जमाना आपको साथ देता है, लेकिन जब खुद को जानने के खुद से चलने लगे तो जमाना सारा विरोध हो जाता है। बस वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटा। तो हम चलते थे, लेकिन अब उस समय काल में ब्रह्मा कुमारी के सेवाएं इतनी ना होने के कारण मिस भ्रांतियां बहुत थी। तो और हम ये चलने लगे, रेगुलर मुरली सुनने लग गए, तो बाबा की जो मुरलियों बड़ी जादुई है, जादुई इन द सेंस बड़ी स्पष्ट है, जैसे कि दर्पण है, तो वो बहुत खिंचाव होता था। बाबा का क्लास और योग ना करे वो जैसे कि अंदर से जैसे बेचैनी होती थी, मतलब
0: तो परमात्मा को याद करना और उनके महावाक्यों को
1: महावाक्य सुने बिना मना बेचैनी। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें या तो शाम को क्लास होता है या तो सवेरे अर्ली अर्ली होता है, योग भी अर्ली अर्ली होता है। और हमारा भी समय था, वो भी कारखाना खोलना जो भी है व्यवसाय का, लेकिन बाबा की खींच ऐसी होती थी कि हम मुरली सुने बिना तो रह नहीं सकते थे। तो अब क्या करें, तो और ये जीवन में जब ऐसा धारणा हुई और चलते रह गए और पढ़ाई करते थे, तो मेरे जो दोस्त साथी थे तो उसके साथ भी बैठना उठना होता था, लेकिन वो लोग होटल में खाना फिर वो करना, मैं बोला मुझे भूख नहीं, मेरे पेट में ऐसे ऐसे मैं अवॉइड करता था। मन में ये था कि नहीं मुझे नहीं, क्योंकि परमात्मा मुरली में ये बताते थे कि अन्न वैसा मन, जैसा

0: सोचेंगे वैसा बनोगे, ये बहुत स्पष्ट आता था। और करीब करीब इसी टॉपिक पर 10-10, 15-15 दिन वही मुरली की धारा चलती। इसलिए आप भगवान की सुने, निश्चय हो गया तो फिर
1: जी। तो अभी भी वो लोग आपको विरोध करते हैं या फिर वो सहयोगी है आपकी?
0: विरोध तो बहुत हुआ, ये बात थोड़ी मैं अगर जी तो मैं बता दूं, तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो अभी ये ज्ञान में चलने से ये सारी नकारात्मक जो प्रवृत्ति है जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो कहीं कहीं घर वालों को ऐसा लगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया ऐसे करके। तो हमारा बड़ा भाई के साथ, हाँ हमारे एक पिताजी तो गुजरात में रहते थे, फिर कभी आते थे कभी जाते, तो बड़े भाई ने हमारे पीछे CID लगाई थी।
1: अच्छा।
0: तो CID ये लगा दी कि उनको थोड़ा लगा कि थोड़ा ये हमारे अनुसार तो इनका जीवन नहीं दिख रहा है, बड़ा साइलेंट रहता है और अपने में मस्त रहता है। तो कहते हैं ना कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। तो उसी तरह से एक मान्यता होने के कारण उसका भी अच्छा स्नेह था। स्नेह इसीलिए कि कोई भी बड़ा है जो जहाँ हम गार्डियन है, वो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का इस तरह से कुछ हो जाना। तो उसने तहकीकात करने के लिए ऐसे लगा दिया 4-6 लोगों को और फिर ये सब चीजें। लेकिन वो सुबह सुबह मैं जाता था तो पता तो चल जाता था सुबह कहीं जा रहा है, तो पीछे पीछे पता है वो तो सोए रहते थे, मैं निकल जाता था। 6:30 से 7:30 मुरली चलती, तो 6:30 के पहले 6 बजे योग में जाना होता, आधा घंटा बैठना है। तो मतलब मैं 4:30-5 बजे स्नान पानी आदि करके, तो ये लोगों को अलग लगता था, वो लोग सोए और मैं तैयार होकर चला जाता, तो वो बदलाव उसको पता चला। तो बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी। तो ये कहते कि ब्रह्मा कुमारी ये कौन सा धर्म है, ये तुम, हम तो लक्ष्मीनारायण के वंशज है, हम लक्ष्मीनारायण की पूजा करते हैं। हमारे घर में अगर आप यहाँ से कच्छ के साइड में जाओगे तो वहाँ हर गांव में लक्ष्मीनारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, तो लक्ष्मीनारायण का ही हम वंशज है, तो लक्ष्मीनारायण की पूजा करना चाहिए देवी देवताओं। तो उस तरह से चलता था। तो फिर ये तो बदलाव आ गया, तो उन्होंने फिर मेरे को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन बाबा की ये बात मैंने, वो जो हमें मुरली सुनाते थे, उस भाई को बताई कि हमें ऐसा विरोध करते हैं और इस तरह से बात है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, मारपीट भी करते, छोटा थे और वो उसका हाथ, तो हमें जब वो मारते थे हमें बाबा की महावाक्य याद आते कि किसी का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पिताजी आपको बंधन है, तो उनका चश्मा जिस परंपरा से जिए उससे थोड़ा अलग दिखते हैं, तो उनको वो भाव से कि भाई इनका कल्याण ना हो, बड़ा हो के भाई इनका जीवन खराब ना हो, तो उस भाव से करते। तो हमारे मन में मारते थे थोड़ा बहुत, तो हमें बुरा नहीं लगता था, कुछ बोल दिया थोड़ा अपशब्द कह दिया वो कर दिया, तो मतलब वो तकलीफ नहीं होती थी। तो हमें वो बाबा कहते वो राम की भावना रखो, इनको पता नहीं हमें कौन मिला है, वो ज्ञान ऐसा जैसे कि हमें तो भगवान मिला है, हम भगवान को जान गए, ये तो अभी तक ये भक्ति मार, इस तरह से मन में आ जाता था और गुस्सा रिएक्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये बढ़ता गया। फिर हम जो हमारी समाज है जो पटेल कास्ट, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो अब घर में उठ के तो विघन बढ़ते गए, बहुत मारपीट तक आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सारे समाज में हमारी वॉच रखने की कि भाई ये तीनों को मिलने नहीं देना। तीन भाई थे, तो आपको मेरे पूर्व में आपको आप जानते होंगे कि हम वसंत भाई करके थे जो संगम भवन में, वो भी नागपुर से थे, और ऐसे एक रामजी भाई करके थे, हम तीन कुमार निकले और बड़ा नशा था बाबा के ज्ञान के लिए। तो अब क्या करें, तो हमारे बीच में सबको एक अनाउंसमेंट कर दिया कि ये तीनों अगर मिलते हैं पढ़ाई के नाम से, हम घर में नहीं सोने के बदले हम बाहर सोने लगे, मना फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में एक रूम होता था तो हम वहाँ सोते थे, क्योंकि हमने बहाना बनाया कि हमें पढ़ाई करना है तो हम रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम वहाँ सोएंगे फिर सुबह आएंगे नाश्ता पानी। लेकिन हुआ क्या, बहुत वंडरफुल बात ये हुई कि हम पढ़ाई के नाम से जो भाई ने हमें गाइडेंस दिया था, तो कि जो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको 2 से 5 योग करना, तो तुम्हारा विघ्न सारे भगवान खत्म कर देंगे। ये भाई हमने गीता पाठशाला जो चलाते थे उन्होंने बताया। अब 2 से 5 योग करना है तो हमने ये बहाना

0: देखिए, तो फैक्ट्री में जहाँ हमारा माल आता है, जो फूड प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री थी, तो रात को गाड़ियाँ आती थी, तो उसका कागज लेना होता है और सारा, और वहाँ चौकीदार भी होते हैं। तो मैं 2 बजे गाड़ी आई होंगी, 2-3 बजे हम तो चले गए योग करने, तो पीछे से जो गाड़ी आई तो मैंने कागज लिए नहीं। तो सुबह जब हमारा बड़ा भाई जब ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में, तो कह के भी वो कहाँ थे, जो मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है, तो वो तो रातों पढ़ाई करने जाता है, हम जाते थे योग करने। तो तीनों भाई वो अपने फैक्ट्री में वहां से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। तो ऐसे करके फिर ये प्रत्यक्षता हुई, और फिर जो हमारी सारे विरोधाभास और खलबली मच गई, सारे ये ऐसा है वैसा है। तो फिर भी बाबा की जो आकर्षण थी कि मुरली मिस नहीं करना, मुरली के बिना खाना नहीं खाना, योग करना, इसी से तो मूछ बनेंगे और भगवान तुम्हें प्यार करेगा, ये सारी बातें मन में गूंजती रहती थी। तो उसके कारण हम जाते थे। फिर एक दिन सुबह क्लास कर रहे, तो मेरा पिता भाई आया, बड़े भाई, और बड़ी लकड़ी एक लेके आया, और मैं पीछे थोड़ा लेट गया था, मैं हमेशा फर्स्ट जाता था, लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो पीछे बैठा था, और 35-40 भाई बहन और मुरली चल रही थी, उन्होंने आते ही पहले मैं बस बैठा था, पीछे से थोड़ी सी लकड़ी लगाई और सामने भाई मुरली चला रहा था, वो चौकन्न हो गया, तो सभी शांत हो गए, मुरली चलाना बंद हो गया, मेरे को मार रहा है और फिर घसीटते लेके जा रहा है, घसीटते खून निकल रहा है हाथ में से, मैंने थोड़ा सा उनको कि भाई ये चंगुल में फंस गया है, उनका ये प्यार, उनको तो ये पता नहीं ना, तो फिर भी मतलब ठीक है। फिर हम
1: उन्होंने कभी आपसे ज्ञान सुनने समझने की कोशिश
0: उस टाइम नहीं की, क्योंकि उनको तो वही परंपरा से जिए थे, तो वो से। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद फिर मैं चला गया, लेकिन फिर से हमें नहीं, योग मिस नहीं करना, ये विघ्न अभी जाएगा, क्योंकि भगवान ने बोला 2 से 5 योग करते तो विघ्न चला। तो वो जो क्लास में जो भाई बहने थे वो कुछ नहीं बोले, योग में बैठ गए सब, वो मार रहे कर रहे छुड़ा रहे, कोई छुड़ा नहीं, और जैसे मुझे ठीक है आ, नहीं आओ। तो इस तरह से मेरा आना हुआ, और फिर बाबा से योग लगा के हम ऊंच पद पाएंगे, ये मन में नशा रहता था। तो 3 साल हमने योग किया, उसका परिणाम ये हुआ, करीब हम 81 से 83-84 तक हमने ये योग किया। फिर ये सब प्रत्यक्षता होने लगी समाज में, फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, बाबा के बिना तो हम रह नहीं सकते, बाबा की पड़ी खींचे, शाम को 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे तो कशिश होती थी कि नहीं सेंटर पे जाना चाहिए, सेंटर सेंटर एक ही था नागपुर, और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हम एक सीट पूर्व में रहते थे, सेंटर पश्चिम में था, तो पूरी सिटी क्रॉस करके जाना होता था, तो गुरुवार गुरुवार को जाते थे। एनी हाउ, तो हम कहते हैं ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी की भाषा में ये कहते हैं कि बंधेले कुमार मना इसको विघन है, तो माँ बाप से छुट्टी नहीं है।
1: दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहानी बीच में क्यों रुक गई है, आगे क्या हुआ है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल है मन में जानने को लिए लेकिन समय की सीमा है कि यहीं पर हम रुकना होगा, और आगे की कड़ी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या जिद था और क्यों उन्होंने इसी जीवन को जीने का ठान लिया है। जो जीवन आमतौर पर सोचते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता है, सांसारिक जीवन को त्यागना, सुख सुविधाओं को त्यागना और सिर्फ एक परमात्मा के प्यार में लीन होना, देश के लिए जीना या मानवता के लिए जीना कितना कठिन काम है, लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान लग रहा था और उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज को सहन करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जो अभी तक आपने सुना है गंगाधर भाई जी की अपनी जीवन की कहानी को, कहां से उनको वो प्रेरणा मिली समर्पित होने का, और जब उन्होंने वो संकल्प लिया और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगे, किस प्रकार की बाधाएं उनको सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया, गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे, तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे, पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ, ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया, आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है, चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र, रुक। अरे रुक बेटा।
6: माँ, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है ठीक है, आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी, विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए, हमें पता चला है यहीं रहता है। एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर, हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए, हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स हैं, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे, ये तो अपना विजय है।
8: हाँ हाँ, पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे। कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय?
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था, तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा। इसकी पोस्ट आती है कभी कभी यहाँ, तो लेने आ जाता है बस।
8: कोई और आपके एड्रेस पे 5 साल से अपनी पोस्ट पार्सल मंगा रहा है, आपने कुछ नहीं कहा?
7: ये लोग यहाँ 5 साल से रह रहे हैं।
8: सर, मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं।
6: नहीं सर, हमें लगा वो तो हमारा दोस्त है।
10: सर, हुआ क्या है ये तो बताइए।
8: देखिए, विजय ने बड़ा बैंक फ्रॉड किया है।
0: कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में कोई नहीं फंसना चाहता, लेकिन अगर मुसीबत आ ही जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है। आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है, ध्यान रखिए कि आपके नाम, नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है, लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
11: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
12: रागिनी दीदी, पहली बार सही बात बोली है आपने।
11: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति, क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
10: भैया, ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
11: किशन, तू तो पिटेगा मुझसे।
12: दीदी, आपसे और मुझसे दोनों से।
11: रुक, अभी बताती हूँ।
12: पकड़ो दीदी, पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
10: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से,
9: कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
11: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे, रुक।
1: मारो दीदी, मारो मारो।
4: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
13: थोड़ा लड़ने तो इन्हें अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठी प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना,
2: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
4: बड़ी बहू, तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
3: वैसे चंद्रावती, तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी। तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था?
2: मैं तो सच में बड़ी शांत थी, अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
9: बड़े भैया आप तो बहुत लकी हैं।
13: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
2: थैंक यू पिताजी।
0: चलिए, कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहुरानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। हो, समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
4: कुमारी ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
14: मासा मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
4: मैंने क्या कहा तुझे?
14: आपने तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
4: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
14: हाँ मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
4: राजकुमारी बेटा, मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
14: ओ तभी मैं सोचू कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
1: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
14: हाँ मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
1: भाभी वो उसके पापा की दुकान है और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
14: ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
4: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
7: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
11: हाँ भोली भी है और भाली भी,
1: जैसी भी है हमारी है।
7: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
0: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे। वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ? हाँ तो चलिए आप और हम लोगों में छुपी खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
15: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार जी, नमस्कार, राम राम सा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, कैसे जरा विचार करिएगा। और आज आपको मैं ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ। अब कौन सी वाली वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है। और आज सिखाएंगे आप सभी को मट्ठा बनाना और मक्खन बनाना, लस्सी बनाना। गर्मी का जो मौसम है तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हमें मौसम के अनुसार बना करके पीनी चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। और खुशनुमा जीवन की तो ढेर सारी बातें करेंगे ही, साथ ही साथ आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार दो भाई होते हैं। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं, माता पिता नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे की पूरी केयर करते हैं। उनका व्यवसाय है जंगल में से लकड़ी काट के लाना, उसको बेचना और उससे जो पैसे आते हैं दोनों भाई अपना गुजारा चलाते हैं। खाना पीना कपड़ा उसी से ही उनको मिलता है। तो इसी तरह बड़ा भाई गया हुआ था जंगल में लकड़ी काटने, लकड़ी काट रहा था, एक पेड़ की काट करके दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ थोड़ा जादुई था। उसने कहा, अरे भाई कृपा करो हमारे ऊपर, मेरी टहनियाँ मत काटो। उसने कहा, क्यों नहीं काटूं? जब दूसरे पेड़ की अन्य पेड़ों के मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ तो आपके टहनियाँ क्यों नहीं काटूँ? तो उस पेड़ ने कहा कि भाई मत काटो, इसके बदले में मैं आपको सेब दे दूंगा। बोले ठीक है दे दो। तो सेब एक दी। अब उसको गुस्सा आ गया कि भाई तो हम दो हैं, एक सेब से क्या होगा, सेब माने एप्पल, इससे क्या होगा। उसको गुस्सा आ गया और उसने टहनी काट दी। टहनी काट दी तो उस पेड़ को भी गुस्सा आ गया और उसने उसके ऊपर सुइया चुबो दी। तो वो पूरा सुइयों से लिपट गया और असहनीय दर्द उसको होने लगा, वहीं पर गिर पड़ा। अब ऐसे होते होते शाम का समय हो गया। छोटा भाई को चिंता होने लगी कि क्या बात है, बड़ा भाई तो समय पर आ जाता है, आज नहीं आ पहुंचा, क्या बात है, मैं जाता हूँ। और छोटा भाई ढूंढने चला बड़े भाई को। देखा जंगल में इस तरह बड़ा भाई करा रहा है, चिल्ला रहा है दर्द से। तो उसने झा करके प्यार से उसकी सारी सुइयां निकाली। ठीक है, फिर सुइयां निकालने के बाद बड़े भाई ने पेड़ से क्षमा याचना की कि पेड़ मुझे माफ करना, आपके मना करने पर भी मैंने आपकी टहनी काट दी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। पेड़ को भी दया आ गई, पेड़ ने उसको बहुत सारी एप्पल दे दी कि ये लो तुम एप्पल खाओ। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलेगा। अगर हम किसी पर रहम करेंगे तो बदले में हमारे ऊपर भी कोई रहम करेगा। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो बदले में हमें भी प्यार मिलेगा। अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो बदले में हमको भी सम्मान मिलेगा। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटी टिप्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी पलके, आपकी भौहें थोड़ी चमकदार और घनी बने, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर आपको टिप्स सुना रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। एरंडी, जिसको हम दिवेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तेल को आप हल्के हल्के, मतलब उंगली पर लगा करके हल्के हल्के घिसना है, ठीक है, पलकों पर और भौहों पर, तो बाल नए उत्पन्न होंगे और भौहें घनी बनेगी, ठीक है। फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आँखों की पलकों और भौहों पर बहुत जनों के बाल कम होते हैं और वो चाहते हैं कि थोड़े से बड़े, क्योंकि भौहें नहीं होती है तो भी कैसा लगता है ना, अटपटा लगता है ना। तो ऐसी स्थिति में, या फिर बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में भी आप सप्ताह में 2-3 बार रात को सोते समय एरंडी का तेल लगाइए। हल्के हल्के उंगली से आप थोड़ी सी हल्की हल्की मालिश करिएगा, ठीक है, तो पलकों और भौहों पर बाल आना शुरू हो जाएगा, बिरोनिया घनी होगी। अगला नुस्खा भी बहुत अच्छा है कि भौहों की सुंदरता बनाए रखने के लिए सिर में तेल लगाते समय उंगलियों को भौहों पर रोज फेरिए, इससे भी भौहों की सुंदरता बढ़ेगी। भौहे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप सिर में तेल लगाते हो ना, तेल लगाने के बाद इन उंगलियों को थोड़ा सा अपनी भौहे पर भी फेर दीजिए, तो भौहे की सुंदरता बढ़ेगी। देखिए, बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे माताएं बहनें बिंदी लगाती है, बिंदी का निशान रह जाता है, और आजकल का समय ऐसा है कि आजकल की बहनें बिंदी बहुत कम लगाती है, क्योंकि ड्रेसेस पहनते हैं ना, तो बिंदी नहीं लगाती है, लेकिन वो साड़ी के ऊपर रोज़ लगाती है तो उसका निशान तो रह जाता है। अब ड्रेस के ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं लेकिन निशान देख करके घबरा जाती है कि अरे ये निशान कैसा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पता चल जाएगी ये बिंदी का निशान है, या तो आप बिंदी लगाओ या नहीं लगाओ, तो फिर निशान नहीं दिखना चाहिए। अब निशान हो गया उसका क्या करे, है ना। निशान भी देखिए, गोल दाग भी पड़ जाता है कभी कभी, और कभी सांवला सांवला भी निशान हो जाता है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, थोड़े पानी में आप ये जो बावची होती है ना, बावची जिसको बाकुची भी कहते हैं, बाकुची के बीज आप पंसारी की दुकान से ला सकते हैं। ये थोड़े पानी में आप इसको पीसिए, पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना करके जो बिंदी का निशान है उस स्थान पर आप लगाइए। आपको रोज रात को लेप करना है, और फिर आप भले तो 1 घंटे बाद मुंह धो लीजिए या नींद आ जाए तो सुबह धो लीजिए, तो ऐसे करने से दाग आपका गायब हो जाएगा और जो स्किन है वो पहले जैसी चमकदार ही रहेगी। बिंदी का निशान अगर पड़ गया है तो आप उस निशान को मिटाने के लिए बाकुची के बीज को आप थोड़े से पानी में पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना करके रात को सोते समय इसको लगाइए, सुबह चेहरा धो लीजिए। ऐसा थोड़े दिन लगातार करने से बिंदी का निशान खत्म हो जाएगा। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि होठ की सुंदरता के लिए क्या करेंगे, क्योंकि होठ भी देखिए, भले गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन किसी भी मौसम में होठ फट जाते हैं। सर्दी के मौसम में तो अक्सर हम ध्यान रखते हैं, है ना, तो आजकल उल्टा हो गया है, सर्दी के मौसम में पूरी केयर करते हैं तो होठ नहीं फटते, नहीं करते तो फिर फटते ही है, ज़्यादा ही फटते हैं। लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम सोचते हैं कि अरे ऐसे मौसम में क्या ध्यान रखना है, तो ऐसे मौसम में भी होठ फट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दूध की मलाई में हल्के से चुटकी भर हल्दी डालिए और फिर आप उंगली पर थोड़ा सा घिस करके होठों पर लगा दीजिए, फिर चेहरा धो लीजिए। और अगर चेहरा नहीं धोना है तो खाली दूध की मलाई आप तर्जनी उंगली और अंगूठे से थोड़ा सा घिस करके लगा दीजिए, वो चिकनाई है ना, उस चिकनाई को लगाइए, तो सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहेगा चिकनाई, उसके अंदर भी घी की मात्रा ही होती है दूध के अंदर, पर आप ये जो दूध की मलाई लगाएंगे तो ये सॉफ्ट भी रहेगा और होठ इससे नरम भी रहेंगे, फटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा करके स्वयं के ब्यूटी को बढ़ा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हाई, अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आपको नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, परंतु आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, ऐतिहासिक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? आपके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुश्किल पड़ेगा। तो ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरह ताली। अब ये चार में से एक सही है, कौन सा सही है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप फोन कॉल्स करके फिर से प्रश्न को पूछ सकते हैं, ठीक है? और आइए अब हम आपको छाछ, मट्ठा ये सब सिखा देते हैं। देखिए, मट्ठा का दूसरा रूप छाछ ही होता है। छाछ पतली होती है, मट्ठा गाढ़ा होता है, ठीक है? तो पहले आपको मट्ठा सिखा रही हूँ कि आप दही ले लीजिए, और दही में अब आप थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें पुदीना पाउडर, सिका हुआ जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल करके आप भले तो बिलोनी से बिलो दीजिए, भले ग्राइंडर से आप ग्राइंड कर लीजिए, और बस आप पिरस सकते हैं। तो इसको मट्ठा भी कहते हैं। दूसरा रूप यह है कि दही में से आपको मक्खन निकालना है, तो दही को बिलोइए, अच्छी तरह बिलोइए। ज़रूरत पड़े तो इसमें से आपको थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं या फिर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं मौसम के अनुसार। सर्दी का मौसम हो तो हम गर्म पानी डालते हैं, सर्दी का मौसम आप बर्फ़ डालिए। बर्फ़ डाल करके इसके मक्खन को निकाल दीजिए। तो मक्खन निकालने के बाद ये जो बच्चा है ये थोड़ा सा पतला तो हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हम मट्ठा भी कहते हैं। इसमें फिर आप स्वाद के अनुसार वही जीरा पाउडर, जीरा आप छाछ में या मट्ठा में यूज़ करते हैं तो सेक करके फिर इसको पीस करके डालिए, इससे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा मट्ठा या छाछ जो भी आप पी रहे हैं।

0: टेस्टी लगेगा। तो मक्खन निकाल दीजिए, जैसे आप दही है ना, दही को आप अच्छी तरह बिलोइए। बिलोने के बाद इसमें आप बर्फ़ डाल दीजिए। बर्फ़ डालने पर जो मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो मक्खन निकाल दीजिए। फिर बचा हुआ जो दही की छाछ है, इसमें आप जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काला नमक डाल करके आप इसका आनंद ले सकते हो। तो ये बन गया मट्ठा। तीसरा रूप है कि कोई कोई क्या है, श्रीखंड को भी मट्ठा कह देते हैं। तो फिर आपने दही बनाया है, उसका आप कपड़े में बांधिए। कपड़े में बांध करके इसका जो पानी का भाग है कपड़े में बांधेंगे, स्वच्छ कपड़े में, तो ये पानी टपक करके निकल जाएगा बाहर, ठीक है। फिर गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा दही। फिर इसमें आप थोड़े से स्वाद के अनुसार शक्कर डाल दीजिए और अच्छी तरह इसको फेंट लीजिए, ठीक है। एक चौड़ी थाली में या परात में लेकर के फेंटिए। फेंटने के बाद बस आप एक सकड़े बर्तन में, भले भगोने में, आप भले बड़े कटोरे में आप इसको भर दीजिए। तो इसको ऐसे श्रीखंड भी कहते हैं और मट्ठा भी कहते हैं। तो ऐसे हम घर पर ही बना सकते हैं और इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। फिर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। इलायची फ्लेवर पसंद है तो इलायची पाउडर आप डाल सकते हो। तो फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल खाना चाहते हो तो मत रखिए फ्रिज में, लेकिन सचमुच ये मट्ठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप दही लीजिए, दही को आप एक स्वच्छ कपड़े में रख करके चारों तरफ पोटली बना करके किसी हैंडल पर आप लटका दीजिए, ठीक है। इससे जो पानी होगा दही के मात्रा में, जो पानी है ना, वो निकल जाएगा। फिर ये गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा। फिर इसको आप एक चौड़े बर्तन में निकाल करके स्वाद के अनुसार शक्कर डाल करके आप हाथ से, हथेली से अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटने के बाद आपको लगे कि शक्कर एक मेक हो गई है, फिर आप किसी पतीली में है या बाउल में है भर दीजिए। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करके बारीक बारीक और डाल दीजिएगा। इलायची पाउडर भी आप डाल दीजिए अच्छी तरह। फिर मिक्स करके पहले आप भरते हो ना, उसके पहले चौड़े बर्तन में सब कुछ डाल दीजिए। पहले शक्कर डाल करके तो आपको मथना है, अच्छी तरह फेंटना है। फिर आप को लगे कि अब शक्कर एक मेक हो गई है, फिर ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिएगा और अच्छी तरह मिक्स करके आप एक बाउल में भर दीजिएगा। तो ये बन गया श्रीखंड, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं, ठीक है। और आपने देखे अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा सीखा है। अब मैं और भी कुछ सिखाऊंगी, परंतु एक ब्रेक के बाद। तो आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ खो गए हैं? कोई कहीं फंक्शन में तो नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं अभी अभी। देखिए, मुंडन का प्रोग्राम भी जारी है, शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो कहीं कहीं अपने जो नए घर खरीदे उसकी भी ओपनिंग चल रही है, और साथ ही साथ भजन कीर्तन, सुंदरकांड के पाठ वगैरह वगैरह, ये तो सब चलते ही रहते हैं ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे श्रोता बंधु व्यस्त हो गए हैं। कोई बात नहीं, अगर समय है आपके पास तो आप जरूर जुड़िएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है? कौन सा नृत्य, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है। हेलो, पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग उषा बहन जी।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी की और सभी मित्रों की कृपा है, और अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: जी जी,
1: कहीं नहीं गए हैं, मधुबन से जुड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ बहन जी।
0: जी जी जी। तो आज का प्रश्न आपने सुना?
1: जी जी जी, सुना मैंने।
0: हाँ जी, तो जवाब आप देंगे या मैं ऑप्शन दूँ?
1: बिल्कुल देंगे जवाब।
0: हाँ जी,
1: और अभी मैं ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन हूँ?
0: अभी आप ऑन एयर है।
1: तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है। और आज का जो आपने सवाल का जवाब है, तो कालबेरिया सही जवाब है। जो कालबेरिया राजस्थान का जो नृत्य है, तो वो विश्व स्तर पर अपना प्रतियोगिता में भाग लेके आए है, और उन्होंने अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज की थी। कालबेरिया सही जवाब है।
0: ठीक है, तो दयाराम जी आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम जरूर आपका जवाब सुनाएंगे, ठीक है?
1: जी मैडम
0: जी, बहुत बहुत आभार। और आइए, यहीं पर हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ खुशनुमा जीवन का, कि कैसे हम तनाव में आते हैं, दुखी होते हैं, और कैसे हम तनाव से मुक्त रह करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो आज का ये विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्यों को अपाहिज बना देता है। क्या कहेंगे आप? जरूर जुड़िएगा और इस विषय पर आप चर्चा में भाग जरूर लीजिएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है। फिर से दोहरा रही हूँ कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? अब मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे श्रोता बंधु को लग रहा है कि ये मुश्किल प्रश्न है, तो मैं आपको जवाब के लिए चार ऑप्शन दे रही हूँ, उसमें से एक सही है। वो कौन सा सही है जवाब आपको देना है। परंतु हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, तो उनसे बात जरूर करेंगे। हेलो,
2: नमस्ते। गुड मॉर्निंग सुरेश भाई।
1: हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई
2: जी। बहुत अच्छे हैं और सभी मित्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं, और विषय भी बहुत अच्छा है दीदी की। इससे ज्यादा दीदी हम आराम करते हैं ना
1: जी,
2: कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता ही है। देखो, अब कई लोग ऐसे हैं दीदी, इतना आलसी हो गए कि कुछ करने की कुछ सोचते भी नहीं
1: जी।
2: हमारे जो गुजराती में कहावत है कि आड़स जीता मानस की कब्र से।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: तो हाँ, तो आड़स हम आराम तो करते थे, आराम करना भी जरूरी है, लेकिन इतना आराम ना करो कि हम कुछ कर ना पाए
1: जी।
2: अब इससे ज्यादा कोई भी बात है जिससे ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो, हम काम करते हैं, काम भी करने का भी तरीका चाहिए। अभी काम करते ही रहो, करते रहो कुछ खा, तो हमारे शरीर का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम रहता है
1: जी।
2: काम करना भी जरूरी है और आराम करना भी जरूरी है, लेकिन हम काम से उठ के काम करेंगे, आराम से उठ आराम करेंगे, हम कभी आराम नहीं करते। हम पूरे दिन काम करते हैं, रात को ही आराम करते हैं।
1: क्या बात है।
2: दिन को रोटी खा के दिन में आराम नहीं करता।
1: अच्छा,
2: सुबह से 7:30 बजे से रात को 7:30 बजे में काम करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोजन के बाद अगर समय मिलता है और सिचुएशन ऐसी हो तो 10 मिनट आप आराम कर सकते हो।
2: वो तो सही दीदी, हम 2 चक्कर लगा देते हैं, हम बाहर तो जाते हैं 2 चक्कर लगा देते हैं, तो हमारा जो भोजन खाया हुआ भोजन है वो अच्छी तरह से पहुँच जाता है
1: जी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है।
2: तो आराम करते हैं, लेकिन जब काम होता है तो आराम नहीं करते
1: जी। जी, हमारा काम देते हैं वो तो सही है, काम होता है उस समय तो 1 सेकंड भी ऐसा लगता है कि वेस्ट नहीं करना है।
2: वेस्ट नहीं करना, और मैं कभी वेस्ट करता, मैं 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। मैं काम समय से घड़ी से काम से घड़ी से साथ में काम करता हूँ
1: जी। जी बहुत अच्छी बात है,
2: घड़ी चलती है घड़ी के साथ साथ में काम करता हूँ
1: जी। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आलस्य के मारे उठने को तैयार नहीं होते, कुछ ज्यादा ही आराम करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं तो यही कहूँगा कि आराम कीजिए, लेकिन थोड़ा काम भी करना जरूरी है। मैं बताऊँ तो हमारे कई सारे भाई यहाँ भी हैं कि काम करते हैं लेकिन आराम ज्यादा करते हैं। आराम करना भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप काम करेंगे तो आपका बॉडी भी अच्छी रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपका आपको थोड़ा पैसा भी ज्यादा मिलेगा इसी काम में।
1: हर तरह से फायदा है,
2: हर तरह से फायदा है, लेकिन ज्यादा आराम करना भी सही नहीं है
1: जी।
2: दिन को रात को तो आप कुछ आराम कर लो, कोई बात नहीं, 5-6 बजे तक
1: नहीं। जैसे आपने कहा ना कि काम करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसा भी मिलेगा, इसलिए कह रहे हो कि सब तरफ से फायदा है।
2: फायदा है, मैं बताऊँ तो मैं सुबह रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ हर रोज
1: जी। बहुत अच्छा,
2: करना है काम करना है, काम के समय काम करना है, हम काम आराम करेंगे लेकिन आधा घंटे से ज्यादा नहीं
1: जी। जी बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर विषय है, आप भी इस विषय को स्पष्ट कर सकते हो। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो हमारे श्रोता बंधु फोन कॉल्स कर सकते हैं, हम थोड़े से बोल रहे होते हैं तो फोन उठाएंगे आपका, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएंगे, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी तेरह ताली। ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, उसमें से एक सही है। कौन सा सही है जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-1415-1415। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, किसी की आप मदद कर रहे हैं, है ना, अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, हमारा फर्ज है मदद करना, लेकिन सामने वाला अब हमारे ऊपर ही निर्भर हो गया, ये गलत है। समय सभी के साथ आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, उस समय इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती ही है। कभी तन के द्वारा, कभी धन के द्वारा, कभी परिवार के द्वारा मदद की आवश्यकता रहती है ना। जैसे कोई गिर गया है तो उस समय इंसान चाहिए उठाने के लिए, एक दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति जरूर चाहिए उठाने के लिए। और कभी धन की जरूरत पड़ जाती है तो भी यार दोस्त या फिर मित्र संबंधी इन सभी की याद आती है। तो मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करना ही चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। परंतु मदद करने पर सामने वाला व्यक्ति पूरा ही डिपेंड हो जाता है तो क्या कहेंगे? हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: है। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई।
3: आज का विचार तो एक गीत मेरे को याद आया है।
1: हाँ जी,
3: ये पुराना गीत है, आराम है हराम, आराम है हराम, भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों, इस देश के कोने कोने पर पहुंचा दो ये पैगाम,
1: आराम है हराम, आराम है हराम। वाह वाह वाह, क्या बात है, समय पर आपने भी नहले पर दहला मारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गीत सुनाया। बिल्कुल इसके, ये गीत स्पष्ट कर रहा है कि आराम करना भी, ज्यादा आराम भी हराम है।
3: जी, आराम के टाइम आराम भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम हो तो उसमें आराम नहीं करना चाहिए।
1: जी
3: हाँ, ऐसा एकदम अपने को कि चलो भाई अभी आराम करेंगे तो ये नुकसान होने वाला है, तो आराम नहीं करना चाहिए, ऐसा गीत है।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका फिरोज भाई। जी, तो देखिए दो, वो कहते हैं ना कि गीत की पंक्तियों में ही फिरोज भाई ने समझा दिया कि आराम कहाँ तक आवश्यक है। कितनी बार देखिए कोई बिजनेस करते हैं, 12-12 एक एक दो दो बजे घर में ही रहेंगे, और घर वाले कहेंगे अरे भाई जाओ बिजनेस पर जाओ, तो बोलेंगे कि अरे हमारा तो फोन पर बिजनेस चलता है, हो जाएगा, आपकी शॉप है, और आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं। आप बोले कितने कस्टमर आ करके चले जाएंगे, सोच ही नहीं सकते हो, आधा दिन तो आपका घर में ही बीत गया। हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे क्योंकि वो जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से। हेलो
4: हेलो, नमस्कार दीदी, कैसे हो?
1: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप? धानेराव से बोल रहे हैं ना?
4: जी जी जी
1: जी जी जी, हम अच्छे है, आप सुनाइए।
4: आपने एक अच्छा विषय रखा है तो हमेशा मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा हटके बात करता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत हद से ज्यादा आराम करने लगता है ना, तो फिर उनको पैसे की तो जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, तो वो लालच आ जाती है, कैसी कि किसी के सगे वालों से पैसा मांगना, कोई बहन है भाई के पास, ऐसी आदत पड़ जाती है, फिर लोग उनको ताना देते हैं कि अरे ये आलसी है, उसको घर वालों को भी ताना, उसको सगे वालों को ताना देते है कि तुम्हारा जो जमाई है, मतलब हर तरह से उनकी जो थूथू रहती है।
1: बिल्कुल,
4: आलस्य क्या नहीं करती, सिर्फ ऐसा नहीं कि कमाने में या घर चलाने में नुकसान है या मुश्किल आएगी, लेकिन जीवन में हर तरह की नुकसान आएगा। तो किसी ने कहा भी है कि आराम हराम है, मतलब आराम भी करनी चाहिए, लेकिन अगर काम पर रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करेंगे ना तो हमारा गाड़ा जैसे तैसे चलता रहेगा। और हमेशा जो धंधे में अगर मन लग गया ना, तो वो इंसान कभी आराम करने की सोच नहीं सकता अगर मन लगा तो, और मन नहीं लगता ना वही जो ये आलसी बन जाते हैं। हर काम में मन लगा कर करना चाहिए।
1: जी बहुत सुंदर
4: जी। और आपने जो प्रश्न पूछा था वो ऑप्शन में क्या क्या बताया था दीदी?
1: जी घूमर, हाँ जी घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया और तेरा ताली।
4: हाँ कालबेलिया हो सकता है।
1: अच्छा ठीक है, तो आप सुनिएगा कार्यक्रम, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
4: जी, थैंक यू दीदी
1: जी, बहुत बहुत आभार। और यहीं पर हम भी एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि कैसे इंसान दुखी होता है अपने ही संस्कारों वश, और कैसे इंसान सुखी होता है अपने ही संस्कारों वश। अब किस तरह के संस्कार हमें धारण करने हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम, क्या करेंगे। विषय बहुत ही अच्छा है, आराम मनुष्य को, ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि ज्यादा निर्भरता भी अच्छी बात नहीं है। हर कार्य में बहुत सारे लोगों की आदत होती है निर्भर रहना, आता है उसके बावजूद भी नहीं करेंगे। अरे ये काम कर लेना, अरे सुनो सुनो इधर आओ ये काम कर लेना, खुद सोए सोए ऑर्डर देंगे और दूसरों से करवाना चाहेंगे। अब कितना समय आपके कोई मदद करेगा, सोचिए आप। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ठीक है कोई परिस्थिति वश किसी को मदद चाहिए, हर कोई करने को तैयार रहेगा और करना भी चाहिए उस समय। लेकिन जब इंसान आत्मनिर्भर बन चुका है या वो उन परिस्थितियों में से निकल चुका है तो फिर तो उसको संभलना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अच्छा मेरे को तो आज दिन तक मदद मिली है तो आगे भी मिलती रहेगी, फिर इंसान आलसी हो जाता है। आलसी हो जाता है तो वो आराम ज्यादा करता है और काम कम करता है। ज्यादातर वो लोगों से ही काम लेना पसंद करता है। धीरे धीरे लोग भी उस स्वभाव के से थोड़ा सा परिचित होने लगते हैं कि भाई इसकी तो आदत पड़ गई। कोई भी हो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कोई भी कितना भी अच्छा हमारा रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन एक लिमिट होती है हर मदद की, है ना। लिमिट के बाहर अगर कोई किसी का ज्यादा ही परेशान करता है या ज्यादा ही उससे मदद लेना चाहता है या काम कराना चाहता है तो फिर धीरे धीरे उससे डिटैच हो जाएंगे, धीरे धीरे संबंधों में दरार आने लगेगी और कभी कभी तो रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं कि भाई उसके सामने तो जाना ही नहीं, गए नहीं कि बस वो ये कर दो वो कर दो, ये दे दो वो दे दो, ये बातें रहेगी तो फिर उस इंसान से लोग दूर भागते हैं। इसलिए देखिए, जरूरत से ज्यादा निर्भरता अच्छी बात नहीं है। परिस्थिति आ गई है तो आप मदद लीजिएगा, लेकिन जब परिस्थिति टल गई है, चली गई है, आपके जीवन से निकल गई है, तो फिर से आप अपने आप को संभालिए और हो सके तो आप दूसरों की मदद करिए। क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट बात है कि आज मैं आपकी मदद कर रही हूं तो कल मुझे भी थोड़ी सी इच्छा रहेगी कि कुछ तो मदद आपके द्वारा भी मुझे मिले, है ना। तो ऐसे होते हैं रिश्तों में भी। तो फिर आप अगर आत्मनिर्भर बन गए हैं तो दूसरों की मदद करिए। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, ओम शांति दीदी।
1: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी।
2: और जो लोग आलसू ज्यादा होते हैं तो अपने काम सही तरह नहीं कर पाते हैं तो वो खुद का तो भी नुकसान कर देते हैं, लेकिन उनके संगत में और भी आते हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम तो हमेशा ऐसे लोगों से कभी दूर ही रहा करते हैं और उनको भी अच्छी सलाह भी देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारी गृहस्थी अच्छी तरह चलेगी। और हमेशा अब किसी पर निर्भर नहीं रहता है और खुद पर डिपेंड करता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। और जैसे हमारे घर में कोई गृहस्थी है तो अपना काम सही तरह अच्छी तरह करती है तो सब उसका जो भले भले करते हैं और नहीं करते हैं तो उनके घर में ही झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अपने अपने काम में हमेशा तत्पर रह के करते रहना है और दुगने जज्बे के साथ करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे
1: जी।
2: और कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं ही किसान हूँ तो कृषि का कार्य करता हूँ तो मैं किसी दूसरों पर निर्भर रहूंगा कि वो आएगा मुझे काम कराएगा, तो कोई नहीं, हम समय तक कोई नहीं आ पाता है, नहीं आता है
1: जी।
2: हम अपने काम में लगातार जुड़े रहते हैं और व्यस्त रहते हैं करते हैं तो हम उस काम को अपने जो काम को अपनी समय सीमा निर्भर होती है तो उन पर हम पहुँच जाते हैं। तो बस सभी को नमस्कार है, ओम शांति, खम्मा गणी सा
1: जी, गणी खम्मा सा, आभार। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही अच्छी तरह आपने भी स्पष्ट किया है। ये थे दयाराम जी लाखनी से और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भी किसान हैं, अगर हम किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे तो खेती कैसे करेंगे। हर व्यक्ति अगर इसी तरह सोच ले कि हमें डिपेंड नहीं रहना है, स्वयं का कार्य स्वयं करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने के बाद भी अगर हम निर्भर रहते हैं तो फिर वो अपाहिज की तरह ही है, है ना। इसलिए हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ किसी को पचती नहीं है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना कि अगर हम ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, आलसी बनेंगे, तो बस दुख का न्योता तो हम खुद ही दे रहे हैं दुख को, है ना। तो अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिएगा और आलस्य को त्याग दीजिएगा, तभी अपने जीवन को हम सुंदर और श्रेष्ठ बना पाएंगे, खुशनुमा बना पाएंगे। यही खुशनुमा जीवन का राज है। यहीं पर हम फिर से एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशियाना, और बहुत ही आज का कार्यक्रम अच्छा रहा, विचार भी आज का बहुत ही सुंदर था। तो नुस्खे भी आपको जो ब्यूटी टिप्स दी है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेसिपी में भी आपको अलग अलग प्रकार से छाछ मट्ठा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके इसका आनंद लीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? लगभग हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है, एक को छोड़ करके। नाम सुनाना चाहूंगी दयाराम जी लाखनी से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुरेश भाई जोटाना से, उम्मेद सिंह जी ओसिया से और सुरेश भाई धानेराव से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, काल बेलिया जो नृत्य है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से इन्होंने जवाब दिया है कच्ची घोड़ी, जो गलत है। तो सही जवाब देने वालों के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी कि कहते हैं कि उजालों में तो मिल जाएंगे बहुत से, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। अब मैं आपको गृहस्थ गीता सुना रही हूँ, ठीक है? तो गृहस्थ गीता का आनंद लेंगे, उसके बाद कुछ श्लोक भी सुनाऊंगी। आतिथ्य ही घर का वैभव है, आतिथ्य ही घर का वैभव है, प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है, व्यवस्था ही घर का सुख है, समाधान ही घर की शोभा है, सदाचार ही घर की सुवास है, ऐसे ही घर में सदैव प्रभु का वास है। ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसी कमाई मत करो, क्लेश हो ऐसा मत बोलो, चिंता हो ऐसा जीवन मत जियो, रोग हो ऐसा मत खाओ। अब मैं आपको पुष्पांजलि सुना रही हूं। मैं अपराधी जन्म का नकशिक भरो विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार, भक्ति दान मोहे दीजिए सब देवन के देव, और कछु मांगत नाही निश दिन तुम्हारी सेव, सफल द्वारे छोड़कर आई तेरे द्वार, शरणागत की जात रखियो है नंद कुमार, पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो यदुराज, कृपा दृष्टि अवलोकिये शरण पड़े की लाज। अब मैं आपको बहुत ही सुंदर श्लोक सुना रही हूँ। काल बलि सन्मुख खड़िया होय चलन को त्यार, भजन भाव कीन्यो नहीं किस विधि उतरे पार, सुमिरन दीप जलाए के धरु तिहारा ध्यान, शरण पड़े की लाज रख ए मेरे भगवान, शरण

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को। महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक नया पहल है और इसमें हम पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और क्यों जरूरी है और नींद के संबंधित कई विषयों के बारे में हमने चर्चाएं की और जानकारियां भी लिया और एक गाइडेंस भी लिया कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है और मेंटली फिट रहना क्यों जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अगर हम मानसिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो हम अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और वो दिनचर्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र जी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, और हर्षिता सेतिया जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों हैदराबादी हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हमारे साथ बने हुए हैं हम सभी को नई जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से हमने कहा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है इस विषय को लेकर के, सबसे पहले वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, आपको रेडियो मधुबन की स्टूडियोस में और कार्यक्रम जागृति में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
3: नमस्कार
1: जी। तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य को अगर मजबूत रखना है और सही रखना है तो हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और ऐसी क्या क्या चीजों को हमें बदलाव लेके आना है। आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग भी आते हैं हॉस्पिटल में, दिन भर आप इतने सारे लोगों की सेवाएं करते हैं, उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने की बहुत आप कोशिश करते हैं, तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य डेली रूटीन से कैसा जुड़ा हुआ है और हमारी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए।
3: जी, अगर हम देखें कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे हमारी डेली लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, हम सुबह से लेकर रात तक हमारा मूड एक वो ऐसी चीज है जो हमारी हर एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर उस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरा मन अच्छा है तो मैं हर काम बहुत खुशी खुशी करूंगी, घर का काम है, बच्चों को लेकर बाहर आना जाना, किसी से मिलना जुलना, सब काम मैं बहुत अच्छे से करूंगी। लेकिन अगर मेरा मूड खराब है किसी भी कारणवश, तो मैं किसी भी काम में ना तो मेरा

0: क्या होकर बोलूंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? मानसिक मन से आ रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं मन खुश नहीं है ना। तो अगर हम मन से हर चीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक चीजों से जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने जर्नल लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमें बहुत सारे, मैं आज चीज़ें आपके साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी जीवन शैली में जो बदलाव लाना है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये आजकल हर महिला में, हर पुरुष में, हर बच्चे में हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं और डॉक्टर वीरेंद्र सर कुछ इन सुझावों पर हम आपको बताना चाहेंगे जो महिलाओं को और ज़्यादा बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। तो हम आज सबसे पहले जो शुरू करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं कि हम स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के लिए कभी कार्य कर रहे हैं, कभी हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लगे हुए हैं। हम सुबह से लेकर रात तक कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान हमारा बहुत ही कम जाता है, अपने को हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ जो हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं वो है मी टाइम, जिसको हम एक टाइटल दे सकते हैं कि ये मेरा मी टाइम है, राइट। तो हर रोज़ कुछ समय हम खुद के लिए निकाल सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ अपने लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हम कुछ देर मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ देर प्रॉपर एक आराम कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई हॉबीज हैं हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, कुछ भी जो, क्योंकि मी टाइम है तो मुझे क्या पसंद है, अगर हम उस पर फोकस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा जो मुझे एक हैप्पीनेस देगा, इंटरनल हैप्पीनेस देगा। तो ये एक चीज हम एड ऑन कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता जी ने। ठीक है, डेली रूटीन का और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन के अंदर में रहते हैं तो आपकी वो आपकी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी को जनरली ये कम करता है। जब आपका दिन प्रेडिक्टेबल होता है, आपको पता होता है कि किस चीज़ के बाद क्या करना है और आप एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीज़ों से जो डेली वर्क है उनसे स्ट्रेस से और उससे एंजाइटी जो है वो कम करती है। फिर जब आपका रूटीन फिक्स रहता है, आपके उठने का और सोने का समय फिक्स है, तो आपकी स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होने लग पड़ती है। उससे आपका प्रोडक्टिविटी और फोकस जो है वो दिन भर में बेहतर बना रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको कौन सी चीज़ प्रायोरिटी वाइज पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में करनी है। आप उसके अलावा अगर देखे जाए तो जितनी भी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसके अंदर में भी अगर हमारा डेली रूटीन फिक्स रहे, हम मरीजों को हमेशा बोलते हैं जो डिप्रेशन के, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो उनके या स्किज़ोफ्रेनिया के भी पेशेंट हैं, उनके घर वालों को बोला जाता है कि उनके एक रूटीन को बना दे। मैं जब निमैंस बेंगलोर में था तो वहाँ पर भी जितने भी पेशेंट एडमिट रहते थे तो उनका एक डेली रूटीन हम लोग बनाते थे कि सुबह से वो एडमिट पेशेंट के लिए भी उनका फिक्स रहता है कि सुबह इस समय उन्होंने खेलने के लिए जाना है, इस समय उठे, इस समय प्रार्थना करनी है, इतने समय तक रेडी हो जाए, इस समय आपको खाना मिलेगा, इस समय आपको खेलने के लिए जाना है, इस समय आपको वर्कशॉप में जाना है काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें फिक्स रहती थी उनकी, तो एक रूटीन बना रहता था। तो ये डेली रूटीन जो है वो मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से मदद करता है। तो एक बैलेंस डेली रूटीन अगर होगी आपकी तो मेंटल हेल्थ हमेशा वो आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, फोकस रहेंगे और इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो और थोड़े थोड़े चेंजेस अगर आपको अपनी डेली रूटीन के अंदर में करने पड़े तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं अगर आपकी आप छोटे छोटे अपने डेली रूटीन के अंदर में चेंजेस करें। देखिए, डेली रूटीन को अचानक से पूरा बदल देना तो पॉसिबल नहीं था, बट हम मरीजों को जो भी आपके जनरल पब्लिक को भी जो गाइड करते हैं वो कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे सटल सटल से एकदम माइन्यूट से चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाएं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं।
2: जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है। यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कई बार हमारी माइंड इतनी फोकस्ड नहीं रहती है। आजकल हम अगर युवा पीढ़ी को देखते हैं तो बहुत सारा हमारा कॉन्फिडेंस कहे या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी हम कुछ देखना चाहते हैं, कभी फिर नेक्स्ट मोमेंट हम कहीं और जाना चाहते हैं, हमको किसी चीज़ में भी आनंद नहीं आता है। फिर यही चीज़ जब महिलाओं की बात आती है तो फिर महिलाएं उसमें परेशान हो जाती है कि ये बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, या फिर महिलाओं को भी ये रहता है कि ये भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, वो भी काम करूँ, फिर उस बात में फिर उनको वो टेंशन आ जाता है और फिर उनको एक प्रेशर रहता है कि मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में काम करते हुए उसका सेटिस्फेक्शन, और दूसरा हम खुद को ये कैसे समझाएं कि इतना सारा काम है तो हम जो भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, या व्हाट इज इट लाइक हम अपने आप को फोकस्ड और वो मेंटली हम इमोशनली हेल्दी रहें और हम हर काम को करते हुए वो सेटिस्फेक्शन को फील करें।
0: सो दीदी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, दो चीज़ें हैं कि एक तो जो यंग है, यूथ है, वो आजकल जा रहा है ना, उनके अपने हिसाब से प्रेशर्स हैं, अपने हिसाब से उनको काम है। एक एल्डर वुमेन है तो उनको पुराने ज़माने के हिसाब से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने आप को मैनेज कैसे करें, क्योंकि दोनों के पास सेम क्वेश्चंस हैं, दोनों के पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यंग के पास कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि उनको घर का काम भी करना होता है और बाहर का काम भी करना होता है, तो उसमें बच्चे भी हैं, हर चीज़ कैसे मैनेज हो। तो इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं ना कहना सीखना है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कोई और हैंडल कर सकता है, वहाँ पे इन महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने लिए अत्यधिक जिम्मेवारियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो चीज़ आजकल हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए, उनके साथ में उनकी हेल्प ली जाए, और कहीं ना कहीं ना कहना आज के टाइम पे सीखना, उन चीज़ों में ना कहना जहाँ पे आप फील कर रहे हैं कि ओवर बर्डन हो रहा है, ओवर प्रेशर हो रहा है, तो अपनी सीमाएं तय करना सीखें, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको सबसे पहले ध्यान दें, उनको प्रायोरिटाइज करें। अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो ओल्ड एज वेमेन है, चाहे वो यंग जनरेशन है, ओवर दबाव में आकर ओवर जिम्मेवारियां लेकर काम करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों से हेल्प सीख करें। अगर फिर भी आपके घर में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको करना ही करना है हर चीज़, सुबह से लेकर रात तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए, तो स्टिल आपको टाइम मैनेज करना वहाँ पे सीखना है। आगे डॉक्टर वीरेंद्र इसमें ऐड ऑन करेंगे।
1: बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर हर्षिता ने। उसके अलावा जो दूसरा जो इसके अंदर में है, आजकल जो समय की जो कमी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जनरली घर के काम के अलावा फ़ोन का इस्तेमाल अत्यधिक हो रहा है, फ़ोन या लैपटॉप टीवी, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो अधिकतर बोलते हैं हमें मरीजों को, वो है कि डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब कि आपको अपना जो समय है डिजिटल डिवाइसेस के लिए, लाइक फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, इससे थोड़ा ऑफ टाइम लेना, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव कर सके, अपने ऊपर काम कर सके, और रियल लाइफ कनेक्शंस जो है वो बना के ऊपर ध्यान दे सके, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सके, अपने पति पर, अपने रिश्तेदारों पर, मतलब जो रियल लाइफ पीपल हैं उनके ऊपर मैं ध्यान दे सके, ना कि जो स्क्रीन में या फिर जो रियल लाइफ के लोग हैं, जैसे रील्स लगातार देखे जा रहे हैं, रियल लाइफ के जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान दें। तो इसके अंदर में जो मैं अधिकतर सलाह देते हैं वो ये है कि शुरू में स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। लाइक पहले दिन एक से दो घंटे का डिजिटल ब्रेक लें, लाइक कुछ लोगों को सारा दिन फोन चलाने की आदत है, तो एक से दो घंटे का एक डिजिटल ब्रेक लें कि इस समय से इस समय के बीच में मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। खासकर वीकेंड्स जब हैं, जब आपको ऑफिस के काम नहीं करने हैं, अगर मर्दों के लिए और औरतों के लिए भी वीकेंड्स पे ज़्यादा समय फ़ोन पे बीतता है, क्योंकि वो ज़्यादा फ्री होती हैं घर में अगर लोग होते हैं, तो वीकेंड्स पे जब आपके घर में लोग हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, तब उनके साथ समय कटाएं, और वीकेंड्स के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिटॉक्स करें। उसके बाद बाउंड्री सेट करें, रूल बनाएं कि मैंने इस समय डिनर करना है, इस समय ब्रेकफास्ट करना है, और डिनर के समय मैं फ़ोन चेक नहीं करूंगी, मैं फ़ोन को हाथ में लेकर खाना नहीं खाऊंगी, या घर का कोई भी सदस्य जब खाना खाने बैठ रहा है टेबल पे तो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये रूल अगर सभी सदस्यों के लिए होंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बहुत सारे परिवारों में या बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है कि जब डिनर टेबल पे फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, वो एक बॉक्स रखते हैं, जब खाना खाने आएंगे सब घर के सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, और उससे पहले सभी के फ़ोन एक बॉक्स में जमा हो जाएंगे, ताकि जब वो खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे से बात करें, जो कि हमेशा से होता आया, जिससे कि रियल लाइफ टच होता है, आप एक दूसरे की परेशानियां सुनते हैं, उसके समाधान भी निकलते हैं, किसी के मन में क्या ग्रजीज, क्या परेशानी चल रही है, किस चीज़ को गिल्ट चल रहा है, वो सब बाहर निकल के आता है जब आप एक दूसरे से बात करें। पर जब आप स्क्रीन पे ही रह रहे हैं तो आप लोगों के साथ जो टच है वो खत्म होता जा रहा है। तो ये, और दूसरा, रात को सोने से एक घंटा पहले फ़ोन को बंद कर देना, मैं हमेशा सलाह देता हूँ, उससे आपकी नींद भी इंप्रूव होती है अगर आप रात को एक घंटा पहले सोने से पहले फ़ोन को बंद कर देंगे। उसके अलावा फ़ोन में अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करके रखें। बहुत लोग देखें कि जब भी कोई ऐप इंस्टॉल होता है तो हमेशा उसके साथ में आता है कि नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और हम लोग बटन दबाते जाते सबके नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं, जिससे हमारा स्क्रीन टाइम या डिजिटल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमें बाकी कार्यों के लिए समय नहीं मिलता, बाकी कार्य फिर हमारे पिछड़ने लग पड़ते हैं और हम एक लूप में फंस जाते हैं।
2: जी, ये जो है, हम एक मामूली अर्बन सोसाइटी की महिलाएं हम समझ सकते हैं कि उनकी जो इस प्रकार की लाइफस्टाइल होती है उनमें ये चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बातचीत हम करते हैं तो उन महिलाओं के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। ऐसे में वो कई चीज़ों से व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी देखा गया कि मोबाइल उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को माप सके कि यस मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ तो फिर मेरे अंदर से वो चिड़चिड़ापन या फिर ये इम्पेशेंस और गुस्सा करना ये सभी चीज़ें कम होता जाएगा। क्योंकि हम जब लाइफस्टाइल की बातचीत करते हैं ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कई बार महिलाएं कहती कि गुस्सा मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, बच्चे मेरे को बहुत तंग करते। हो सकते हैं वो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनके अंदर काम का या फिर किसी और चीज़ के जो भी मानसिक तनाव है जिस कारण से वो छोटी बातें भी वो सहन नहीं कर पाती है, फिर वो बच्चों के साथ अलग व्यवहार करना शुरू हो जाता है तो फिर घर की माहौल जो है वो इतना हेल्दी और संतोषजनक नहीं रहता है। सो, ऐसा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए सुबह उठने से लेकर के रात तक कि हमें मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हर काम करते समय हम अपने आप को क्या याद दिलाएं? हर्षिता जी।
3: हाँ जी, सो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिकली हमारी ग्रामीण में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए हमारा एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, जैसे हमने पहले बात की मी टाइम की, फिर सर ने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, ये दो चीज़ें बताई। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे कि हमने कई बार ये भी नोटिस किया है कि अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पोषण पे ध्यान नहीं है, किसी में अगर खून की कमी है तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सब चीज़ों के लीड करती हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमको अपने फिजिकल हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य और हमें अपने पोषण पर भी ध्यान देना है। हम एक संतुलित आहार लें हर रोज जो कि भरपूर होना चाहिए, सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, साबुत अनाज हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा, हम अपनी पानी जो है उसकी मात्रा को हम पूरा नहीं करते हैं और डिहाइड्रेशन वन ऑफ द रीजन है हमारे जो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तीसरा, हम जो अभी हमने कहा कि अगर किसी को एनीमिया है तो ये सारी चीज़ें आप अपना टेस्ट कराएं और इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, इसकी नियमित जांच ज़रूर करवाएं, और जो भी अगर आपको कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इन चीज़ों को हम ज़रूर डॉक्टर के साथ बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी हमारी उतनी ही ज़रूरी है। फिर आते हैं हम आगे जो है कि हमें डे टू डे लाइफ में जो हमें मानसिक तनाव रहता है उससे हम कैसे चीज़ों को ठीक करें, जिससे हमारे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हम एक अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एक तो बहुत सरल से उपाय हैं, हम अपनी लाइफ में ध्यान को लेकर आएं, हम अपने व्यायाम पे ध्यान दें, प्राणायाम कर सकते हैं, सरल सांस लेने का जो व्यायाम होता है उनको कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों को भी अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए हम अपनी भावनाओं को ज़रूर साझा करें अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी चिंताओं को ज़रूर बांटें जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई गो टू पर्सन है तो उससे, आपका कोई फ्रेंड है आप उससे ज़रूर बात करें। और आजकल हम महिलाओं में तो देखते हैं कि किटी पार्टीज होती हैं और गांव वालों के ज़रूर एक महिला मंडल बना होता है ना, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो अपने महिला मंडल में जाकर ज़रूर अपनी बातों को साझा करें, दिल हल्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, चार पाँच चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर लाएँ, और आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ, रोजगार की तरफ लीड करती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन योजनाओं से भी जुड़ें, क्योंकि आपका एट द एंड कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा पार्ट है जो अगर बूस्ट नहीं है अगेन आपके मेंटल हेल्थ पे वो भी इम्पैक्ट डालता है, आप लो फील करते हैं, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करने की कोशिश करें जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। एक महिला के लिए, जैसे हम मेल के लिए एक ईगो वर्ड यूज़ करते हैं कि मेल ईगो है, अगर आज आप महिलाओं में भी देखेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस अगर बूस्टअप है तो वो भी बहुत सशक्त फील करती हैं, ईगो वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त करने की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में, जो रूरल में, जो ग्रामीण में महिलाएं रह रही हैं, ये सब अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकती हैं।
1: उसके अलावा कुछ एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अपने आप को समझाना कि मैं इस सिचुएशन, कुछ एक बात हुई, बच्चों ने कुछ तंग किया या कुछ हुआ, तो मैं इस सिचुएशन पे अभी रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं 5 या 10 मिनट का समय लेकर उस सिचुएशन में रिएक्ट करूंगी। क्योंकि जब भी हम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत बुरा होता है और उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा निकल के आता है। जब हम 10-15 मिनट का समय लेते हैं तो सेम सिचुएशन हम गहरे ढंग से या अलग ढंग से समझ रहे होते हैं, तो उस समय हमारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी काम डाउन या काफ़ी कम हो जाता है। उसके अलावा उस समय में हम जो सलाह देते हैं वो मरीजों को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब कोई गुस्सा आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आपको बच्चे तंग कर रहे हैं, आप बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो थोड़े 5 से 10 डीप गहरे सांस लिए और उसके बाद बच्चों से बात करने की कोशिश करें, या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू करना। 100 से लेकर 1 तक अगर आप उल्टी गिनती गिनेंगे, तो जब तक आप 100 से शुरू करेंगे, जब तक आप 40-50 तक पहुंचेंगे, तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा और उस समय जो आप रिएक्शन देंगे वो आपका असली रिएक्शन होगा, ना कि गुस्से वाला रिएक्शन। और उसके अलावा हमेशा कोशिश करें कि अपनी भावनाओं को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से बताने की कोशिश करें। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आएगा। आप बार बार करती रहेंगी इस चीज़ को, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ों को लेकर आपका रिएक्शन या गुस्सा वो कम होने लग पड़ा है। उसके अलावा डॉक्टर हर्षिता ने जैसे जो चीज़ें बताई, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, थोड़ा व्यायाम करें, शाम के समय फैमिली के साथ में थोड़ा समय बताएं, दिन के समय अगर आपको बहुत सारे काम है तो एक साथ काम का बर्डन मत लें, आधा पौना घंटा काम किया उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। बच्चों में भी मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो लगातार नहीं पढ़ने बैठना, आप 50-10 का प्रिंसिपल यूज़ करें। आप 50 मिनट अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें। वैसे ही हमारे काम में भी ऐसे, अगर हम 40-50 मिनट लगातार काम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसके बाद फिर से काम करने जुटे, उससे हमारी एनर्जी भी बनी रहेगी और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
2: जी, सो आज के इस कार्यक्रम को अगर हम समअप करते हैं तो हर्षिता जी, आप क्या क्विकली वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बुलेट्स की तरह बता सकते हैं? और दूसरा, उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप तो एक टाइम टेबल बता दें महिलाओं की, कि हम अपनी टाइम टेबल को या अपने कार्य को कैसे डिवाइड करें जिससे वो अपना काम भी पूरा कर सके और वो उसमें अपनी मेंटल हेल्थ के भी अटेंशन दे सके, और उसके लिए कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी आप कहें।
3: जी, तो अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को समअप करूं कि आज जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात की है, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देंगे। दूसरा, हम अपनी शारीरिक गतिविधियों को शामिल करेंगे। तीसरा, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, जो अभी हमने ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है, सांस लेना है, कैसे प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, उन सब चीजों पे। उसके बाद हम अपने आप को सशक्त करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद हम अपनी नींद को और आराम को भी ध्यान से हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। फिर हम अपना डिजिटल डिटॉक्स, थोड़ी देर उन चीजों से बाहर रहना, उन चीजों पे हम ध्यान देंगे। कुछ टाइम अपने घर से बाहर बिताएंगे। फिर हमने जैसे शुरू में बात की थी कि हम अपना मी टाइम जरूर हर रोज निकालेंगे, चाहे वो 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, लेकिन मुझे हर रोज अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। फिर हमने बात की थी कि हम अपनी सीमाएं तय करेंगे, हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ऐसे नहीं उनमें दबके रहेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाकर, अपने हस्बैंड की सहायता लेकर कहीं ना कहीं ना करना हम जरूर सीखेंगे। और अभी जैसे सर ने एंगर मैनेजमेंट टेक्निक से बताई हैं हमें, हम उन चीजों पे भी जरूर ध्यान देंगे। गहरी सांसें लेना, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना, कुछ बीच बीच में ब्रेक्स लेना, तो ये कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे सर ने कहा वो करना। और एक लास्ट चीज जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स के साथ यूज करती हूँ, कि जब क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप हमेशा अपने आप से पूछें और फिर उस सिचुएशन को रिएक्ट करें। सबसे पहला, क्या ये स्थिति इतनी गंभीर है? दूसरा, क्या मेरा क्रोध इस समस्या को हल अभी के अभी कर देगा? तीसरा, क्या मैं इस स्थिति को एक अलग तरीके से देख सकती हूँ या नहीं देख सकती? तो ये 3 प्रश्न, आप जब भी आपको क्रोध आ रहा है, आप सबसे पहले अपने आप से ये 3 प्रश्न करें, उसके बाद आप रिएक्ट करें, ठीक है? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं जो अब हमने ध्यान रखने हैं, और अभी टाइम टेबल हमें सर बता रहे हैं।
1: मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताने की कोशिश करता हूँ महिलाओं के लिए, जो उन्हें करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो आइडियल है वो तो एकदम आइडियल है, पर हर आदमी को अपने हिसाब से उस टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि उनकी कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको किस चीज को कितना समय देना है। जनरली जो मैं सलाह देते हैं कि सुबह 6 बजे या जल्दी उठने की कोशिश करें, कम से कम 6 बजे तो उठें, रात को अलार्म लगा के सोएं, सुबह 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करें। उसके बाद एक ग्लास पानी पिया, लगभग 6:15, 6:20, 6:30 बजे तक अपने सभी एक्टिविटीज से फ्रेश हो जाएं। उसके बाद 10 से 15 मिनट का एक योगा या मेडिटेशन करें और उसके अंदर में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लगभग 6:30 बजे तक ये सब काम हो जाए तो उसके बाद एक वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। वॉकिंग या जॉगिंग या कुछ भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना चाहती हैं वो करें, लगभग 30 मिनट के लिए वो ठीक रहेगा। 7 बजे के आसपास आप इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगी तो आपका दिन का जो अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए मेन काम है वो आपने सुबह कर दिया। अब 7 बजे आप नहाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं और जो आपके डेली रूटीन के काम है वो सब करें। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी रखें अपना और कोशिश करें कि शुगर अवॉइड करें, अगर चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें चीनी बिल्कुल अवॉइड करें। ये सब करते करते आपको 7:30-8 बज जाएंगे। 8 बजे के आसपास आप अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बना लें कि आप आज सारे दिन में क्या क्या करने वाली हैं, अपना एक डे प्लानर तैयार कर लें और उसके ऊपर में अगर आपके बच्चे स्कूल जाने हैं तो उस समय में अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजें और उसके बाद 9 बजे से अपने डेली रूटीन शुरू कर दीजिए। 9 बजे से लेकर 12 बजे का समय अपने लिए रखें, जब आपने अपने घर के जो काम है जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी उसके ऊपर एक एक करके काम करते हैं और कोशिश करिए अगर आप वो रिटर्न में टू डू लिस्ट बनाएंगी तो आप उसको टिक कर सकती हैं कि हाँ कपड़े धोने का काम था वो कर दिया, आयरन करने का काम था वो कर दिया, तो वो लिस्ट रहेगी। और एक घंटा काम करने के बाद में हमेशा 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक लें, उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लें तो उससे आप काफ़ी रिलैक्स स्टेट में रहेंगी। 12:30-1 बजे के बीच में अपना लंच कर लें, वो आइडियल समय है। अगर आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया तो 12:30-1 बजे का समय आपके लिए आइडियल टाइम है लंच करने का। 12:30 से 2 बजे के बीच में लंच और थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अगर आप 1.5 घंटे की नींद लेना चाहती हैं तो वो लीजिए और रिलैक्स रहें। और 2 बजे फिर से अपने रूटीन जो है वो शुरू कर दीजिए। तो आपके जो बचे हुए काम है वो सब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करें, उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। शाम को 4 बजे कुछ चाय कॉफ़ी लाइट स्नैक्स के साथ में ले सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें कि आज सारे दिन में क्या क्या विचार आए, आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम आपसे नहीं हो पा रहे थे, उन सबको लिस्ट आउट करना शुरू करें। शाम को 5 बजे जैसे डॉक्टर हर्षिता ने बताया अपना एक मी टाइम रखें जिसमें आप अपने लिए काम करें, अभी तक तो जो आप काम करें थी अपने परिवार के लिए करते, 5 बजे के बाद में अपने लिए एक मी टाइम निकालें 1.5 घंटे का, जिसके अंदर में आप म्यूजिक सुनना, पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं या दोस्तों के साथ फोन पे बात करना जो भी है वो 1 घंटे में करें। शाम को 6 बजे एक लाइट इवनिंग वॉक करें या हल्की सी एक्सरसाइज करें और 7 बजे जब आपके परिवार के सब लोग आ जाएं तो अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू करें। रात का खाना तकरीबन आप 8:30-8 बजे खा लें ताकि उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो सकें और 9:30 बजे के आसपास सोने की तैयारी शुरू कर दें। सोने की तैयारी का मतलब जो हमने लास्ट टाइम स्लीप हाइजीन की टेक्निक्स बताई थी वो सबको फॉलो करें, फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें 1 घंटा पहले और 10 बजे के आसपास आप सोने चले जाएं। तो अगर आप 10 बजे सोने चले जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आपकी 7 से 8 घंटे की एक नींद हो रही है जो कि एक बेहतरीन नींद है। और कोशिश करें कि जब आप सोने जा रही हैं तो अपने पॉजिटिव थॉट्स लेके जाएं ताकि आपके आपको रात्रि जो है वो बहुत अच्छी बीतेगी, कम स्वप्न आएंगे और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगी तो फिर पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगी। अगर आप इसको रेगुलर करती रहेंगी तो एक लूप की तरह आपकी माइंड में सेट हो जाएगा, आपकी बॉडी इस साइकिल में चलना शुरू कर देगी, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
2: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को आज के इस चर्चा के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को, खास करके हमारी महिलाओं को, अपनी दिनचर्या में क्या प्रायोरिटी देना है और हमारी अटेंशन किन चीज़ों पे रखना है ये बहुत समझ में आया होगा। हम अगली कड़ी में इसी के संबंधित और विषयों को साथ में लेकर के आएंगे और हमारे साथ हमारे दोनों विशेषज्ञ भी होंगे। हम यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम जागृति को।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और कह सकते हैं अपना लोक भाषा में मारो गांव मारो अंचल और माई विलेज माई एरिया। सही में गाँव का नाम जब सुनते मेरा गाँव, मेरा मैंने अपना है, स्नेह है, भरपूर है, प्यार है, मेरे से सबसे ज्यादा प्यार है, मेरा नाम से प्यार है, मेरा गांव से प्यार है, मेरा स्कूल से प्यार है, मेरा परिवार से प्यार, मेरा शब्द में बहुत अच्छा लगता है। एक प्रोग्राम का नाम है मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते तो आज हमें बहुत खुशी है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का भावना भाव विद्यार्थी विकास में बच्चों को एक मंच एक स्टेज मिलेगा। उनका आवाज को पहचान के लिए रेडियो मधुबन इस तरह बच्चों को मंच देते, तो आज हमें खुशी है सभी होवनहार बच्चे सभी पहला बार आए रेडियो कार्यक्रम में, उनका आवाज सुनेंगे तो बहुत मजा लगेगा। और उनका जो माता पिता भाई बहन टीचरगण उनका दोस्त रिलेटिव सुनेंगे, अरे इनका आवाज है, ये हमारा आवाज है, ये आवाज ही उनका पहचान होगा, तो देर किस बात की, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय खासकर हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा पहुंचे जो की रेबदर तहसील में आते हैं, तो आब रोड का आवाज तो हम हमेशा सुनते हैं, पिंडवाड़ा का आवाज तो सुनते हैं, लेकिन आज रेबदर ब्लॉक के पामेरा गांव का आवाज बच्चों का आवाज सुनेंगे। तो इसको वार्म अप कराने के लिए हमारा मैम उपस्थित है, मैम इस पूरे विश्वविद्यालय को जानते हैं, एक बार जाकर आए तो उनको स्वागत करेंगे। मैम अपना परिचय देंगे और बच्चों को एक उमंग उत्साह भरने के लिए एक वार्म अप कराइए।
1: माय नेम इज छाया कटारा।
0: जी मैम,
1: मैं कल ही ब्रह्मा कुमारी होकर आई हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। और हमारे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा सिरोही।
0: जी मैम,
1: जो एक छोटे से एरिया में है, बट बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हमारे यहाँ से मिलेगा।
0: बच्चे आज तो इस प्रोग्राम को कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत बच्चे बढ़ भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं?
1: अच्छा लगा कि हमारे बच्चे भी एक रेडियोग्राफी से जुड़ेंगे और इनकी आवाज आगे तक जाएगी।
0: बच्चे जो आते मैम आज कहाँ कहाँ से आते हैं?
1: ये बच्चे इसी गांव के,
0: सभी इसी गांव के।
1: जी, इसी गांव के बच्चे हैं और इनकी स्कूल 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे के।
0: मैम बालिका शिक्षा को लेकर क्या कहना? आप एक मैम है, बालिका थे, कभी पढ़ते थे, लेकिन आज किस आधार से इतना मेहनत क्या किए जो आज एक मुकाम तक पहुंचे, एक लक्ष्य तक पहुंचे?
1: जी, अभी तो हमारे यहाँ का जो गर्ल्स का जो
0: नामांकन
1: एजुकेशन नामांकन वगैरह नामांकन तो काफी है, पर 12th के बाद अक्सर इनको आगे का मौका नहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जब ये देखेंगे और इसी तरह से कोई प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेगी।
0: तो देर किस बात की, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज न हो विद्यालय में और पामेरा का आवाज आज सुनने को मिलेगा, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब कोई भी कार्य शुरू होता है तो प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं परमात्मा के याद में, माँ सरस्वती की याद में। तो पहला प्रस्तुति वार्म अप तो होगी ब्रेक का पहले, अब एक प्रार्थना शुरू करेंगे हमारा बड़े बच्चे। तो सभी अपना अपना नाम और कहाँ से।
1: नमस्कार, मेरा नाम धरती परमार, मैं राजकीय उच्च विद्यालय पामेरा के एक छात्रा हूँ जो 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
2: मेरा नाम डिंपल माली, मैं कक्षा 12 से, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा की छात्रा हूँ और कक्षा 12 में पढ़ती हूँ।
3: नमस्कार, मेरा नाम पूनम चौधरी, मैं राजकीय उच्च विद्यालय पामेरा से बात कर रही हूँ। आज हम सब सामूहिक प्रार्थना करेंगे।
4: नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा में पढ़ती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। सभी बच्चे रेडी होंगे और सभी बच्चे अपना अपना अभी नाम तो बता दिए, अभी प्रार्थना शुरू करेंगे। सभी बच्चे रेडी है? ओके, 1 2 3 शुरू।

0: कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। स्वर लय का साथ गाते हैं बच्चे। और एक प्रार्थना हो माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती का वंदना करते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। और एक गीत प्रस्तुत करेंगे तो प्रार्थना में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करें। एक लय कर सकते हैं।
2: उठो जवान।

0: माँ भारती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को मौका का आवश्यकता था, जो मौका आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन शाखा आज पहुंचा है। उनका टैलेंट, हुनर और दिल का, हृदय का जो संगीत है, इस तरह प्रस्तुतकरण करते हैं। तो हमारा इस कार्यक्रम को जो सजा है, उनका नाम सुनते एक बार तो बहुत अच्छा लगे। इतना इस गीत को देशभक्ति में ओतप्रोत होकर अपना बात को रखे। तो फिर से आपका नाम बताइए प्लीज।
0: मेरा नाम खुशबू कुमारी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
1: आपको डर झिझक कुछ नहीं लगा गाने में?
0: थोड़ा सा डर
1: लगा, लेकिन अभी डर ना नहीं, क्योंकि रेडियो में आपका आवाज सुन रहे हैं। आपको पहला बार मौका मिला रेडियो में, तो आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं। और इसका धन्यवाद किसको देंगे?
0: मैम को
1: देंगे, क्योंकि मैम का आशीर्वाद, मैम भी उपस्थित है, जो वार्म अप करा दिए पहले में ही, तो इसलिए आप भी अच्छा बोल पा रहे। और बढ़ोकर क्या बनेगी खुशबू? कुछ लक्ष्य रखा है मैम जैसे, ना डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट, क्या बनेगी?
0: पुलिस।
1: मैम बोला भाई मेरा नाम तो रोशन करो कम से कम, नहीं बोला हम पुलिस बनेंगे। इसलिए तो हाइट भी अच्छा है, इसलिए मेहनत करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करना अति आवश्यकता है। पढ़ाई का साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते है ना खुशबू? और घर में कोई पुलिस है क्या परिवार में? फिर भी आपको कैसे याद आया जो पुलिस बनूंगी? तो अच्छा,
0: ऐसे लगता है कि पुलिस बनना चाहिए।
1: पुलिस बनने डर तो भागेंगे आपको देखकर, नहीं अच्छा आदमी भागेगा नहीं, बुरा आदमी जो भ्रष्टाचार होगा, जो नुकसान करेगा उसको, वो डर कर भागेंगे।
0: हाँ।
1: आपका काम क्या होगा जो पुलिस होगा? तो भ्रष्टाचार को, चोर को
0: उसे पकड़ना
1: है, पकड़कर उसको दंडित करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा और एक बच्चे बोले भाई सर हमारा नंबर कब आएगा, तो और एक गुड्डा हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। लेकिन लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन। आज तो बच्चे को एक मंच मिल रहा और एक एक आरजे बन गए, रेडियो में बोलने का चांस मिला, इसलिए धन्यवाद का पात्र स्कूल के। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हम रेडी और एक एकल प्रस्तुति के लिए एकल गान के लिए हमारे छात्र उपस्थित है गुड्डा है ना पांडव शक्तियां तो नाम रोशन किए है ना नारी शक्ति का सम्मान करते इसलिए नारी को आगे चांस दिए इसके बाद हमारा गुड्डा आया है ना क्या नाम है
1: उत्तम
0: हाँ उत्तम मध्यम करते हैं ये तो उत्तम सबसे ऊपर है मध्यम और कनिष्ठ आप उत्तम कौन नाम रखा है उत्तम
1: मेरे पिताजी ने
0: हाँ क्या नाम है पिताजी हाँ वो सुन रहा है तो आपका नाम रोशन कर रहे माँ बाप का इसलिए आपका बोला हमारा बच्चा अब स्कूल में जाकर इसे नाम रोशन करते क्या प्रस्तुत करेगा उत्तम सुनाएगा
1: कर्म पूछ कर गोली मारी पहल गाँव के घाटी पे बैरे हो गए गाँव 26 भारत माँ की साथी पे मेहंदी का रंगना सूटा उसका सिंदूर मिटाया था तुम्हें दया ना आई वो सिंधुओं का खून बहाया था कश्मीर की घाटी घायल घायल हिंदुस्तान है हिंदुओं का नहीं सुरक्षित कैसा हिंदुस्तान है भारत माता कहती मुझे अजब चालो गैरों से महाराणा प्रताप बनो तो बहते हिंदू शहरों से कब तक छुप कर वार करोगे कब तक जान बचाओगे ऐसा मौत तुम्हें हम देंगे कब नहीं तुम पाओगे पानी बंद किया है तेरा आटा भी रोकेंगे बांध रहा है तू जहाँ पे वहाँ पे गोली ठोकेंगे कर्म पूछ कर गोली मारी पहल गाँव के गाड़ी पे बैरे हो गए गाँव 26 भारत माँ की साथी पे
0: बहुत बहुत धन्यवाद कितना सुंदर और बिना झिझक पहला बार आए कोई प्रिपरेशन नहीं कोई सूचना नहीं फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लिए ये तो परमात्मा का याद में जो बढ़कर शुरुआत किए उसका ही शक्ति है ज्ञान है तो अच्छा लगा
1: अच्छा लगा
0: और बढ़े क्या बनेगा
1: अध्यापक
0: अध्यापक वाह अध्यापक हमारा सुन रहे अध्यापक क्यों पुलिस क्यों नहीं एक बहन बोला हम पुलिस बनेगी लेकिन तुम बोला हम अध्यापक टीचर क्योंकि टीचर का सम्मान होता है पुलिस का भी शिक्षक और रक्षक पुलिस हमारा रक्षक है ना और शिक्षक और किसान कृषक ये तीनों को हम सलाम करते लेकिन हमारा साथ इस कार्य कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा छोटी सी परी है नन्ही सी परी नाम मुस्कुरा रहे नाम जो बोले परी परी तो अब तो कोई नहीं बोला फरिश्ता हमारा फरिश्ता का परिचय देंगे फरिश्ता नाम बताओ
1: कोमल
0: कोमल अच्छा उसका स्वर में ही कोमलता है लड़के तो कोमल होते है ना कोमल होते है लेकिन कभी होगा तो पूरा काली का रूप भी दुर्गा का रूप भी दिखाते है ना कोमल भी है और सख्त भी है चलिए कोमल क्या सुनाएगी सुनाओ
2: आसमान में बदरी चाई ढेर से मुन्ने संग में टप टप टप टप बूंदे बोली बीजो नजर आके खोली पौधों ने भी ली अंगड़ाई सब ने मिलकर खुशी मनाई
0: वाह वाह सही में पौधा छोटा सा पौधा बीज से कैसे अंकुरित होता है और पूरा जीवन कहानी सुना ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं बड़े होते हैं और इसका बाद शरीर छोड़ते तो वृक्ष जैसे बहुत अच्छा लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों से रूबरू होने के लिए सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 1

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक के बाद हम बच्चों को सुन रहे थे, हम भी बच्चे बन गए और हमारा मैम तो पहले ही बच्चे बनकर बच्चों का साथ पूरा अपना आवाज को सुना रहे थे और तत्पश्चात बच्चे रोक नहीं पाए अपना आवाज को। एक का बाद चाहे देशभक्ति हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, उनको मंच मिल रहा है। चलिए देर किस बात की, अपना अपना नाम बताए और कौन सा क्लास में। ओके शुरू।
2: मेरा नाम किशोर, मैं कक्षा पांचवी से।
3: मेरा नाम दशरथ वर्मा, मैं कक्षा पांचवी का छात्र।
4: मेरा नाम नितेश कुमार, मैं कक्षा पांचवी का छात्र।
1: तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है बता देखी।
4: दशरथ।
1: दशरथ क्यों? दशरथ हो क्यों इतना बच्चे, फिर दशरथ हो क्यों इतना दोस्त, कुछ देता है पैसा?
4: खास दोस्त
1: खास दोस्त नहीं, खास खास जैसे

0: क्या था बच्चे?
1: हाँ सुदामा।
0: हाँ तो अमीर गरीब का बात नहीं है ना, सहयोग का बन, चेहरा का नहीं, काला गोरा का नहीं, लेकिन उनका अंदर में जो विशेषता है, जो गुण है, जो शक्ति है, जो सहयोग का देते हैं, इसलिए खास बन जाते हैं। सभी तो दोस्त है लेकिन खास है ना, खास है कि दशरथ आपका खास है। अच्छा दशरथ आपका नाम कौन रखा? दशरथ
2: मेरी मम्मी।
0: दशरथ रामायण में है ना महाभारत में? बच्चे बताएंगे दशरथ जो रोल किया है रामायण में, बच्चे रामायण देखते थे पहले, इसलिए रामायण में है ना। दशरथ का कितने बेटा था?
2: चार।
0: वाह बहुत, ऐसे जीके भी स्कूल में होता है इसलिए बच्चे को मालूम होता है। चलिए शुरू करते हैं एक प्रस्तुति, ओके दशरथ एंड पार्टी।

0: किया धनी भाई मने।
1: सुंदर प्रस्तुति के लिए सबके तरफ से ताली बजा भाई। ताली बजाने में कोई पैसा नहीं लगता है और एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा तो गोला फूल जैसे खिलता है ना, और मुस्कुराहट है ना, बच्चे कुछ भी हो जाए खुशी गायब नहीं होना चाहिए है ना, राजी खुशी रहना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो लेकिन राजी खुशी होना चाहिए है ना दशहरा। हाँ जी सर, जी सर, हाँ जी करते, क्योंकि बच्चे हाँ जी जो करेंगे ना, जो बड़े का बात मानेंगे वो आगे बढ़ेंगे, माँ बाप का बात भी मानना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, बच्चे मानते हैं ना माँ बाप का बात।
0: जी सर,
1: माँ बाप का बात मानना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए, अभी मानेंगे तो बड़े होकर दूसरों को मनाएंगे, ठीक है, सबको मनाएंगे, जैसे आप सबको मैं मना रहा हूँ है कि नहीं। हाँ बहुत अच्छा, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और 3 छात्र है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: चलिए चलिए, बहुत खुशी का बात है। आज बच्चे सभी खुशी है ना?
1: तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और 3 छात्र हैं, तो उनको भी स्वागत कर रहे हैं। और आप सब सुन पा रहे हैं राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा, क्योंकि हम तो पहला बार आए हैं इस गांव को, नाम मुझे बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए पामेरा है ना। बच्चे तो बोलेंगे बढ़िया से। क्या नाम स्कूल का?
2: पामेरा।
1: और आपका नाम?
2: नंदनी।
1: नंदनी, वाह, नंदनी और नंदन दो चीज होता है। नंदनी बहनों का नाम होता है और नंदन लड़के का नाम नंदन होता है ना। चलिए सुनते हैं उनका नाम।
2: प्रेरणा कुमारी।
1: प्रेरणा, ओके।
2: धनवंती कुमारी।
1: धनवंती, बस सब अच्छा अच्छा नाम है, सब माँ बाप को धन्यवाद देंगे भाई। चलो शुरू करें।
3: आओ बच्चों तुम्हें सिखाए जाती हिंदुस्तान की, इसमें से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सम्राट है, जमुना जी तट कर देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यह निरा खाट है, ये देखो ये तस्वीर अपने गौरव की अभिमान है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, ये है अपना राजपुताना, ना इसे तलवारों पे सारे सारे जीव काटे है, बचते तीनों कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है यादी की नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पादी नागों पे, बोल रही थी कण कण में भूखूर राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम,
1: बोला वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की
4: जय।
1: वाह, क्या इसको कहते देशभक्त। और राजस्थान के बच्चे, उनका खून में ही देशभक्ति है, क्यों राणा प्रताप को याद करते, इस धरती पे बलिदान दिए थे देश के लिए। और हमारा बच्चे मन से बुद्धि से संस्कार से पूरा बलिदान देते हैं। जब आजादी का अमृत काल चल रहा है और ये बच्चे ही आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे, बहुत अच्छा लगा। सभी को धन्यवाद देते हैं। नंदिनी एंड दोस्त, नंदिनी तुम्हारा अच्छा शिक्षक का नाम बता दे कि कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है?
2: दीप सिंह जी।
1: कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हमारा दीप सिंह सर अभी तो यहाँ पर नहीं है, सुन रहे, तो क्या विषय पढ़ाते हैं?
2: हिंदी।
1: हाँ, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है भाई, और हम हिंदी नहीं मालूम होगा तो हम कहाँ भी, जैसे हम उड़ीसा से आए, हमें हिंदी नहीं आएगा तो हमें बोलेगा अरे कहाँ से आ गए, साउथ से। तो हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी पढ़ाते हैं। बड़ा होकर क्या बनेगी नंदिनी?
2: डॉक्टर।
1: हाँ, डॉक्टर का काम क्या होता है?
2: पेशेंट के इलाज।
1: हाँ सुई नहीं, पेशेंट को बीमारी को भगाएंगे और देह को स्वस्थ रखाएंगे, है ना। लेकिन अरे हाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी कौन सा क्लास नंदिनी?
2: सिक्स।
1: अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इस कड़ी में ही और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चलिए और एक प्रस्तुति के लिए हमारा बच्चे रेडी है, तो सुनते हैं अगला प्रस्तुति। नाम का साथ शुरू, नाम बताइए।
1: मेरा नाम रितु कुमारी।
0: रितु।
2: मेरा नाम नफीसा बानू।
0: शुरू कर।
3: सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आके खोली, अच्छे बच्चे मंजल करते, मंजल कर कर कुल्ला करते, कुल्ला कर कर मुंह धोते, मुंह धो कर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते।
0: वाह, पढ़ने जाते हैं। ये हो गया दिनचर्या, क्या करते बच्चे सुबह से शाम तक हमारा दिनचर्या। सुबह उठते, मुंह धोते, मंजन करते, स्कूल जाते, पढ़ाई करते और अभ्यास करते, है ना? ऐसे से कर रहे हैं। और बड़ा होकर क्या बनेगी तुम?
2: मैडम।
0: मैडम बनेगी आप?
2: मैडम।
0: मैडम, चलिए मैडम के लिए ताली बजा देंगे, छोटे छोटे मैडम है। चलो इस गाड़ी में आगे बढ़ाते हैं, आगे चलो। और एक प्रस्तुति हमारा दो गुड्डा है, तो वो भी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, छात्र है। तो अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं, हमारा अंतिम प्रस्तुति होगी, चलिए शुरू करते हैं।
4: मेरा नाम मनोज कुमार, कक्षा पांचवी से।
0: वेरी गुड। और कौन सा गांव से?
4: पामेरा।
0: पामेरा से। और बड़ा होकर क्या बनेगा? क्रिकेटर। अरे बाप रे, हमारे सचिन तेंदुलकर भी फेल कर देगा। और अभी तो नया अभी एक लड़का है 15 साल का, क्या नाम है?
4: सूर्यवंशी।
0: हाँ, उसको पूरा याद है, सूर्यवंशी। चलो शुरू कर।
5: नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी।

0: दूंगा चंदा अम्मी दशरथ।
1: चलिए बहुत छोटा सा प्रस्तुति है, फिर भी कम नहीं है, बड़े होकर सब बनेंगे। और इसी कड़ी को हमारा साथ देने के लिए तीन छात्रा है, तो अपना नाम और कौन सा क्लास में बताएंगे, सभी सबको अच्छा लगेगा जरूर, हमारा श्रोता भी सुन रहे और ये लोग बच्चे भी अपना नाम बताएंगे।
2: मेरा नाम आशा माली है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ।
3: मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ।
1: गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट।
4: मेरा नाम पिंकी दिवासी, मैं कक्षा 7 से।
1: घर में कौन कौन है तुम्हारा? घर में
4: मम्मी पापा दादी चाचू और चाची।
1: सबसे अच्छा कौन लगते? अच्छा प्यार करते, अच्छा स्नेह करते, जो भी चीज होता था हमारा। पिंकी कहाँ गई? पिंकी कहाँ गई? इसका बिना तो अधूरा है, उसका नयन का तारा है आप।
4: मम्मी पापा।
1: मम्मी पापा आपका अच्छा लगते हैं? क्यों? आप अच्छा पढ़ते हैं, उनका बात मानते हैं?
4: हाँ।
1: माँ बाप का बात मानते हैं, इसलिए आपको प्यारे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं।

सही में कितने सुंदर और देश भक्ति में ओत प्रेत होकर अपना प्रस्तुति दिए और त्रिरंगा पूरा विश्व में लहराएगा और वो भारत का नाम रोशन करेगा और भारत हमारा महान है। जितना भी देश है लेकिन भारत को माता कहते, भारत माता अमेरिका रूसिया जापान जितने भी 90-200 देश है किसको माता शब्द नहीं, माँ माँ में जो स्नेह प्यार है और जो भी भारत में आते हैं वो मिट्टी को भारत का मिट्टी को सिर में लगाते हैं है कि नहीं बच्चे, क्योंकि भारत का महान, भारत हमारा महान और हम उसमें गर्वित है क्यों हम उसमें जन्म लिए और उस मिट्टी में पले बड़े और यहां तक पहुंचे और वो गांव भारत में, हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव भारत में, तो इसलिए हम कितने भाग्यशाली है कि नहीं। जहां और खासकर राजस्थान के सिरोही जिला में हम सब रहते हैं है ना, तो सिरोही जिला सबसे अच्छा है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक ब्रेक लेते हैं अंतिम प्रस्तुति की और एक दो छात्रा वंस मोर मैम का तत्वावधान में गाइडेंस में उनको और एक चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैम को भी

धन्यवाद देते, लेकिन वो दो बच्चों को और एक चांस देने के लिए इशारा किए, इसलिए मैंने उन दोनों को फिर से स्वागत करता हूँ। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये सब सुन पा रहे अपना आवाज को, आवाज का दुनिया में।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को, और रेडियो मधुबन के हमारी तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं, और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम, बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर, पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो, एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं, या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं सर, तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया। तो जो, और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहां पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहां से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है, वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाट एवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता। फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक की, एल्जब्रा, जो ज्योमेट्री की बात आती थी, तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि सेवेंथ में आते आते जैसे कुछ नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें, और स्क्विंट भी आई मेरा। हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार
1: देखो।
0: में ही?
1: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो जो बस गया ना इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय में नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्या चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे, और उसका
0: जी
1: साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसके बाद मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी, मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। प्लस 2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है वाह।
1: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत, मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट
0: प्लस टू
1: चेक
0: का बता रहे हैं आप,
1: करके।
0: 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
1: जी
0: टॉप किया है
1: ट्वेल्थ का
0: ना?
1: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने
0: क्या
1: पॉलिटिकल
0: सब्जेक्ट उस
1: साइंस,
0: समय,
1: हाँ
0: 12th में सब्जेक्ट
1: जी,
0: क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
0: अच्छा, हिंदी
1: हिंदी
0: मीडियम
1: जो
0: या इंग्लिश
1: पास्ट में
0: मीडियम?
1: हिंदी इंग्लिश मीडियम, 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए,
0: मीडियम।
1: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय। तो
0: जी
1: इसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के
0: जी
1: लिए, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना,
0: जी
1: और तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मैनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, +3 1st ईयर 2nd ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में
0: जी
1: मैंने पाया, तो आई वाज सो हैप्पी, लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ, तो मेरी जो ग्रैंडमदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि
0: जी
1: भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, है ना। तो हाँ जी, समझे आए आप। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो, और क्या चाहिए, है ना। हमारा
0: आंखों का
1: मतलब
0: क्या ठीक हो गया था, वापस
1: जी
0: बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था
0: अच्छा, मतलब आपकी
1: जी।
0: रोशनी वापस से ठीक होने
1: नहीं
0: लग गई थी?
1: रोशनी नहीं, रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था,
0: ओके, टेढ़ा
1: तिरछापन जो था, पुतलियां, वो अपनी सही जगह
0: टेढ़ापन
1: पे,
0: था। ओके
1: हाँ
0: अच्छा,
1: हाँ वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके, तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द
0: एंगेजमेंट
1: ईयर
0: आपके जैसे व्यक्ति
1: जी,
0: से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से?
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: लिखा था
0: स्थिति
1: कहीं
0: में नहीं रहे कि
1: डॉक्टर।
0: आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ
0: परिवार
1: बिल्कुल
0: में?
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए जी। तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं, है ना।
0: हाँ,
1: तो यहाँ भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे
1: अनलकी
0: दिन भी
1: रही
0: तेरे भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, वाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई, ठीक है। वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी,
1: कुछ नहीं था सर, अपने
0: कुछ भी नहीं
1: फैमिली के
0: था?
1: टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं, कोई बात
1: क्योंकि
0: नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे भी
1: भी
0: पर्सनल,
1: बात
0: हाँ, वो वैसे भी
1: जी
0: पर्सनल लाइफ है,
1: हाँ
0: रही है आपकी,
1: जी,
0: तो कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया, ठीक है। देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000, यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
0: ओहो,
1: टू
0: ओहो।
1: थाउजेंड फोर में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैनॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता। आप
0: एक
1: इंग्लिश
0: ऐसी
1: के साथ जा रहे
0: परेशानी
1: हैं
0: से आप
1: और
0: जूझ रहे हैं जो ठीक नहीं हो सकता।
1: कई सालों से, मतलब है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
0: अच्छा।
1: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस, आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते
1: हाँ
0: नहीं है, न जाने क्या
1: हाँ तो
0: हुआ है
1: बोले कि
0: जो।
1: हाँ, वो कहते हैं ना यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू, मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके, फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन, सर वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। आई वॉज इन डिप्रेशन, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस
0: और
1: एंड
0: उन्हें
1: है
0: बेटे
1: नहीं।
0: की
1: हाँ
0: बेटे का लालन पालन भी साथ में चल
1: वो
0: रहा
1: सब
0: है
1: तो
0: और ये
1: मैं,
0: सब।
1: हाँ वो सब तो देखिए, सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने, और
0: आपने
1: उन्होंने
0: ब्रेल लिपि
1: मुझे
0: भी सीखी
1: काफी,
0: मैडम?
1: जी मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक

0: और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना। कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से। देन कंप्यूटर में जो एनवीडीए सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया। फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था, और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ, और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई। थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे, कुछ 2-3 लाख रुपए, वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना। तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो
1: नहीं
0: ये
1: लटक रही,
0: चीज जब
1: सही
0: दूर
1: बात
0: हो
1: है।
0: गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की, जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कांटेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश। तो मैं खुद भी, मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है, कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया, मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया, मैंने हाथ ही सीखा, कहते हैं ना। तो खुद ही एक्सप्लोर कर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ। वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी
1: ओ
0: जितनी
1: क्या
0: इंग्लिश की
1: बात है।
0: किताबें होती थी सब मुझे, बैठते थे पढ़ के बता, पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी। ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे कोई ले जाना, झारसुगुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज वो नहीं है, बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
1: आपके जीवन
0: और
1: में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा समझ में
0: बहुत
1: आ रहा
0: बड़ा
1: है।
0: रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती,
1: हम समझ
0: बस
1: रहे
0: वो
1: हैं कि
0: एक
1: आप
0: मेढक बन के रहते हैं जी।
1: भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए,
0: जी
1: निश्चित रूप
0: जी
1: से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
0: तो ही वॉज अ बैकबोन टू मी, एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूँ तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखे हैं,
1: हाँ वाह क्या
0: रहते
1: बात है।
0: हैं, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो
1: जी
0: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
1: जी
0: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर अजीबोगरीब।
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: आपको
1: नहीं,
0: बताऊं,
1: नहीं।
0: हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
1: जी
0: आपके प्रति बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स राइट. मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर.
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: है ना. तो ये बात है. तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है, बट मैंने बहुत नाम कमाया. स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और भगवान ने बहुत बहुत तरक्की दी. मोर देन यू नो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया और सब साइटेड. और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं. टीचर्स ट्रेनिंग दी है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा स्टाफ पढ़ाया है. कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है. तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे. तो ये सब भी है. इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाइप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपना एक है, उन लोगों ने टाइप किया. तो इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन सैटरडे संडे इनके यहाँ जाकर के पढ़ा रहे हैं. तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को. तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वाज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock.
1: समय मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे,
0: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी. बैचेस मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी. तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई. और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया. तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है. तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर, और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए. और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए. तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ, जिसके और 2 हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं. और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के. तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से. ये मेरा एक
1: बात
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है. जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले. तो ये मैंने किया, कोशिश की. लेकिन चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना, वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए. तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के. तो ये चीजें हमने की. उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है. तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं. तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक OTV है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को तो उस समय पे. और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे. और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे. अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है.
0: नहीं नहीं सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है हमारे समाज में, हम जिस तरह के माहौल में.
1: और फिर क्या होता है ना कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी
0: नहीं सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस, है ना. क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी। हाँ जी, तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है। देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात हुई, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया।
1: अच्छा,
0: ओरल कैंसर जी। तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड। तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने इसे रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था। एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए। और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ। तो ये
1: छत्तीसगढ़ में कौन से शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है वहाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया एंड उन्होंने ही हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ है ना एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर। फिर जमीन वगैरह
1: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही अपने आपको मतलब
0: बचपन से ही पूरा
1: सरवाइव भी किया, फ्लरिश भी किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने। एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
0: जी।
1: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी, लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
0: जी
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
0: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ। सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है ना जिसने एक प्लस एड ऑन किया।
1: किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद ब्लाइंड है,
0: लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके, और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास, और सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से।
1: वहाँ आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी या अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी। तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
1: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ ये बिल्कुल राउर किला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: Yes. तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
0: जी,
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा।
1: ये क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया, है ना। एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात बेटे को भी पता है बहुत अच्छी तरह से जी।
1: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम है आप। दिल्ली में एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर सबका अपना अपना संघर्ष होता है,
0: अब इस
1: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं, अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई?
0: जी मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ, अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस ओर तो
0: जी। और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है,
1: तो वो भी रहा जी। आप बताइए,
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
1: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए
0: जी। बिल्कुल सर होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यही कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी तो तब ये हाल है ना,
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है
0: जी
1: जी।
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही। तो ये बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर। और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा, और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, तो कल्पनावादी संसार होता है ना उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें बस उड़ान, तो बस हाँ। एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही, बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके आया, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो और अपने मायके में रहती है उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते

0: फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे तो जी, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां
1: बिल्कुल
0: पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है। ये हुआ, तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक
1: अरे वाह,
0: आर्टिकल
1: क्या
0: आता
1: बात
0: था
1: है
0: पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने
1: जी।
0: वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोगों ने, है ना, जो लो विजन वाले भी, देखने से
1: जी
0: पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं, आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके, ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड
1: बिल्कुल
0: हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके, तो ये रही। तो इस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से,
1: जी
0: और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो
1: जी
0: मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
1: अच्छा
0: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग विम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी,
0: जी तो
1: यानी अब आपने अपना
0: हाँ
1: खुद का एक तरह से एक
0: जी,
1: कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है
0: एक सोशल
1: कनेक्टिंग
0: वेंचर
1: विंग्स
0: शुरू
1: के नाम।
0: किया जिसका नाम कनेक्टिंग विंग्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं। तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित है, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे
1: अच्छा
0: एडिटिंग नहीं आती थी। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से
1: जी
0: हैं, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेब की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति भी
1: वाह,
0: बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक
1: क्या
0: ब्लाइंड
1: बात
0: पर्सन
1: है।
0: है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, और उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा, सबसे फोन पे बात करके व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी। और सब सब लोग बोलते थे कोमल नहीं हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर। तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ। 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड अभी कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टि बाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट पोएट राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी। और विकास शर्मा जी को फाउंडर है और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यू होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ। और ओम वेनावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं और बाकी हमारे टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लोग ऐसे नहीं, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
1: जी,
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है, यस आई एम 40, आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हमारे साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है लेकिन इन फ्यूचर
1: हो जाएगा,
0: आज कल
1: बिल्कुल, आज नहीं तो कल, जो सोचा है वो तो होना ही वाला है जी।
0: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में 0 और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द सन,
1: एक क्या अनेक जीरो लग जाएंगे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो कितने, मतलब टोटल ऐसे एक संख्या में कभी नोटिस तो जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जोश पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट कहानियां कविताएं, तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: उपन्यास
0: करने का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है का नाम क्या नहीं हो जाए, और हैंडल जो उपन्यास की शक्ल में भी है, इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन

0: है कोलैबोरेशन है
1: अवसर मिला
0: कोलैबोरेशन।
1: तो उनके साथ भी हम मन की आंखों से कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल
1: करने की
0: ही
1: कोशिश
0: वेल,
1: करेंगे।
0: हाँ वो बहुत
1: और ये
0: प्रतिभावान।
1: अभी व्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी अभी व्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने एक किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है। और गोष्ठी,
1: बहुत
0: कुछ
1: बहुत
0: काव्य गोष्ठियां हमने की हैं कनेक्टिंग ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोइट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और अक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट, कॉम्पिटिशन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे? क्योंकि ब्रेल लिपि तो आपने
0: नहीं
1: बहुत ज्यादा सीखी नहीं।
0: नहीं, सीखी लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी हुआ
1: ओके ओके
0: सब।
1: अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा
0: जी
1: और उसी का बहुत जबरदस्त
0: हाँ
1: इस्तेमाल भी
0: बिल्कुल,
1: किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर वो वाला, ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती, गूगल
1: बहुत
0: इनपुट टूल के थ्रू से
1: बहुत
0: मैं सीख।
1: जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है,
0: जी जी
1: अब
0: बिल्कुल,
1: ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो
1: वाह,
0: अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईज के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश खून है या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी
1: वाह वाह,
0: परीक्षाएं लेती है तो सुकून भी जिंदगी के पास है, आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा कहते, बाबा आए हैं बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, या कहे ज्ञान रत्नों से बुद्धि की झोली भरने के लिए। इन ज्ञान रत्नों को धारण करके बाबा कहते, तुम इतने समझदार बन जाते हो जो तुम्हारी कमजोर बुद्धि सशक्त हो जाती है, और उस कारण से भविष्य नई दुनिया के अंदर तुम्हें अपने राज्य चलाने के लिए कोई वजीर की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जैसे ही दो युग समाप्त होते हैं, द्वापर युग आता है, तो धीरे धीरे बुद्धि कमजोर होने लगती है। इसलिए राज्य चलाने के लिए वजीर रखना पड़ता है, और कलयुग के अंदर तो बुद्धि इतनी कमजोर हो जाती है कि मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को इन ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरना है। बाबा के श्रीमत में कोई भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है, लेकिन श्रीमत पर चल करके पावन जरूर बनना है। बाबा कहते, तुम बच्चों को बाप से सच्ची प्रीत जोड़ करके बाप समान मीठी सैक्रीन बन जाना है, और सबके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठे सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। कौन से संस्कार भर रहे हैं कि भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार? तुम यहां आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। बाबा से सन्मुख बैठकर मुरली सुनने में और दूर बैठकर मुरली सुनने में बहुत फर्क पड़ जाता है। मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है, भक्ति मार्ग में भी मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहां तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मनिश्चय करना है। मैं आत्मा
बाप से वर्षा ले रही हो। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। ये बहुत सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। अकेला शरीर है तो पाठ नहीं है, अकेली आत्मा है तो भी पाठ नहीं। जब आत्मा और शरीर दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझते न समझा सकते हैं। न मनुष्य खुद समझते हैं न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है, वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स पाठधारी है। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते हैं। बाबा कहते सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। सारे एक्टर्स दुनिया रूपी रंग मंच पर हाजिर तब होते हैं जब नाटक पूरा होने वाला है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है। यहां आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। अभी बाबा से सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहां सन्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। हम बाबा कहते जब चित्र है तो इसका मतलब साकार में होकर के गए, तभी तो हुए चित्र। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पाठ बजाया है, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाएं कैसे चलाएंगे। बाबा से सीख रहे हैं हम राजाएं कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते राजा महाराजाएं इतने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत से श्रेष्ठ बन जाते जो किसी से राय लेने की दरकार ही नहीं। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा
इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, आत्मा एकदम फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टॉकी बने हो। शांति धाम से यहां आए, इस दुनिया में टॉकी बने। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अभी ज्ञान है। आत्मा कहती है, हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार दूसरा लेता हूं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी, वापस परम धाम में मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहां तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मनिश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। बाबा कहते हैं, ये माया का ऐसा वंडर है जो घड़ी घड़ी बच्चों को बाप की याद भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाबा कहे, इतना सहज भी नहीं है कि बाबा का बने माना याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है तो पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है।
इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। परमात्मा की महिमा है तुम्हें ही माता पिता तुम्हें हो। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है, एक ही मैं सैक्रीन हूं, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन बन जाओ। बाबा कहते जैसे मैं मीठी सैक्रीन हूं, ऐसे तुम भी सब बातें छोड़ करके, पुरानी बातों को छोड़ करके मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। बाबा कहते कोशिश करो याद करने की ताकि खाद निकल जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। बाप आते ही है सबको वापस ले जाने। मच्छर सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। याद रूपी योग से ही पवित्र होना है, योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया है, सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो, अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहां योग अग्नि कहां वह, कैसे मनुष्य ने योग अग्नि को स्थूल अग्नि में बता दिया। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है, आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है, यहां का सुख तो कागविष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। ज्ञान रत्न में कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है, याद से पावन बनने का धंधा करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे, अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं
कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे, अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। बाबा कहते तुम सबसे आगे पायलट हो रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना भाव। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते इसीलिए देही अभिमानी बनो, बाप से सच्ची प्रीत जोड़नी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्री

सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं, उनकी सूरत पर अंतर्मुक्ता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्वस्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन, ज्ञान सूर्य के सन्मुख रह, अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसी है वैसे नहीं आ सकती। हम बाबा कहते अगर अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसीलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। अच्छा, ओम शांति।